ओम शांति। 28 जुलाई दीदी मनमोहिनी का स्मृति दिवस। इसी दिन 1983 को दीदी ने अपना नश्वर देह त्याग कर बाबा की गोद ली थी। मेरा इस आत्मा के साथ रहने का बहुत सुंदर और लंबा अनुभव है। उन्हीं के माध्यम से मैं समर्पित हुआ। उन्होंने ही बाबा के सामने मुझे इंट्रोड्यूस किया था और समर्पित कराया था मुझे। बहुत प्यार रखती थी मेरे से। और फिर जब मैं किचन में आया और नाम होने लगा तो उनको बड़ा गर्व होता था कि मैंने इसको रखा है। तो बहुत ही महान आत्मा, मैं कहूँगा इस सृष्टि की हीरो एक्टर थी वो। बहुत अच्छी चीजें हैं, बहुत डिसिप्लिन थी, कहीं कहीं स्ट्रिक्ट भी थी। जब सब भोजन करते थे तो वो चक्कर लगाती थी कि सभी योग युक्त होकर कर रहे हैं। जब तक दीदी रही तब तक भोजन साइलेंस में चला। सोमवार और गुरुवार दो दिन मौन रखा जाता था, उसको हम मूवी कहते थे। माना किसी को बोलना है तो बहुत धीमे बोलना है। योग अभ्यास चलते थे बहुत अच्छे, कोई 7 दिन का मौन भी रखते थे, एक एक मास का भी मौन उन दिनों रहता था। दीदी पुरुषार्थ में भी बहुत स्ट्रिक्ट थी। और ब्रह्मा बाबा जब थे तो ठीक 6:10 पर बाबा को उनके कक्ष से लेकर किचन से घुमाते हुए क्लासरूम तक उनके साथ जाती थी। ब्रह्मा बाबा के साथ बहुत सुंदर पाठ था, पुरुषार्थ पे भी बहुत ध्यान रहता था। मुरली में सबसे आगे आकर बैठती थी। तब तो ये कुर्सी कोच कुछ नहीं होते थे, दरी पे नीचे बैठना होता था। सबसे पहले आके बैठती थी, डायरी पेन हाथ में होता था और नोट्स लेती थी। तो एक अच्छी स्टूडेंट, बुजुर्ग होते हुए भी एक अच्छा जीवन, पुरुषार्थ थी जीवन। और लौकिक की बात कहें तो ये और इनकी माँ यज्ञ में शुरू से ही आई। दोनों ही बहुत साहूकार थे, इनका पियर घर भी और ससुराल घर भी सिंध में प्रसिद्ध भी थे और बहुत धनवान भी थे। सब कुछ छोड़कर बाबा के यज्ञ में आ गई। बाबा इसलिए इनको बहुत प्यार करते थे और कई बातों में ये बाबा मामा को बहुत अच्छी अच्छी राय भी देती थी। दिल्ली में रही बहुत समय और मामा के अव्यक्त होने पर यानी 65 जून से दीदी को बाबा ने मधुबन में बुला लिया, अपना साथी बनाया, कंट्रोलर बनाया यक्का, क्योंकि यहाँ पार्टियां आती थी। बाबा से मिलाना, सारे यक्का देखभाल करना, भोजन की व्यवस्था करना, ये सब दीदी का काम था। तो बहुत अच्छी तरह सुचारू रूप से कार्य चलाती थी, बहुत डिसिप्लिन। कोई भी गलती करता था उसका ध्यान खिंचवाती थी, ये मर्यादा नहीं है। जब तक दीदी रही बहुत मर्यादित था हमारा यज्ञ और बहुत अच्छी तरह उन्होंने यज्ञ को चलाया था। स्टूडेंट तो थी ही, डिसिप्लिन्ड भी थी, लेकिन प्यार भी बहुत रखती थी। सबको प्यार देना, सबकी सुविधाओं का ध्यान रखना, ये भी दीदी की एक बहुत बड़ी क्वालिटी थी। और विशेष रूप से बाबा को निश्चिंत रखना, बाबा के ऊपर जो जिम्मेदारियां थी यज्ञ को चलाने की और बहुत बड़े कार्य की और सबको संभालने की, उसमें बाबा को बहुत हल्का रखना, ये इस महान आत्मा का बहुत बड़ा रोल था। रात्रि क्लास में ठीक 9 बजे सबसे पहले आगे आकर बैठ जाती थी और हम में से अगर कोई लेट आता था तो बहुत प्यार से पूछती थी, भाऊ बहुत काम था आज मेरे को तो खास, तो मैं तो पहले ही पहुंचता था 1 मिनट पहले दीदी से भी। तो बहुत प्यार दिया, बहुत आगे बढ़ाया, बहुत अप्रिशिएट किया, हमको बहुत समीप लाया, अपने भी, दादी के भी और बाबा के भी। वही बाबा से मिलाया करती थी। जब बाबा व्यक्त हुए तो बहुत बार हमको उन्होंने बाबा से मिलाया, अपना बहुत ज़्यादा प्यार दिया। तो हम तो दीदी के बहुत बहुत आभारी हैं। और बहुत सुंदर बात थी, 1-2 साल से लास्ट में उनको बहुत ज्यादा धुन थी कि घर जाना है। कोई भी कोई बात लेकर उनके पास आता था तो दीदी कहती थी, अरे छोड़ो इन बातों को, अब तो ये सब कुछ छोड़ के घर चलना है। तो एक बहुत अच्छी लगन और चारों ओर से अपने को डिटैच करना, समेट लेना, ये
बहुत अच्छी तरह। हमने उनमें देखा और एक और चीज देखी, निर्णय शक्ति बहुत ही अच्छी। कोई केस हो जाता था, एक दो मिनट में परफेक्ट निर्णय दिए जाते थे। इसलिए बाबा ने कहा था इनका रोल देह छोड़ने के बाद भी बहुत सुंदर होगा। हम तो उनके रोल को जानते हैं, इसलिए ऐसी महान दीदी मनमोहिनी को हम सत सत नमन भी करते हैं और श्रद्धा सुमन भी अर्पित करते हैं। यज्ञ सदा उनका आभारी रहेगा। ओम शांति।

महिला स्वयं में है शक्ति और इसलिए आपकी सुरक्षा है आपके हाथ ही। कभी भी कहीं भी अगर आपको किसी प्रकार के खतरे का आभास हो तो डायल करिए 1090 या 1091। सजग रहिए, सुरक्षित रहिए। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।

सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सुप्रभात में आपका स्वागत रेडियो मधुबन पर। लोग खुद पर कोई लेबल लगाया जाना पसंद नहीं करते, लेबल के साथ उनका अहम उलझ जाता है। लेबल लोगों के दिमाग को ठप कर देते हैं। लेबल के रूप में जो कुछ भी किया जाता है उसे कभी खुशी खुशी स्वीकार नहीं किया जाता। आप किसी को बताएं हरी पत्तेदार सब्जियां तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए अच्छी रहेंगी तो वह उन्हें अपने भोजन में शामिल कर लेगा, लेकिन अगर आपने कहा एक पक्का शाकाहारी होने के नाते मैं तुम्हें बता दूं कि तुम्हें हरी पत्तेदार सब्जियां खानी शुरू कर देनी चाहिए तो वह इस मुद्दे पर आपसे बहस करना शुरू कर देगा। शाकाहारी वाला लेबल ही यहाँ समस्या बन गया है। यदि आप किसी से कहते हैं कि उसे माफ कर दो, जो हमें ठेस या चोट पहुंचाते हैं उसे भी प्रेम करो, तो हो सकता है कि वह आपकी बात पर ध्यान दे। लेकिन यदि आपने कुछ इस तरह कहा, एक सच्चा ईसाई होने के नाते मैं तुमसे अनुरोध करता हूँ कि उसे माफ कर दो और अपने दुश्मन को भी प्रेम करो, तो इससे आप खुद ही उसके अगले शत्रु बन जाते हैं। ईसाई वाला लेबल ही यहाँ समस्या बन गया है। मान लीजिए आपने किसी से कहा कि कितना अच्छा हो अगर हमारे हवाई अड्डों की व्यवस्था और बेहतर हो जाए, तो वह आपके दृष्टिकोण का समर्थन करेगा। लेकिन अगर आपने यह कह दिया कि सिंगापुर में रहकर मैंने देखा है कि चीजों को व्यवस्थित कैसे रखा जा सकता है, काश कि हमारे हवाई अड्डे और व्यवस्थित होते, तो इसे आपका विदेश प्रेमी होना माना जाएगा। आपका रोटरी का सदस्य बनना आपके साथी को अच्छा नहीं लग रहा है। कोई ब्राह्मण विरोधी है तो कोई असम से आए लोगों को विश्वसनीय नहीं मानता है। सबको एक ही पैमाने पर नापने वाली ये सब मूर्खतापूर्ण टिप्पणियां।

मैं गीत सागर रेडियो मधुबन के सारे श्रोताओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। आप सुन रहे हैं गीत सागर को रेडियो मधुबन पर। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

यह एक मानवीय दुर्बलता है, किसी लेबल के साथ, किसी उपनाम के साथ जब आपका आमना सामना होता है तो आप खुद को कुछ छोटा महसूस करने लगते हैं। इसीलिए अपने बचाव में आप अपनी पूरी शक्ति से उठ खड़े होते हैं। पता नहीं क्यों लेबलों के साथ इंसान किसी न किसी जटिलता से पीड़ित हो जाता है। उसे आपसे कोई समस्या नहीं होती, उसकी समस्या उस चीज से है जिसका प्रतिनिधि बनकर आप उसके सामने होते हैं, पद, प्रतिष्ठा, धर्म आदि आदि। हमें किसी लेबल की जरूरत ही क्या है? क्या वह कोई पद है जिससे आप गौरवान्वित होते हैं, या फिर वह आप हैं जिससे वह पद गौरवान्वित होता है? क्या कुर्सी को आपकी जरूरत है या आपको कुर्सी की जरूरत है? यदि केवल कोई लेबल या कोई उपनाम ही आपका परिचय है तो फिर किसी लेबल के बिना आप कुछ कर ही नहीं सकेंगे। जो भी व्यक्ति केवल किसी लेबल या उपनाम के बल पर रहता है वह कभी गहरे और घनिष्ठ संबंध नहीं बना पाता। आप यदि एक ऐसे व्यक्ति हैं जिससे उस लेबल का महत्व बढ़ता है तो फिर आपको उसकी जरूरत ही नहीं है। गहरे और घनिष्ठ संबंधों का शुभारंभ इसी से होता है। गुरुदेव, मुझे अपना शिष्य स्वीकार कीजिए, जिज्ञासु ने आग्रह किया। मुझे बताओ कि तुम कौन हो, गुरु ने पूछा। रामचंद्र राव, यह तो तुम्हारा नाम है, इसे हटा दो और फिर बताओ कि तुम कौन हो, गुरु ने फिर कहा। मैं एक व्यापारी हूं। वह तो तुम्हारा व्यवसाय है, उसे हटा दो और फिर बताओ कि तुम कौन हो। मैं एक पुरुष हूं। वह तो तुम्हारा लिंग भेद है, उसे हटा दो और फिर बताओ कि तुम कौन हो। गुरुदेव, इससे आगे मैं नहीं जानता कि मैं कौन हूं। अब ठीक है, किसी जिज्ञासु की यात्रा का पहला चरण यही होता है। जब आप अपने सारे लेबल हटा देते हैं और विशुद्ध आप ही रह जाते हैं, वही हर चीज की शुरुआत का प्रारंभिक बिंदु होता है। आपका बिजनेस कार्ड पुजारी को तो प्रभावित कर सकता है, लेकिन ईश्वर के आगे वह निरर्थक है, गुरु ने दृढ़ता पूर्वक कहा। अपने लेबल हटाकर खुद की और दूसरों की मदद करें। आप अपने आप में पर्याप्त हैं। केवल विशुद्ध आप, हर चीज की शुरुआत का प्रारंभिक बिंदु। जब आप जैसे आप हैं अपने आप के लिए पर्याप्त होते हैं, तब आप आजाद होते हैं, आत्मनिर्भर होते हैं। यही है वास्तविक आजादी। लोहे की एक छोटी सी छड़ का मूल्य होता है 250 रुपये। इससे घोड़े की नाल बना दी जाए तो इसका मूल्य हो जाता है 1000 रुपये। इससे सुइयां बना दी जाएं तो इसका मूल्य हो जाता है 10000 रुपये। इससे घड़ियों के बैलेंस स्प्रिंग बना दिए जाएं तो इसका मूल्य हो जाता है 1,00,000 रुपये। आपका अपना मूल्य इससे निर्धारित नहीं होता कि आप क्या हैं, बल्कि इससे निर्धारित होता है कि आप में खुद को क्या बनाने की क्षमता है।

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: अगर आप गुस्सा नहीं करेंगे जब किसी ने इस तरह से गलती की है, तब वो सच बोलेंगे। हम झूठ तभी बोलते हैं जब हमें सच बोलने का डर है, और डर ये है कि सच बोलेंगे तो कोई एक्शन लिया जाएगा। इफ आई एम श्योर अबाउट दिस कि मुझे डांट नहीं पड़ेगी, मैं आपको सच बता दूंगी। लेकिन इफ आई एम श्योर अबाउट दिस कि आपको सच बताने के बाद मुझे डांट पड़ेगी, तो इजियर चॉइस फॉर मी इज झूठ बोलो और निकल जाओ। सो इट्स ऑल अबाउट आई नो व्हाट योर रिस्पॉन्स इज गोइंग टू बी। ट्रस्ट आ जाता है ना उसमें, आपको पता है कि दूसरा आपको समझेगा कि आपने जो गलती की, नेवर माइंड, ही विल एक्सेप्ट यू। आप सच बोलेंगे, देयर इज नो रीजन, कोई झूठ नहीं बोलना चाहता क्योंकि खुद को बहुत गिल्टी लगता है उसके बाद।
0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।

आप यह तो नहीं जानते कि आपकी पूरी पढ़ाई लिखाई में कितना धन खर्च हुआ, लेकिन अपने स्कूल कॉलेज की यादें आपके मन में बसी ही रहती है। अब से कुछ साल बाद आप भूल जाएंगे कि अस्पताल में आपका कितना खर्च हुआ, लेकिन आप उन यादों को हमेशा संजो कर रखेंगे कि आप अपनी माँ का जीवन बचा सके थे या नवजात के रूप में एक नया जीवन अपने साथ ला सके थे। आप अपने परिवार के साथ कहीं घूमने के लिए गए थे, खर्च हुआ धन याद नहीं रहेगा, लेकिन अपने परिवार के साथ बिताए उन पलों की सुखद अनुभूति को आप आजीवन भुला नहीं पाएंगे। खर्च याद नहीं रहता, अनुभूति याद रहती है। अच्छा समय और बुरा समय, अमीरी के दिन और गरीबी के दिन, वह समय जब आपको अपना भविष्य सुरक्षित दिखता था और वह समय जब आप यह भी नहीं जानते थे कि कल का सवेरा होगा भी या नहीं। किसी न किसी रूप में हर एक को उतार चढ़ाव और उथल पुथल वाले समय से गुजरना ही पड़ता है। अच्छे दिनों के बाद और बुरे दिनों के बाद जो बचा रह जाता है वह है उन दिनों की अनुभूति की यादें। कभी तो बटुआ ठसाठस भरा होता है और कभी जेब में फूटी कौड़ी भी ढूंढे नहीं मिलती। कभी कभी आपके पास बहुत कुछ होता है लेकिन आपके माथे पर बल पड़े रहते हैं। कभी कभी आपके पास जो है वह आपके लिए पर्याप्त नहीं होता, लेकिन आपके होठों पर मुस्कान खिली रहती है। आज अतीत में झांकते हुए किसी के साथ बीते अच्छे दिनों के आभार स्वरूप आपकी आंखें नम हो सकती हैं, और कभी आप अकेले में रोए थे यह याद करके आप मुस्कुरा भी सकते हैं। कुल मिलाकर जीवन ने आपको ढेर सारे अनुभव दिए हैं जिनसे आप अपना इतिहास लिख सकते हैं, लेकिन उस सब को आप अकेले ही याद कर सकते हैं।

0: पीछे पीछे पीछे चल। भाई स्टॉप लाइन के आगे कहाँ जा रहा है? लाल बत्ती दिखाई नहीं देती।
1: पर हवलदार साहब, जरा जल्दी निकलने के मूड में हूँ।
0: वो तो ठीक है, पर दूसरी तरफ हरी बत्ती है और उन लोगों का रुकने का मूड नहीं है। तो जब भी लाल बत्ती हो तेरी तरफ तो बोलो पहले आप।
2: गाड़ी चलाते वक्त पहले आप का रूल अपनाइए और अपने शहर का ट्रैफिक स्मूथ बनाइए। ब्रह्मा कुमारीज के सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।

पहली बार किसी के हाथ का सहारा लिए बिना जब आपने साइकिल अपने आप चलाई थी, अपने बच्चे के रोने का वह पहला स्वर, वह पहला कदम, वह पहला शब्द, वह पहला उपहार जो आप अपने माता पिता के लिए लाए थे और वह पहला उपहार जो आपके बच्चों ने आपको दिया था, मंच पर आपका वह पहली बार आना, तालियों की वह पहली गड़गड़ाहट, वह पहला पुरस्कार, इस सूची का कोई अंत नहीं है। समय की मार से अनछुई रहने वाली अनुभूतियां ही अनुभूतियां। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि हर भौतिक वस्तु का मूल्य धन है, लेकिन यह भी एक सच्चाई है कि किसी अनुभूति के लिए चुकाया गया धन तो हम भूल जाते हैं, लेकिन उस अनुभूति को कभी नहीं भूल पाते। क्या हुआ यदि थोड़ी आर्थिक तंगी है? उसे रहने दें, लेकिन अपने जीवन की गुणवत्ता में कमी न आने दें। अपने माता पिता को यदि आप तीर्थ यात्रा पर नहीं ले जा पा रहे हैं तो उन्हें मंदिर तो ले ही जा सकते हैं। अपने बच्चों को किसी अंतर्राष्ट्रीय आयोजन में नहीं ले जा सकते तो किसी स्थानीय पार्क में जाकर उनके साथ खेल तो सकते हैं। कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने का, नेतृत्व गुणों वाले अधिक से अधिक कर्मचारी तैयार करने का और अच्छे समय के लिए अपनी चाल तेज कर देने का सही समय यही है। और हाँ, आपका स्वास्थ्य, ज्ञान का विकास और आध्यात्मिक उत्थान जैसे पहलू आर्थिक दशा पर तो कभी निर्भर नहीं रहते। समय बीत जाएगा, आर्थिक स्थिति फिर पटरी पर आ जाएगी, मुद्रा फिर मजबूत हो जाएगी, लेकिन इस सब में हम नहीं चाहते कि आप पीछे मुड़कर देखें और पाएं कि यह समय आपने निराशा, हताशा और उदासी में करवटें बदलते हुए बिताया है। धन का अभाव आपको धन से वंचित रख सकता है, लेकिन इसके कारण खुद को अनुभवों से वंचित ना होने दें। जो आपके पास है, यदि उससे आप सुखी नहीं हैं, तो आपके पास चाहे जितना आ जाए फिर भी आप सुखी नहीं हो सकेंगे। जीने की कला का सूत्र यह बना लें, मेरे सुख की अनुभूति इस पर निर्भर नहीं करती है कि मेरे पास क्या है और कितना है। जन्म के समय आपका जीवन एक कोरा कैनवास था, फिर आपकी सामर्थ्य के रंग और आपके चयन की कूची इस कैनवास को चित्रित करते रहे। मृत्यु के समय यह कैनवास या तो एक बहुमूल्य श्रेष्ठ कृति होगा या लापरवाही वाली एक उठपटांग किचपिच। वही दिन यह निर्णय करेगा कि आप अपने जीवन को चित्रित करने में कितने कुशल रहे हैं। तो इन्हीं बातों के साथ हम तो यही शुभ आश रखते हैं, आप अपनी जिंदगी के उतार चढ़ाव के हर पल को अच्छी अनुभूति के साथ जिए और अपने जीवन को ऐसे अलग अलग रंगों से रंगते हुए और अपने जीवन के कैनवास पर इन अलग अलग रंगों से सुंदर चित्र बनाए। तो इन्हीं बातों के साथ आपसे विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे सुप्रभात में रेडियो मधुबन पर।

0: मधुबन हमारे जीवन को सुखमय व समृद्धशील बनाता है। सभी प्रोग्राम्स को बेहतरीन अंदाज में नवीनता को लिए बेहतरीन क्वालिटी के साथ
1: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 मेगाहर्ट्ज़ पर 107.8 FM पर। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। मैं हूं आपका दोस्त आरजे श्री और ये है कार्यक्रम सहज स्वास्थ्य। सहज स्वास्थ्य कहते ही हमारे बहुत सारे दोस्त ऐसा समझते हैं कि स्वास्थ्य और सहज ये तो दो ऑपोजिट चीजें हैं जिसे हम एक साथ मिलाकर हम एक ऑक्सीमोरॉन बना रहे हैं। कई लोग तो ये भी समझ लेते हैं कि ये हैप्पी मैरिज जैसी बात करी जा रही है, मगर बहुत सारे लोग ये भूल गए हैं कि वास्तविकता में किसी भी संबंध को खुशी के लिए ही जोड़ा गया होता है। आज हम कुछ ऐसी गलतियां करते हैं जिसकी वजह से हमें इन चीजों में ज्यादा तकलीफें महसूस होती हैं। सहज स्वास्थ्य का भी अर्थ कुछ ऐसा ही है कि स्वास्थ्य हमेशा से सहज रहा है, मगर धीरे धीरे हमने कुछ ऐसी चीजें बदलते बदलते आज अपने स्वास्थ्य को मुश्किल कर लिया है। आज कई लोग ऐसा मानते हैं कि स्वास्थ्य के परिचायक अस्पताल हैं या चिकित्सक हैं या चिकित्सा कर्मी हैं, मगर हमेशा से भारत में या दुनिया में भी इसका डेफिनेशन ऐसा नहीं रहा है। प्रायः लोग स्वास्थ्य को एक घरेलू मुद्दे की तरह देखते थे और छोटी मोटी चीजों के लिए तो घर में ही इलाज कर लेते थे। आज ये देखने को मिलता है कि हम हर छोटी मोटी चीज के लिए या तो अस्पतालों की ओर भागते हैं या फिर तुरंत दवाई की दुकान पर जाकर दवाइयां खरीदते हैं। और तो और हालात यहाँ तक पहुंच गए दोस्तों कि हम इसे लगभग हर एक के घर में दवाइयों का एक डब्बा मौजूद ही रहता है। सिर दर्द हो गया तो ये ले लो, पेट दर्द हो गया तो ये ले लो, बुखार हो गया तो ये ले लो। ये दवाइयां तो हम बिना डॉक्टर के जांच पड़ताल के उनके परामर्श के खुद ही अपने अनुभव के आधार पर लेने लगते हैं और समझते हैं कि ये होने से इस चीज में हमें राहत मिलती है। कई लोग तो एंटासिड्स और एंटासिड जैसे अनेक द्रव्यों का भी उपयोग करते हैं जिनको एसिडिटी इत्यादि की समस्या होती है। कई लोग तो और अनेक ब्रांड्स की चीजें इस्तेमाल करते हैं जो है तो मेडिकल दवाइयां, मगर उसे घरेलू स्वास्थ्य से संबंधित इलाज के रूप में उसका इस्तेमाल करने लगे हैं। क्या ये सब कुछ सही है या हमें चिकित्सकीय राय सही तरीके से लेना है या स्वास्थ्य का जो मापदंड है उसे ही हम बदल चुके हैं, यही सब कुछ हम समझते हैं सहज स्वास्थ्य में। आज हमारे साथ चर्चा के लिए स्टूडियो में डॉक्टर राहुल मोदी जी हैं। डॉक्टर राहुल मोदी पेशे से एक ऑस्टियोपैथ हैं। भारत के प्रसिद्ध ऑस्टियोपैथ होने के साथ साथ भारत के प्राचीनतम प्रकृति चिकित्सा केंद्रों में से एक आरोग्य मंदिर गोरखपुर में प्रैक्टिस करते हैं, जहां पर उनके परिवार के अनेक पीढ़ियों ने लोगों को स्वास्थ्य लाभ पहुंचाया है। आइए आज करते हैं उनसे बातचीत और लेते हैं उनसे मार्गदर्शन। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है आज के कार्यक्रम में।
1: नमस्कार, ओम शांति।
0: डॉक्टर साहब, सर्वप्रथम तो मैं यहीं से शुरुआत करना चाहूंगा कि आज हम सहज स्वास्थ्य को मुश्किल समझ लेते हैं, सोचते हैं कि डॉक्टर, अस्पताल या स्वास्थ्य कर्मी ही स्वास्थ्य के बारे में जानकारी रखने वाले लोग हैं और स्वास्थ्य से हमारा कोई लेना देना नहीं है। कुछ भी हो जाए वो लोग जिम्मेदार हैं, हम वहां जाएंगे, वो ठीक करेंगे और वापस भेज देंगे। साथ ही हम अपने घरों में इतनी सारी दवाइयों की दुकान लगा रखे हैं कि भाई जब चाहे हम दवाई की दुकान पे जाके खुद ही दवाई ले लेते हैं। और आजकल घरेलू दवाइयों के नाम पे हमारे पास एक डब्बा पड़ा रहता है जिसमें अनेक दवाइयां हम रख लेते हैं। और साथ ही साथ हमारे रिश्तेदार, दोस्त, किसी को भी अगर हम बोल दें कि आज मेरे को ये तकलीफ हो रही है, तो वो अपनी दवाइयां और प्रिस्क्राइब कर देते हैं फोन पे कि जाओ ये दवाई ले लो, ठीक हो जाएगा। तो ऐसे में क्या ये स्वास्थ्य का डेफिनेशन सही है?
1: श्री भैया, इस समय हम एक बहुत ही भयावह स्थिति से गुजर रहे हैं। आपने जैसे आज एंटासिड की अभी बात की, सर दर्द होने पे दवाई गोली खाने की बात करी, लोग इस समय अपने आप बहुत कुछ सेल्फ मेडिकेट कर ले रहे हैं। ये बहुत इजी हो गया है। हम सबके पास अब एक दवा की कुंजी है जो हमारा मोबाइल फोन है, हम उससे अपनी समस्या का नाम डालते हैं। और भैया, अब तो ये स्थिति हो गई है कि हम जाकर एक डॉक्टर से दवा लिखवा के लाते हैं, वो जो दवा लिखता है उसका सस्ता स्वरूप क्या मिल सकता है या और क्या हम उसकी जगह खा सकते हैं, ये भी ढूंढने लगे हैं। हमारे भारत की एक और जो समस्या मैं महसूस कर रहा हूं कि आदमी अब दवा खाने से पहले ये सोचता ही नहीं है कि उससे नुकसान क्या होगा। जैसे भैया आपने मेरा बताया कि मैं ऑस्टियोपैथ हूं, मैं कमर दर्द के मरीज को देखता हूं और पैर में दर्द हो रहा है, कमर में दर्द हो रहा है, नसों में तनाव है, पैर में तनाव आ रहा है। तो मैंने ये नोटिस किया कि मेरे पास एक पेशेंट आया, उन्होंने बताया मैं दवा खा रही हूं। मैंने कहा ये दवा आपको किसने लिखी? तो उन्होंने कहा किसी ने नहीं लिखी, जो मेरे को जिम में एक्सरसाइज कराता है उसने बताया। मुझे बड़ा अचंभा हुआ कि वो एक बहुत ही ऐसी मेडिकेशन है जो हमारे यहाँ बिना प्रिस्क्रिप्शन के नहीं बिकती है, वैसी दवा को उस आदमी ने बताया। वही सेम मेडिसिन भाई थोड़े दिनों बाद मैंने ये नोटिस किया कि एक फिजियोथेरेपिस्ट ने अपने पेशेंट को प्रिस्क्राइब की और उस पेशेंट ने फिर अपने किसी और घर वाले को भी प्रिस्क्राइब कर दी, ना ये जानकर कि उस दवा से और दवाइयों का क्या इंटरेक्शन होगा और आपको अगर कोई बीमारी हो रही है तो आप क्या करेंगे। मैं ये देखने लगा हूं कि जितने भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं वो अपने पेशेंट को बहुत जल्दी हेल्प करना चाह रहे हैं। तो मसाज करने वाले, फिजियोथेरेपी करने वाले, आयुर्वेद के ज्ञानी, होम्योपैथी के ज्ञानी, इवन एलोपैथ के ज्ञानी अपने मरीज को तुरंत दवा लिख दे रहे हैं और ये भी नहीं सोच रहे हैं कि उससे क्या नुकसान होगा। अच्छा, और मरीज भी चाहता है कि मुझे तुरंत दवा लिख दी जाए या मुझे तुरंत लाभ दिया जाए। आप किसी भी एक व्यक्ति को कहिए कि जैसे हम प्राकृतिक चिकित्सा चला रहे हैं, लोग आप पूछे कि आप वजन कम करना है, आप बोलिए आप हमारे हिसाब से भोजन करेंगे, इलाज कराएंगे, आपको महीने में 8 से 10% आपका वजन कम होगा। उसके बाद 2-3 दिन बाद वो तुरंत पूछता है कोई दवाई है क्या जिसको मैं खा लूं और मुझे ये व्यायाम न करना पड़े, एक्सरसाइज न करना पड़े, ये नीरस भोजन न करना पड़े, मुझे तुरंत इससे छुटकारा बता दीजिए। सो मैं ये सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम हो गई है कि व्यक्ति को तुरंत लाभ चाहिए और इससे भी गुरेज नहीं कर रहा है कि हमको दवा दे दी जाए और उसका क्या नुकसान होगा उसके बारे में उसको एकदम चिंता नहीं करनी है। हम बस डायबिटीज के मरीज आते हैं, वो कहते हैं डॉक्टर साहब कोई अच्छी गोली लिख दीजिए कि हम मीठा खा सकें। ये तो मतलब इसको हम कैसे समझाओ लोगों को कि आपके शरीर में आप मीठा अब नहीं खा सकते हैं और हम आपको गोली खिलाकर आपकी शुगर को नीचे लाने की कोशिश कर रहे हैं, प्राकृतिक चिकित्सा से आपको नीचे लाने की कोशिश कर रहे हैं, आयुर्वेद से, विभिन्न योगासनों से आपकी शुगर को नीचे लाने की कोशिश कर रहे हैं और आपको मैं मीठा खिलवा दूं कि आप उसको तुरंत ऊपर बढ़ा दें। तो ये सारी समस्याएं आजकल होने लगी है। हम सोच नहीं रहे हैं कि हम क्या खा रहे हैं और हम मेहनत नहीं करना चाह रहे हैं, हमको तुरंत लाभ चाहिए और उस लाभ के स्वरूप हमको उससे क्या हमें नुकसान हो रहा है हम इसके बारे में नहीं बात कर रहे हैं। श्री भैया आपने एक बात और बोली कि अब हर एक के घर में एक दवाई का डब्बा है। भैया अब एक दवा की अलमारी हो गई है, वो इतने दवाइयां बढ़ गई हैं और दवाइयां बीमारियों के साथ साथ आजकल हेल्थ सप्लीमेंट के नाम पे भी बहुत सारे लोग बहुत कुछ खा रहे हैं क्योंकि वो प्रकृति से वो भोजन नहीं ले पा रहे हैं या वो प्रकृति से वो भोजन लेना नहीं चाहते हैं, वो तुरंत सप्लीमेंटेशन के नाम पे दवा खा रहे हैं। और मुझे विदेशों की एक बात बड़ी अच्छी लगती है कि आप चाहकर भी एंटीबायोटिक दुकान पे जाके नहीं खरीद सकते जब तक कोई एक डॉक्टर ने उसे लिखा नहीं है। हमारे यहाँ ये नहीं है, हमारे यहाँ आप जाइए आप तुरंत जो दवा चाहेंगे वो ले लेंगे। मैंने अभी एक पेशेंट करीब 5-6 दिन पहले देखा, उसमें जो डॉक्टर साहब मुझसे पहले जिन्होंने देखा था उन्होंने प्रिस्क्रिप्शन पे ये लिखा था सेल्फ मेडिकेटेड थ्रू मेडिकल शॉप फॉर 6 मंथ्स। मतलब उस मरीज ने 6 महीने तक जो दवा की दुकान में काम करते हैं उनके सहयोग से अपना इलाज किया और उन्होंने कोई डॉक्टर को नहीं दिखाया। तो इस समय हम सबको ये, मैं सभी श्रोताओं को कहना चाहूंगा, कोई भी दवा खाने से पहले कृपा करके प्लीज उसके बारे में पढ़ लीजिए, उसके नुकसान के बारे में पढ़ लीजिए और जब तक बहुत जरूरी ना हो कोई दवा को या कोई औषधि को मत खाइए।
0: अब जब आप दवाई के बारे में कह रहे थे, अब हम दवाई के एक डब्बे से हटकर अब दवाई की अलमारी या दवाई का एक कबर्ड बन गया है, ये चीज हम समझ गए हैं। प्रायः घरों में ये चीज देखने को मिलती है कि घर में अगर 4 लोग रहते हैं या 6 लोग रहते हैं जिसमें से 2 बुजुर्ग हैं, 2 बच्चे हैं और 2 युवावस्था के 2 लोग और रहते हैं, तो ये चीज अक्सर देखने को मिलती है कि छोटे बच्चों की दवाई का एक खाना बना हुआ है उस कबर्ड में, बड़ों का जो उम्र दराज लोग हैं उनकी दवाइयों का एक खाना बना हुआ है और दूसरी चीजें जो इन युवाओं के लिए चाहिए वो दवाइयां रखी हुई हैं। प्रायः ये चीज सोचने में आती है कि जो बुजुर्गवार हैं उन लोगों के लिए सिर्फ दवाइयों का एक खाना नहीं है, वहां पर उनका दवाइयों का एक ट्रे बना हुआ होता है कि सुबह ये खाना है, दोपहर को ये खाना है, खाने से पहले ये खाना है, खाने के बाद ये खाना है, शाम को ये खाना है, रात को सोने के बाद खाना है, सोते समय खाना है। अब ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं और ये भी हम देखते हैं कि आज हम ये मान लेते हैं कि जैसे पिछले दिनों हम डायबिटीज के बारे में बातचीत कर रहे थे, लोग सोचते थे कि हाँ डायबिटीज तो चलो ठीक ही है ना, दवाई लेना है और जीते रहना है तो उसमें तो हम कुछ कर नहीं सकते। अब डायबिटीज के साथ साथ एक और चीज, या कई कई घरों में डायबिटीज न सही तो बीपी की भी एक बीमारी है, उसके लिए भी गोलियां लोग ले लेते हैं। लोग अक्सर पूछते भी हैं, मतलब ये कॉमन सी चीज हो गई है, जैसे लोग हालचाल पूछते हैं ऐसे पूछते हैं किसी को, अगर आप किसी के घर चले जाएं आपको चाय नाश्ता इत्यादि ऑफर करने से पहले पूछ लेते हैं, आपको बीपी तो नहीं है, शुगर तो नहीं है आपको? तो अब ये बीपी जो चीज है ये भी डायबिटीज जैसा ही एक कॉमन नेम बन चुका है। तो पहले हम ये समझें बीपी क्या है, ये भी कोई बीमारी है, क्या चीज है ये लोग इतने आसानी से बीपी बीपी कह देते हैं?
1: बीपी को अगर हम, ये शॉर्ट फॉर्म है, इसका फुल फॉर्म ब्लड प्रेशर है। तो नॉर्मली मेरा भी रक्त एक प्रेशर के साथ हमारी धमनियां जो हैं, जो आर्टरीज हैं, उनमें चल रहा है, और मेरा खून, आपका खून, हम सब का खून किसी न किसी प्रेशर के साथ उस धमनी में चल रहा है। जब भी शब्द बीपी का प्रयोग किया जाता है तो नॉर्मल बोलचाल की भाषा में इसको बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर की तरह इसको समझा जाता है। ये मतलब आपको बीपी हो गया है, ये मतलब हम सबके पास ब्लड प्रेशर है, हम सबके पास बीपी है, मगर जब ये बोला जाता है कि आपको बीपी हो गया है, इसका मतलब है कि आपका ब्लड प्रेशर जो है वो बढ़ गया है। और नॉर्मली हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो स्पिग्नोमैनोमीटर या ब्लड प्रेशर वाली मशीन से मापा जाता है, और ये 120 बटे 80 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी इसको माना जाता है। और अब एक रेंज की बात करते हैं तो मतलब 130 से लेके 110 के बीच में हम इसे नॉर्मल मान लेते हैं, और नीचे 90 से लेके 70 तक हम इसे नॉर्मल मान लेते हैं। और ये किसी की लंबाई, मोटाई, उसने क्या काम किया है, क्या अवस्था है, जैसे अगर कोई दौड़ कराया तो उसका बीपी अपने आप नॉर्मली बढ़ा मिलेगा, तो इस तरीके से हम देखते हैं। पर अगर आपका ब्लड प्रेशर जो है वो ऊपर वाला, मतलब जो 120 है उसकी जगह अगर 140 आ रहा है, और नीचे आपका जो बीपी है वो करीब 90 के ऊपर है या 100 के ऊपर है, तो आपको ब्लड प्रेशर का मरीज माना जाता है। और एक बार में, मतलब 3 बार अगर हम इसकी जांच करें और आपको कुछ ब्लड प्रेशर के लक्षण हो रहे हो कि आंख से धुंधला दिख रहा हो, सर में दर्द हो रहा हो, घबराहट हो रही हो, पसीने छूट रहे हो, तो एक माना जाता है कि आपको ब्लड प्रेशर की समस्या है। अच्छा भैया, ब्लड प्रेशर बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। अधिकतर लोगों में ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ मिलता है। जो मतलब अगर हम बीपी का शब्द इस्तेमाल करते हैं तो अधिकतर जो मरीज हमें भारत में मिलते हैं वो हाई बीपी के मिलते हैं। अभी का जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का और वर्ल्ड हार्ट एसोसिएशन का जो डेटा है उसके हिसाब से करीब 10 से 11 करोड़ आदमियों को भारत में ब्लड प्रेशर की समस्या है। मतलब इतने लोगों को ब्लड प्रेशर की दवा की आवश्यकता है। और आपको ये जान के अचंभा होगा कि वर्ल्ड हार्ट एसोसिएशन कहता है कि हमारे यहाँ करीब 12 से 14 करोड़ को शायद ब्लड प्रेशर हो। मतलब उनका ब्लड प्रेशर कभी न कभी बढ़ जा रहा है, जो उनको नुकसान दे रहा है। तो ये जो फिगर है, अगर हम इसको जोड़ते हैं तो ये करीब 22 से 24 करोड़ आता है। मतलब हमारे देश की अमूमन 18 से 20% की जनसंख्या को इस ब्लड प्रेशर की बीमारी से वो ग्रसित है, और मोटा मोटी 7 से 8% से लेकर 10% की तो जनसंख्या इसकी दवा खा रही है। और हमारे देश की जनसंख्या इतनी बड़ी है कि 1-2% भी हमारे यहाँ करोड़ों में होता है। तो सोचिए 15 से 20% की जब जनसंख्या इस समस्या से ग्रसित है तो हमारा देश कहाँ जाएगा।
0: जब आप ये बात बता रहे हैं कि इतनी बड़ी संख्या में आबादी को ब्लड प्रेशर की समस्या है और ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, तो लोग इसे एक आम रीति के रूप में ही देखते हैं कि भाई बढ़ा हुआ है, तो ये चिंता का क्या विषय है? क्यों मतलब ब्लड प्रेशर बढ़ा होना कोई सोचने वाली बात होनी चाहिए?
1: बड़ा अच्छा सवाल आपने श्री भैया पूछा। आप एक साधारण सा बात समझिए कि आप पाइप से पानी दे रहे हैं और एकाएक आपने जो पाइप है उसका मुंह आगे से बंद कर दिया,

0: तो जैसे ही आप बंद करेंगे तो उस पाइप में प्रेशर बढ़ जाएगा, तो पानी निकलने की कोशिश करेगा। तो हम अमूमन देखते हैं कि जहां से पाइप नल से लगा हुआ है वहां से वो निकल जाता है, या आप जब दबाते हैं आगे से पाइप को तो वो पानी जो की धार है वो ज्यादा दूर तक जाके गिरती है। तो जब ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ रहता है और ये धमनियों में चल रहा होता है तो इससे हमारी धमनियां जो हैं वो फट सकती हैं। इसीलिए बीपी को साइलेंट किलर कहा जाता है। इससे भैया हमारे हृदय की धमनियां फट सकती हैं, हमारे दिमाग में जो जो छोटी छोटी धमनियां हैं वो फट सकती हैं, और बड़ी धमनियों में कुछ नहीं होता, पर जो छोटी छोटी धमनियां जो हमारी आर्टरीज हैं, जो हमारी ब्रेन में हार्ट में वहां चल रही हैं, उनमें एकाएक ब्लीडिंग हो जाती है। और एक इतने जरूरी जो हमारा अंग है उसमें खून बहने लगता है, उस पे प्रेशर पड़ने लगता है, और इससे हमको हमारा हृदय काम करना बंद कर सकता है, हमारी किडनियां हैं वो काम करना बंद सकती हैं, हमारा दिमाग है वो काम करना बंद सकता है। ये हमको एकाएक झटके में हमको इससे एक व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। आप बहुत बार सुन भी लेंगे अब कि अरे वो तो ठीक से चल रहे थे, एकाएक उनको हार्ट अटैक आया और उनकी डेथ हो गई, या एकाएक उनके हार्ट में कुछ परेशानी हुई उनकी मृत्यु हो गई। तो ये इतना खतरनाक है, इससे एक एक सेकेंड में मतलब तुरंत इससे मृत्यु हो सकती है, या किसी अंग में रक्त स्राव के बाद वो अंग का काम करना बंद हो सकता है या नुकसान हो सकता है। जी भाई, आप एक चीज और नोटिस करेंगे कि आप हैं और मैं हूं, हम लोग बहुत सारे अच्छे जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं विश्व भर में वहां जाकर काम करते हैं, या वहां जाकर लेक्चर देते हैं, वहां जाकर इंट्रैक्शन करते हैं लोगों से। मैंने इधर नोटिस करना शुरू किया कि अब भारत की जितने भी बड़े ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि मानव जन कल्याण के लिए काम कर रहे हैं, वो सब अपने यहाँ अस्पताल खोल रहे हैं, वो सब अपने यहाँ डॉक्टरों को रख रहे हैं, वो सब यही शिक्षा दे रहे हैं कि हल्का खाइए, मानसिक रूप से शांत रहिए, मेडिटेशन करिए, अपने दिमाग को शांत रखिए, अपनी लालसाओं को, अपनी जरूरतों को संयम में रखिए। सब यही बात कर रहे हैं और सिर्फ इसीलिए कह रहे हैं कि शांति बनी रहे। और भैया शांति रहेगी तभी ब्लड प्रेशर कम रहेगा, तभी नॉर्मल रहेगा।
1: डॉक्टर साहब, जब आप ये बात कहते हैं तो ये बात समझ में आ रही है कि आज हम ब्लड प्रेशर को कोई बड़ी समस्या के रूप में ना देखते हुए, ये भी एक आम चीज है, इसके लिए हम गोलियां खा रहे हैं, उस हिसाब से हम चल रहे हैं, मगर ये बात समझ में आ रहा है कि ये कितना खतरनाक हो सकता है बीपी का बढ़ा होना। और अगर हम इसे, चलिए दवाई खा रहे हैं तो फिर तो कम से कम समझ में तो आता है, अगर किसी को पता ही ना हो उसको बीपी हो रहा है या नहीं हो रहा है या है भी ये समस्या मेरे को, ये व्यक्ति को कैसे पता चलेगा? मतलब कोई सिम्टम्स हैं जिससे व्यक्ति जाके जांच करा ले कि भाई हाँ, जैसे डायबिटीज के लिए हम जानते हैं कि कुछ सिम्टम्स हैं जिसके बारे में आपने बताया था, ऐसे बीपी के लिए क्या व्यक्ति को जागरूक रहने की जरूरत है कि अगर हाँ मेरे शरीर में ये चीज मैं नोटिस कर रहा हूं तो मैं जाके डॉक्टर की सलाह लूं या मैं चिकित्सक के पास पहुंचूं?
0: जो सबसे कॉमन चीज मैंने अनुभव की है और बोला भी जाता है कि सबसे पहले आपको सरदर्द होने लगेगा, और आपको अक्सर सरदर्द होगा और आप ये सोचेंगे यार कोई कारण नहीं है मेरे सरदर्द होने का, मुझे सरदर्द हो रहा है। आपको थकान होने लगेगी, आपको ऐसा समझ में आएगा कि मेरे धड़कन मेरी बार बार मेरी धड़कन बढ़ रही है, हल्का एंजाइटी होने लगेगी। भैया कुछ केसेस में ये देखा जाता है कि नाक से खून निकलने लगता है, अक्सर बार बार नाक से नोज ब्लीड हो रही है, तो ये आपको यही दिखेगा। और कभी कभी ऐसा लगेगा कि सांस फूल रही है, छाती में दर्द हो रहा है, अगर बैठे बैठे आपको आपकी आंख के सामने धुंधलापन होने लगेगा, फिर वो ठीक हो जाएगा फिर थोड़ी देर में, फिर तो ये सिम्टम्स जैसे ही आपको महसूस हो तो आपको तुरंत अपना बीपी की जांच करानी चाहिए, ये कि आपको ये सारी समस्या हो रही है, और आपको तुरंत किसी डॉक्टर को दिखाना चाहिए।
1: ये बात बहुत ही फायदेमंद है कि हम पहले तो इस बात पे सजग रहें कि हमारे शरीर में क्या हमें तकलीफें हो रही हैं, क्या ऐसी चीजें हैं जो मुझे, बीपी का मरीज हूं या बीपी की समस्या मुझे है, ये समझने के लिए आवश्यक है। साथ ही ये भी चीज समझ में आती है कि बीपी को आपने साइलेंट किलर कहा कि पता भी नहीं चलेगा और व्यक्ति उसकी वजह से अपने मौत को न्योता दे सकता है अगर वो इग्नोर करता है इन चीजों को। इसलिए अपने ब्लड प्रेशर के बारे में जागरूक रहना भी आवश्यक है। वक्त कहता है कि इस मोड़ पर यहाँ रुकना होगा दोस्तों, मगर बहुत ही आज एक ऐसी बीमारी के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं कि जो घर में उसकी दवाइयां हमारे घर के सदस्य खा रहे हैं और हम ये मानकर चल रहे हैं चलो दवाई तो खा ही रहे हैं ना ये, मगर हम उनके स्वास्थ्य के प्रति ज्यादा जागरूक नहीं है, ना हम जागरूक हैं ना जो व्यक्ति स्वयं दवाई खा रहा है वो जागरूक है। साथ ही ये भी बात आज हमने इस चर्चा में सुनी और समझी कि अपने ही मर्जी से दवाइयां लेना, अपने घर में दवाइयों का कबर्ड या बक्सा बनाकर रख लेना और छोटी मोटी चीजों के लिए खुद ही दवाई लेना ये हितकारी नहीं है। इसलिए हमें अपने स्वास्थ्य के प्रति बेहतर समझ को ले आने की आवश्यकता है, और जब हम अपने स्वास्थ्य के प्रति सही समझ लाएंगे तब हम सहज रीति से स्वस्थ रह पाएंगे। आज डॉक्टर राहुल मोदी हमारे बीच आए और उन्होंने हमें स्वास्थ्य से संबंधित मार्गदर्शन दिए हैं। अगले एपिसोड में बीपी और उससे जुड़ी हुई अन्य स्वास्थ्य संबंधी जानकारियां उनसे लेते रहेंगे। आज हम सभी श्रोता मित्रों को उन्होंने इन प्रश्नों का उत्तर दिया, इसके लिए आप सभी श्रोताओं की ओर से मैं डॉक्टर मोदी का धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका।
0: नमस्कार, ओम शांति।
1: दोस्तों ये है कार्यक्रम सहज स्वास्थ्य और आज हम सहज स्वास्थ्य को सहज बनाने की ओर, हमें क्या जागरूकता रखनी है, क्या हमें करने की जरूरत है, बीपी जैसे बीमारियों के बारे में भी नई जानकारी आज हासिल हुई है। अगली चर्चा में इस विषय पर और गहराई से चिंतन करेंगे। आज आप सभी हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं कि आप सभी अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाने की ओर एक कदम लेंगे। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: रुक, भाई रुक, भाई रुक, हेलमेट कहाँ है तुम्हारा?
1: सर वो सर सर
0: ओए क्या सर सर करके सरसरा रहा है भाई? आए ओए तुम्हारे सर के लिए ही बोल रहा हूँ।
2: ओए चेहरे से तो समझदार लगते हो, पढ़े लिखे भी लगते हो, वो इतनी धूप है धूल है वो कम से कम अपने चेहरे का ही ख्याल रख लो, तो ये चमकते हीरे जैसा चेहरा कहीं जीरे जैसा नहीं हो जाए।
1: सर आगे से ध्यान रखूंगा।
2: तो आगे से तो नहीं, मुझे तो तुम पीछे से निकलने वाले लगते हो हैं?
0: पर मुझसे कोई नहीं बच सकता क्योंकि ये है मेरी सड़क और मुझे कहते हैं होलदार। सड़क पहले वो सामने की दुकान से लो हेलमेट फिर गाड़ी।
3: हमेशा बाइक पर हेलमेट पहनकर निकलना चाहिए, इसमें आपका ही भला है। जीवन अनमोल है, इसे यूं ही व्यर्थ न गवाएं। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।

नमस्कार, मैं हूं गौरव आसुदानी टेकीगल से। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: ओम शांति एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज। सेल्फ मैनेजमेंट की श्रृंखला में हमने ये जाना कि हम किसके प्रति रिस्पॉन्सिबल हैं, रिलेशनशिप्स को एक नए नज़रिए से देखा, और फिर कई रोल्स जो हम हर रोज़ अदा करते हैं उनको कैसे हम हर बार चेंज कर सकते हैं वो हमारे अपने हाथ में है। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं इसी श्रृंखला में और बात करते हैं रिसोर्सेज की, और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। ओम शांति।
1: ओम शांति
0: सिस्टर शिवानी। हमने तीन पड़ाव तो तय कर लिए इस पूरी श्रृंखला में, और एक नई नज़र से जो है हम पूरे ना सिर्फ स्व को बल्कि अब जब अपने आप को मैनेज करते हुए हमने अपने रिलेशनशिप्स में और बाहर देखा तो काफ़ी सारे बदलाव दिखते हैं। आपने बात की थी कि इसमें बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आता है रिसोर्सेस, यानी संसाधन, पर वो रिसोर्सेस क्या हैं?
1: ट्रू, बिकॉज ईच वन ऑफ अस, हम सब के पास वही रिसोर्सेज हैं, यू नो, जो हम कई बार अपने आप को कंपेयर करते हैं एक दूसरे के साथ और हम कहते हैं इनके पास क्यों, मेरे पास क्यों नहीं है, वट एवर। एक्चुअली हम सब के पास वही रिसोर्सेज हैं। अंतर किस में आ रहा है कि हम अपने रिसोर्सेज को किस तरह से यूज़ करते हैं।

0: एंड दैट विल ब्रिंग अबाउट द रिजल्ट इन माई लाइफ, कि मेरे पास भी उतना ही है जितना आपके पास है, लेकिन आपका उसको यूज़ करने का तरीका और मेरा उसको यूज़ करने का तरीका वो डिफरेंट हो जाएगा. अब हर एक के पास जो रिसोर्सेज हैं सेल्फ के, वो तीन लेवल पर होंगे, फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल. थ्री रिसोर्सेज जो हम सब के पास हैं. सो लेट्स से फिजिकल रिसोर्सेज. आज फिजिकल वेलबींग की जितनी ज़्यादा डिस्कशन हो रही है, मतलब शायद पहले इतनी नहीं, तो देन डजंट दैट मीन आई एम नॉट यूजिंग द फिजिकल एनर्जी इन द राइट वे. आज ये शरीर मेरे थिंकिंग पैटर्न की वजह से, अगर इसको अलग अलग प्रकार की बीमारियां, कभी जॉइंट पेन है, किसी को डायबिटीज है, सो व्हाट इज दिस, दिस इज माय फिजिकल रिसोर्स, बट देन आई एम नॉट एबल टू यूज इट इन द राइट वे बिकॉज इट इज इल. सो फिर अगर कॉस्ट्यूम ठीक नहीं है, व्हीकल ठीक नहीं है, तो जीवन की यात्रा में कुछ कुछ तो रुकावट आएगी. सो माय थिंकिंग पैटर्न is creating the illness, and my change of thinking pattern will help in the cure of the illness. Wo bahut badi madad karta hai.
1: Very true. Ki
0: jaise I would like to share, at the Brahma Kumaris headquarters mein ek project chal raha hai in coordination with DRDO, and the project is called reversal of coronary artery disease. के जो heart की artery disease की जो arteries में blockage होती है, उसको meditation, मेडिसिन जो आप ले रहे हैं वो आप लेते रहते हैं, लेकिन मेडिटेशन और राइट लाइफस्टाइल से किस तरह से हम वो आर्टरी की ब्लॉकेजेस को यू नो ओपन कर सकते हैं. सो एंड द एक्सपेरिमेंट शोज वंडरफुल रिजल्ट्स. इट जस्ट शोज द पावर ऑफ द माइंड ओवर द बॉडी, कि राइट थिंकिंग से हम जो बीमारी, जिसको हमने समझ लिया था कि ये बीमारी तो चलनी ही है, वो बीमारी पर हम ओवर पावर कर लेते हैं. एंड फिर हमारा ये फिजिकल रिसोर्स, मतलब ऐसे भाई बहने वहाँ आ रहे हैं जो पहले चार कदम भी ठीक से नहीं चल पाते थे, दे वुड यू नो गेट ब्रेथलेस, वो दो फ्लोर तीन फ्लोर सीढ़ियाँ आज चल के जाते हैं. तो फिजिकल रिसोर्स है ना,
1: तो फिजिकल रिसोर्स का हमने सही इस्तेमाल फिर किया, उसका एटलीस्ट उसको हमने सेव तो किया, और व्हाई नॉट, वी वांट टू सेव.
0: ऑफ कोर्स, एंड दैट्स व्हाई वी सेड फिजिकल कॉस्ट्यूम सबको मिला है, रिसोर्स सबको मिला है, लेकिन कौन उसको किस तरह से यूज करता है वो फिर हर एक के अपने अपने तरीके.
1: एक बार अगर हमने अपने आप को फिजिकल रिसोर्स को हमने सेव कर लिया, अब उसका सही इस्तेमाल जो है वो कुछ और अलग होगा. मतलब हाउ डू आई यूज, या इसका मैनेजमेंट कैसे हो
0: ऑफ द बॉडी. बॉडी का तो ध्यान हम रख ही रहे हैं, सी आर डाइट, आर एक्सरसाइज, दैट्स व्हाट वी डिडंट डिस्कस दैट बिकॉज उसकी तो ऑलरेडी कितनी डिस्कशन है, कि डाइट हो, एक्सरसाइज हो, आपके यू नो गुड क्लिनलीनेस हैबिट्स हैं, ये सारी चीज़ें तो बॉडी का तो ध्यान रखती हैं, लेकिन जहाँ हमने ये कनेक्शन नहीं जोड़ा था कि द माइंड हैज़ एन इफेक्ट ऑन द बॉडी, तब हमने ये नहीं पता चल रहा था कि इतना कुछ करने के बावजूद भी मेरी तबीयत क्यों नहीं ठीक रहती है. यू नो आई एम टेकिंग केयर ऑफ एवरीथिंग, फिर भी कहीं ये दर्द, कहीं ये कुछ ना कुछ, बिकॉज साइकोसोमैटिक इलनेस है. आपको ब्लड प्रेशर हो गया, अब वो रहता है लाइफ लॉन्ग. वाई, जब तक आप अपने थिंकिंग पैटर्न को नहीं चेंज करेंगे. सो एनी डिजीज विच इज साइकोसोमैटिक, आई विल हैव टू टेक केयर ऑफ इट एट द लेवल ऑफ द माइंड, एट द लेवल ऑफ द साइकी. तो थॉट पैटर्न चेंज करें, लाइफ स्टाइल चेंज, यस. अभी देखो आर्टरी ब्लॉकेज भी होती है, तो लोग लाइफ स्टाइल चेंज करते हैं, लेकिन थिंकिंग पैटर्न
1: उस पर तो कोई सोचता ही नहीं कि वो इफेक्ट डाल सकता है.
0: तो डाइट वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सरसाइज वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन थिंकिंग पैटर्न. तो कहीं ना कहीं हमारे स्ट्रेस, एंग्जाइटी, एंगर, ये रिस्पॉन्सिबल है हमारे ये ब्लॉकेजेस के लिए. तो कहीं ना कहीं उसको ठीक करना पड़ेगा ना, तब वो ब्लॉकेज फिर जाता है. सो हिटिंग एट द रूट ऑफ द डिजीज, दैट इज वेरी फंडामेंटल, दैट विल बी इम्पोर्टेंट.
1: तो ये तो हुआ हमारा फिजिकल रिसोर्स की बात. आगे आपने कहा था कि
0: मेंटल रिसोर्स, तो मेरे को लगता है हम इस पूरे प्रोग्राम में बार बार इसको डिस्कस ही कर रहे हैं, कि माइंड इतनी पावरफुल एक शक्ति है जो हमें मिली है. अब इसका हर दिन हम देख सकते हैं कि हम किस तरह से उपयोग करते हैं. हमने पहले भी ये देखा, लेकिन लेट्स टेक इट अप अगेन टुडे, दैट ऑन एन एवरेज every minute we create about 25 to 30 thoughts on an average. The research, jo scientific research aaj dikhati ke in a day 24 ghante ke andar we are creating approximately 50 to 60,000 thoughts is what there is. Ab ye mera resource hai, I am creating 50 to 60,000 thoughts in a day. Quality quality kya hai, ek ek thought. Ab कितनी सारा दिन में
1: किस तरह की एनर्जी क्रिएट कर रहा है. ईच थॉट इज क्रिएटिंग एन एनर्जी वाइब्रेशन. ऑरा जो की बात करते हैं,
0: इट्स बींग यूज इन दैट वे. आप जिस तरह की थॉट क्रिएट करेंगे, फिर उस तरह की फीलिंग, उस तरह की फिर पर्सनैलिटी एंड डेस्टिनी, दैट वी ऑलरेडी डिस्कस. सो वेन आई एम क्रिएटिंग 50,000 थॉट्स अप्रोक्सीमेटली इन अ डे, शुडंट आई बी अवेयर ऑफ द क्वालिटी ऑफ दोज थॉट्स. इट्स लाइक यू नो, दिस इज माई कंपनी इन साइड एंड दिस इज द प्रोडक्शन हाउस, एंड प्रोडक्शन कितनी है 50,000, क्वालिटी कितनी है,
1: किस तरफ जा रही है वो. ओ यस.
0: तो एक फैक्ट्री में भी आप देखो, अगर इतना प्रोडक्ट निकल रहा है तो कुछ एक परसेंटेज रिजेक्ट होता है एंड कुछ एक यूजफुल प्रोडक्ट में जाता
1: है. यूजफुल तो रहे कुछ ही
0: है, लेकिन यहाँ कितना रिजेक्ट होता है सारा दिन, बिकॉज एवरीथिंग दैट्स नेगेटिव, एवरीथिंग दैट्स वेस्ट, दिस इज ऑल गोइंग. तो ये अगर हम एक दिन भी अवेयरनेस से चलें कि मेरी थॉट्स की क्वालिटी क्या है, तो माइंड, मन जो है, तो मन आत्मा की, जिसको हम कहते हैं कि मैं आत्मा जब सोचती हूँ तो उसको मन, तो माइंड इज अ पार्ट ऑफ द सेल्फ. लेकिन ये माइंड की जो पावर है, दैट इज टू थिंक. हम यहाँ पे सोचते हैं, वी कैन एक्सपीरियंस कि वी आर थिंकिंग इन द फॉर्म ऑफ इमेजेस, किसी के लिए ऑब्जेक्ट्स के फॉर्म में होता है, किसी के लिए नंबर्स के फॉर्म में होता है, यू नो, वी थिंक एज नंबर्स, और वो यहाँ एक इमेज जैसे बनता जाता है. एंड जैसे जैसे हम वो थॉट क्रिएट करते हैं, फिर वो वाइब्रेशन एनवायरमेंट में जाता है. पहले वो वाइब्रेशन मेरी बॉडी को मिलता है, और फिर वो वाइब्रेशन environment में जाता है. So every thought I'm creating does not just stay here. It becomes
1: it's like moving, yes.
0: And it goes.
1: It's doing a lot of work.
0: Yeah, it goes into the environment. And similarly, औरों की जो thoughts हैं,
1: वो हम तक पहुँच रहे
0: हैं. औरों की thoughts को हम लेते हैं. यहाँ पर on the screen of my mind, I create that image, and then I take that thought and I make it your thought. जो हम कहते हैं ना, उन्होंने ऐसा सोचा या उन्होंने ऐसा किया और उसकी वजह से मैंने भी ऐसा करने लग दिया, तो उन्होंने नहीं किया मुझे, लेकिन मैंने उनकी थॉट्स को लिया और फिर उनको यहाँ क्रिएट करके मैंने आपकी थॉट्स को अपना बना लिया, एंड देन दे बिकम माय थॉट्स. सो नाउ आई हैव टू मूव विद अवेयरनेस इन द होल डे कि मेरा मन सारा दिन में जो इतनी सारी थॉट्स क्रिएट कर रहा है उसका क्या इम्पैक्ट, बिकॉज इट्स अ रिसोर्स. हाउ एम आई यूजिंग दिस पावर ऑफ द माइंड. आजकल बहुत इस पर लिटरेचर रिसर्च है कि इट्स द मोस्ट पावरफुल एनर्जी इन द वर्ल्ड बट मोस्ट अंडर यूज्ड. उसका राइट उपयोग नहीं हो रहा. अगर हम इसकी शक्ति को पूरी तरह से यूज करें तो वॉट ऑल कैन बी डू. सो लेट मी बी वेरी कॉन्शियस ऑफ एवरी थॉट दैट आई क्रिएट. आजकल विज्ञान भी इसको प्रूव कर रहा है कि पावर ऑफ थॉट ऑन ऑब्जेक्ट्स, क्योंकि हम एक एक वाइब्रेशन जो देते हैं वो हमारा एनवायरनमेंट क्रिएट करती है. मंदिर में जाओ, एनवायरनमेंट डिफरेंट है. यू नो, एनी होली प्लेस आप जाओ, एनवायरनमेंट डिफरेंट है. थिएटर में जाओ, रेस्टोरेंट में जाओ, शॉपिंग मॉल में जाओ, एनवायरनमेंट डिफरेंट है. लोग मोर और लेस वही हैं.
1: एंड वी स्टार्टेड टॉकिंग, देयर इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ एनर्जी,
0: एनर्जी,
1: देयर इज डिफरेंट काइंड ऑफ केमिस्ट्री वी फील.
0: या सो हु इज क्रिएटिंग दैट एनर्जी, बिकॉज मोर और लेस लोग तो वही है ना. एक सपोज सिंपल एग्जाम्पल है, आप कोई एक हाउसिंग कॉम्प्लेक्स देख लो, उसी हाउसिंग कॉम्प्लेक्स में एक क्लब हाउस भी है और उसी हाउसिंग कॉम्प्लेक्स में एक मंदिर भी है, तो वही सोसाइटी के लोग जाते होंगे ना दोनों जगहों पर.
1: वी गो विद अ डिफरेंट थॉट प्रोसेस. ओह यस, विद डिफरेंट थॉट.
0: सो जिस थॉट्स के साथ हम उस स्थान में जाते हैं, तो वो जो होली प्लेस है, वहाँ का जो स्थान है जहाँ हम जाते हैं, वो स्थान की वाइब्रेशन कैसी होती है, तो वो वाइब्रेशन किसने क्रिएट की? मैंने क्रिएट की. इसका मतलब आई हैव द पावर टू क्रिएट इट. नाउ आई कैन यूज दैट पावर टू क्रिएट इट
1: एनीवेयर. यस,
0: इसलिए कहते हैं घर को मंदिर बना लो,
1: क्योंकि आई क्रिएट इट.
0: देखो ना, आप देखो आपकी सोसाइटी बनी जहां आप रह रहे हो. जैसे जैसे आपके अपार्टमेंट्स बने, वैसे ही एक वहां यू नो मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा जो भी है वो भी बना. लेकिन वो वाइब्रेशन कैसे क्रिएट हुआ?
1: सुकून.
0: जब एक एक उस स्थान पर गया विद वेरी प्योर थॉट्स, यू नो, विद वेरी क्लीन फोकस्ड थॉट्स, तो उस स्थान का वाइब्रेशन बना. कंस्ट्रक्ट तो वो भी ऐसे ही हुआ था ना, जैसे पूरी बिल्डिंग हो रही थी, जैसे उस सोसाइटी का एक एक फ्लैट कंस्ट्रक्ट हो रहा था. लेकिन वो एक एक फ्लैट की वाइब्रेशन देखो जाके अब, एंड उस मंदिर की वाइब्रेशन देखो.
1: ऑफ कोर्स फ्लैट्स की वाइब्रेशन में झगड़ा
0: अलग अलग होगा ना. अगेन सी, एवरी फ्लैट विल हैव अ डिफरेंट वाइब्रेशन. आप लोगों के घर में जाओ, एवरी हाउस विल हैव अ डिफरेंट वाइब्रेशन बेस्ड ऑन people staying in that house. So when I understand ke ye meri creation hai, ye environment maine create kiya hai, Now I can create that environment
1: anywhere,
0: everywhere.
1: Yes. And I can create a good environment.
0: Yeah.
1: I don't have to depend on things, you know. मुझे वो धूप नहीं जलाना, मुझे वो कुछ नहीं करना, मुझे अरोमा नहीं करने की जरूरत. I can do it.
0: See, वो सारे again, वो चीजें जो हम सारे कर रहे हैं, those are external aids which I use to be able to create good thoughts, which is okay. I mean, but as long as just remember that you are the creator. आप create कर रहे हैं thoughts, आपके अंदर power है, कभी भी, कहीं भी, किसी भी समय आप जो थॉट क्रिएट करना चाहो. लेकिन अगर हम उस
1: कई जगह पे हम बहुत अप्रेसिव फील करते हैं, ऐसा लगता है कि घुटन हो रही है, दिमाग जो है ना वो उसमें, तो वो अगेन यू नो, एंड यस हमारे थॉट्स वो क्रिएट होने लगते हैं फिर.
0: हाँ, बिकॉज वातावरण का. आप मंदिर में जाएंगे तो अपने थॉट्स देखो, इट वर्क्स एज अ साइकिल. पहले हम उस स्थान के वाइब्रेशन क्रिएट करते हैं और स्थान भी, स्थान के वाइब्रेशन हम पे भी इन्फ्लुएंस करता है. सो बोथ द थिंग्स आर हैपनिंग एट द सेम टाइम. तो हमने मंदिर का वाइब्रेशन बनाया और फिर मंदिर के वाइब्रेशन में ही जब हम जाते हैं तो हमें शांति अनुभव होती है. सेम थिंग एट होम. हम ही पहले अपसेट रहकर, नाराज होकर, यू नो, ये सब आपस में झगड़ा करके हम घर का वातावरण बनाते हैं टेंशन का. फिर हम ही जब शाम को ऑफिस से घर आते हैं तो कहते हैं घर आते ही वातावरण कैसा है,
1: क्रिएट. हाँ,
0: लेकिन ये हमने ही क्रिएट किया है. और अगर हम उसको साथ कंफर्टेबल नहीं है और हम चेंज करना चाहते हैं तो चेंज कौन करेगा?
1: हम ही कर सकते, कभी भी कर सकते,
0: कभी भी कर सकते हैं. यस, एक्सटर्नल एड्स, आज बहुत सारे एक्सटर्नल एड्स प्रमोट किए जा रहे हैं कि आप ये करो तो आपके घर की वाइब्रेशन चेंज हो जाएगी, विच इज़ ऑल ओके, बट हु इज़ द मास्टर फाइनली?
1: ये अब ये सारे एड्स से हम ही, हमारे थॉट प्रोसेस ही चेंज होगा बेसिकली.
0: एब्सोल्युटली. थिंकिंग फैकल्टी जो मेरी है, जब मुझे रियलाइज हो जाएगा मैं मास्टर हूँ एंड आई क्रिएट दिस, इट्स अ न्यू.
1: एक्चुअली मैं किसी भी सिचुएशन में हूँ, ये थॉट आते ही कि आई एम क्रिएटिंग इट, आई कैन क्रिएट इट, एक्चुअली आई कैन फिनिश दैट व्हाट आई वाज थिंकिंग एंड आई क्रिएट अ न्यू पैटर्न.
0: सो नाउ, लेकिन सारा दिन में अपने घर में, अपने ऑफिस में, ऑफिस का आपका एनवायरनमेंट कैसा है? कई ऑफिस में जाओ, इट्स अ वेरी लाइट एनवायरनमेंट. कई ऑफिस में जाओ, इट्स अ वेरी हैवी एनवायरनमेंट. व्हाई? एनर्जी फ्लो ऑफ द पीपल. सो जबकि हमें ही उस घर में रहना है, हमें ही उस ऑफिस में काम करना है, तो वो एनवायरनमेंट हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है. तो इज इन दैट आर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम वहाँ क्या एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं? लेकिन हम कितना ईजिली बैठे बैठे जो इतने सारे नेगेटिव थॉट्स क्रिएट करते हैं, फिर एनवायरनमेंट कैसे बिल्डअप होगा? सो दैट बिकम्स अ वेरी फंडामेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी. आजकल बहुत रिसर्च हो रही है कि इफेक्ट ऑफ माइंड ऑन फूड, क्योंकि जबकि मन की स्थिति, मन के वाइब्रेशंस का इफेक्ट हर चीज़ पर हो रहा है, एनवायरनमेंट पर हो रहा है, भोजन पर हो रहा है, पानी पर हो रहा है. हमने पहले भी एक एपिसोड में बात की थी कि जापान के एक साइंटिस्ट हैं डॉक्टर इमोटो, उन्होंने रिसर्च ये की है इफ़ेक्ट ऑफ माइंड ऑन वाटर ना. और ऑफ कोर्स वो ऑन गोइंग रिसर्च बहुत अभी भी चल रही है कि आप पानी के सैम्पल्स उन्होंने लिए एंड अलग अलग सैम्पल्स को विद पावर ऑफ माइंड आपने अलग अलग वाइब्रेशंस दिए हैं एंड फिर वो जैसे किसी को दिया आई लव यू, आई थैंक यू, किसी को आई हेट यू, तो फीलिंग ऑफ नेगेटिविटी किसी के लिए पॉजिटिविटी, किसी के लिए ग्रैटिट्यूड, किसी के लिए लव. एंड फिर वो पानी के सैम्पल्स को जब देखा गया तो द स्ट्रक्चर ऑफ द क्रिस्टल वो अलग प्रकार का था. तो जिस पानी के सैम्पल्स को पॉजिटिव एनर्जी मिली है, बहुत पावरफुल, वो स्ट्रक्चर बहुत फाइन डिफाइंड है, बहुत शार्प और डिफाइंड है. और लेकिन जिनको दूसरे प्रकार की एनर्जी मिली है वो स्ट्रक्चर ही ठीक से नहीं बना है, क्रिस्टल ही शेप नहीं हुआ,
1: मतलब क्रिएट ही नहीं हो पाता,
0: वो क्रिस्टल कोलैप्स हो जाता है, उसका स्ट्रक्चर ही नहीं बनता.
1: बिकॉज़ हेट्रेड कैन बी सो डैमेजिंग. ओह यस.
0: नाउ वंस आई अंडरस्टैंड
1: दिस, ओह माय गॉड, हाउ मच एट टाइम्स यू नो, जब हमें गुस्सा चढ़ रहा होता है या हमें नफरत हो रही होती है, हम हमारे जो वो वाइब्रेशंस हैं वो कितनी स्ट्रांग हो सकती है कि वो डैमेज कर सकते हैं.
0: अब इसका सेकेंड पार्ट जो हमें समझ में आएगा, बॉडी इज मेड सो मच ऑफ वाटर.
1: और वो मुझसे होके ही तो जा रही है, तो मुझे कितना डैमेज कर रही है.
0: तो ये बहुत बड़ी रियलाइजेशन आती है. वी कुड एक्चुअली आस्क द होल फैमिली जो हमारे साथ ये प्रोग्राम देख रहे हैं कि अगर आप चाहें तो आप इंटरनेट पर जाकर ये वेबसाइट देख सकते हैं डॉक्टर इमोटो की, क्योंकि उसमें फ़ोटोग्राफ्स दी हुई हैं क्रिस्टल्स की, बहुत सारी फ़ोटोग्राफ्स दी हुई हैं, उनकी बुक्स भी हैं वाटर हीलिंग विद वाटर के, तो उस पर ये क्रिस्टल्स की फ़ोटोग्राफ्स दी हैं। ये देखना बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि देखने से हमें पावर ऑफ माइंड ऑन वाटर जो उन्होंने यू नो प्रूफ किया है, वी नीड टू सी दैट बिकॉज वाटर इज समथिंग व्हिच इज एवरीवेयर, सो मच इन द बॉडी। तो अगर हमें वो यू नो समझ में आता है कि वो क्रिस्टल्स ठीक से फॉर्म नहीं होते हैं तो बॉडी पर क्या इफेक्ट पड़ रहा होगा, ये कितने थॉट्स चल रहे हैं सारा दिन, हेट्रेड के, नफरत के, हर्ट के, पेन के, तो उसका शरीर पे असर ऑटोमेटिकली।
1: और पता है हमें बहुत ज़्यादा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कई बार कि हम कितनी बार ऐसे शिवानी कहते हैं उसके साथ ऐसा होना चाहिए, उसको सज़ा मिलनी चाहिए, उसके साथ वो कहीं ना कहीं मुझसे
0: वी हैव टू रिमेम्बर कि हमारे सोचने से उसको कुछ नहीं होने वाला है।
1: और सबसे बड़ी बात,
0: सबसे पहले मुझे होने वाला, सी बिकॉज द अदर पर्सन वो उनकी पावर पर डिपेंड करता है कि वो आपकी वाइब्रेशन को कितना इन्फ्लुएंस करने, लेट्स से कि आप मुझे बार बार नेगेटिव भेज रहे हैं बट समवेयर मेरे पास भी तो एक पावर है कि हाउ मच आई एम गोइंग टू लेट यू ओवर पावर मी। लेकिन जब आप भेज रहे हैं तो आपको तो सबसे पहले मिल रहा है, और इसलिए जब हम कहते हैं जब हम नेगेटिव क्रिएट कर रहे हैं या पॉजिटिव क्रिएट कर रहे हैं, दूसरे को मिले या नहीं मिले पता नहीं, लेकिन मुझे definitely milta hai. So this is something which we have to experiment with ke, and that's why at the Brahma Kumaris ek bahut important cheez hai jis par hum bahut emphasis dalte hain, and that is jab aap bhojan bana rahe hain to aapki man ki sthiti kya hai. Humne bahut bachpan se ye suna hai ke jaisa ann waisa man aur jaisa man waisa ann, wo bhi to fir true hua na. Ann agar satvik hai तो मन सात्विक होगा ये कहा जाता था, लेकिन मन सात्विक होगा तब तो सात्विक अन्न बनेगा,
1: क्योंकि अन्न सात्विक कैसे बन जाएगा, अन्न अपने आप थोड़ा सात्विक हो जाएगा।
0: अभी तक हमें कहा जाता था कि सात्विक अन्न मतलब वेजिटेरियन फूड, वेजिटेरियन फूड तो है लेकिन वेजिटेरियन फूड को किस स्थिति में बनाया गया, अगर आप अपसेट हैं, गुस्से में हैं और उससे आप वो वेजिटेरियन फूड तो बना रहे हैं, दैट्स वन पार्ट ऑफ इट, लेकिन एनर्जी कुक करने के टाइम कौन सी जा रही है। तो अगर वो भोजन जो मेरे सामने आया अगर उसके अंदर वाइब्रेशंस गुस्से की, चिंता की है, कैन आई कॉल दैट सात्विक फूड इज अ क्वेश्चन आई हैव टू थिंक अगेन। फूड इज मेड सो मच ऑफ वाटर,
1: सो मच ऑफ
0: हर सब्जी हर फल, इसका बेसिक इंग्रेडिएंट तो पानी है कितना सारा, और वो क्रिस्टल हमने देखा कि कैसे फॉर्म होता है, तो फूड की क्या स्टेट होगी, हम किस स्थिति में बना रहे हैं। तो इसलिए बहुत ध्यान रखें, भोजन बनाते समय बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो लोग भोजन बनाते हैं, कि आपको अगर किसी बात की चिंता है, टेंशन है, सिट विद योर सेल्फ 2 मिनट्स, सॉर्ट इट आउट विद योर सेल्फ, गो बैक टू योर कुकिंग। ऐसे ही यू नो ऐसे ही गुस्से में दर्द में भोजन नहीं बनाना, क्योंकि आप सिर्फ भोजन नहीं परोसेंगे फिर साथ साथ वाइब्रेशन भी ट्रांसमिट होगी, सो इट प्लेज अ वेरी इम्पोर्टेंट रोल। आजकल स्पोर्ट्स में भी पावर ऑफ द माइंड को बहुत यूज किया जा रहा है कि अगर माइंड उसको क्रिएट कर ले, उस पिक्चर को विजुअलाइज कर लें आप, यू नो, एंड इफ यू हैव इट हियर ऑन द स्क्रीन ऑफ योर माइंड, दैट वॉज वॉट योर रिजल्ट विल बी। जो हम पहले से कह रहे थे कि थॉट विल लीड टू डेस्टिनी, तो स्पोर्ट्स में या हम इसको अब कहीं भी यूज कर सकते हैं, हमें अपना गोल अचीव करना है, क्रिएट अ थॉट, visualize it here and do not let a single thought of doubt come between.
1: Doubt and fear.
0: Wo insecurity.
1: You know ki what if it will not happen? What if it will not happen?
0: Haan, to hamara mind jo energy create karega, transmit karega, wo hone wala hai. We need to know that. To hame kaun si thoughts create karni chahiye?
1: It's like it's going to happen.
0: Agar hum hi thought ye create karenge, pata nahi hoga ya nahi hoga. Nahi hua to kya karunga? To fir अब कई बार भाई बहने कहते हैं मैंने पॉजिटिव सोचा लेकिन वो नहीं हुआ, बट देन आई नीड टू बी वेरी क्लियर, क्या सच में मैंने 100% सिर्फ पॉजिटिव सोचा, कहीं भी उसमें फियर, डाउट, इनसिक्योरिटी, क्योंकि ये भी तो थॉट्स हैं। सी इट्स नॉट दैट ये थॉट वर्क करेगी और ये थॉट वर्क नहीं करेगी, हर थॉट वर्क करेगी। तो पहले मैंने थॉट क्रिएट किया कि आई वॉन्ट टू गेट दिस डन, नेक्स्ट थॉट क्रिएट किया नॉट टू श्योर, तो वो वाले थॉट भी तो वर्क करेगा, एंड देन समवेयर वो रिजल्ट वैसा नहीं आता जैसा मुझे चाहिए। तो ये रिसोर्स है, इसको हम राइट डायरेक्शन में अगर चैनलाइज करें. अब सारा दिन में जो हम थॉट्स क्रिएट करते हैं उसमें जो मेजॉरिटी वेस्ट थॉट्स हैं वो है पास्ट और फ्यूचर को लेकर. पास्ट भी एक यू नो इट जस्ट होल्ड्स मी बैक. साइकाइट्रिस्ट जो है मनोवैज्ञानिक वो बताते ऑन एन एवरेज 80% ऑफ द टाइम वी आर इन द पास्ट 80% एंड 15% समय वी आर इन द फ्यूचर वेरी लिटल. उसमें कहीं नेगेटिव भी होती है तो इसलिए पॉजिटिव की परसेंटेज. तो पास्ट और फ्यूचर को हमें कहीं ना कहीं हल्का करना पड़ेगा क्योंकि इसमें ये मेरी बहुत सारी एनर्जी वेस्ट जा रही है क्योंकि बोथ ऑफ देम पास्ट एंड फ्यूचर आर नॉट इन माई कंट्रोल एंड मैं कितना टाइम स्पेंड कर रहा हूँ एनर्जी स्पेंड कर रहा हूँ दोनों के बारे में सोचने के लिए. तो समवेयर पास्ट की जो भी बातें हैं आई विल हैव टू लेट गो. ये लेट गो हमने बहुत बार बोला है, बहुत सारे भाई बहने कहते हैं हाँ समझ में आ गया लेट गो, लेकिन कैसे करना है लेट गो, कैसे करना होता है?
1: एक्चुअली मैं बताऊं कि जब कोई सिचुएशन आ जाती है ना, चैलेंज आता है, हमने लेट गो किया हुआ है, हमें याद नहीं है पास्ट याद नहीं है सपोज, लेकिन कोई सिचुएशन आ जाती है जिसका कनेक्ट या वो सिचुएशन इसलिए आई है कि और मैं उसको हैंडल नहीं कर पा रहा हूँ या मुझे मुश्किल आ रही है तो मैं पास्ट में कहीं रिलेट करने लग जाता हूँ कि ये इस वजह से हुआ एंड देन द होल
0: आई गो बैक टू दैट
1: थिंग कम्स बैक. It means वो सॉल्व नहीं हुआ.
0: I didn't let it go. So somewhere past को, past मतलब कोई ग्रज पकड़ी हुई है, किसी के अगेंस्ट कोई बात पकड़ी हुई है, उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा. यहाँ कितनी वैल्यूबल एनर्जी वेस्ट हो रही है. एंड फ्यूचर के लिए भी एक फेथ कि जो होना है वो मेरे साथ अच्छा ही होना है क्योंकि जो थॉट मैं क्रिएट करूँगी वही होने वाला है. सो वाई नॉट क्रिएट द थॉट दैट एवरीथिंग दैट विल हैपन विद मी विल ओनली हैपन द बेस्ट फॉर मी क्योंकि वैसे भी वही होने वाला है. सो वाई नॉट वाई क्रिएट दोज पेनफुल
1: थॉट्स बिकॉज़ एवरीथिंग इज गोइंग टू बी बेस्ट
0: एवरीथिंग विल
1: व्हेन चैलेंजेस व्हेन सिचुएशंस आर नॉट गोइंग टू टेक ओवर
0: तो फिर सब चीज कैसे हो जाएगी
1: बिकॉज़ यू जस्ट एक्चुअली पूरा लर्न किया है हमने लेसन की सेल्फ मैनेजमेंट कैसे करना है.
0: और जब हम प्रेजेंट में होंगे ना पास्ट और फ्यूचर के बारे में सोच रहे होंगे, प्रेजेंट में होंगे क्रिएटिव होंगे, वरी नहीं होगी, फियर नहीं होगा तो अच्छा नहीं होगा. और अगर वर्तमान अच्छा होगा तो भविष्य
1: अच्छा ही होगा. बार बार बार बार हमने ये बातें सुनी हुई थी लेकिन अब प्रैक्टिकली जब हम देख रहे हैं जिंदगी की, एक्चुअली हुआ ये है आई थिंक कार्यक्रम के दौरान कि अभी तक स्पिरिचुअलिटी में ये सारी बातें, ये जो हम अंडरलाइंड बातें करते हैं, ये हमने सुनी थी अपने बड़ों से, सुनी थी कभी कहीं पाठ हो रहा होता था, कहीं सत्संग होता था, हम ये सब सुनते थे लेकिन ये मुझे नहीं पता था मेरे जीवन में कैसे यूज़ होंगे. आज ये सारी बातें मेरे अपने जीवन के अनुभव से निकल के आ रही.
0: Very much, absolutely.
1: Yeah. So that way, that changes the whole perspective.
0: Because then I understand that spirituality is practical. Because it has to be for my life. Practical matlab mere jeevan se applicable honi chahiye. Koi cheez sari duniya ke liye applicable ho. Lekin jab tak wo mere liye applicable nahi, then it's not useful to me. Absolutely.
1: Very true. तो आज जिन जिस तरह से mental resources के बारे में आपने कहा कि सही तरह से उसे manage करना, सबसे बड़ी बात तो है कि उसकी energy, उसकी ताकत को समझना. पहले मैंने स्व की ताकत को समझा, अब अपने जो thought process है उसकी ताकत को समझ के फिर मैंने किस तरह से उस resource को use करना है, कहाँ कहाँ कैसे कैसे use कर सकती हूँ. ये एक बहुत ही powerful tool है मेरे पास. जैसे ये शरीर मेरा पावरफुल टूल है, वैसे ये मेंटल फैकल्टी मेरी
0: बहुत ज़्यादा,
1: तो उसका सही इस्तेमाल करना भी मेरे अपने हाथ में है. थैंक यू सो मच सिस्टर शिवानी. ओम शांति.
0: ओम शांति.
1: बिल्कुल हर बार की तरह आपसे यही कहेंगे, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, कोशिश करें हम इसे, इस पूरे शरीर को, इसकी पूरी जो फैकल्टीज हैं उसे एक फिजिकल रिसोर्स के बारे के रूप में देखें और फिर उस रिसोर्स का सही मैनेज कैसे करना है, कौन सी ऐसी बातें हैं जो इस रिसोर्स को कहीं डिप्लीट कर रही हैं, कहीं कमज़ोर कर रही हैं, कहीं बीमार कर रही हैं. दूसरी तरफ मेरी अपनी मेंटल फैकल्टीज़, मेरा अपना थॉट प्रोसेस कितना बड़ा रिसोर्स है, किस तरह से मेरे सामने एग्जाम्पल्स हैं कि मैं क्या कुछ कर सकता हूँ अपने इन्हीं थॉट्स को पावरफुल बनाकर उनका सही इस्तेमाल करके सही डायरेक्शन में. हर बार की तरह हमारे सामने ऑप्शंस हैं, चूज हमें करना है. वी हैव अ चॉइस, हमारे सामने है चॉइस, हम कितना उसे यूज़ करते हैं ये हम पर निर्भर करता है. कोई सवाल, कोई मुश्किल आपको इस पूरी यात्रा पर चलते हुए आ रही है, आपका हम स्वागत करेंगे. आप हमसे फ़ोन पर या फिर ईमेल पर संपर्क कर सकते हैं. हमारे फ़ोन नंबर्स हैं 0999-344-555, 0999-344-666, 0987-3-9999-999-999-999-999-999-999-999-999-999-999-999-999-999-999-999-999-999-999-999-999-999-999-999-999-999-999-999-999-999-999-999-999-999-999-999-999-999-999-999-999-999-999-999-999-999-999-999-999-999-999-999-999-999-999-999-999-999-999-999-999-999-999-999-999-999-999-999-999-999-999-999-999-999-999-999-999-999-999-999-999-999-999-999-999-999-999-999-999-999-999-999-999-999-999-999-999-999-999-999-999-999-999-999-999-999-999-999-999-999-999-999-999-999-999-999-999-999-999-999-999-999-999-999-999-999-999-999-999-999-999-999-999-999-999-999-999-999-999-999-999-999-999-999-999-999-999-999-999-999-999-999-999-999-999-999-999-999-999-999-999-999-999-999-999-999-999-999-999-999-999-999-999-999-999-999-999-999-999-999-999-999-999-999-999- 6655 0999 7445। हमारा ईमेल आईडी है omshantistudio@bkmail.org। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी में आज इतना ही। सेल्फ मैनेजमेंट की इस पूरी श्रृंखला में अभी कुछ बातें करना और बाकी है, आपसे मुलाकात करेंगे। विदा लेते हैं, ओम शांति।
2: ब्रह्मा कुमारी के प्रत्येक सेवा केंद्र पर राजयोग मेडिटेशन निशुल्क सिखाया जाता है। ये कोर्स 7 दिन प्रतिदिन 1 घंटे का है। भारत में बड़े शहरों से लेकर छोटे छोटे गांवों में हमारे 8000 से अधिक सेवा केंद्र हैं। राजयोग सीखने के लिए और अपने नजदीकी सेवा केंद्र का पता जानने के लिए संपर्क करें

0: सुनना सीखा, लिखना सीखा, जीना सीखा। रेडियो मधुबन की छोटी सी पाठशाला।
1: सपोज एक स्टूडेंट है जिसका एक महीने के बाद एग्जाम्स हैं, वो आज बैठकर ना प्रिपरेशन करता है, ही इज प्लानिंग ऑल हिज लेसंस। जब प्लान करता है तो उसको समझ में आता है कि एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट की 10th चैप्टर इज वेरी वेरी टफ, तो कैसा प्रोग्रामिंग करेगा? हे भगवान, सारे के सारे क्वेश्चंस 9 चैप्टर में से आए, ओ गॉड लेट नॉट इवन अ सिंगल क्वेश्चन कम फ्रॉम द 10th चैप्टर, टक फर्स्ट प्रोग्रामिंग। और ये एक महीने तक ये स्टूडेंट क्या प्रोग्रामिंग देता है? इफ देयर इज एनी क्वेश्चन फ्रॉम द 10th चैप्टर, आई विल बी इन ट्रबल, आई विल बी इन ट्रबल, आई विल बी इन ट्रबल। एक महीने के बाद जैसे ये विद्यार्थी एग्जामिनेशन हॉल में जाता है, as soon as he gets a question paper, he is least bit bothered. How many questions have come from 9 chapters? He is trying to look out whether there is a question from the 10th chapter or not. और बस उनके आंखों के सामने ये question from the 10th chapter दिखाई देता है। एक महीने से क्या programming कर रहा है? If there is any question from the 10th chapter, I'll be in trouble, I'll be in trouble, I'll be in trouble. Automatically he is in trouble. और इतना stressed up हो जाता है, सारा पसीने पसीने छूटने लगते हैं, आंखों के सामने ब्लैकआउट हो जाता है, और जो 9 चैप्टर में से पढ़ा वो धीरे धीरे इवैपोरेट होकर उड़ने लगता है। Why? Because it's the way we have programmed ourselves. Thoughts are the software. एक और उदाहरण देता हूं। जिस कॉलेज में पढ़ाता था तो वहां पे जो स्टूडेंट्स है, राइट फ्रॉम 8:30 to 3:30, यू नो, हम प्रोफेसर लेक्चरर्स बम्बार्ड आवर स्टूडेंट्स विद सो मच ऑफ टेक्निकल इन्फॉर्मेशन। 3:30 बजे तक बच्चे इतने थक जाते थे कि कुछ पूछो मत, दे सो डैम टायर्ड। किसी तरह वो अपना बैग बैगेज उठाता है, समहाउ ही कम्स आउट, और वो अपना घर देखता है 100 meters अवे। 100 meters सीम्स टू हिम एज 100 kilometers बिकॉज ही सो टायर्ड। और उस समय ये विद्यार्थी देखता है एक कुत्ता बहुत तेज से उसको काटने के लिए आ रहा है, क्या करेगा? नहीं नहीं नहीं, मैं तो बहुत थक गया हूं ना, कहेगा? नो, he will run at the fastest of fast speed, if not the 100 meters world record, lekin 100 meters indian record to usko todna hi tha. What I'm trying to communicate is, aisa nahi hai ki uske paas energy nahi tha, energy tha, but he kept on programming, I'm tired. Automatically the body manifested itself in the same way. Jaise hi usne us kutte ko dekha to kya kya, ek switch off kiya, dusra switch on kiya, he had energy and he could run at the fastest of fast speed. जैसे ही घर में पहुंचा, द फर्स्ट थिंग दैट इट डज इट, स्विच ऑन द टेलीविजन। राइट देयर फ्रॉम 7 o'clock टू लेट 10 o'clock ही इज देयर इन फ्रंट ऑफ द टेलीविजन। 10 बजे वो रियलाइज करता है, ओ माय गॉड, टुमारो मुझे इतने सारे असाइनमेंट सबमिट करने हैं। और 10 बजे वो लिखना आरंभ करता है। सोते सोते 12 बज जाते हैं, 6 बजे का अलार्म रखता है, और उसका मन में यही विचार आता कि मैं कैसे उठ पाऊंगा। और जैसे ही 6 बजे का अलार्म बजता, 10 मिनट सोता हूं, और 10 मिनट का कितना, 1 घंटा 1.5 घंटा हो जाता है। एवरी डे ही इज देयर इन द कैंपस लेट एंड ही हैज टू

नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और सद्गुरुवार। विशेष आज जो है खास मंगल दिवस है और मंगल दिवस की मंगल कामनाओं के साथ 28 जुलाई 2026 आज का तारीख है। राष्ट्रीय शके 1948 शके 6 गते

0: आषाढ़ मंगलवार आज है। विक्रम संवत 2083 आषाढ़ शुक्ल पक्ष चतुर्दशी मंगलवार पूर्व आषाढ़ आज है। इस्लामी हिजरी 1448 13 सफर मंगल नाइम आज है। इसके साथ ही रामेश्वर ठाकुर इन सभी का जन्मदिन है और विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस भी आज है और साथ ही साथ विश्व हेपेटाइटिस दिवस भी आज है। हेलो जी नमस्कार।
1: हेलो जी नमस्कार। प्रकृति दिवस का भी शुभकामनाएं।
0: जी जी जी आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं।
1: हमने प्यारे लागे श्री राम, हमें प्यारे लागे श्री राम, हमारे सब काम बनाते श्री राम, जय सिया राम जय सिया राम। ये भजन भी हो जाएगा तो आनंद आ जाएगा। सभी साथियों को मेरा प्यार प्यार भरा नमस्कार, धन्यवाद।
0: जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल,
1: हमारी खुशियाँ बहुत ही अच्छी, हमारे को आनंद आता रहेगा।
0: जी जी जी धन्यवाद। आइए आगे बढ़ते हैं। ये थे गुड़ीलाल जी जो अपनी भावनाएं विचार हमारे साथ साझा कर रहे थे और बड़े प्यार से आप सभी को हंसी की गुदगुदी देकर चले गए हैं। तो आइए मैं आपकी हंसी को और खूबसूरत बना देता हूं ताकि आप मुस्कुराते रहें पूरा दिन, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।

मैं हूँ सुनील खरे, मैं ग्लोबल हॉस्पिटल आबू रोड में काम करता हूँ। अब सुनिए आपके अपने सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन को 107.8 FM पर। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: ओम शांति। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है बातें मुलाकातें इस कार्यक्रम में। आशा करूंगा आप बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे, और आपकी खुशी को बढ़ाने के लिए आज हमारे साथ विशेष मेहमान इस कार्यक्रम में है जो बांग्लादेश से पधारे हुए हैं, जन्नत उनका नाम है। तो आइए आप सभी को हम उनकी आवाज़ से रूबरू कराएंगे। तो आप सभी की तरफ से जन्नत जी का बहुत बहुत स्वागत है।
1: अस्सलाम वालेकुम, ओम शांति।
0: ओम शांति, कैसे हैं जन्नत जी आप?
1: मैं बहुत बहुत अच्छा हूँ।
0: और यहाँ आके आपको कैसा लग रहा है? फर्स्ट टाइम आप ब्रह्मा कुमारीज विजिट कर रहे हैं माउंट आबू?
1: शब्दों में बता नहीं सकती हूँ, बट हाँ, जन्नत ऐसा फील करे जो मैं घर की याद भूल गई, सब कुछ दिमाग में कुछ है ही नहीं। और सब जब दीदी लोग को देखता है सब सफ़ेद साड़ी में, सो अलग अनुभूति होता है, शांति लगता है मन को, ये एक अलग जगत है
0: जी जी,
1: तो बहुत शांति फील होता है। बट मैं बहुत खुश हूँ एंड बहुत लकी हूँ जो बाबा मुझे यहाँ पे लेके आए।
0: बिल्कुल बिल्कुल। जन्नत जी, मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा आप ब्रह्मा कुमारीज का जो नॉलेज है आपने शायद सुना है, तो आपको क्या लगता है वो चीज़ें सुनकर आपको कौन सी चीज़ें वहाँ पर अच्छी लग रही हैं वो बताइए।
1: जब 2020 में मैंने फर्स्ट कोर्स किया एंड जो दीदी थे नीतू दीदी जी, उन्होंने पहले जो बात किया 7 डेज के कोर्स में जो आत्मा का, तो वो मुझे पहले फील हुआ जो हाँ ऐसा जो क्या है, मुझे नॉलेज नहीं था क्योंकि मैं मोमेंटिंग हुआ और मेरा अलग से वो जानने का नॉलेज था। तो मैंने दीदी को जब खुल के बात किया, उन्होंने मुझे सारे चीज़ बताया, तो मुझे लगा ठीक है ये भी देख लेते हैं। तो मैंने जब वो तो बताते हम आत्मा है और ऐसे आत्मा खुद को समझना है, तो मैंने जब स्टार्ट किया 3 मंथ्स में मेरा अनुभव चेंज हुआ और मेरा माइंड बहुत शांत हुआ, बिकॉज वो टाइम में बहुत डिफरेंट मोमेंट थे, मेरी लाइफ बहुत ऊपर नीचे बहुत था, सो मुझे बहुत शांति अनुभव हुआ। और वो दिन और आज का दिन मैं बाबा के घर में हूँ और पूरी लाइफ रहूँगी इंशाल्लाह।
0: चलिए जन्नत जी, बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया कि आपको जो है किस तरह से इस स्पिरिचुअल जो नॉलेज है, आध्यात्मिक ज्ञान है, वो आपको समझ में आ गया। और आध्यात्मिक ज्ञान सर्वधर्मों के लिए है, इसीलिए आपको समझ में आ जाता है। और निश्चित तौर पे हर धर्म में हमें जो है जो ज्ञान हमको दिया जाता है, जो समझ दिया जाता है, वो आध्यात्मिकता से पूरा हो जाता है और इसके साथ में हम विश्व के साथ जुड़ जाते हैं। तो ये एक अपनी ही धर्म के जीवन को धारण रूप में लाने के लिए अध्यात्म आपको हेल्प करता है। तो आप किसी भी धर्म में होगा, अध्यात्म आपको जो है अपने ही धर्म में आगे बढ़ा देता है और आपको धर्म से ऊपर उठाकर सार्वभौमिक विश्व कल्याण के बारे में सबके हित के लिए सोचने पर मजबूर कर देता है। सबका कल्याण कैसे हो ये सोचने के लिए आपको अध्यात्म सिखाता है। और जब आप सर्व का कल्याण सोचेंगे तो निश्चित तौर पर आप भगवान के, ईश्वर के नज़दीक हो जाते हैं, क्योंकि वो उनका काम आप भी करने लग जाते हो। तो चलिए, जाते जाते मैं कहूँगा कि एक सुंदर जो अनुभव सुनाइए और एक मैसेज भी दीजिए सबके लिए।
1: मेरा बाबा से फर्स्ट अनुभव ये था जो मैंने संकल्प किया था बाबा से, जो बाबा मैं जो कर रही हूँ मुझे नॉलेज नहीं है, बट सच में बहुत लोगों का अनुभव सुनी एंड मुझे लगा जब मुझे भी बाबा आप दिखाओ और बताओ जैसे भी हो जो मैं सही रास्ते पे जा रही हूँ, आप मुझे सच में प्यार करते हो तो आप मुझे अनुभव दिखाओगी। तो वैसा मैं एवरी डे बोले जा रही थी, तो आई थिंक 7-8 दिन के बाद मैं सो रही थी, बाबा बैठ के जब सोने जाए और मैंने बोला बाबा गुड नाइट, तो मैं जस्ट सोई 5 मिनट होगा, मैं नींद में नहीं थी, आँख बंद करके पढ़ रही थी, तो मुझे ऐसा लगा मेरा सिर पे कोई ऐसे बहुत प्यार से, और मेरा बॉडी इतना शांत शीतल हो गया और मुझे ऐसा लगा आँख खुलो मैं देखूँ। जब भी मैंने आँख खुलने का कोशिश कर रही हूँ, बट मुझे इतना अनुभव इतना अच्छा लग रहा है। तो उसके बाद मैंने जब आँख खुली देखा कुछ नहीं, बट मेरा बॉडी बहुत शांत और ठंडा, एकदम शांत, मैं कुछ नहीं कर रही थी। तो वो मेरा फर्स्ट अनुभव था और मैं खुशी, इतनी खुशी मुझे नहीं पता मैं कैसे बताऊँ। मैं अकेली रहती हूँ सो मैं हंस रही थी पूरा घर में, मैं सब ऐसे ऐसे ढूंढ रही थी, कहाँ बाबा जो और एक बार बस मुझे छू लो। तो हम भी वैसे हो ना, एक बार मिल जाए और एक बार सो उसके बाद मेरे को सुकून मिला, बहुत सुकून मिला। तो या वैसे बहुत सारे हैं, जैसे बोलते हैं बिंदु, सो वैसे भी बाबा को मैंने काफ़ी बार अनुभव किया है, जो ज्योति बिंदु है वो बहुत बार देखा है, और बहुत बार ऐसा फील हुआ है कि मेरे साथ है। और मैंने लास्ट इधर आने से पहले एक ज़मीन लेना था मुझे, और बार बार ज़मीन लेने जा रही हूँ बट नहीं हो रहा था। तो मैंने वो बाबा को बोला रात को, बाबा कल नहीं होगा तो मैं समझूंगी अब हाँ ये लेना मेरे लिए सही नहीं है। तो मैं ठीक वैसे ही हुआ नेक्स्ट डे, क्योंकि उसका दो दिन बाद मुझे इधर आना है 28 को, मेरे पास बीच में एक दिन पड़ा है। तो बाबा ने ऐसा कुछ, मेरे फ्रेंड भी मेरे साथ है, उसका मम्मी का कुछ प्रॉब्लम आ गया, क्योंकि वो भी मेरे साथ एक साथ ज़मीन लेंगे, तो बाबा कुछ प्रॉब्लम डाल दिया और फिर नहीं गई। तो मैंने बोला जो इधर अच्छा ही है, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, और बाबा बोल देते हैं हमेशा हर चीज़ में। थोड़ा हमको बहुत शांत दिमाग से हमको सोचना और देखना है, क्योंकि हम लोग इतना बिजी रहते हैं, जो माइंड कितना बिजी रखता है, जो समझना और फर्क नहीं पड़ता है। तो हम खुद सबको ये बोलूँगी थोड़ा शांति से रहना, सोच समझ के बाबा के साथ जोड़ना, तो बाबा हमेशा साथ देते हैं, जैसे मुझे दिया, और मैं जानती हूँ सबको देगा इंशाल्लाह।
0: जी जी जी, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस आपने शेयर किया जन्नत जी, धन्यवाद, शुक्रिया आपका। चलिए, मैं चाहूँगा कि जिस तरह से आप ये अनुभव अभी कर रहे हैं और ऐसे ही लंबे टाइम तक आप जो है इन चीज़ों के साथ जुड़े रहें, और बाबा का आशीर्वाद, बाबा का जो छत्र छाया आप पर बनी रहें, ऐसी मंगल कामनाएँ करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच।
1: ओम शांति।
0: ओम शांति। चलिए मित्रों, आज के इस एपिसोड में हमने जन्नत जी को सुना, जो बांग्लादेश से दूसरे धर्म से आकर भी अध्यात्म को, भारत का जो सर्वोपरि अध्यात्म है उसको जान पा रही हैं, समझ पा रही हैं और अनुभव कर पा रही हैं। अपने आप में एक यूनिकनेस है। तो आशा करूँगा आप सभी को भी बड़ा अच्छा लग रहा होगा, आश्चर्य भी लग रहा होगा। तो यही एक सत्य अनुभव है आत्मा और परमात्मा, जिसको हम लोग करना चाहिए। इसके लिए कोई धर्म बीच में नहीं आता, बस आप और भगवान के साथ आपका रिश्ता। तो ये बहुत ही अच्छा अनुभव है जो आप सभी को सुनने को मिला। तो आप भी अपना भाग्य बनाने के लिए आप भी कदम बढ़ाएं और जन्नत जैसे आप भी अनुभव करें। इन्हीं शुभ आशाओं के साथ सलाम नमस्ते, खमा गणिसा, जय हिंद, जय भारत, ओम शांति।

0: लोग ये कहते बिन बेटे के कैसे वंश चलेगा, पर मैं कहता बिन बेटी के दूल्हा कैसे बनेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंडित मनीष शर्मा, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर, आप सभी का फिर एक बार स्वागत है। और जन्नत का सुंदर अनुभव आपने सुना। आइए इसके साथ ही, आज जैसे कि विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस है, हम सभी लोग प्रकृति की गोद में रहते हैं और उसी से जीवन पाते हैं, लेकिन आज के समय में हम कुछ ज़्यादा ही चीज़ों के चक्कर में पड़ गए, जिसके कारण प्राकृतिक संरक्षण की बात की जा रही है। तो साथियों, 28 जुलाई यानी आज का दिन विशेष रूप से विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है और वर्तमान परिपेक्ष में कई प्रजाति के जीव जंतु एवं वनस्पति विलुप्त हो रहे हैं। विलुप्त होते जीव जंतु और वनस्पति की रक्षा का विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस पर संकल्प लेना ही इसका उद्देश्य है, जिससे हम अपने पृथ्वी को बचाए रखें और पृथ्वी पर जो जीव जंतु हैं उन्हें पनपने दें, यही इसका मेन उद्देश्य है। तो अगर आप भी कहीं अपने आसपास में पेड़ पौधे हैं तो उनकी रक्षा ज़रूर करें, वहाँ के रहने वाले जीवों की भी रक्षा ज़रूर करें। आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर, जहाँ नई किरण इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। चलिए, वक्त हो गया है समाचारों का, अब मैं सीधे आपको ले चलता हूँ समाचारों की तरफ। सुनते रहो मुस्कुराते रहो
2: आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ, मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के बढ़ते निजी अंतरिक्ष तंत्र की सराहना की। विक्रम 1 की सफलता के बाद स्काई रूट के संस्थापकों से की मुलाकात। बिहार और असम सरकारें नीट प्रदर्शनकारियों के खिलाफ मामले वापस लेंगी। विभिन्न आरोपों में गिरफ्तार प्रदर्शनकारी भी रिहा किए जाएंगे। एनडीए संसदीय दल आज नई दिल्ली में अपनी साप्ताहिक मंगल मिलन बैठक करेगा। पर्यटन मंत्रालय ने अतुल्य भारत ब्रांड के अंतर्गत भारत को पसंदीदा वैश्विक पर्यटन स्थल के रूप में बढ़ावा देने के लिए एयर इंडिया के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। भारत और चीन ने सीमा पर शांति और स्थिरता बनाए रखने के महत्व को दोहराया। और भारत की पैरा खिलाड़ी शर्मिला धनखड़ ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में महिलाओं की शॉटपुट स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्काई रूट एरोस्पेस के पवन चंदना और नागा भरत डाका से बातचीत की। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि विक्रम 1 की सफलता के साथ साथ कई अन्य रोचक विषयों पर भी चर्चा हुई। विक्रम 1 भारत का पहला निजी क्षेत्र द्वारा विकसित ऑर्बिटल रॉकेट है। प्रधानमंत्री ने उनकी यात्रा और भविष्य की योजनाओं के बारे में सुनकर प्रसन्नता व्यक्त की। श्री मोदी ने कहा कि उनकी ऊर्जा, महत्वाकांक्षा और सकारात्मकता देश के निजी अंतरिक्ष तंत्र की जीवंत भावना को दर्शाती है। श्री मोदी ने स्काई रूट एरोस्पेस की पूरी टीम को शुभकामनाएं भी दी। प्रधानमंत्री मोदी ने रविवार को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में भी विक्रम 1 की सफलता की सराहना की थी।
3: विक्रम 1 इसके सफल लॉन्च से हर देशवासी गौरव से भरा हुआ है। ये प्राइवेट सेक्टर द्वारा विकसित भारत का पहला रॉकेट है। हमारे युवा इनोवेटर्स ने वो कर दिखाया जिसकी कल्पना तक मुश्किल थी। उन्होंने गजब की स्किल, पैशन और पेशेंस दिखाया। लंबे समय तक हमारा स्पेस सेक्टर निजी क्षेत्र के लिए बंद रहा था। इस सेक्टर में रुचि रखने वाले काफी युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर नहीं मिल पा रहा था। युवा हित को देखते हुए हमने स्पेस सेक्टर को प्राइवेट सेक्टर के लिए खोला। आज इसका परिणाम दुनिया देख रही है।
2: बिहार और असम की राज्य सरकारों ने नीट यूजी परीक्षा में कथित अनियमितताओं के विरोध में प्रदर्शन करने वाले लोगों के खिलाफ दर्ज मामले और अन्य कानूनी कार्रवाई वापस लेने का फैसला किया है। ब्योरा हमारी संवाददाता से।
4: गृह विभाग की ओर से जारी सार्वजनिक सूचना के अनुसार 26 जुलाई की शाम 6 बजे तक राज्य के किसी भी हिस्से में विरोध प्रदर्शन में शामिल व्यक्तियों के विरुद्ध कोई दंडात्मक, प्रतिशोधात्मक या प्रतिकूल कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। इस अवधि तक दर्ज सभी प्राथमिकी, परिवाद और कारण बताओ नोटिस वापस लेने की विधिक प्रक्रिया तत्काल प्रारंभ की जाएगी। इसके साथ ही इन मामलों में गिरफ्तार या निरोधित सभी व्यक्तियों को जल्द रिहा किया जाएगा। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि इन मामलों में नामित व्यक्तियों के खिलाफ भविष्य में भी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। सविता पारिक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
2: उधर असम के गृह विभाग ने बताया है कि विरोध प्रदर्शनों के संबंध में 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। हालांकि राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि प्रदर्शनों में शामिल व्यक्तियों के खिलाफ राज्य के किसी भी पुलिस प्राधिकरण द्वारा कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि सरकार का विरोध प्रदर्शनों में शामिल व्यक्तियों के खिलाफ कोई और प्रतिकूल कार्रवाई करने का प्रस्ताव नहीं है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए संसदीय दल की साप्ताहिक रणनीति बैठक आज सुबह संसद भवन में आयोजित की जाएगी। मंगल मिलन के नाम से प्रचलित ये बैठकें पारंपरिक रूप से संसद सत्र के दौरान मंगलवार को आयोजित होती हैं। इन बैठकों का उद्देश्य गठबंधन की पूर्ण एकता का प्रदर्शन करना है। पिछली बैठक इसी महीने की 21 तारीख को हुई थी, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर में भविष्य की परीक्षाओं में पेपर लीक को रोकने के लिए सभी संबंधित पक्षों से समन्वित प्रयास करने का आह्वान किया था। तृणमूल कांग्रेस से अलग हुए गुट नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया के सांसदों को भी गठबंधन की बैठक में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया है। पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह ने कहा है कि पंचायती राज संस्थाएं भारत की लोकतांत्रिक और विकास यात्रा की आधारशिला हैं। श्री सिंह ने नई दिल्ली में आत्मनिर्भर पंचायत कार्यक्रम और समर्थ पंचायत पोर्टल का शुभारंभ करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि ये पहल विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण के अनुरूप आर्थिक रूप से सशक्त, तकनीकी रूप से सक्षम और आत्मनिर्भर पंचायतों के निर्माण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। पर्यटन मंत्रालय ने एयर इंडिया के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका उद्देश्य प्रतिष्ठित अतुल्य भारत ब्रांड के अंतर्गत भारत को पसंदीदा वैश्विक पर्यटन स्थल के रूप में बढ़ावा देना है। एक रिपोर्ट।
5: ये समझौता कल नई दिल्ली में पर्यटन और संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की उपस्थिति में हुआ। इस सहयोग का लक्ष्य एयर इंडिया के व्यापक घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क के साथ साथ मंत्रालय की पर्यटन स्थल प्रचार पहलों का लाभ उठाकर भारत की वैश्विक पर्यटन क्षमता को बढ़ाना है। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये साझेदारी एयर इंडिया के व्यापक वैश्विक नेटवर्क और भारत के विविध पर्यटन विकल्पों का लाभ उठाकर प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में देश की उपस्थिति को मजबूत करेगी। उन्होंने कहा कि इस सहयोग के अंतर्गत संयुक्त गंतव्य अभियान और स्टॉप ओवर पर्यटन को बढ़ावा देने सहित विजिट इंडिया पास जैसी पहलों पर विचार किया जाएगा। समझौते के अंतर्गत मंत्रालय और एयर इंडिया डिजिटल और ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पर संयुक्त प्रचार अभियान, सह ब्रांडेड डेस्टिनेशन मार्केटिंग और पर्यटन संबंधी कहानियों का संचालन करेंगे। भानु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी।
2: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने खिलौना क्षेत्र को समर्थन देने और वर्ष 2032 तक वैश्विक खिलौना बाजार में भारत की हिस्सेदारी 5% तक करने के लिए कार्यबल के गठन की घोषणा की है। वे नई दिल्ली में उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग द्वारा आयोजित खिलौना क्षेत्र से संबंधित हितधारकों की बैठक को संबोधित कर रहे थे। श्री गोयल ने विनिर्माण, नवाचार और निर्यात को मजबूत करने के उद्देश्य से तैयार खिलौना क्षेत्र प्लेबुक का भी शुभारंभ किया। सरकार ने सोशल मीडिया पर चल रही उस खबर का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया था कि केंद्र सरकार अगले महीने की 25 तारीख की रात से भारत में इंस्टाग्राम पर प्रतिबंध लगाएगी। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने इस दावे को निराधार बताते हुए कहा है कि सरकार द्वारा ऐसी कोई घोषणा नहीं की गई है। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने चीन यात्रा के दौरान पेचिंग में चीन की उप विदेश मंत्री हुआ चुनयिंग से मुलाकात की। इस दौरान द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की गई। विदेश सचिव ने भारत और चीन के बीच साझेदारी को आगे बढ़ाने और व्यापार तथा आर्थिक संबंधों में पारस्परिक रूप से लाभकारी विकास के अवसरों पर भी चर्चा की। चीन में भारतीय दूतावास के अनुसार दोनों अधिकारियों ने भारत चीन सीमा क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखने के महत्व को भी स्वीकार किया। पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में स्थानीय चुनावों के दौरान मतदान के दिन हुई हिंसक झड़पों में एक व्यक्ति की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। पीपल्स पार्टी ऑफ पाकिस्तान ने बताया है कि उसके कार्यकर्ता मुख्तार यूनिस की मौत हो गई और दो अन्य घायल हो गए। ये चुनाव जो मूल रूप से एक दिन के लिए निर्धारित थे, अब आज से 10 अगस्त तक 3 चरणों में आयोजित किए जा रहे हैं। पीपीपी और पीएमएलएन ने कई निर्वाचन क्षेत्रों में एक दूसरे पर चुनावी धांधली का आरोप लगाया है। पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी ने चुनावों का बहिष्कार किया है। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, ओडिशा, दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और दक्षिण आंतरिक तथा तटीय कर्नाटक में आज मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। उत्तर पूर्व भारत के कुछ हिस्सों, तटीय आंध्र प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, गुजरात, झारखंड, केरलम, माहे, कोंकण और गोवा, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी आज दिन में मध्यम से तेज वर्षा हो सकती है। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने आज राज्य के अलग अलग हिस्सों में तेज से बहुत तेज वर्षा की चेतावनी जारी की है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
6: राजधानी देहरादून सहित प्रदेश के अनेक हिस्सों में कल रात से बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने उत्तरकाशी, देहरादून, टेहरी, रुद्रप्रयाग, चमोली, उधमसिंह नगर, बागेश्वर, पिथौरागढ़ और नैनीताल जिलों के कुछ स्थानों पर भारी बारिश और गर्जन के साथ बिजली चमकने की संभावना जताई है। विभाग की चेतावनी के मद्देनजर राजधानी देहरादून, पौड़ी, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़, चमोली और बागेश्वर में आज सभी स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में अवकाश घोषित किया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों को जोड़ने वाली लगभग 50 सड़कें बंद हैं, जिन्हें खोलने का कार्य जारी है। हालांकि चारधाम यात्रा फिलहाल खुले हैं। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों तक प्रदेश में मॉनसून सक्रिय रहेगा। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
2: भारत की पैरा खिलाड़ी शर्मिला धनखड़ ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में महिलाओं के शॉटपुट F57 स्पर्धा में 9.81 मीटर के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के साथ स्वर्ण पदक जीता है। शर्मिला राष्ट्रमंडल खेलों के पैरा एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी हैं। इस अवसर पर शर्मिला ने कहा कि वे देश के लिए पदक लाकर बहुत प्रसन्न हैं।
7: हम बहुत खुश है, हमारे देश के लिए मेडल लाके हम आगे भी ऐसे ही मेडल लाते रहेंगे और नेक्स्ट कॉमनवेल्थ की अच्छी तैयारी करेंगे। इस मेडल से मेरे आगे का रास्ता और आसान हो गया और अच्छी मेहनत करके और अच्छा रिकॉर्ड बनाएंगे।
2: सर्वेश कुशारे ने पुरुषों की ऊंची कूद स्पर्धा में रजत पदक जीता है। भारत के पदकों की संख्या अब 10 हो गई है। राष्ट्रपति और खेल मंत्री ने पदक जीतने पर खिलाड़ियों को बधाई दी है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
8: धन्यवाद प्रियंका। पेपर लीक पर सख्ती से जुड़ा विधेयक लोकसभा में पेश होने की खबर आज नवभारत टाइम्स और जनसत्ता सहित सभी अखबारों की प्रमुख खबर है। राजस्थान पत्रिका ने लिखा है, पार्टियां राजनीतिक नफा नुकसान के गणित में जुटी, हंगामे के बाद विपक्ष चर्चा को राजी। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, 10 साल जेल, 10 करोड़ जुर्माने का प्रस्ताव, आज बहस संभव। दैनिक जागरण की खबर है, जंतर मंतर पर प्रदर्शन को हिंसक बना रहे अपराधी, 989 की हुई पहचान। पत्र ने प्रदर्शन का प्रोटोकॉल शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, ये अच्छा है कि सर्वोच्च न्यायालय ने जहां पुलिस की सख्ती पर सवाल उठाए हैं, वहीं पुलिस कर्मियों पर हमले का संज्ञान भी लिया है। पत्र ने कहा है कि उचित ये होगा कि न्यायालय ये सुनिश्चित करे कि शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के नाम पर अराजक तत्व बचने न पाए। अमर उजाला ने वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी का बयान प्रकाशित किया है, देश में जल्द ही 10 और 20 रुपए के पॉलीमर यानी प्लास्टिक नोटों का परीक्षण शुरू हो सकता है, आरबीआई के प्रस्ताव को सरकार ने दी मंजूरी। हिंदुस्तान ने लिखा है, 100 करोड़ से अधिक आय वाले करदाताओं की संख्या 5 वर्ष में 4 गुना बढ़ी। सरकार ने कहा, समावेशी आर्थिक विकास को बढ़ावा देने से आय में बढ़ोतरी के संकेत सामने आए हैं। सूर्यास्त के बाद कल दिखेगा बकमून का आकर्षण, शबाब पर होगा चांद। हिंदुस्तान ने बताया है, दूधिया रोशनी बिखेरता हुआ पूर्ण चंद्र बकमून की शक्ल में नजर आएगा, प्रत्यक्षित चंद्र घटनाओं में से एक नग्न आंखों से भी देख सकेंगे।
2: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के बढ़ते निजी अंतरिक्ष तंत्र की सराहना की। विक्रम वन की सफलता के बाद स्काई रूट के संस्थापकों से की मुलाकात। बिहार और असम सरकारें नीट प्रदर्शनकारियों के खिलाफ मामले वापस लेंगी। विभिन्न आरोपों में गिरफ्तार प्रदर्शनकारी भी रिहा किए जाएंगे। एनडीए संसदीय दल आज नई दिल्ली में अपने साप्ताहिक मंगल मिलन बैठक करेगा। पर्यटन मंत्रालय ने अतुल्य भारत ब्रांड के अंतर्गत भारत को पसंदीदा वैश्विक पर्यटन स्थल के रूप में बढ़ावा देने के लिए एयर इंडिया के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। और भारत और चीन ने सीमा पर शांति और स्थिरता बनाए रखने के महत्व को दोहराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। जीवन में हर अनुभव एक दर्पण है जो आपकी आत्मा के किसी न किसी पहलू को दिखाता है। मैं हूं आपका हमसफर आरजे रमेश। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: जब हम अपने आप को परमिशन देते हैं ना गुस्सा करने की, तो हम दिन में दो चार बार कर देते हैं। अब जितनी बार हम करेंगे वो संस्कार क्या होता जाएगा, वो संस्कार पक्का होता जाएगा। जैसे सपोज किसी को स्मोकिंग की आदत है तो वो कहते हैं दिन में सिर्फ दो, तो जब तक वो दिन में दो लेंगे वो कभी नहीं छूटेगी, क्योंकि जितनी बार की तो वो आदत क्या होती जाएगी, पक्का। लेकिन अगर अब उन्होंने कहा 3 दिन बिल्कुल नहीं, तो वो 3 दिन में उन्होंने उस आदत को कमजोर करना शुरू किया। तो कोई भी आदत को खत्म करने का एक ही तरीका है सिर्फ, कि उसको कर्म में आने नहीं देना। जितनी बार वो आएगी वो सिर्फ क्या होती जाएगी, स्ट्रेंथन होती जाएगी।
0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।

0: नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मोहन शर्मा और बीके पुष्पा शर्मा जी की आवाज़ में ये गीत आप सुन रहे थे। आइए बात करते हैं हम लोग विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस के बारे में। पृथ्वी विशेष आज हम सभी को कह रही है कि हमारी रक्षा करो। अब बात करें तो प्राणियों की जीवन तथा इस धरती के समस्त प्राकृतिक परिवेश में घनिष्ठ संबंध है। प्रदूषण के कारण सारी पृथ्वी दूषित हो रही है और निकट भविष्य में मानव संस्थान का अंत दिखाई दे रहा है। तो ऐसे स्थिति में हमें जो है इस पर गहराई से विचार मंथन करने की आवश्यकता है, और अगर हम नहीं करेंगे तो शायद हम जिएंगे भी नहीं। हेलो जी, नमस्कार। ओम शांति सुरेश जी, स्वागत है आपका। हाँ जी,
1: मैं सबसे सर थोड़ा सा मुसीबत में शायद बॉल नहीं लग रहा था, आप लगा है
0: जी जी जी जी।
1: तो चलो कोई बात नहीं, थोड़ा सा समय से अपना आप मौसम थोड़ा सा है तो प्रॉब्लम रहता है। तो चलो अब लग गया है तो सभी हमारे आपको मित्र का नमस्ते, आपके दिन की शुभकामनाएं। मंगल का दिन है तो सबको मंगल कामना है। और सबके अंदर गाना है कि गुजराती है जो हनुमान जी का है कि कलयुग माँ आज परचा मेरे हनुमान जी कष्ट भजन देव सत्य है। तो गाना है ठीक है, हमारे सभी मित्रों को, आप तो गिरिराज जी, हमारे गिराराम जी को हमारा प्रति आज के दिन की शुभकामनाएं। तो बारिश रुक गई है दो दिन से, तो चलो अच्छा है, थोड़ा सा धूप निकला खुश मिजाज है क्योंकि तीन चार दिन से लगातार अंधेरा था, बारिश बरस रही थी, थोड़ा सा मौसम सुहाना हो गया है। तो
0: जी जी जी,
1: ओम शांति,
0: ओम शांति जी, ओम शांति। शुक्रिया आपका। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर, आप सभी का फिर एक बार स्वागत है। और बातें कर रहे थे प्रकृति की माँ जो है हम सभी को पुकार रही हैं कि मेरी रक्षा करो। अगर मेरी रक्षा नहीं करेंगे तो हो सकता है कि आप जीवन जीने लायक ये धरती नहीं रहेगी। आइए आगे बढ़ते हैं, और मैं चाहूँगा कि आप भी अपनी भावनाएं विचार हमारे साथ साझा कर सकते हैं कि ऐसा क्यों

0: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो 107.8 एफएम पर आप सभी का फिर एक बार स्वागत है। बड़ा प्यारा सा गीत आप सुन रहे थे, ना मारो बेटी को कोक में, वो भाग्य लेकर आती है। आइए आगे बढ़ते हैं और अपने भाग्य को सुंदर और टिकाऊ बनाना है तो बेटियों को आने दे इस जग में। बातें कर रहे थे हम लोग विश्व प्राकृतिक दिवस पर और प्राकृतिक संरक्षण के बारे में। निश्चित तौर पर जल, जंगल और जमीन, इन तीन तत्वों के बिना प्राकृति अधूरी है। विश्व में सबसे समृद्ध देश वही है जिनके पास ये तीनों तत्व प्रचुर मात्रा में हो। भारत देश जंगल वन्य जीवों के लिए प्रसिद्ध है। संपूर्ण विश्व में बड़े ही विचित्र तथा आकर्षक वन्य जीव पाए जाते हैं। हमारे देश में भी वन्य जीवों की विभिन्न और विचित्र प्रजातियाँ पाई जाती हैं। इन सभी वन्य जीवों के विषय में ज्ञान प्राप्त करना केवल कौतूहल के दृष्टि से आवश्यकता नहीं, वरना ये काफी मनोरंजक भी है। हेलो जी, नमस्कार।
1: नमस्कार, नमस्कार, दुनिया भर के नमस्कार करते हैं हम आप। हम चाहते हैं कि दुनिया का पूरा नमस्कार हमारे रेडियो मधुबन में है और रहेगा, और आज का पूरा नमन करते हैं हम प्रगति को दिवस में। हम प्रगति को बहुत बहुत दिल से थैंक करते हैं और हम ये कहते हैं कि हम प्रगति को हमें सब कुछ देती है, वायु, हवा, पानी, और हम उनसे क्या देते हैं ये बड़ा सोचते। जैसे आजकल उनको बहुत आशा करना चाहिए इंसान को, हर एक को आज क्या हालत हो रही है, तो हम प्रगति को फिर से बनाने की कोशिश कर सकते हैं। और ये हम चाहते हैं कि हम बहुत खुश हैं हम प्रगति से, और लीली लीली है धरती, हरा है आसमान। तो नमस्कार करते हैं रेडियो मधुबन को, नवी किरण को, और हमारे रमेश जी को, और हमारे सभी शो को, और हमारे पूरे विद्यालय को, हमारी बहनों को, भाइयों को, और हमारी दादियों को, और आस पास जहाँ दूर दूर विद्यालय हैं सभी को नमन करते हैं। और हमारे दोस्त सुन रहे हैं, सभी को नमस्कार करते हैं रेडियो से या मधुबन मोबाइल से, तो हम सबको नमस्कार करते हैं और पूरे विश्व को हम नमस्कार करते हैं। आज हमारे प्रगति दिवस है और हम बहुत खुश हैं, और बस यही कहेंगे आज मंगलवार है। कौन चित्रकार है, कौन चित्रकार, कौन चित्रकार है, कौन चित्रकार, तो ये गाना आप लगा दिए अच्छा रहेगा और अच्छा रहता ही है। मधुबन में सब कुछ अच्छा ही है। आपको नमस्कार करते हैं और फिर चलते हैं। आज मौसम चारों तरफ से बस एकदम शांत है और बहुत अच्छा लग रहा है, और शांत भी है सभी तरह का हमें मौसम की तरफ, मतलब वो सब कुछ नजर आ रहा है।
0: जी जी जी, चलिए मदन भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच, बहुत ही अच्छी बातें बताने के लिए और प्राकृतिक दिवस की खूबसूरती को याद करने के लिए, धन्यवाद। आइए आगे बढ़ते हैं, और हम लोग बातें कर रहे थे विश्व संरक्षण दिवस के बारे में, पर्यावरण के लिए हमें किस किस तरह का कार्य करना है। जंगलों को कम से कम काटिए, जमीन में उपलब्ध पानी का उपयोग तभी करें जब आपको ज़रूरत हो, कार्बन जैसी नशीली गैसों का उत्पादन बंद करें, उपयोग किए गए पानी का चक्रीकरण कर सकते हैं, जमीन के पानी को फिर से स्तर पर लाने के लिए वर्षों के पानी को संजय रखने की व्यवस्था करें, ध्वनि प्रदूषण को सीमित करें, प्लास्टिक के लिफाफे छोड़ें और रद्दी कागज के लिफाफे या कपड़े के थैले इस्तेमाल करें, जिस कमरे में कोई ना हो उस कमरे का पंखा और लाइट बंद कर दे, पानी को फालतू ना बहने दे। आज के इंटरनेट के युग में हम अपने सारे बिलों को भुगतान ऑनलाइन करें, इससे न सिर्फ हमारा समय बचेगा बल्कि कागज के साथ साथ पेट्रोल डीजल भी बचेगा। ज़्यादा पैदल चले और अधिक साइकिल चलाएं। प्रकृति से धनात्मक संबंध रखने वाली तकनीकों का प्रयोग करें, जैसे जैविक खाद का प्रयोग, डिब्बाबंद पदार्थों का कम इस्तेमाल, जलवायु को बेहतर बनाने की तकनीक को बढ़ावा दें, पहाड़ खत्म करने की साजिश का विरोध करें। तो ये थी कुछ खास बातें आज के दिन विश्व प्राकृति दिवस के बारे में। आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर। जी हाँ, नव किरण इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं आप, सुनते रहो, मुस्कराते रहो।

0: ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार है। चलिए, बहुत ही प्यारा सा गीत आपने सुना, आशा करूँगा आप सभी को अच्छा लग रहा है। किशोर कुमार का एक और गीत मैं आपको सुनाऊंगा, लेकिन अभी आप सुन रहे थे ये खूबसूरत गीत मुकेश की आवाज़ में, ये कौन चित्रकार है। और ये 1967 का एल्बम था, ये कौन चित्रकार है। बूंद जो बन जाए मोती, ये फिल्म का था जिसपे जितेंद्र और मुमताज़ और साथियों पर पिक्चराइज किया गया। सतीश भाटिया जिसके डायरेक्टर रहे हैं, म्यूज़िक डायरेक्टर, और भरत व्यास जी ने इस गीत को लिखा था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आप सभी को ले चलते हैं एक और सुंदर गीत की तरफ। आप सुनाए हैं रेडियो माधवन 107.8 FM पर। जी हाँ, नई किरण इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं आप। और चलिए, बातें हो रही थी प्राकृतिक संरक्षण दिवस के बारे में, लेकिन अब मैं बात करने वाला हूँ विश्व हेपेटाइटिस दिवस भी आज है। जी हाँ, ये विशेष वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे हेपेटाइटिस के बारे में जागरूकता प्रसारित करने और लोगों को शीघ्र निदान, रोकथाम और हेपेटाइटिस के उपचार को प्रोत्साहित करने के लिए हर साल 28 जुलाई को मनाया जाता है। हेपेटाइटिस संक्रमित बीमारियों का समूह है जिसे हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी और ई के रूप में जाना जाता है। हेपेटाइटिस एक संक्रामक रोग है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये छूने मात्र से फैल जाता है। इसलिए परिवार के किसी सदस्य को ये रोग होने पर उसे बिल्कुल अलग रखने की ज़रूरत नहीं होती है। हालांकि परिवार के अन्य सदस्यों को संक्रमण मुक्त रखने के लिए कुछ सावधानियां बरतना आवश्यक है। हेपेटाइटिस यकृति की सूजन है जिसे यकृति के उत्ताओं में सूजन वाली कोशिकाओं की मौजूदगी से पहचाना जाता है। हेपेटाइटिस क्यू और क्रून दो प्रकार के होते हैं और इसमें अवस्था तब ऐसी आती है जब ये कम से कम 6 महीने तक रहता है। क्रॉनिक हेपेटाइटिस की अवस्था तब होती है जब ये लंबे समय तक बना रहता है। हेपेटाइटिस सीमित और लक्षण रहित होता है, इसलिए इसे जल्दी से पहचान पाना मुश्किल होता है, लेकिन ये प्राय पीलिया, आहार में अरुचि और अस्वस्थ बेचैनी पैदा करता है। और ऐसा अगर स्थिति हो तो आपको ज़रूर अपना हेपेटाइटिस चेक कर लेना चाहिए। और भारत में राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र द्वारा किए गए एक अध्ययन के अनुसार 2012 में भारत में हेपेटाइटिस वायरल के लगभग 1,19,000 मामले की सूचना प्राप्त हुई। हेपेटाइटिस से पीड़ित रोगियों की संख्या 2013 में बढ़ गई तथा संख्या बढ़कर 2,90,000 हुई। भारत में हेपेटाइटिस के महामारी वाले रूप का सबसे महत्वपूर्ण कारण हेपेटाइटिस ई वायरस HEV और हेपेटाइटिस ई वायरस HEV बच्चों के बीच होना सामान्य है। गर्भ अवस्था के दौरान हेपेटाइटिस का सबसे आम कारण HIV है। जब संक्रमित व्यक्ति अपनी पुरानी हेपेटाइटिस की अवस्था में अनभिज्ञ रहता है तब वह दूसरे व्यक्तियों को लंबे समय तक इस रोग के प्रसारण के माध्यम के संक्रमक कर सकता है, जिससे परिणाम जीर्ण याकृत रोग, याकृति की विफलता और कैंसर जैसी बीमारियाँ भी हो सकती है। तो ये एक सर्वे था, भारत में किया गया था 2013 में, लेकिन अब धीरे धीरे चीज़ें जो है उसके बाद जागरूकता बढ़ी और लोगों को फ्री में हेपेटाइटिस, जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनके यहाँ फ्री में हेपेटाइटिस बी उनके लगाते हैं ताकि ये बीमारी से मुक्त रहे। तो इस तरह की जागरूकता के कारण आज जो है ये बीमारी कम से कम लोगों के बीच में है, लेकिन फिर भी जागरूकता कंटिन्यू रहने से चीज़ें अच्छी हो जाती हैं। आइए, एक दोस्त और मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं। हेलो जी, नमस्कार।
1: नमस्कार सर, नमस्कार। एक चीज और याद आ गई है, बहुत अच्छी। तो आपको नमस्कार करते हुए
0: जी,
1: शांति भरी होगी धरती, शांति भरी होगी धरती, मुस्काएगा आसमां, आओ मिलकर ऐसा मनाएगी कि जहां, आओ मिलकर ये बनाए। गाना बड़ा अच्छा है, बहुत बनाएगा जरूर। नमस्कार करते हैं और अच्छा, तो हम चलते हैं, फिर मिलेंगे। ओम शांति।
0: ओम शांति, ओम शांति। चलिए आगे बढ़ते हैं और फिर से ही आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आइए, इस बीच मैं आपको ले चलता हूँ एक और गीत की तरफ और 9:49 हो रहे हैं, आप हो मेरे साथ।

नमस्कार, आप सुन रहे मधुबन 107.8 एफएम पर। आप सभी का फिर एक बार स्वागत है। ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मंगल कामनाएं करते हैं और आइए आगे बढ़ते हैं। और 28 जुलाई की बात है अगर की हमने, तो आज के दिन में उन लोगों के बारे में बात करते हैं 28 जुलाई को जिनका जन्मदिन है। सुविज्ञा शर्मा भारत की कलाकार, चित्रकार और उद्यमी, 1983 में इनका जन्म हुआ। अनिल जन विजय हिंदी के कवि, लेखक और रूसी तथा अंग्रेजी भाषाओं के साहित्यिक अनुवादक, 1957 में इनका जन्म आज के दिन हुआ। तारलोचन सिंह दुनिया भर में सिख समुदाय के हक और बेहतरी के लिए जाने जाते हैं, 1933 में इनका जन्म आज के दिन हुआ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता और उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक तथा मध्य प्रदेश के भूतपूर्व राज्यपाल रामेश्वर ठाकुर जी का जन्म आज के दिन 1927 को हुआ। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राजनीतिक जो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, कासु ब्रह्मानंद रेड्डी का जन्मदिन आज ही के दिन हुआ 1909 में। और अरबी के प्रसिद्ध सूफी कवि, साधक और विचारक इबेन अरबी, इनका भी जन्मदिन 1165 में हुआ। तो आज के दिन जन्मे इन सारे लोगों को रेडियो मधुबन करता है हैप्पी बर्थडे टू यू।

चलो मित्रों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। फिर मिलते हैं शाम 4 बजे सफर कार्यक्रम में। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। सलाम नमस्ते खमा गणिसा।

समय सुबह का तब बनता है एकदम खास जब आती है उषा आशियाना के साथ। नमस्कार जी, आप सभी को राम राम जी, जय श्री कृष्ण, खम्मा गणिसा। अगर तिल्ली की खराबी है तो क्या करेंगे, जरा सोचिए। उपाय तो जरूर बताएंगे लेकिन आप भी कुछ सोचिएगा। और जी हाँ सैजल, आज भी आपको एप्पल की कटिंग कैसे करेंगे, कैसे उसको सुंदर तरीके से सजा करके रखेंगे कि एकदम इच्छा हो जाएगी खाने की, तो बहुत ही क्रिएटिव तरीका सिखाएगी सैजल। और जी हाँ, मैं भी आपको कुछ सिखाने वाली हूँ, परंतु क्या वो आप आशियाना सुनेंगे तभी जान पाएंगे। और आज हम कैसे अपने जीवन में क्रिएटिव रहेंगे, कुछ न कुछ क्रिएटिव कार्य करते रहेंगे तो मन हमारा खुश भी रहेगा, स्वस्थ भी रहेगा, तो इस विषय पर ही हम बातचीत भी करेंगे। और सदैव मीठा वचन बोलना चाहिए, इससे सभी जगह आदर प्यार और स्नेह प्राप्त होता रहेगा। जरा विचार करिएगा कि ऐसा क्यों। प्रश्न तो आज का बड़ा ही सुंदर और सरल है, तो ये सब कुछ सुनेंगे आप आशियाना में। रेडियो मधुबन सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

चाहे गांव में रह रहे हो चाहे करसान, सभी के मुंह पे सिर्फ एक चर्चा अभी इन दिनों चल रही है, क्या है? पहले क्या होता था, आषाढ़ महीने से बरसात शुरू हो जाती थी, लेकिन अभी पता नहीं भगवान क्यों रूठ गए। एक ऐसी कल्पना है, मैं निवेदन करूं, शब्द बहुत सुंदर है, मुझे बहुत

भजनों के साथ में यदि आपके सच्चे मन की जो ये तार है ना, यदि ये जुड़ गए ना भगवान से, तो ये जो हवा चल रही है यदि दो घंटे भी बंद हो जाएगी, हवा चलती हुई तो सीधी बरसात है, लेकिन आप सभी लोगों के तार उनसे जुड़ने जरूरी है। हम बैठे हैं, हमारा शरीर यहाँ पर है, हमारा मन यहाँ पर नहीं है, तो फिर काम नहीं बनने वाला। शरीर, तन और मन दोनों एक साथ में जुड़ेंगे तो

0: याद रखें, एक बाइक पर कभी भी दो से ज्यादा लोग एक साथ ना जाएं। यह एक दंडनीय अपराध है। सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करें। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।
1: आप सभी का आशियाना में बहुत बहुत स्वागत है। आज का सुंदर सा विचार इस प्रकार है, सदैव मीठा वचन बोलना चाहिए। इससे सभी जगह आदर, स्नेह, प्यार सब कुछ प्राप्त होता है। सदैव मीठा वचन बोलना चाहिए, इससे सभी जगह आदर, सत्कार, प्यार, स्नेह सब कुछ प्राप्त होता है। कैसे? तो आइए आज के विचार का विस्तार एक दृष्टांत के साथ करना चाहूंगी कि एक बार एक राजा थे, वन विहार को निकले थे। रास्ते में प्यास लगी, नजर दौड़ाई, एक अंधे की झोपड़ी दिखी। उसमें जल भरा घड़ा दूर से ही दिखाई दे रहा था। राजा ने सिपाही को भेजा और एक लोटा जल मांग लाने को कहा। सिपाही वहां पहुंचा और बोला, ए अंधे, एक लोटा पानी दे दे। अंधा भी बड़ा अकड़ू था, उसने तुरंत कहा, चल चल, तेरे जैसे सिपाहियों से मैं नहीं डरता, पानी तो तुझे नहीं मिलेगा। सिपाही निराश होकर लौट पड़ा। इसके बाद सेनापति को पानी लाने के लिए भेजा गया। सेनापति ने पास में जाकर कहा, अंधे, पैसा मिलेगा, पानी दे दे। अंधा फिर अकड़ पड़ा, उसने कहा, पहले वाले का यह सरदार मालूम पड़ता है, फिर भी चुपड़ी बातें बना करके दबाव डालता है, जा जा, यहां से पानी नहीं मिलेगा। सेनापति को भी खाली हाथ लौटता देखकर राजा स्वयं चल पड़े। समीप पहुंचकर वृद्ध जन को सबसे पहले नमस्कार किया और कहा, प्यास से गला सूख रहा है, एक लोटा जल दे सके तो बड़ी मेहरबानी होगी। अंधे ने सत्कार पूर्वक उन्हें पास बिठाया और कहा, आप जैसे श्रेष्ठ जनों का राजा जैसा आदर है, जल तो क्या, मेरा शरीर भी स्वागत में हाजिर है, कोई और भी सेवा हो तो बताइए जनाब। राजा ने शीतल जल से अपनी प्यास बुझाई, फिर नम्र वाणी में पूछा, आपको तो दिखाई नहीं पड़ रहा है, फिर जल मांगने वालों को सिपाही, सरदार और राजा के रूप में कैसे पहचान पाए? अंधे व्यक्ति ने कहा, वाणी के व्यवहार से हर व्यक्ति के वास्तविक स्तर का पता चल जाता है। तभी कहा जाता है मेरे प्यारे श्रोता बंधुओं कि सदैव मीठा वचन बोलना चाहिए, इससे सभी जगह आदर, सत्कार, प्यार, स्नेह सब कुछ प्राप्त होता है। तो ये हुआ आज का सुंदर सा विचार, जिस पर जरूर गौर करेंगे और सुनेंगे पुनः एक प्यारा सा गीत। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन।
2: घरेलू नुस्खों का खजाना आशियाना,
3: रेडियो मधुबन, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
1: आइए अब आपको बहुत ही सुंदर नुस्खे दूंगी कि तिल्ली की खराबी हो जाए तो क्या करेंगे। देखिए, अजवाइन का चूर्ण 2 ग्राम ले लीजिए और सेंधा नमक लेना है 1/2 ग्राम, और फिर आप इनको आप मिला दीजिए। दोनों समय भोजन के बाद गर्म पानी के साथ लीजिएगा, इससे तिल्ली की खराबी ठीक हो जाएगी, प्लीहा की विकृति दूर होगी। अजवाइन का चूर्ण 2 ग्राम ले लीजिए, सेंधा नमक 1/2 ग्राम लेना है। इन दोनों को मिक्स करके आप फाकी लेकर के ऊपर से गर्म पानी पी लीजिएगा, दोनों ही समय, सुबह और शाम को, ठीक है। भोजन के बाद, जब हम दोपहर का भोजन करते हैं उसके बाद और शाम का भोजन करते हैं उसके बाद आप ले लीजिए गर्म पानी के साथ, तो प्लीहा की विकृति दूर होगी। और भी सुंदर आपको उपाय बता रही हूँ कि तिल्ली अथवा जिगर, जिसको यकृत भी कहते हैं, तिल्ली माने प्लीहा, दोनों अगर बढ़ जाती है तो क्या करेंगे। तो ऐसी सिचुएशन में आप पुराना गुड़ 1.5 ग्राम और बड़ी पीली हरड़ के छिलके का चूर्ण, दोनों ही बरोबर वजन मिला करके एक गोली इसकी बनाइए, और ऐसी गोली दिन में 2 बार सुबह सुबह शाम को हल्के गर्म पानी के साथ 1 महीने तक लेना है। इससे यकृत और प्लीहा यदि दोनों ही बड़े हुए होंगे ना तो भी ठीक हो जाएंगे, ठीक है। तिल्ली और जिगर जिसको हम यकृत और प्लीहा कहते हैं, अगर ये बढ़ जाता है तो भी बड़ी मुश्किल हो जाती है। देखिए, शरीर हमारा ऐसा है कि कोई भी ऐसी वैसी समस्या शरीर सहन ही नहीं कर पाता है। कुछ अंदर गड़बड़ होने लगती है, वो हमसे सहन नहीं होता है। तो आप डॉक्टर को ज़रूर दिखाइएगा, लेकिन साथ ही साथ आप घरेलू नुस्खे भी आजमा सकते हो कि अगर यकृत और प्लीहा दोनों ही बढ़ा हुआ हो या बढ़ने की शिकायत है, तो आप पुराना गुड़ लीजिएगा 1.5 ग्राम और बड़ी पीली वाली हरड़, इसके छिलके का चूर्ण बरोबर मात्रा में लेना है। गुड़ और ये चूर्ण, इन दोनों को मिला करके आप गोली बनाइए और फिर गोली बना करके 2 बार आपको लेना है, सुबह और शाम को। और ये गोली लेने के बाद हल्का गर्म पानी, 9 सेका पानी आप पीजिएगा। 1 महीने तक लेंगे तो इससे यकृत और प्लीहा यदि दोनों ही बड़े हुए होंगे तो ठीक हो जाएंगे। इसके 3 दिन के प्रयोग से ही अम्ल पित्त का भी नाश हो जाता है। और लास्ट उपाय आपको बता रही हूँ, पेट दर्द में अजवाइन का चूर्ण 6 भाग और काला नमक पिसा हुआ 1 भाग लीजिएगा और इसमें से 2 ग्राम मतलब आधा चम्मच गर्म जल से लीजिए। इससे पेट दर्द में तुरंत आराम मिलेगा। बच्चों को अगर देना हो तो आधी मात्रा दीजिए। इससे क्या है, अपारा, वायु, गोला और पेट की गैस भी मिट जाती है। तो फिर से इस नुस्खे को दोहरा रही हूँ, ध्यान से सुनेंगे आप कि अजवाइन का चूर्ण लीजिएगा 6 भाग और काला नमक पीसा हुआ लेना है आपको 1 भाग। फिर दोनों को मतलब आधा चम्मच आप ये ले सकते हैं। भले आपको मात्रा तो बताई दी है, अब आप इसकी फाकी लीजिए, ऊपर से गर्म जल पी लीजिएगा। इससे पेट के दर्द में तुरंत आराम मिलेगा। अगर बच्चों के पेट की तकलीफ है तो उनको आधी मात्रा दीजिए, ठीक है। जैसे उम्र आपको बताना चाहूँगी, बच्चे 10 साल के, 11 साल के, ऐसे बच्चों के पेट में तकलीफ है तो आप आधी मात्रा दीजिए। इससे भी कम, जैसे 4-5 साल के बच्चों के तकलीफ है तो आधी से भी आधी मात्रा दीजिए। देखो, ये इससे अपारा भी ठीक होगा, वायु, गोला और पेट की गैस भी मिटेगी। तो ये सारे ही नुस्खे बहुत ही अच्छे है और चाहो तो आजमा सकते हो। डॉक्टर को तो दिखाना ही है, लेकिन घरेलू नुस्खे कहते हैं ना, दवा और दुआ दोनों ही करिएगा, ठीक हो जाएंगे। और आइए अब आज के प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आज का प्रश्न है, ध्यान से सुनिएगा कि 5 जून को हम सभी कौन सा दिवस मनाएंगे और पृथ्वी दिवस कब है। बहुत ही सुंदर प्रश्न है, इसके 2 जवाब है, 2 प्रश्न मिक्स है, दोनों ही जवाब आपको देना है कि 5 जून को हम सभी कौन सा दिवस मनाने जा रहे हैं और पृथ्वी दिवस कब है। जवाब देने के लिए रेडियो मधुबन के नंबर है 9414151415 पर आप फोन कॉल्स कर सकते हो और आज के प्रश्न का जवाब दे सकते हो। आइए एक गीत सुनने के बाद पुनः लौट रही हूँ, कहीं भी जाइएगा नहीं, कार्यक्रम अभी बाकी है। तो सुन लेते हैं एक गीत, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन।

ओम शांति। मैं हूं ब्रह्मा कुमारी प्रेमलता और आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो मुस्कुरा।

0: हेलो,
1: आपको कर रहा हूँ मैं। एक तो आपने वो प्रश्न पूछा था नहीं कि 5 जून को क्या क्या मनाते हैं।
0: हाँ जी,
1: तो 5 जून को तो विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं।
0: अच्छा
1: विश्व पर्यावरण दिवस
0: जी,
1: यानी वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे
0: जी,
1: और पृथ्वी दिवस मनाते हैं 22 अप्रैल को।
0: अच्छा ठीक है, तो आप इंतजार करिएगा, आपके प्रश्न का जो आपने जवाब सुनाया है हम जरूर उसको सुनाएंगे बहुत ही जल्दी कार्यक्रम के अंत में। ठीक है जी, जी शुक्रिया। तो ये थे मुरलीधर जी माउंट आबू ढूंढाई से, और प्रश्न का जवाब देने की इन्होंने बहुत ही अच्छी कोशिश की है। आप भी जरूर कोशिश करिएगा। प्रश्न भी आज का बहुत ही सुंदर और सरल है कि 5 जून को हम सभी कौन सा दिवस मनाने जा रहे हैं और पृथ्वी दिवस कब है। ठीक है, और आइए अब आशियाना के किचन में पधारिए, आज कुछ क्रिएटिव करेंगे। सेजल जिसने 10th का एग्जाम दिया है, अब 11th में आई है और ये आब रोड की रहने वाली है। ये कहते हैं ना, बच्चे बड़े ही क्रिएटिव होते, कुछ न कुछ तो क्रिएटिव करते ही रहते हैं। और सचमुच में हमारे ये नन्हे मुन्ने जो बच्चे होते हैं ना, उनका फल फ्रूट रखोगे ना तो नहीं खाएंगे। हाँ, उनको आप पैकेट ला करके दे दोगे, कुरकुरे है इस तरह की चीज़ें, वो खाने के लिए लालायित रहेंगे लेकिन फल फ्रूट से दूर भागेंगे। लेकिन वही फल फ्रूट को अगर हम क्रिएटिव तरीके से प्लेट में सजा करके रख देते हैं अपने टी टेबल पर या अपने डाइनिंग टेबल पर या फिर जहाँ पर भी आप भोजन करते हो, भोजन कक्ष में जहाँ बच्चों की नज़र तुरंत पड़ती है, तो ऐसी जगह पर आप इस तरह क्रिएटिव तरीके से रखेंगे तो बच्चे अपने आप खाने के लिए कहेंगे, मांगेंगे जिद करके कि मुझे ये खाना है, ये खाना है। और क्रिएटिव तरीके से जो रखी हुई चीज़ है तो क्यों नहीं, बच्चों का तो क्या, बड़ों का भी दिल करता है। तो सेजल बहुत ही अच्छे तरीके से हमें बताएगी कि एप्पल को किस क्रिएटिव तरीके से हम काट करके अपने मेज पर रखेंगे कि बच्चे खाने के लिए मचलेंगे। है सेजल, स्वागत रेडियो मधुबन में, स्वागत।
2: थैंक यू।
0: अच्छा, तो एप्पल को कैसे आप काटोगी, किस क्रिएटिव तरीके से काट करके आप प्लेट में सजाओगी, बताओगे आप हमारे श्रोता बंधु को?
2: जी, जब हम कोई एप्पल है ना, तो जैसे कि उसको नीचे का भाग तो हम रहने देंगे, उसके 3 भाग कर लेंगे और बीच का रहने देंगे उसे, मतलब कि जैसे कि जो

0: वापस रख के उसमें जो लकड़ी की जो उसको ऐसे ऊपर की तरफ करके और उस पर लकड़ी लगा दो।
1: अच्छा, तो तीन कट लगाने हैं एप्पल के ऊपर, तीन आड़ा कट, और फिर नीचे से भी आड़ा कट ही लगाना है।
0: हाँ,
1: नीचे से भी आड़ा कट लगाना है मेरे प्यारे श्रोता बंधुओं, ऊपर से भी आड़ा कट लगाना है, और तीनों ही भाग को काट देना है, नीचे जुड़ा रहे ऊपर भी जुड़ा रहे, ठीक है। और बीच में से उन फाकों को पतली परत से काटना है, ऐसे नहीं कि पूरी की पूरी फाक काट रहे आप, पूरी पूरी फाक अगर आप काटेंगे तो एप्पल के दो तीन टुकड़े हो जाएंगे, हमें टुकड़े नहीं करना है, ठीक है। तीन भाग से जैसे हम आलू की स्लाइस करते हैं ना, ऐसे एप्पल के थोड़ी मोटी वाली स्लाइस निकालनी है ना सेजल।
0: हाँ।
1: और फिर क्या करना है इनको?
0: फिर इनको डिजाइन में आप जमा दो।
1: अच्छा, तो सेजल ने बताया है कि जैसे हमने तीन स्लाइस तीनों ही भाग से काटी है, ठीक है, इनकी फिर आपको फाके करनी है, तीन तीन तीन तीन फाके करके, अब आपको जैसे नीचे का भाग आपका जगह हो चुकी है यहाँ पर, तो आप एक फाक रखिए, फिर उसको थोड़ा सा बरोबर मात्रा में न रख करके उसको थोड़ा सा आगे की तरफ रखिए दूसरी फाक, उसके ऊपर तीसरी फाक रखिए थोड़ी सी और आगे, तो जैसे आप सीढ़ी चढ़ते हैं ना ऐसे हो जाएगा। तो फिर आप ये तीनों ही फाके तीनों ही तरफ लगाइएगा, और एक लकड़ी की स्टिक आती है जिससे हम फ्रूट भी खाते हैं तो उसका मुंह तीखा होता है, उसको आप डाल दीजिए ताकि ये फाके अलग नहीं पड़े, ठीक है। तीनों ही फाकों को, तीन भाग जो काटे हैं तीनों ही तरफ फाके करके स्लाइस की और सजाइएगा और स्टिक लगा दीजिएगा। तो ये क्या है कि स्टिक लगाने से आपकी ये फाके गिरेगी नहीं, और फिर इसको आप प्लेट में रख दीजिए, और फिर आप जहाँ भी आप भोजन करते हैं, जहाँ पर भी आप रखना पसंद करते हैं कि आपके बच्चों की नज़र पड़े, ऐसी जगह पर रखिए। तो बच्चे क्या, जैसे ही किचन में आएंगे नज़र पड़ेगी कि ये क्या चीज़ है मम्मी, ये तो हमको खानी है, एकदम बच्चे खुद मांगेंगे, तो माताएं तो बड़ी खुश हो जाएगी ना, क्योंकि हर माँ चाहती है कि उसका बच्चा फल फ्रूट खाए ताकि हेल्दी रहे, है ना। तो अब नहीं खाते, अक्सर बच्चों के नखरे होते हैं, वो ऐसी चटपटी चीज़ें खा लेंगे लेकिन फ्रूट से दूर भागते हैं। तो जो भी बच्चे दूर भागते हैं फ्रूट से, उनको आप इस तरीके से खिलाएंगे तो ज़रूर बच्चे खुद मांगेंगे और बड़े चाव से बड़े प्यार से खाएंगे, ठीक है। तो एप्पल काटना तो आपने सीख लिया ना। अब देखिए, ये क्या वीडियो तो है नहीं कि मैं आपको काट करके बता दूं, लेकिन अभी सेजल ने क्या है प्रैक्टिकल में काटा है और काट करके मुझे बता रहे हैं कि दीदी ऐसे ऐसे किया जाता है, और आपके सामने बोल रहे हैं। तो बहुत ही सुंदर लग रही है ये एप्पल, ज़रूर आप भी ट्राई करिएगा। अगर कहीं कुछ आप भूल जाए या नहीं सही तरीके से हो रहा है तो आप फ़ोन कॉल्स कर सकते हो, नंबर तो आप जानते ही हो, 9414151415 पर आप फ़ोन कॉल्स करिएगा। और एप्पल काटने का तरीका में कुछ भी थोड़ा सा आपको गड़बड़ लग रहा है तो हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो सेजल बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने बहुत ही अच्छा क्रिएटिव तरीका सिखाया है एप्पल को कैसे काटा जाता है।
0: थैंक्स।
1: आइए आज के प्रश्न की तरफ फिर से बढ़ते हैं। आज का प्रश्न बड़ा ही सरल है, ध्यान से सुनेंगे कि 5 जून को हम सभी कौन सा दिवस मनाने जा रहे हैं और पृथ्वी दिवस कब है, ठीक है। दो प्रश्न है, दो जवाब आपको देना है। नंबर रेडियो मधुबन के है 94-14-15-14-15। और आइए एक गीत सुनने के बाद हम पुनः लौट रहे हैं, तो बने रहिएगा आशियाना में, सुनते रहो मुस्कुराते रहो रेडियो मधुबन।

0: मधुबन हमारे जीवन को सुखमय व समृद्धशील बनाता है। सभी प्रोग्राम्स को बेहतरीन अंदाज में नवीनता को लिए बेहतरीन क्वालिटी के साथ
1: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 मेगाहर्ट्ज पर 107.8 FM पर। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: पुणे आशियाना में आप सभी का स्वागत है। महेश भाई शर्मा आबू रोड से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नमस्कार नमस्कार महेश भाई, कैसे हो आप?
1: नमस्कार जी, नमस्कार, बढ़िया है, एकदम फर्स्ट क्लास है जी।
0: जी हाँ। जी, और आज के प्रश्न का जवाब देंगे आप?
1: हाँ बोलो, क्या प्रश्न है जी?
0: जी, आज का प्रश्न है, 5 जून को हम सभी कौन सा दिवस मनाने जा रहे हैं और पृथ्वी दिवस कब है?
1: अच्छा, 5 जून को ये आ रहा है मातृ दिवस, मदर डे, ये तो नहीं है?
0: वो तो आपको जवाब देना है, अभी हम नहीं बताएंगे।
1: अच्छा मदर, ठीक है।
0: अच्छा
1: वाह,
0: दो प्रश्न है, दो जवाब आपको देना है। पृथ्वी दिवस कब है? हाँ जी,
1: पृथ्वी दिवस,
0: हाँ जी,
1: हाँ जी, पृथ्वी दिवस तो यार जानते हो सरदार मेरे भी।
0: कोई बात नहीं, आप फिर से फोन कॉल्स कर सकते हो। ठीक है
1: ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है
0: जी, बहुत बहुत आभार आपका
1: जी।
0: तो आशियाना के किचन में आप सभी हो और सेजल ने बहुत ही अच्छे तरीके से, क्रिएटिव तरीके से एप्पल को काटना सिखाया, जिसको हम सेब भी कहते हैं, तो बहुत ही अच्छे तरीके से काटा है। अब आइए मैं आपको सिखाती हूँ कि अमरुद को कैसे काटा जाता है। लेकिन हमारे पहले श्रोता बंधु जुड़ना चाहते हैं तो उनसे ज़रूर बात करेंगे। नमस्कार, स्वागत आपका रेडियो मधुबन में।
2: फिरोज भाई पालमपुर से बोल रहा हूँ।
0: हाँ जी फिरोज भाई नमस्कार, कैसे हो आप?
2: बस एकदम अच्छे, अभी मेरे पास बहन जी रेडियो नहीं है तो आज के कोई प्रश्न हो तो बोलो, बताओ।
0: हाँ जी, आज का प्रश्न है, 5 जून को हम सभी कौन सा दिवस मनाएंगे और मतलब पृथ्वी दिवस कब है?
2: पृथ्वी दिवस,
0: हाँ जी, 5 जून को कौन सा दिवस मनाने जा रहे हैं हम सभी और पृथ्वी दिवस कब है?
2: अच्छा जी, तो पृथ्वी दिवस है ये अपना 22 अप्रैल
0: जी। और दूसरा जवाब?
2: और दूसरा सवाल है ये 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है और उसमें क्या वो 5 तत्वों का जो प्रदूषण हो रहा है तो उसको बचाने के लिए जंगल है, हवा है, पानी है, उसका वो पर्यावरण को बचाने के लिए कुछ करना चाहिए
0: जी।
2: और दूसरा ये 22 अप्रैल को जो जो पृथ्वी पर जो ये हो रहा है तो उसका जो
0: ये हम बात करेंगे फिरोज भाई, विस्तार में हम बात करेंगे। आज तो प्रश्न का जवाब ही दीजिएगा, जब भी होगा उस दिन हम बात करेंगे, है ना?
2: जी जी जी जी,
0: तो बहुत बहुत आभार आपका। तो अब आप सभी आशियाना के किचन में है और मैं आपको सिखाने जा रही हूँ अमरुद को कैसे हम काटेंगे कि बच्चे फिर से नहीं दोहराऊंगी, मैं पहले भी बोल चुकी हूँ कि हम अच्छे क्रिएटिव तरीके से फल फ्रूट को काट के रखते हैं तो बच्चे अपने आप वो मन से मांगते हैं और खा भी लेते हैं। तो अमरुद की धुलाई करिएगा, धुलाई करके स्वच्छ कपड़े से पोंछिएगा। अगर थोड़ा सा बड़े साइज का है तो अच्छी बात है, ठीक है, और नहीं है तो कोई बात नहीं, जो भी साइज है आप लीजिएगा। और हमारे श्रोता बंधु से हम जरूर बात करेंगे लेकिन हम यही कहेंगे कि विषय को जो हम सिखा रहे हैं उसको पूरा करके। पर अभी चलिए उठा लेते हैं फोन। हेलो
3: हेलो, नमस्कार, ओम शांति उषा बहन जी।
0: हाँ जी नमस्कार दयाराम जी, कैसे हो आप?
3: बिल्कुल अच्छा हूँ, बढ़िया हूँ, बाबा की कृपा है, आप सभी मित्रों की कृपा है। और आज मधुबन सुन रहा था, बहुत ही अच्छे नुस्खे भी बताए और एप्पल भी किस तरह काट के रखना चाहिए वो भी सिखाया। तो बच्चों को भी कोई भी नहीं खा सकता है, वो भी अपनी ओर आकर एप्पल को देखकर आकर्षित होगा, खाएगा।
0: जी जी दयाराम जी, आज के प्रश्न का जवाब देंगे आप?
3: बिल्कुल मैम।
0: हाँ जी, प्रश्न तो आपने सुना ही है या दोहराऊं?
3: मैंने सुना है दीदी
0: जी।
3: आज के प्रश्न का सही जवाब है, जो हम 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाती है और 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाती है, तो विश्व पर्यावरण दिवस इसलिए मनाया जाता है तो प्रकृति के प्रति सभी को जागरूक करना है।
0: जी जी जी, हम उस दिन जरूर बात करेंगे, है ना, जिस दिन विश्व पर्यावरण दिवस होगा उस दिन आप जरूर जुड़िएगा, ठीक है
3: जी।
0: बहुत सारे विस्तार में हम बातें करेंगे, बहुत बहुत आभार, आप रेडियो मधुबन से जुड़े और आपने प्रश्न का जवाब देने की काफी अच्छी कोशिश की। तो बहुत ही देखिए सुंदर तरीके से आपको सिखाने जा रही हूँ अमरुद को कैसे काटेंगे, अमरुद जिसको हम राजस्थान में जामफल भी कहते हैं, ठीक है। आप जो भी साइज है लीजिएगा, धुलाई करके स्वच्छ कपड़े से पोंछ करके फिर ऊपर जो थोड़ा सा डंठल ऐसा होता है ना उसको आप कट करके निकाल दीजिए। अब आप नीचे की साइड में से तो चिपका रखना है, ऐसे बिल्कुल फांके अलग नहीं पड़नी चाहिए, और सभी तरफ से फांके इस आकार से काटिएगा कि जैसे कि गुलाब का फूल दिखाई दे ऐसा ही। तो बीच में जो आप काटेंगे ना, तो बीच में से तो आप वो कटिंग रखिएगा। और अब आपको क्या करना है, ऐसे ही तीन कट आपको लगाना है, आड़ा कट, ठीक है, थोड़ा सा नीचे तक, लेकिन नीचे का डंठल अलग नहीं होना चाहिए, नीचे का जो भाग है उससे अलग नहीं होना चाहिए, नीचे का भाग चिपका रहे, ऊपर आप वो डंठल का भाग काट करके फिर बीच में थोड़ा सा रखना है, साइड में से मोटी मोटी स्लाइस तीनों तरफ से आपको कट करनी है। कट करने के बाद भी पूरे अलग नहीं करनी है, उसके बाद उसके लंबे लंबे चीरे लगाने हैं, तो सब तरफ से ये फांके हो जाएगी और बीच में वो जो डंठल का भाग काटा है वो डंडी की तरह दिखाई देगा, पतला पतला डंडी दिखाई देगा और नीचे से चिपका रहेगा। तो इस तरह अमरुद को काट करके भी अगर आप अपनी मेज पर रखते हैं, टी टेबल पर रखते हैं या डाइनिंग टेबल पर रखते हैं एक प्लेट के अंदर, तो भी बच्चे आकर्षित होंगे, खुद ब खुद मांगेंगे कि ये क्या चीज़ है मम्मा, ये हमें खाना है। तो बच्चे बड़े ही उत्साह से मांगेंगे और हर एक की इच्छा रहती है कि बच्चे इस तरह के फ्रूट खाए। तो इस तरह आप काट करके रख सकते हैं। देखिए हम सीधे सिंपल तरीके से सभी काटते हैं, लेकिन कभी कभी क्रिएटिव तरीका भी आजमाते हैं तो कुछ नवीनता भी आ जाती है और बच्चे बड़े चाव से बड़े प्रेम से खाते हैं। और बच्चे स्कूल जा रहे हैं तो भी उनके डिब्बे में इस तरह आप काट करके रख दीजिए टिफिन बॉक्स में, तो वो खोलेंगे तो अपने आप ही इच्छा हो जाएगी कि हम खा ले, वे है ना। तो ये अमरुद की कटिंग हो गई। अब मैं एक और तरीका बता रही हूँ, पापड़, जो जग जाहिर है भोजन के साथ अक्सर लोग पापड़ लेते ही हैं, पापड़ को हम सेकते हैं, ठीक है, सेकते हैं, उस समय वो गरम गरम होता है तो एकदम नरम होता है, फिर वो ठंडा हो जाता है तो फिर वो कड़क हो जाता है। तो आप क्या करेंगे, पापड़ को सेकने के बाद उसका आकार समोसा की तरह कर दीजिए, फिर आप रखिए प्लेट में, कोई मेहमान भी आ गए या बच्चे हैं या आप खाना चाहते जो भी है घर के अन्य परिवार के सदस्य है, सभी को आप प्लेट में जो पापड़ पूरा ही सेक करके ऐसे खुला खुला रखते हैं, इसकी जगह आप समोसे का आकार दे करके फिर आप रखिए। फिर ये ठंडा होने के बाद आकार आप नहीं दे पाओगे और ये टूटेगा नहीं, ठीक है ना, जब तक आप प्रेशर नहीं दोगे तो टूटेगा नहीं। इसलिए जैसे ही सेका तुरंत ही गरम गरम को आप जो भी आकार चाहे दे सकते हो और फिर आप भोजन में पिरसिए पापड़ को, तो इस तरह भी अच्छा लगेगा कि अरे भाई ये क्या चीज़ है। एक सेकंड के लिए तो इंसान कंफ्यूज हो जाएगा कि ये क्या चीज़ है, कहीं समोसा तो नहीं लेकिन समोसा तो आप सभी जानते हो कि समोसा का थोड़ा सा कलर अलग होता है, थोड़ा फुला हुआ होता है, लेकिन फिर भी एक नई चीज़ समझेंगे कि ये क्या चीज़ है, फिर समझ जाएंगे कि अच्छा पापड़ है लेकिन बहुत अच्छे तरीके से रखा है। तो वो कहते हैं ना कि ऐसे नहीं कि हमको भाई रोज़ भोजन कर रहे हैं और चलेगा, चलाना नहीं है, भोजन को आप रोज ही अलग अलग तरीके से रखिएगा और बड़े प्यार से बड़े ही भाव से रखिएगा कि खाने वाले की अपने आप इच्छा उत्पन्न हो और बड़े प्यार से वो भी खाए। तो ये पापड़ भी हो गया है और मसाला पापड़ भी आप बना सकते हो। मसाला पापड़ के लिए भी आप क्या करेंगे, जैसे पापड़ आपने सेक लिया, ठीक है, सेक करके इसको एक कोन का आकार दे दीजिए, जैसे हम कोन वाली आइसक्रीम खाते हैं ना, ऐसे कोन का आकार आपको देना है। फिर इस आकार में आप थोड़े से टमाटर की कटिंग कर लीजिए, पत्ता गोभी की बारीक बारीक कद्दूकस कर लीजिए या कटिंग कर लीजिए, और हरा धनिया भी इसमें डाल दीजिए, अनार के दाने भी, इन सभी को थोड़ा सा मिक्स करके इसमें आप थोड़ा जलजीरा डाल सकते हैं, थोड़ा सा सेंधा नमक और ये सभी, मतलब काली मिर्च पाउडर भी आप चाहो तो डाल करके मिक्स करके आप पापड़ के अंदर भर करके, जैसे कोन बनाते उसमें आइसक्रीम होती ना, ऐसे आप इसमें भर के भी प्लेट में दे सकते हो। तो देखिए सलाद भी हो जाएगा साथ में और पापड़ भी हम भोजन में रखते हैं तो पापड़ भी हो जाएगा। तो हो गए ना एक पंत दो काज, कि पापड़ भी है, सलाद भी है और खाने वाले बड़े प्यार से खाएंगे कि वाह क्या खूब सजा के रखा है। तो कुछ जीवन में क्रिएटिव ज़रूर होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए पापड़, अमरूद, एप्पल, सबको क्रिएटिव तरीके से तो सजा दिया है। अब भोग तो कोई भी चीज़ हम बनाते हैं, भोग ज़रूर लगाइएगा, सात्विक चीज़ों का भोग लगाना आवश्यक है, क्योंकि देखिए भोग लगाते समय हमारी भावनाएं एकदम निश्चल हो जाती है ना, बहुत ही भाव पूर्ण हो जाती है, बड़े ही ईश्वर के प्रति प्रेम की भावना उमड़ती है, तो वो वाइब्रेशंस भी भोजन में जाते हैं, जो भी हम बना रहे हैं उसमें जाते हैं, और फिर वो जो भी परिवार के सदस्य स्वीकार करते हैं तो उनमें भी वो भाव उत्पन्न होते हैं। इसलिए भोजन हमेशा प्यार से परोसना चाहिए और भोजन को प्यार से करना चाहिए। भोजन करते समय अक्सर हम देखते हैं ना, कुछ भी खाते पीते हैं तो मोबाइल देखते हुए खाते हैं, भले मुंह का कवा खत्म हो गया है, दूसरा कवा लेना है, लेकिन नहीं, मोबाइल में लगे हुए हैं। इसलिए कितने जने क्या भोजन के समय मोबाइल चलाते हैं तो आधा आधा घंटा पौन पौन घंटा पूरा कर देते हैं। ऐसा नहीं करना है, भोजन और भजन हमेशा एकाग्रता में करना है, हमेशा एकांत में करना है। एकांत बोले तो ऐसा नहीं कि परिवार के सदस्यों से हट करके आप करो, नहीं, परिवार के सभी सदस्यों के साथ करिए, प्यार भी बढ़ेगा, स्नेह भी बढ़ेगा, और हो सके तो उस समय बातें कम करिएगा, भोजन पर ज़्यादा ध्यान रखिएगा, और साथ ही साथ ईश्वर का धन्यवाद भी करिएगा कि परमात्मा सभी को भूखा उठाता है लेकिन किसी को सुलाता नहीं है। तो अच्छी अच्छी भावनाओं के साथ जब हम भोजन करते हैं तो सचमुच में वो भोजन एकदम महाप्रसाद बन जाता है, और वो हमारे मन बुद्धि पर बहुत ही अच्छा पॉजिटिव असर करता है। ठीक है, तो ये तो आपने क्रिएटिव तरीका सीखा है। अब हम गीत सुनकर के पुनः आशियाना में आगे बढ़ेंगे। तो आज के प्रश्न में फिर से दोहरा रही हूँ, बहुत ही सुंदर और सरल प्रश्न है। आप ऐसा मत सोचिएगा कि अरे भाई हमारे श्रोता बंधु जुड़ रहे हैं, जवाब दे रहे हैं, जरूरी नहीं कि सभी का सही है, और मान लीजिए सही है तो भी क्या बात है, आपका भी तो नॉलेज काम आना चाहिए ना। तो आप भी जरूर जुड़िएगा रेडियो मधुबन से और जवाब देने की कोशिश जरूर करिएगा कि 5 जून को हम सभी कौन सा दिवस मनाएंगे और पृथ्वी दिवस कब है। तो जवाब देने के लिए रेडियो मधुबन के नंबर है 94-14-15-14-15, और आइए अब सुनेंगे गीत, उसके बाद हम पुनः आपसे रूबरू होंगे। तो सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन।

0: आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन।
1: कृपया चलती गाड़ी में चढ़ने का प्रयास ना करें, यह जानलेवा हो सकता है। रेल के डिब्बों की छत पर बैठकर यात्रा ना करें, क्योंकि ओवरहेड वायर्स में 25,000 वोल्ट का करंट है। इनके संपर्क में आने से आपकी जान को खतरा हो सकता है।
0: रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
2: जीवन में नवीनता लाते रहिए, जीवन में नवीनता लाते रहिए और जीवन को खुशनुमा बनाते रहिए। आप सुन रहे हो कार्यक्रम आशियाना, और आशियाना में अब हम खुशनुमा जीवन की बातें करेंगे कि जीवन में नवीनता लाते रहिए और जीवन को खुशनुमा बनाते रहिए। क्या कहेंगे आप, हम तो आपके द्वारा जानना चाहते हैं। आज का प्रश्न भी बहुत ही सुंदर और सरल है, विषय भी बहुत अच्छा है, जरूर आप जुड़िएगा। आज का प्रश्न है, 5 जून को हम सभी कौन सा दिवस मनाएंगे और पृथ्वी दिवस कब है। 2 प्रश्न है, 2 जवाब आपको देना है, क्योंकि सरल प्रश्न है तो दोनों ही प्रश्नों के जवाब जरूर दीजिएगा। और विषय भी बहुत ही सुंदर है कि जीवन में नवीनता लाते रहिए और जीवन को खुशनुमा बनाते रहिए। दोनों में ही आप जरूर जुड़िएगा, जवाब भी दीजिएगा, अपने विचार भी व्यक्त करिएगा। नंबर हमारे है 9414151415 पर आप फोन कॉल्स कर सकते हो और आज के विषय को आप स्पष्ट कर सकते हो कि जीवन में नवीनता लाना क्यों जरूरी है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये उषा दीदी पता नहीं क्या क्या विषय लेकर के आ जाती है, लेकिन नवीनता तो देख के हर कोई चाहता है ना। चाहे हम कितने भी पैसे वाले हैं या कितनी भी फैसिलिटी में रहने वाले हैं, लेकिन फिर भी थोड़े दिनों में ही हम ऊब जाते हैं उन चीज़ों से। फिर ऐसा लगता है कि अरे क्या रोज़ ये का ये, कुछ तो नवीनता होनी चाहिए। फिर लोग प्लान बनाते हैं, चलो थोड़ा सा घूम आए या फिर चलो कुछ नया करें, कुछ बनाए, जैसे कि भोजन का ही देख लेते हैं। ठीक है, रोज़ आपको सुबह पोहे खिला दिया जाए नाश्ते में, दिन के खाने में आपको रोटी सब्जी और शाम को कड़ी खिचड़ी, रोज यही, कोई चेंज नहीं। 4 दिन में आप लोग थक जाएंगे और आप जरूर कहेंगे कि अरे ये क्या, रोज पोहे, रोज रोटी सब्जी और रोज कड़ी खिचड़ी, ना भाई ना, कुछ तो बनाओ, है ना। सभी के साथ होता है, घबराइए नहीं, ऐसा नहीं कि आप अकेले ही है, हर कोई। मैं भी होंगी तो मैं भी 4 दिन के बाद 5वें दिन परिवर्तन जरूर चाहूंगी कि नहीं, मुझे भी कुछ अलग बना करके खाना है। चाहे कोई बना के दे या नहीं दे, स्वयं ही बनाने लग पड़ते हैं फिर। तो जीवन में नवीनता क्यों जरूरी है, आपका क्या ख्याल है? क्या आप नवीनता नहीं चाहते हैं? नवीनता चाहते हैं तो जरूर जुड़िएगा। भाई फोन कॉल से लगाना है आपको, ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, नंबर लगा दीजिए 9414151415 पर कि आप किस तरह की नवीनता जीवन में लाते हैं। देखिए कपड़े का भी देख लीजिए, हम रोज ही आपको कोई कह दे कि आपको यही ड्रेस पहननी है 2 दिन में, ठीक है आज पहननी है, कल धुलाई करनी है, कल दूसरी ड्रेस, फिर परसों वापिस पहननी है, 1 सप्ताह तो आप चला लेंगे। 1 सप्ताह के बाद आप क्या करेंगे, अरे मैं रोज क्यों ये किए पहनूं, क्या मेरे पास कपड़े नहीं है? नहीं है तो लाने की कोशिश करेंगे और चेंज करने की कोशिश करेंगे कि आज ये कल वो परसों वो। तो हर चीज में हम नयापन देखते हैं, नवीनता चाहते हैं, तभी तो जीवन एक सुंदर तरीके से चलता है और शांति भी रहते हैं जीवन में। हेलो, हमारे श्रोता बंधु थे शायद, चलिए फिर से फोन कॉल्स करेंगे, कुछ कारण से बात नहीं हो पाई है, कोशिश कर रहे हैं। हेलो
3: जी, हम शांति, नमस्ते सुरेश भाई बोल रहा हूं।
2: हाँ जी सुरेश भाई नमस्कार, स्वागत आपका रेडियो मधुबन में, कैसे हो आप?
3: बात बिल्कुल बढ़िया है, अच्छे है और अच्छी बातें भी सुन रहे हैं और विषय भी बहुत अच्छा रखा है और कहीं ना कहीं बिल्कुल सही दीदी बताया आपने कि भोजन की भी जो आपने बात की थी, हम हर रोज इतना ही भोजन करते हैं तो थोड़ा सा ऐसा लगता है इतना क्या खाना, कुछ अच्छा बनाइए कुछ नया बनाइए, ये भी सही है। हर रोज इतना एक कपड़े पहनते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है चलो आज दिन के दिन नया कपड़ा पहन दे तो अच्छा रहेगा, कुछ नया चेंजिंग करेंगे। तो जीवन में भी दीदी ऐसा ही है कि हम कुछ न कुछ नया करने की जरूरत है। देखो हम कोई भी काम करते हैं तो अच्छा काम करते हैं तो बुरा भी काम करते हैं, कभी कभी अच्छा भी काम करते हैं, लेकिन हम कुछ नया चेंज करें, चलो आज हमने एक अच्छा काम कर दिया, चलो सेवा को काम कर दिया, तो हम आगे जाते और भी कोई नया सेवा का काम करेंगे, थोड़ा आगा जाके कुछ किसी को मदद करेंगे, किसी को कुछ काम आएंगे और कुछ नया करने की भी कोशिश करेंगे। जीवन में कई मोड आते हैं दीदी
2: जी,
3: और परिवर्तन बिल्कुल जरूरी है। परिवर्तन के बिना तो जीवन चलता ही नहीं है
2: जी।
3: हम एक ही बात हर दौड़ लगा रखे है तो कोई ऐसा ना करे, लेकिन कुछ नया करने की कोशिश जरूर करना। नया चेंजिंग करना है जीवन में, कुछ नया धारण करना है, कोई अच्छी सेवा, अच्छी कोई बात, किसी को काम आना, किसी की मदद करना, ये भी जरूरी है
2: जी।
3: तो बस हम तो दीदी यही कहेंगे, हर रोज नया कुछ करने की कोशिश जरूर करना जीवन में। हम कभी कभी हमारे को कच्चा किसी के पास हम बैठते तो कच्चा कोई किसी को गुण धारण करना, ये भी जरूरी है
2: जी। तो सुरेश भाई, जैसे आप सिलाई काम करते हैं, ठीक है, रोज एक जैसे सिलते हैं या कुछ अलग अलग डिजाइन भी रखते हैं आप?
3: नहीं दीदी, हम अलग अलग काम करते हैं
2: जी,
3: सभी कपड़े पे एक जैसा नहीं आते हैं और एक डिजाइन भी नहीं आती है, डिजाइन में थोड़ा परिवर्तन करना पड़ता है
2: जी,
3: चेंजिंग बनी करनी पड़ती है। हम कोई भी नए कोई फैशन आती है तो नए फैशन का भी बनाना पड़ता है
2: जी। तो फिर आप पहले सीखते हैं फिर बनाते हैं?
3: हाँ, पहले देखते हैं बाद में बनाते हैं
2: जी।
3: और कभी कभी तो खुद पोस्टर भी ऐसा आता है कि इस पोस्टर से बनाना है तो बन जाता है
2: जी जी जी,
3: और हम बना भी देते हैं,
2: कोशिश करते हैं तो हो जाता है।
3: हाँ हो जाता है, क्योंकि आज देखो कितनी ही फैशन डिजाइन जो मार्केट में आ रही है, तो चलना तो जरूरी है
2: जी।
3: इतना ही कपड़ा हम एक टाइप का पहनते हैं तो पता ऐसा लगता है। देखो हम एक एक सैंपल दे, तो जो जेठालाल का कार्यक्रम हम देखते हैं
2: जी,
3: तो खुद जेठालाल अलग अलग चीज डिजाइन का कपड़ा पहनते हैं।
2: अच्छा। जी।
3: तो मैं कई बार देखा है कि सभी जो शॉर्ट होता है इसका अलग अलग डिजाइन का बनता है
2: जी।
3: तो चेंजिंग जरूर है दीदी, और करना है जीवन में चेंजिंग करना है, तरीके से भी जीना है
2: जी। जी बहुत सुंदर, आभार आपका जी। तो ये थे सुरेश भाई झोटाना से, सिलाई काम करते हैं। तो आपका कहना है कि सिलाई में भी हम नवीनता लाते हैं, कितनी बार तो पोस्टर के द्वारा भी डिजाइन कही जाती है कि ये पोस्टर और ये डिजाइन आपको डालनी है, तो भी बता रहे हैं कि हो जाता है, बिल्कुल कोशिश करते हैं तो हो जाता है सब कुछ। तो नवीनता जीवन में लाना बहुत जरूरी है, आपका क्या ख्याल है? हर कोई चाहता है जीवन में नवीनता लाना, क्योंकि भाई आज भले हम क्रिएटिव नहीं करते हैं ना, रोज ही कुछ न कुछ होता रहता है। हेलो
4: हेलो, नमस्कार, ओम शांति दीदी।
2: हाँ जी, हाँ जी, नमस्कार दयाराम जी, कैसे हो आप?
4: बहुत ही अच्छा हूँ, बढ़िया हूँ, दोस्तों मित्रों की कृपा है और आसपास का माहौल भी अच्छा है, और हरदम कुछ नया नया करने की जो जोश और जज्बा रखते है, और हर दिन कहीं न कहीं से कोई नई जानकारियों भी प्राप्त करके, और ये ऐसे कोई ग्रुप बनाए हुए उसमें डालना ये हमारा स्वभाव है। तो दीदी मैं एक मेरा जो एग्जाम बताता हूँ
2: जी,
4: जो मैं दीदी पहले किसान था तो हम कई मजदूरियों करते थे, तो उसमें कहीं हमें सफलता ही नहीं मिलती थी, जैसे हम जो 400-500 रुपये मिलते थे तो उसमें हमारा गुजारा जो पूरा चलता ही था। तो हमने कुछ न कुछ नया करने के लिए सोचा और कुछ पैसे ब्याज के ला के कुछ दो भैंसे खरीदी, और दो भैंसे जो ब्याई तब हमने डेयरी में दूध भरना चालू कर दिया
2: जी।
4: तो डेयरी में दूध भरना चालू कर गया तो हमारी एक आमदनी आने लगी हर साल 5,000-6,000 रुपया महीने का, जो 10,000 तक पगार आया करते थे
2: जी।
4: तो हमने कुछ नया करने के लिए प्लान बनाया और सोचा, तभी हम आगे बढ़ पाए और उसमें हम सफल भी हुए
2: जी।
4: तो हर इंसान इस तरह का कार्यक्रम अच्छा अच्छा नया करने का कुछ जज्बा रखे, कुछ अपने जो माइंड से काम ले, तो वो बिल्कुल एक खुशनुमा जीवन जी पाएंगे और दूसरों को भी प्रेरणा रूप भी बनेंगे। बस नमस्कार दीदी
2: जी,
4: सभी
2: बहुत
4: को
2: सुंदर,
4: आपको भी
2: बहुत सुंदर, आभार आपका दयाराम जी। तो ये दयाराम जी लाखनी से थे और इनका कहना था कि पहले ये किसान थे, लेकिन किसान के साथ साथ जैसे 400-500 रुपए कमा लेते थे, लेकिन गाय भैंस ला करके दूध बेचना शुरू किया तो और भी ज़्यादा पैसा मिलने लगा। तो बिल्कुल हर कोई चाहता है कि कुछ और भी नया करे, एक रस जीवन में टिक नहीं सकता है, क्योंकि एक रस से हम बोर हो जाते हैं, अलग अलग रस को सभी प्राप्त करना चाहते हैं। जैसे कि मैंने आपको भोजन में कहा ना कि एक तरह का भोजन चार दिन के बाद पांचवें दिन तो बंदा परेशान ही हो जाएगा और कुछ न कुछ जरूर डिमांड करेगा कि भाई कुछ अलग बनाओ। तो हर कोई जीवन में नवीनता चाहता है और नवीनता के द्वारा ही ये खुशियां बरकरार रहती हैं। हम और भी आपसे रूबरू होंगे, मिलेंगे, परंतु समय हो चला है एक अल्प विराम लेने का। तो अल्प विराम लेकर के पुनः लौट रहे हैं, बने रहिएगा आशियाना में, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन।

जो था कंगाल केसरिया आज बजरिया गाता है। आप सुन रहे हो कार्यक्रम आशियाना और आशियाना में हम खुशनुमा जीवन की बातें कर रहे हैं कि कैसे जीवन में नवीनता लाना जरूरी है, जीवन में बदलाव लाना बहुत जरूरी है। तो बहुत ही हमारे श्रोता बंधुओं ने भी अच्छी बातें बताई है। हम तो चाहते हैं कि आपके द्वारा और भी सुने कि कैसे हम जीवन में नवीनता लाएंगे, कैसे हम अपने जीवन को क्रिएटिव बनाएंगे। देखिए, जैसे कि आप आशियाना सुनते हैं, ठीक है, अब मैं रोज एक एक भजन सुनाऊंगी या एक ही गीत या एक ही कविता रोज सुनाऊंगी तो आप बोर हो जाएंगे ना। आप क्या कहेंगे, अरे ये उषा दीदी तो पता नहीं दूसरा कुछ सुनाती नहीं है, एक ही भजन, एक ही कविता या एक ही गीत सुनाती है। दूसरे दिन आप सुनना बंद कर देंगे। हर कोई नयापन चाहता है, हर कोई बदलाव चाहता है, तो कौन लाएगा, हमें ही लाना पड़ेगा ना। देखिए, हमारे वैज्ञानिक है, अगर वो आविष्कार ही नहीं करते तो क्या हम साइंस के इतने चीजों का आनंद ले पाते हैं? नहीं ले पाते ना। हम बस में ही चलते हैं, फ्लाइट आती नहीं तो फ्लाइट में कभी जाते ही नहीं, ट्रेन नहीं आती, या फिर मान लीजिए बस नहीं आती, या भले मान लीजिए टू व्हीलर नहीं आता, लेकिन नवीनता आई है ना। समय के साथ बदलाव आया है, और बदलाव आया है तो क्रिएटिविटी बढ़ी है ना, इसलिए कुछ ना कुछ करते रहिए। छोटे बच्चे को आप देखोगे खिलौने खेलते हैं, लेकिन वो भी अजीब तरीके से खेलेंगे, कुछ न कुछ बनाने की कोशिश करेंगे, है ना, कुछ न कुछ बनाएंगे। जैसे हम उनको खिलौने देंगे, जो भी करेंगे तो उनको गोल गोल गोल गोल सजाएंगे या टेढ़े मेढ़े सजाएंगे, लेकिन कुछ न कुछ वो करते रहेंगे। उनको देख करके हमें भी बड़ा अच्छा लगता है कि वाह देखो बच्चे ने क्या, मतलब किस तरीके से ये सजा रहे हैं। भले उनको नहीं पता कि वो क्या कर रहे हैं, लेकिन उनके इन छोटी सी हरकत को देख करके हमें तो आनंद आता है ना कि बच्चे भी कुछ करना सीख रहे हैं। जैसे बच्चों को पढ़ाना सिखाते हैं, भाई वन लिखो, एक लिखो, गुजराती में तो एक एक कहते हैं, लेकिन हम जब वन लिखाना सिखाते, एक लिखाना सिखाते हैं, बच्चे को बार बार घुटाते हैं और बार बार वो घोटता है उसी को एक, जब तक वो परफेक्ट नहीं होता आगे नहीं बढ़ते। लेकिन जैसे ही उसको एक लिखना आ गया, फिर वो कुछ और सीखने की कोशिश करेगा कि एक तो लिख लिया ना, कितनी बार सिखाओगे, अब आगे बताओ। फिर हम उसको दो सिखाएंगे, फिर तीन सिखाएंगे, तो बच्चों के लिए तो वही नवीनता है ना। ऐसे हर एक के जीवन में नवीनता बहुत जरूरी है, नहीं तो जीवन से हम बोर हो जाएंगे, और जीवन से बोर नहीं होना है। जहां हम जीवन से बोर हुए, समझ लीजिए जीवन हमारा खत्म, निराशा में डूब जाएगा। और निराशा वाला जीवन भला कोई जीवन है? आप अक्सर देखते होंगे रास्ते में कोई मिलता है तो एक तो खिलखिलाहट के साथ मिलता है, उसके चेहरे की मुस्कुराहट देख करके ही आप में भी तरोताजगी आ जाती है कि चलो इस बंदे से बात ही कर लेते हैं, भले पहचान नहीं है फिर भी बोलेंगे राम राम जी, राम राम, नमस्कार, कुछ तो बोलेंगे ना, जय श्री कृष्ण, कुछ भी बोलेंगे, भले पहचान नहीं है लेकिन बोलेंगे। और एक आप देखेंगे कि अरे सामने वाले का चेहरा तो जैसे कि ऐसा लटका हुआ है कि 10 मन का वजन उसके सिर पर रख रखा है, तो पहचान वाला होगा फिर भी आप किनारा कर लेंगे, अरे भाई इसका मूड नहीं अच्छा लग रहा है, चलो अपन साइड से निकल जाते हैं, है ना, ऐसा होता है। तो जब एक उदास चेहरा कोई देखना पसंद नहीं करते हैं, तो सोचिए कि जीवन में एक ही चीज, एक ही चीज, एक ही चीज कौन पसंद करेगा। कोई ना कोई नवीनता आती रहती है और आनी ही चाहिए। जैसे कि मैं आपको भोजन की बात बता रही थी कि हमारी माताएं बहनें, हमारे भाई लोग भी ट्राई करते रहते हैं, बहुत जने तो यूट्यूब में से भी चीजें सीखने की कोशिश करते हैं कि भाई परिवार वालों को रोज एक सा भोजन क्यों फिर से, चलो आज यूट्यूब में से ये चीज सीख लूं, वो चीज सीख लूं, ऐसे कुछ भी सीखेंगे और फिर बनाएंगे, खिलाएंगे। तो ये सारी नवीनता है। तो जीवन में नवीनता बहुत जरूरी है, कुछ न कुछ करते रहिए मेरे प्यारे श्रोता बंधु। वो कहते हैं ना, एक ही आप लाइन में चलेंगे तो थक जाएंगे जीवन से, बोर हो जाएंगे, इसलिए कुछ न कुछ नवीनता जरूरी है। और हाँ, जैसे कोई हमको कह दे कि आपको तो अब घर में ही रहना है, एक सप्ताह के लिए घर से बाहर नहीं निकलना है, कोई एक सप्ताह तक घर में नहीं रह पाएगा, घर में सब कुछ है, खाना पीना उठना बैठना पंखा लाइट हवा सब कुछ है, पानी वगैरह, फिर भी हम एक सप्ताह घर में टिक नहीं सकते, अच्छा नहीं लगेगा, अरे हम क्या घर में ही बंधे रहेंगे क्या, क्यों, हमें भी जीने का अधिकार है, इस तरह की बगावत भरी वाणी बोलने लगेंगे कि हम तो बाहर जाएंगे, कौन रोक सकता है हमें। हर कोई चेंज चाहता है। अब बाहर क्या है, बाहर जाएंगे तो भी आना तो हमको घर में ही है, मिलेगा तो सब कुछ घर में से ही, फिर भी इंसान बाहर जाता है, क्यों जाता है, कि भाई चार जनों से मिलेंगे, चार जनों से बात करेंगे, कुछ नया देखेंगे, कुछ सीखेंगे, इसलिए हम घर से बाहर जाते हैं, है ना। तो कहने का भाव यही है कि जीवन में नवीनता बनी रहनी चाहिए, उसके लिए
ज्यादा खर्चा करने की जरूरत नहीं है. ऐसा नहीं है कि भाई नवीनता लाने के लिए हमें बड़े बड़े खर्चे करने पड़ रहे, हमें नहीं चाहिए नवीनता. ऐसा नहीं है, बिना खर्चे के भी आप नवीनता कर सकते हैं. जैसे कि भोजन के लिए आपको कहा है, जैसे कि कपड़ों के लिए कहा है कि भाई दो ड्रेस आप रोज पहनेंगे तो वो जल्दी फटेगी, चार ड्रेस पांच ड्रेस रखेंगे तो थोड़ी देर से फटेगी. और नवीनता आती रहेगी, आज ये पहन लिया, दूसरे तीसरे दिन वो पहन लिया, तो नवीनता आती रहेगी, बोर भी नहीं होंगे, है ना. तो ऐसा नहीं है कि हमें बड़े बड़े खर्चों के द्वारा ही जीवन में नवीनता लानी है. आप चाहो तो आप किसी भी तरह नवीनता ला सकते हो. जैसे आप घर से बाहर निकले हो, कोई बुजुर्ग है उनकी मदद कर लीजिए. जैसे बहुत सारे हम गांवों में देखते हैं पानी की व्यवस्था नहीं होती, बुजुर्ग भी जा करके दूर दूर से पानी लेके आते हैं, तो उनको कहिएगा कि आप रुक जाइए, हम आपके लिए ले आते हैं. ये भी एक नवीनता आ गई ना कि चलो कुछ तो किया आपने, किसी के लिए खुशियाँ मिली आपको अंदर से ही, वो भी दुआ देंगे और अंदर से भी खुशी होगी. कोई बच्चा है उसके माता पिता नहीं पढ़ा रहे हैं, गरीब का बच्चा है, तो आप उसको थोड़ी सी मदद कर लीजिए, पढ़ा दीजिए. ये भी एक नवीनता आ गई कि चलो कुछ तो किया है और हमारी पढ़ाई भी वो बनी रहती है. नहीं तो फिर एक समय आता है हम सब कुछ भूल जाते हैं. तो अपने जो भी शौक है, मौज है, उनको जिंदा रखिए और किसी न किसी तरीके से उसको आप आजमाते रहिए बीच बीच में, ठीक है. और कुछ नया सीखते रहिए, नया सीखेंगे तो जीवन में स्फूर्ति रहेगी और जीवन में खुशियाँ बनी रहेगी कि मैंने कुछ सीखा है. जैसे कि हमारे श्रोता बंधु ने बताया ना कि कैसे वो कपड़ों में भी नई नई डिज़ाइन डालते हैं, फिर खुशी तो मिलती है ना, अरे वाह मैंने तो सोचा ही नहीं कि ये डिज़ाइन मैं बना सकता हूँ या बना सकती हूँ, मैंने बना दी तो खुशी हुई ना. स्वयं से वो कहते हैं नवीनता ला करके स्वयं को ही खुश रखना है. दूसरों के साथ तो खुशी से रहना ही है, दूसरों को खुशियाँ देनी ही है, लेकिन सबसे पहले खुशी किसको मिलती है, स्वयं को मिलती है ना, कि मैं कुछ नया कर रही हूँ तो मुझे खुशी मिलेगी. जैसे मैं आपके समक्ष कभी दो पंक्तियाँ बना बना करके रखती रहती हूँ, तो अब आपको कितनी खुशी मिलती है मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे खुशी मिलती है कि मैंने कुछ बनाया और आपके समक्ष पिरसा, है ना. तो नवीनता लाते रहिए, यही खुशनुमा जीवन का राज है कि नवीनता से ही हमारा जीवन और भी सुचारू रूप से चलता है और एनर्जी बनी रहती है. आइए अब फिर से सुनेंगे गीत, उसके बाद पुनः लौट करके आ रहे हैं. कहीं भी जाइएगा नहीं, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन.

0: हाय फ्रेंड्स, मैं हूं प्रवीण मंगल, शूद्र का चरना, और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं।
1: सवाल चाहे स्वास्थ्य का हो या सफाई का, जवाबों के लिए सुनते रहिए रेडियो मधुबन।
2: प्यारे श्रोता बंधुओं, समय अब समाप्त होने को आया है। आज के कार्यक्रम आपने सुने हैं, बहुत ही सुंदर कार्यक्रम था। विचार आप सभी ने सुना है कि मीठे वचन हमेशा बोलिए, इससे आपको सम्मान भी प्राप्त होगा, प्यार स्नेह सभी का मिलेगा। और रेसिपी में आज आपको क्रिएटिव तरीके से कैसे एप्पल काटा जाता है, अमरुद काटा जाता है, कैसे पापड़ आप समोसे की तरह डिजाइन बना कर रखेंगे या मसाला पापड़ बनाएंगे वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीज़ें। ऐसे नहीं कि खाली हमने सिखाई वही है, बहुत सारी चीज़ों को आप क्रिएटिव तरीके से बना सकते हैं, सजा सकते हैं। और खुशनुमा जीवन की बातें भी बहुत ही अच्छी हुई। तो आज का प्रश्न बहुत ही सुंदर था कि 5 जून को हम सभी कौन सा दिवस मनाएंगे और पृथ्वी दिवस कब है। हमारे श्रोता बंधुओं ने सभी ने सही जवाब दिया है। सबसे पहले फोन कॉल आया था माउंट आबू ढूंढई गाँव से मुरलीधर जी का। उन्होंने कहा है कि 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस है।

और पृथ्वी दिवस कल है 22 अप्रैल को। सुरेश भाई चोटाना से महेश भाई शर्मा आबू रोड से, इन्होंने गलत जवाब दिया है। इन्होंने कहा 5 जून को मदर्स डे मनाएंगे, वो गलत है। फिरोज भाई पालनपुर से, आपका भी जवाब सही है। दयाराम जी लाखनी से, तो आप सभी ने सही जवाब दिया है, इसके लिए ढेर सारी तालियां। और बाकी सभी ने बहुत ही अच्छी कोशिश की है, इसके लिए भी सभी के लिए ढेर सारी तालियां। आज का मीठा मोती इस प्रकार है, दूसरों को बदलने का प्रयत्न करने के बजाय स्वयं को बदल लेना कहीं अधिक अच्छा है। अब मैं आपको नवीनता पर एक प्यारी सी कविता सुनाऊंगी, आप लेंगे कविता का आनंद और मुझे देंगे इजाजत। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए राम राम सा, जय श्री कृष्ण सा, गणिक खम्मा सा। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन। कल एक झलक जिंदगी को देखा, कल एक झलक जिंदगी को देखा, वो राहों पे मेरी गुनगुना रही थी, फिर ढूंढा उसे इधर उधर, फिर ढूंढा उसे इधर उधर, वो आंख मिचोली कर मुस्कुरा रही थी। एक अरसे के बाद आया मुझे करार, एक अरसे के बाद आया मुझे करार, वो सहला के मुझे सुला रही थी। हम दोनों क्यों खफा है एक दूसरे से, हम दोनों क्यों खफा है एक दूसरे से, मैं उसे और वो मुझे समझा रही थी। मैंने पूछ लिया, क्यों इतना दर्द दिया कमबख्त तूने, मैंने पूछ लिया उसे, क्यों इतना दर्द दिया कमबख्त तूने, वो हंसी और बोली, मैं जिंदगी हूं पगली, तुझे जीना सिखा रही थी, मैं जिंदगी हूं पगली, तुझे जीना सिखा रही थी। दो पल की जिंदगी है, आज बचपन कल जवानी, परसों बुढ़ापा फिर खत्म कहानी। दो पल की जिंदगी है, आज बचपन कल जवानी, परसों बुढ़ापा फिर खत्म कहानी। चलो हम कर जिए, चलो हम सभी हंस कर जिए, चलो खुल कर जिए, फिर ना आने वाली ये रात सुहानी, फिर ना आने वाली ये रात सुहानी, फिर ना आने वाला ये दिन सुहाना। कल जो बीत गया सो बीत गया, क्यों करते हो आने वाले कल की चिंता। कल जो बीत गया सो बीत गया, क्यों करते हो आने वाले कल की चिंता। आज अभी जियो दूसरा पल हो ना हो, आज और अभी जियो दूसरा पल हो या ना हो, आओ जिंदगी को गाते चले, कुछ बातें मन की करते चले, आओ जिंदगी को गाते चले, कुछ बातें मन की करते चले, रूठों को मनाते चले, आओ जीवन की कहानी प्यार से लिखते चले, कुछ बोल मीठे बोलते चले, कुछ रिश्ते नए बनाते चले। क्या लाए थे क्या ले जाएंगे, क्या लाए थे क्या ले जाएंगे, आओ कुछ लुटाते चले, आओ सबके साथ चलते चले, जिंदगी का सफर यूं ही काटते चले।

0: बहू मुझे लड़का ही चाहिए।
1: माँ माँ माँ माँ माँ माँ अभी तो भगवान ने मेरे हाथों पे किस्मत की लकीरें भी नहीं बनाई और उनसे पहले ही

0: कि मैं आप पर बोझ बनूंगी, तो आप इस ऑपरेशन पर भी खर्चा मत करना। मैं ही भगवान जी से कह दूंगी कि मेरी माँ मेरा मरा मुंह देखे।
1: माँ अब तो बस करो।
2: बहू क्या सोच रही हो, घर चले, नन्ही परी के स्वागत की तैयारियां भी तो करनी है। चलो
3: कोख को कवर ना बनाए, खुशी खुशी बिटिया को दुनिया में लाए।
4: रेडियो मधुबन 107.8 FM सुन रहे हैं आप, कार्यक्रम है लव यू जिंदगी। दोस्तों कभी कभी ना जब हम पढ़ाई करते हैं तो कुछ सब्जेक्ट टफ लगते हैं, कुछ आसान लगते हैं, पर फिर भी जिंदगी का सब्जेक्ट सबसे ज्यादा मुश्किल लगता है। कभी कभी कभी कभी अपनी भावनाओं को समझना ही आसान नहीं लगता, और लगता है बाकी चीजें तो समझ में आ रही हैं, पर खुद को कैसे समझे। तो अगर सवाल आपके दिल में भी है तो जवाब हमारे पास है, क्योंकि ये कार्यक्रम ही ऐसा है। दोस्तों हमारे साथ जुड़ जाते हैं हमारे एक्सपर्ट। सबसे पहले हम स्वागत कर रहे हैं कल्पना जी का, सीधा ग्लोबल अस्पताल से आप हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप एक साइकोथेरेपिस्ट भी हैं, स्पिरिचुअल काउंसलर भी हैं, और बहुत सारे लोगों की मदद करते हैं रेडियो के माध्यम से भी। आपके साथ जुड़ते रहते हैं हम। दीदी आपका बहुत बहुत स्वागत है।
5: शुक्रिया आरुषि जी, बहुत अच्छा लगता है अपने श्रोताओं से मिलकर, उनसे बातें करके, और खास कर अपनी इमोशंस को उनके साथ शेयर करके। जो हल्कापन, जो रिलैक्सेशन फील होता है वो किसी और ही लेवल का होता है।
4: बिल्कुल, और वो हम समझ रहे हैं धीरे धीरे, बहुत इजीली समझ रहे हैं, आसान भाषा में समझ रहे हैं। हमारे साथ जुड़ गए हमारे दूसरे एक्सपर्ट श्रीनिधि जी, जो कि मोटिवेशनल स्पीकर है, साथ साथ जाने माने एंकर और आरजे भी है। श्रीनिधि जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है।
6: बहुत बहुत शुक्रिया आरुषि जी। कल्पना जी नमस्कार, हमारे सभी श्रोताओं को नमस्कार। और एक और लव यू जिंदगी के एपिसोड में आते हैं तो कुछ और सीखने की तैयारी के साथ मैं वापस आ गए।
4: और हम बात कर रहे थे सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, यानी अपनी भावनाओं यानी इमोशंस के बारे में। पिछले एपिसोड में भी बातें हुई थी, उसी को हम आज कंटिन्यू करेंगे। और सबसे पहले एक सवाल आया था जो मैं आप दोनों से ही जानना चाहूंगी, वो ये, किसी ने पूछा कि बहुत अच्छा चल रहा होता है सब कुछ, कुछ चेंज भी नहीं हुआ होता है, लेकिन अचानक से बुरा लगने लगता है या डाउन लगने लगता है, लो फील होने लगता है, और कुछ हुआ भी नहीं होता है, तो ये अंदर क्या बदल जाता है कि ऐसा होता है कि अंदर उदासी लगने लगती है विदाउट एनीथिंग हैपनिंग, कैसा होता है, ऐसे क्या समझे।
5: जी बिल्कुल, ऐसा हो सकता है। हमारी लाइफ एक, जैसे बोलते हैं ना, हार्ट का ये होता है, स्कैनिंग होती है, एनालिसिस होता है, तो हमारी लाइफ सीधी सीधी रेखा में नहीं है, तो हमारा ग्राफ कभी ऊपर कभी नीचे मूड का हो सकता है। इसमें बहुत ज्यादा हाथ होता है हमारे ब्रेन के केमिकल्स का। कई बार हमारे ब्रेन में कुछ ऐसी गड़बड़ियां उत्पन्न होती है कुछ समय के लिए, जिससे हमारा मूड, हमारी फिजिकल बॉडी, हमारी मेंटल हेल्थ अफेक्टेड होती है। और इसके लिए जब इस बात की समझ आती है कि ब्रेन के केमिकल्स का कुछ अप डाउन है, तब डॉक्टर की सलाह लेना जरूरी है, किसी काउंसलर या किसी गाइड या साइकोथेरेपिस्ट को मिलकर इसके बारे में पूछताछ करना जरूरी है। परंतु ये हमारा जो सिम्टम है, ये 3 हफ्तों से ज्यादा अगर चले तभी हमें डॉक्टर की सलाह की जरूरत। अदरवाइज तो 24 घंटे में भी 3 बार या 4 बार हमारा मूड चेंज हो सकता है। सो ये एक नॉर्मल चीज है, जिसके कारण घबराने की जरूरत नहीं। हाँ, इसके लिए हमें कुछ पैटर्न्स को पहचान कर उसके लिए कुछ स्ट्रेटजी बनानी पड़ती है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर हफ्ते में 2 या 3 बार मेरा मूड अपसेट हो जाता है या मुझे लो फील होता है और मुझे कहीं मन नहीं लगता है, तो वो कौन सा ऐसा समय है, क्या पैटर्न है मेरे मूड के अप डाउन होने का, उसको एक बार पहचान लेंगे और फिर उसके लिए स्ट्रेटजी बनाएंगे। जैसे मूड ठीक नहीं है तो हो सकता है मैंने नींद नहीं अच्छे से की है तो मैं अच्छी नींद ले लूं। मूड ठीक नहीं है, गुस्सा आ रहा है, चिड़चिड़ाहट हो रही है, हो सकता है मैंने खाना ठीक से नहीं खाया है या मुझे समय पर खाना नहीं मिला है, नींद नहीं हुई है। दूसरा, हो सकता है मैंने बाहर थोड़ा एक्सपोजर नहीं किया, बहुत लंबा समय तक अंदर ही अंदर बैठ के काम किया है। जैसे कई लोग

0: कंप्यूटर पर काम करते हैं, वर्क फ्रॉम होम करते हैं और घर में बैठे रहते हैं, बाहर जाते नहीं है, तो बाहर की खुली हवा का, नेचर के सानिध्य का एक्सपोजर नहीं हुआ है, तो बंद बंद वातावरण में हो सकता है मेरा मूड खराब। तो सबसे पहली बात है अपने पैटर्न्स को पहचानना, और दूसरी बात है उस उदासी भरे मूड से अपने आप को बाहर निकालने की स्ट्रैटेजी बनाना। तो स्ट्रैटेजीज में हम क्या बना सकते हैं कि म्यूजिक सुन लिया, शॉर्ट ब्रेक ले लिया, 10 मिनट का एक्सरसाइज कर लिया, पानी पी के बाहर घूम के आ गए, खुली हवा में चले गए, किसी दोस्त से बात कर ली। ज्यादातर समय पर हमें जिस जगह पर हम हैं वहां से दूर किसी नेचुरल जगह पर जाकर खुली हवा में सांस लेने की आवश्यकता होती है। सो इस तरह से हम अपनी स्ट्रैटेजीज को बना सकते हैं।
1: ओके, इंटरेस्टिंग। तो पहले मतलब फिगर आउट करें या पहले उससे बाहर निकलने की स्ट्रैटेजी बनाएं, पहले क्या करें?
0: नहीं, पहले फिगर आउट करना जरूरी है, अपने पैटर्न को पहचानना जरूरी है। जैसे कि महिलाएं होती हैं, उनमें मूड स्विंग्स तब होते हैं जब उनको पीरियड्स आने वाले होते हैं या पीरियड्स जा रहे होते हैं, या पीरियड्स के पहले 3-4 दिन और उसके बाद 1-2 दिन उनका मूड डिस्टर्ब रहता है। तो ये पैटर्न है, इस पैटर्न के लिए हम स्ट्रैटेजी बना सकते हैं।
1: ओके, तो हमें समझना है और फिर उसको स्ट्रैटेजी बनानी है। उसके लिए परेशान होने की बहुत जरूरत नहीं है कि क्यों हो रहा है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, क्या हो गया। मतलब वो हम कभी कभी सिनारियोज इमेजिन करने लगते हैं, इसकी बात बुरी लगी, उसकी बात बुरी लगी, बुरा लग रहा है, और फिर ढूंढने लगते हैं कि किस बात से बुरा लगा। तो उस पर ज्यादा ओवर थिंक ना करें, पैटर्न को समझें और स्ट्रैटेजी बनाएं। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग अप्रोच है। श्रीनिधि जी, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे इसमें?
2: मैं समझता हूँ जो कल्पना जी बात कह रहे थे, हम अक्सर ये अपने आप को रीड करने के बारे में सोचते नहीं। ये मूड खराब है तो ये समझने की जरूरत है कि क्यों खराब है। कभी कभार जैसे रिपीटेडली मूड खराब होता है, या समझ लीजिए एक पैटर्न बना हुआ है कि ये चीजें होती है तो मेरा मूड खराब होता है। जैसे कल्पना जी कह रहे थे, समझो आपको भूख लगी है, आपको खाना नहीं मिला है, तो चिड़चिड़ा होना स्वाभाविक है। बहुत सारे लोगों को, मैं भी होता हूँ, कि अगर मैं भूखा हूँ और मुझे खाना खाने नहीं दिया जा रहा है, ऐसा नहीं कि कोई मेरे को खाना खाने से रोक रहा है, बट मैं काम एक के बाद एक काम आता जा रहा है, कोई मिलने आ रहा है, फिर मतलब मैं मुझे सांस लेने की फुर्सत नहीं मिल रही है, या मैं थोड़ा अपने आप को स्पेस देना चाहता हूँ, एक काम से दूसरे काम के बीच में मैं थोड़ा सा गैप रख पाना चाहता हूँ, और वो नहीं हो पा रहा है तो मैं चिड़चिड़ा हो जाता हूँ। मैं समझता हूँ इस बात को, और मैं कोशिश करता हूँ कि अगर जब ऐसी सिचुएशंस हो रही होती है तो मैं जानबूझ के उसके बीच में स्पेस क्रिएट करने की कोशिश करता हूँ। तो कोई व्यक्ति मेरे ऊपर हावी हो रहा होता है, वो बोलते नहीं हमको अभी टाइम चाहिए, तो अब मैंने ना कहना सीखा है, मैंने कहा है कि नहीं अभी मैं नहीं दे सकता, 10 मिनट बाद आप मेरे से मिल सकते हैं। तो मैं इस तरीके से अपने लाइफ स्टाइल के बीच में मैं ऐसे मोमेंट्स चुरा रहा हूँ, अपने लिए स्पेसेस क्रिएट कर रहा हूँ, जिससे मैं अपने इमोशंस को बेहतर तरीके से मैनेज करता हूँ।
1: Okay.
2: और खाने की बात तो है कि मैं खाने के टाइम पे किसी और चीज को टाइम नहीं देता। मैं कहता हूँ कि भाई मैं खाना खा के बाद में बात करूँ, अभी नहीं बात करूँ। तो बहुत बार ये ओवरवेलमिंग हो जाता है, तो इन चीजों को जानना जरूरी है कि क्या चीजें आपको ट्रिगर करती हैं, क्या चीजें आपको ऐसे जोन्स में पुश करती हैं जो आपको इरिटेट करती हैं, या आपको गुस्सा दिलाती हैं, या आपको सैड फील कराती हैं, या आपको एंग्शियस बनाती हैं, अनेक इमोशंस हैं। तो इन चीजों के बारे में खुद अपनी परख करना जरूरी है, और जब मैं अपने आप को ऐसे समझ लेता हूँ, जानता हूँ कि मैं इन चीजों से ट्रिगर होता हूँ, ये चीजें मेरे ट्रिगर्स हैं, तो फिर आपको उन ट्रिगर्स के सॉल्यूशंस भी पता होते हैं। अगर यही ना पता हो कि भाई चाकू से कट सकता है हाथ, तो फिर आप चाकू के साथ खेलते रहेंगे। जब आपको पता चल जाए कि हाँ ये मैं प्रोन हूँ इस चीज के लिए, जैसे कुछ लोगों के लिए हम मेडिकल लैंग्वेज में कहते हैं कि कुछ लोग कुछ इन्फेक्शन के लिए प्रोन होते हैं, उनके बॉडी में कुछ फिजिकल सिस्टम्स वीक होते हैं, जैसे कुछ लोग होते हैं उनको सर्दी खांसी जल्दी हो जाती है, कुछ लोग होते हैं जो लाउड म्यूजिक या कुछ ऐसा हवा में बदलाव होने की वजह से उनको हेडेक होने लगता है। तो हम सबको पता होना चाहिए कि क्या चीजें हैं जो हम प्रोन हैं, किन चीजों के लिए हम प्रोन हैं, क्या चीजें हमें तकलीफ में डाल। तो अगर वो समझ जाते हैं तो फिर शायद उन्हें बेहतर तरीके से मैनेज किया जा सकता है।
1: ओके, तो यानी हमें कुछ बाउंड्रीज भी सेट करनी जरूरी है, जो हमें लगता है कि हमें ट्रिगर कर रही है या हमें परेशान कर रही है, जिसके कारण हमारी मूड चेंज हो रहा है, इफेक्ट हो रहा है, तो बाउंड्रीज सेट करें और ना कहना भी सीखें। ये भी समझ में आया, कई बार ना कहना नहीं आता है और मुश्किल लगता है। यदि आप इस बारे में कुछ कहना चाहेंगे कि हम बाउंड्रीज क्यों नहीं बिल्ड कर पाते, या बाउंड्रीज एक्चुअली होती क्या है, क्या हमारी भावनाओं से लिंक्ड है, इसका कोई कनेक्शन है?
0: मैं बिल्कुल सहमत हूँ श्री जी से कि अपनी बाउंड्रीज को सेट करना और ना कहना सीखना बहुत जरूरी है। मैं कल का ही एग्जाम्पल बताती हूँ, कोई मुझे शेयर कर रहे थे कि अरे मैंने इनको इतना गाइड किया, कदम कदम पर इनको किया, लास्ट मोमेंट पर भी ये मुझे से पूछ रहे हैं बात, इतना डिपेंडेंट हो रहे हैं। तो जब हम लोगों को अपना टाइम देते हैं और उस टाइम की हम कदर नहीं करते हैं तो लोग हमारे ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं, वो हमारे टाइम की भी कदर नहीं करते हैं और छोटी छोटी बात के लिए वो हमसे ही सपोर्ट लेना चाहते। तो ऐसे समय पर कोई भी व्यक्ति आपके पास आए या आपसे कुछ फेवर ले या कुछ मांगे तो आपको आपकी बाउंड्रीज सेट करने आना चाहिए कि भाई इतना तक मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ और इससे आगे आपको खुद को हेल्प करनी होगी।
1: ओके,
0: क्योंकि मेरी लिमिटेशंस ये है, इस टाइम में ही मैं आपसे मिल सकता हूँ क्योंकि इसके अलावा जो मेरा टाइम है वो मेरा मेरे लिए टाइम, मैं उसमें अवेलेबल नहीं हूँ। सो नो कहना आना चाहिए। कई प्रिय प्रेशर में आ जाते हैं कि चलो यार पार्टी में चल रहे हैं, बर्थडे पार्टी है, सब कुछ फ्री ही है, खाना पीना सब कुछ मिल जाएगा, चलो फोर्स करते आप अपनी पढ़ाई का, अपने इम्पोर्टेंट काम छोड़कर, पढ़ाई छोड़कर आप पार्टीज में शामिल हो जाते। जब एक बार आप पार्टीज में गए, उनके साथ समय बिताया, फिर नेक्स्ट टाइम के लिए भी वो आपको समझते है कि हाँ इनका टाइम तो हमारे साथ गुजारने के लिए अवेलेबल है।
1: तो ग्रांटेड ले लेते हैं जैसे आपको,
0: बिल्कुल कई आपके काम रह जाते हैं और आपको इन्हीं के साथ टाइम स्पेंड करना पड़ता है। अच्छा, इसके पीछे साइकोलॉजी ये है कि मैं सबको खुश करना चाहती, किसी को ना नहीं कहना चाहती, कोई नाराज हो गया तो, मेरे से बात करना छोड़ दिया तो, या मेरे बारे में कुछ बुरा सोच लिया तो, इसलिए हम उसको कहते पीपल प्लीजिंग पर्सनैलिटी, सबको संतुष्ट करना चाहते। लेकिन हम सबको हर समय संतुष्ट करते करते खुद की टाइम, खुद की एनर्जी, खुद का हेल्थ, खुद की नींद, खुद का कंफर्ट सब कुछ गवा चुके हो और फिर हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि मेरे लिए तो मेरे पास टाइम ही नहीं। घर की मदर्स का ऐसे ही होता है, सबको खुश करने के हाँ सिलसिले में वो खुद पर ध्यान देना ही छोड़ देती।
1: ओके, तो मतलब अपने लिए टाइम निकालना भी बहुत जरूरी है और पीपल प्लीजिंग ये एक बहुत बड़ा विषय है, मुझे लगता है इसके बारे में भी बात करेंगे, क्योंकि कई बार हम इसमें इतने इन्वॉल्व हो जाते हैं कि खुद की पर्सनालिटी भी दूसरों की तरह बनती जाती है। या हमने पिछले एपिसोड्स में भी बात की थी कि चेंज किसके लिए होना चाहते हैं, आपने भी वो कहा था कि आप चेंज पॉजिटिवली हो रहे हैं या फिर किसी को देख के हो रहे हैं, वहां भी डिफ्रेंशिएट करना बहुत जरूरी है। श्रीनिधि जी, आप कुछ कहना चाहेंगे, बाउंड्रीज क्या होती है, थोड़ा सा अगर एक्सप्लेन करें इसे।
2: बाउंड्रीज मैं समझता हूँ एक हर व्यक्ति का एक कंफर्ट का दायरा होता है, अलग शब्दों में लोग इसे कंफर्ट जोन भी कहते हैं।
1: ओके,
2: कंफर्ट जोन्स को आप अलग अलग तरीके से डिफाइन कर सकते हो। कभी कभार हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाने की भी जरूरत होती है जब हम कुछ अचीव करना चाहते हैं या फिर हम कुछ नया ट्राई करना चाहते हैं या ग्रो करना चाहते हैं। मगर कंफर्ट जोन और बाउंड्री के बीच में अंतर ये है कि हम सबकी हदें हैं कि हम कुछ चीजें अपनी कैपेसिटी तक मैं इतना कर सकता हूँ, इसके बियॉन्ड कर पाना मैं अपने आप को टैक्स कर रहा हूँ, यानी मैं अपने आप को स्ट्रेच कर रहा हूँ कि मैं कंफर्टेबल तो नहीं हूँ बट मैं फिर भी मतलब अपने आप को खींच रहा हूँ कि भाई चलो ठीक है, इनके लिए तो थोड़ा बहुत तो करना पड़ेगा। तो ये चीज समझ में आनी चाहिए कि जब आप अपने आप को खींच करते हो, स्ट्रेच करते हो, तो आपको बाउंस बैक करने का भी मौका मिलना चाहिए कि वो आपने स्ट्रेच किया है उसको वापस रिलैक्स होने का मौका मिलना चाहिए। तो ये हम सबको पता होना चाहिए कि मैं अपने आप को कितना स्ट्रेच कर सकता हूँ, क्या मेरी बाउंड्रीज हैं, क्या मेरी लिमिट्स। और कभी कभार जब हम जैसे कल्पना जी अभी कह रहे थे कि पीपल प्लीजिंग पर्सनैलिटी की जब बात करते हैं तो हम हर चीज के लिए हाँ कह देते हैं। अक्सर अंग्रेजी में इसको यस मैन सिंड्रोम कहा जाता है कि हर चीज के लिए यस कहते हैं, और आजकल प्रोफेशनल वर्ल्ड में हम इसको कहते हैं कि यस बॉस, हर चीज के लिए यस बॉस कहना। जरूरी नहीं है कि बॉस आपसे कोई चीज कह रहे हैं, आपका काम आपसे कोई रिक्वायरमेंट दे रहा है, बट आपको ये पता होना चाहिए कि आप उस चीज को कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब ये नहीं कि आप नई चीजें करने के बारे में सोचे नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि आप नवीनता के बारे में, इनोवेशन के बारे में, अपने आप को ग्रो करने के बारे में सोचे नहीं। इसका मतलब ये है कि जस्ट बिकॉज आप अपने बॉस को खुश करना चाहते हैं इसलिए आप सारा काम अपने ऊपर ले लेना चाहते हैं, आप ऑलरेडी ओवरवर्क्ड हैं, आपके पास ऑलरेडी 10 काम है करने के लिए, तो जस्ट बिकॉज आपको दिया जा रहा है आप बोल रहे हैं हाँ हाँ ये भी दे दो कोई बात नहीं, और आपको 10 बजे 11 बजे 12 1 बजे तक लोग बैठ के काम कर रहे हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि वो ना नहीं कर पाए और इसकी वजह से उनके पारिवारिक संबंध खराब होते हैं, बच्चों के लिए टाइम नहीं दे पाते, या हस्बैंड वाइफ के लिए, या घर में पेरेंट्स रहते हैं या जो भी रहते हैं उनके लिए हम टाइम ना देकर अपने आप को ओवरवर्क महसूस करते हैं। तो ये अलग अलग फील्ड्स में लागू होता है, ऐसा नहीं है कि बाउंड्रीज सिर्फ हमारे पर्सनल वेलबींग के स्पेस में है, हमारे प्रोफेशनल स्पेसेस में भी होता है। हम दोस्तों के लिए भी बहुत कुछ करना चाहते हैं, हमारे फ्रेंडशिप्स हैं तो वहां पर हम अक्सर दोस्तों को कहते ही हैं कि भाई तुम्हारे लिए तो जान हाजिर है। ये कहने वाली बात तो शायराना लग सकती है कि जान हाजिर है, इसका मतलब ये नहीं कि वो सामने वाला मुझसे जान मांगेगा और ना ही मैं जान देने वाला हूँ उसके लिए। कहने का भाव ये है कि मैं तुम्हारे लिए अपने लिमिट्स को पार करके करने के लिए तैयार हूँ, मगर क्या ऐसा आप हर किसी के लिए करना पसंद करेंगे?
1: संभव भी नहीं है, शायद
2: संभव नहीं है, क्योंकि वहाँ उस रिलेशनशिप में वो गिव एंड टेक है, वहाँ पर एक कंफर्ट जोन है, हम दोनों एक दूसरे से कुछ चीजों के प्रति कंफर्टेबल हैं, परिवार में भी हम लोगों के लिए करते हैं, मगर
1: नहीं करना चाहते तो सेल्फिश फील करते हैं कि अरे मैं
2: मैंने किया नहीं, मेरा परिवार है और मेरी
1: बाउंड्रीज इसमें कैसे बीच में आ सकती है, हैव टू गिव।
2: जैसे अभी कल्पना जी होम मेकर्स का उदाहरण दे रहे थे, ऐसे महिलाएं जो घर का काम सारा देखती है, घर संभालती है, वो अपने आप में एक फुल टाइम जॉब है घर संभालना, तो वहां पर भी उनको अपना स्पेस चाहिए। जब कोविड का समय था, कोरोना काल था, उस समय पर हमने देखा कि बहुत सारी महिलाओं को बहुत ज्यादा स्ट्रेस फेस करना पड़ा क्योंकि बच्चे भी घर पे हैं, हस्बैंड भी घर पे हैं, और जो लोग घर से बाहर चले जाते थे तो सुबह उनके लिए नाश्ता बना के दे दिया, टिफिन बॉक्स पैक करके दे दिया, आप शाम को आएंगे बच्चे तो उनको देखा जाएगा, हस्बैंड रात को आएंगे तो उनको देखा जाएगा, तब तक उनके पास एक ब्रीदिंग स्पेस था, वो अपने लिए कुछ करना चाहते थे तो वो सब कुछ कर सकते थे, अपना टाइम टेबल था। अब अचानक वो टाइम टेबल मेसअप हो गया, ये सारे टाइम घर पे हैं और घड़ी घड़ी पूछ रहे मम्मी मेरे को ये दो ऐसा करो वैसा करो, तो उसकी वजह से स्ट्रेस लेवल्स बाउंस हो गए। और ये इसलिए भी होता है क्योंकि उस समय पर एक नेचुरल बाउंड्री एग्जिस्ट करती थी कि बच्चे घर पे नहीं है, हस्बैंड घर पे नहीं और मैं अपना काम कर रहा हूँ, बट जब वो बाउंड्रीज हट गई तो सब कुछ मिक्स हो गया, तो मैनेज करना मुश्किल हो गया।
1: इसलिए कहीं ना कहीं पर्सनल बाउंड्रीज भी जरूरी है। दीदी मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि कुछ ऐसी भावनाएं हैं जैसे हमें लगता है कि वो प्यार है, लेकिन उस प्यार में जब हम कुछ चीजें लिमिट लगा देते हैं या बाउंड्री सेट करते हैं तो गिल्टी या सेल्फिश फील करता है, बुरा फील करता है, तो क्या ये फील करना चाहिए या नहीं चाहिए?
0: बहुत ही अच्छा सवाल पूछा आपने। गिल्टी फील करना ये सबसे बड़ी सजा है इंसान के लिए, चाहे आप गलती करो या ना करो। कई लोग ऐसे हैं जिनकी आदत होती है कि वो हमेशा गिल्टी फील करते रहते हैं। गिल्टी फील करने का कारण है लो सेल्फ एस्टीम एंड सेल्फ लव की कमी। खुद के महत्व को, खुद की स्ट्रेंथ को न जानकर, उसकी परवाह न करना, उसको इम्पोर्टेंस न देना, इस वजह से सेल्फ वर्थ को न जानने की वजह से गिल्टी फील करते हैं। दूसरा सेल्फ लव नहीं, खुद से प्यार नहीं करते हैं, खुद को अप्रिशिएट नहीं करते हैं, इसलिए छोटी छोटी बात में जब दूसरों को हम प्रसन्न नहीं कर पाते, संतुष्ट नहीं कर पाते, तो हमें गिल्टी फील होता है। जैसे मदर का भी ही मैं एग्जाम्पल दूंगी, जो होम मेकर्स है उनका, कि समझो फॉर एग्जाम्पल एक घटना बताती हूँ, बच्चा आया स्कूल से, है ना, मैं मेरी ही लाइफ का उदाहरण देती हूँ, बच्चे को चावल पसंद है लेकिन माँ ने आज चावल किसी कारण से नहीं बनाए, रोटी सब्जी ही बना के रखी। बच्चा स्कूल से आया, उसने बोला मम्मी चावल कहाँ है, तो कहा बेटा आज तो नहीं बने हैं, आज तुम रोटी सब्जी ही खाओ। तो बच्चे ने रोना धोना शुरू कर दिया कि तुम्हें तो पता है ना मुझे चावल ही पसंद है, फिर तुमने चावल क्यों नहीं बनाए और अभी मुझे तो चावल ही चाहिए। तो माँ को गिल्टी फील होता है कि अरे मेरे बच्चे को ये चाहिए था और मैंने ये नहीं बनाया या नहीं बना पाई या अभी है नहीं घर में उस स्टॉक में, तो उसे गिल्टी फील होता है। अब बताइए क्या उस माँ को गिल्टी फील होना चाहिए या उसे बच्चे को ऐसा ट्रेन करना चाहिए कि बच्चा जब कुछ चीज नहीं है तो उसके लिए जिद करने की जरूरत नहीं है। अच्छा ठीक है, बच्चे ने तो जिद किया लेकिन मुझे गिल्टी फील नहीं करना है, मुझे करने की आवश्यकता नहीं है, जो उसके लिए जरूरी था मैंने किया है और किसी कारण की वजह से मैं उसकी पसंदीदा चीज नहीं बना पाई। तो यहाँ पर सेल्फ रिस्पेक्ट और सेल्फ एस्टीम और सेल्फ वर्थ को जानना, अरे मैंने सुबह से लेकर दिन भर इनके लिए सब कुछ करती हूँ मैं, अब छोटी सी चीज अगर मैं नहीं कर पाई तो उसके लिए मुझे गिल्टी फील करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा मैं बच्चे के साथ बात करूंगी, उसको एंटरटेन करूंगी, उसको अच्छे से समझाऊंगी, वो समझेगा, नहीं समझा तो थोड़ी देर के लिए रो लेगा और चुप हो जाएगा, भूख लगेगी तो खा लेगा। सो ये है बच्चों का अपने माँ बाप को मैनिपुलेट करने का तरीका। अब वो हमारी भावनाओं से खेल रहे
1: हैं
0: और हम गिल्ट में चले जा रहे
1: हैं। ओके, तो फील नहीं होना चाहिए मतलब। लेकिन दीदी जैसे ये आपने एक मदर के कॉन्टेक्स्ट में बताया, क्या मैं आप दोनों से पूछना चाहूंगी कुछ यूथ के कॉन्टेक्स्ट में भी हम इसे समझ सकते हैं क्या कि कब वो गिल्टी फील करते हैं या मतलब नहीं जहां उन्हें करना चाहिए। कई चीजें तो ऐसी भी हैं जो समझनी चाहिए, लेकिन कई चीजें क्या ऐसी है जो गिल्ट में ले जाती है पर नहीं होना चाहिए। लाइक हम मॉडर्न रिलेशनशिप्स में भी देखते हैं, फ्रेंडशिप में भी देखते हैं, क्या ये वहां पे भी कुछ इस तरह की चीजें आती हैं जो हमें लगता है हम इसे नाम दे देते हैं दोस्ती का या प्यार का, लेकिन फिर हम खुद ही गिल्ट में जाते जाते हैं या फिर बुरा फील करते जाते हैं, क्या ऐसा उस कॉन्टेक्स्ट में भी क्या हम थोड़ा और समझ सकते हैं इस बात को? शिंदी जी या दीदी आप में से कोई?
2: मैं समझता हूँ ये एक ऐसा चीज है जहाँ पर रिलेशनशिप्स की जब हम बात करते हैं, ये जरूरी नहीं कि ये फैमिली के रिलेशनशिप्स हो, बच्चे या माँ के बीच में हो, मगर ये सारे ही रिलेशनशिप्स पे लागू करता है। आपने फ्रेंडशिप्स की बात कही, मैं वर्क प्लेस रिलेशनशिप्स की भी बात करता हूँ। अगर आप कोलीग्स के साथ काम करते हैं तब आप कुछ ऐसा कह सकते हैं या कर सकते हैं जिससे सामने वाले व्यक्ति को आप गिल्ट फील करा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कि मैं हर दिन किसी के काम में मदद करता हूँ, ठीक है, और क्योंकि मैं हर दिन ही कर रहा हूँ, इट इज टेकन फॉर ग्रांटेड कि मतलब मैं जब भी मदद मांगूंगा ये व्यक्ति मेरे लिए एक ही अवेलेबल, ऑफिस का ही काम है, समझ ले कि मैं किसी के डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में मदद कर रहा हूँ, मगर आज मेरा कुछ और काम निकल आया जिसकी वजह से मुझे बैंक जाना पड़ रहा है और उसी समय उस व्यक्ति ने मुझे बुलाया और कहा कि भाई आप आओ, ये काम अभी करना है अर्जेंट, और मैंने कहा कि नहीं मैं अभी बैंक जा रहा हूँ, कोई और मेरा इंतजार कर रहा है मुझे उसके लिए जाना है। तो अब उन्होंने कहा अरे मेरी जरूरत नहीं होती तो मैं आपको क्यों बुलाती, जरूरत के समय पर तो दोस्तों की मदद की जरूरत होती है ना, आप तो बैंक चले जाना चाहते हो। तो अब मुझे ये गिल्ट फील होता रहेगा कि भाई ये जरूरत के टाइम पे मदद नहीं की, क्योंकि हमने ये चीज सुनी हुई भी है कि भाई जरूरत के समय पर तो मदद हमेशा देने की जरूरत है। अब मैं इस चीज को कैरी फॉरवर्ड करके चल रहा हूँ क्योंकि उन्होंने ऐसा कहा, जरूरत के समय पर उनके काम नहीं आया। बिल्कुल, हम अंग्रेजी में ये कहावत सुनते हैं फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड, पर सही अर्थों में अब मैं दोस्त ही नहीं रहा,
1: जरूरत के समय अच्छा दोस्त ही नहीं हूँ।
2: हाँ, और आप अपने आप को उस लेवल के साथ अब चला के चल रहे हो कि भाई मैं तो ऐसा हूँ, बट एक्चुअल रियलिटी में ऐसा नहीं है। हर व्यक्ति हमेशा मौजूद हो, अवेलेबल हो, हर चीज को कर सके, ऐसा संभव नहीं होता। हर एक व्यक्ति के अपने लिमिटेशंस हैं, हर एक व्यक्ति अनेक चीजों से घिरा हुआ है, हर एक के अपने अपने रोल्स हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, तो इन चीजों को समझ कर चलना शायद आवश्यक होता है। और दोस्तों में जब ये खास चीज होता है तो तब हम अक्सर समझाने का प्रयास नहीं करते। जब ऐसे कोई लेबल्स पास किए जाते हैं, आपको गिल्टी फील करा दिया जाता है, तो आप उस गिल्ट को कैरी करते हैं और उस समय पर ये आवश्यक होता है कि हम कैसे इस चीज को प्रोसेस करें। ऐसी घटनाएं होती हैं, बट उन घटनाओं को प्रोसेस करने के तरीकों के बारे में समझना होता
1: है।
2: कल्पना जी बता सकते हैं कि भाई ऐसे अनेक घटनाओं को लोग संजो कर रखते हैं जिसमें वो उन्हें अपने आप को गिल्टी फील कराया और गिल्ट लेके चल।
1: भारीपन वो गिल्ट।
0: जैसे ऑफिस में जब हम काम करते हैं ना, तो हम क्या करते हैं, जो भी काम आता है उसको पेंडिंग में रखते जाते हैं ना, फाइल के ऊपर फाइल, फाइल के ऊपर फाइल, पेंडिंग रह जाती है। और फिर हमें स्ट्रेस आता है उन पेंडिंग फाइल्स को देखकर कि अरे इतनी ज्यादा हो गई। इमोशंस का भी ऐसे ही, इमोशन को भी अगर हम पाइल अप करते जाएंगे, जैसे गिल्ट को बचपन से लेके बड़े होने तक मैं गिल्ट को कैरी कर रही। बचपन में मैंने कुछ गलत किया उसका गिल्ट कैरी किया, मेरे से कुछ गलत हुआ बचपन में उसका गिल्ट कैरी कर लिया, तो वो आदत बन जाती है गिल्टी फील करने की। और हर छोटे बड़े जिसमें मुझे गिल्टी फील करने की जरूरत भी नहीं है, मैंने कोई गलती नहीं भी की, उसमें भी मुझे गिल्टी फील होता है, सेल्फ ब्लेम शुरू हो जाता है, मेरी वजह से सब कुछ हो रहा है, मेरे कारण सबको तकलीफ हो रही, इस तरह से खुद को विक्टिम बना लेते। तो अब क्या करना है, जो फाइल्स हम पेंडिंग पेंडिंग पेंडिंग में डाल रहे हैं उसको उसी समय क्लियर करना है। समझो कि फॉर एग्जांपल किसी के साथ आपकी कोई बात हो गई, आपसे कुछ गलती हो गई या आपको गिल्टी फील हुआ, अब वो गिल्टी कॉन्शियस को हम कैसे रिलीज करें? तो सबसे पहले है जिसके साथ आपको गिल्टी फील होता है उनके साथ जाकर बात करें, तुरंत जाके सॉरी भी कहने की जरूरत नहीं, बात करें, एक नॉर्मल बात करें, एक्सेप्ट करें कि मेरे से गलती हो गई, इस बार ये छोटी सी गलती थी, कई बार मेरे से बड़ी भी गलतियां हो जाती है, इसी कोई बात नहीं है, और इंसान अगर जिंदा है तो उससे गलती ना हो ऐसा तो हो नहीं सकता। हाँ, तो गिल्ट फीलिंग को उसी समय रिजॉल्व करना है, जाकर बात करो सामने वाले से, सॉरी कह दो एक बार, बार बार सॉरी कहना भी आपकी लाचारी को दर्शाता है, और उस बात को भूल जाओ, सामने वाले से फिर नॉर्मल व्यवहार में आ जाओ, फिर उस बात को बार बार याद नहीं करो, तो मैं बार बार उसी बात को सोचती रहूंगी, वो मेरा ऑब्सेशन हो जाएगा, फिर वो गलत बात मेरे दिमाग से नहीं निकलेगी। सो गिल्टी फील करने की जो फाइल्स है उसको पाइल अप ना करें, उसी समय उसे रिजॉल्व कर दे।
1: रिजॉल्व करना बहुत इम्पोर्टेंट है। यदि क्या हम जाते जाते कुछ ऐसा मेडिटेशन प्रैक्टिस कर सकते हैं जो हमने अभी तक जो पाइल अप करके रखा है उसको कहीं ना कहीं हम रिजॉल्व कर सकें?
0: बिल्कुल। सो अपनी गिल्ट को, अपने नेगेटिव इमोशंस को ओवरकम करने के लिए पॉजिटिव अफर्मेशंस की बहुत आवश्यकता है, और पॉजिटिव अफर्मेशंस हमारा सेल्फ एस्टीम बढ़ाते हैं। हर एक इंसान के अंदर कुछ न कुछ गुण और शक्तियां होती है, उन शक्तियों को हम याद करें, उन स्ट्रेंथ्स को याद करें और अपने आप को याद दिलाएं, आई एम वर्थ टू लिव, मुझे जीने का हक है और मुझे खुशी से जीने का हक है। तो आइए चलिए कुछ मिनटों के लिए एक निश्चित स्थान पर आराम से बैठ जाएं, गहरी और लंबी सांस लें, अपने सांसों को ऑब्जर्व करें, पूरा ध्यान अपनी सांसों पर एकाग्र करें, अपने मन के विचारों को सांसों की लयबद्धता के साथ ट्यून करें। जैसे ही मैं गहरी और लंबी सांस ले रही हूं, मेरा मन और शरीर शांत और रिलैक्स हो रहा, अनुभव करें उस शांति और रिलैक्सेशन का, अपने आप को याद दिलाएं, मैं एक मनुष्य के रूप में एक महत्वपूर्ण इंसान हूं, सृष्टि नाटक का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा हूं, मैं अपने लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हूं। अपनी स्ट्रेंथ्स को याद करें, मुझ में ये गुण विशेषताएं हैं, अपनी काइंडनेस को, अपनी अच्छाई को याद करें, गहरी और लंबी सांस लेते हुए अपने आप से बात करें, मैं जो हूं जैसी हूं खुद को वैसे ही एक्सेप्ट करती, मुझ में बहुत सारी अच्छाइयां हैं और कुछ कमियां भी, उन कमियों के साथ मैं खुद का स्वीकार करती, आई एक्सेप्ट माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ, आई केयर माई सेल्फ। कई बार मुझसे गलतियां होती हैं, लेकिन मैं खुद के साथ कंपैशनेट रहकर उन गलतियों को आगे के लिए सुधारने में प्रयासरत रहती, मेरी गलतियों के लिए गिल्टी फील करने की बजाय मैं उसके लिए सॉरी कहकर उसके बोझ से अपने आप को मुक्त करती। हर बार मेरी ही गलती हो ऐसा जरूरी नहीं, जैसे मैं खुद की गलती को माफ करती हूं वैसे मैं दूसरों की भी गलती, मैं शांत हूं, मैं शक्तिशाली हूं, मैं एकाग्र हूं, मैं खुश हूं। धन्यवाद।
1: लगता है सच में 5 मिनट एक्सपीरियंस करके बहुत बड़ा चेंज आ जाता है, शिफ्ट आ जाता है। तो डेली अगर हम कर लें तो कितना फायदा होने वाला है हमें, सिर्फ 5 मिनट और फायदा।

अब 24 घंटे का और उससे भी ज्यादा बल्कि फायदा ही फायदा है। थैंक यू सो मच इस एक्सपीरियंस के लिए। और फिलहाल वक्त हो गया है हमारे दोस्तों से इजाजत लेने का, लेकिन इस वादे के साथ कि अगली कड़ी में फिर मुलाकात होगी, अपनी भावनाओं से भी और इस कार्यक्रम से भी। तब तक आइए जिंदगी को मिलकर कहते हैं कि लव यू जिंदगी। रेडियो मधुबन से जुड़े रहिए, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: अरावली की वादियों से आप सुनने जा रहे हो कार्यक्रम वंदे मातरम, आपकी अपनी उषा के साथ। वंदे मातरम उस मातृ शक्ति को नमन जिसके आंचल से संस्कार मिलते हैं, जिसकी ममता से जीवन सवर जाता है। आज का ये मंच केवल शब्दों का नहीं मेरे प्यारे श्रोता बंधुओं, नारी के साहस, समर्पण और शक्ति का वंदन है, क्योंकि नारी केवल सृजन नहीं, वह संकल्प है, वह संस्कृति है, वह राष्ट्र की आत्मा है। इसी भाव के साथ नारी शक्ति को समर्पित हमारे विशेष कार्यक्रम वंदे मातरम में आप सभी का स्नेहिल स्वागत है। और आज फिर से आपको मिलवाने जा रही हूँ ज्योति पाल से, जिनका आपने गए रविवार भी सुना और इस रविवार भी आप इनको ही सुनेंगे। तो ज्योति जी के हमने काफी बातें बताई थी। उम्र तो आपकी 45 वर्ष की है, आप ने BSc किया हुआ है, आप जर्नलिज्म है, साथ ही साथ अध्यात्म में आपकी गहरी रुचि है, आप पढ़ने में हर एक बात में सबसे आगे रहे हैं, प्रतियोगिताओं में भी आप हमेशा दूसरों को टक्कर दे करके आगे बढ़ जाते थे, और आपने TV चैनल में भी काम किया हुआ है, TV जर्नलिस्ट भी है। बहुत सारी विशेषता है जो आपने गए रविवार भी सुनी और इस बार भी सुनेंगे, तो आपके ही द्वारा। ज्योति जी पुनः आपका स्वागत है वंदे मातरम कार्यक्रम में।
1: थैंक यू उषा जी, वंदे मातरम आपको भी। और पिछले रविवार को हमने बात की थी,
0: हाँ, तो आपके स्टूडेंट लाइफ, आपके कॉलेज लाइफ के बारे में, आपको पढ़ाई में किस तरह रुचि थी, कौन से गेम्स आप ज्यादा खेलते थे, बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई है आपने ज्योति जी। तो अब आपके सफर की बात करेंगे, फिर आप कैसे आगे बढ़ते गए जरा।
1: जी, तो जैसा कि हमने बात की थी कि कॉलेज लाइफ की, कॉलेज के बाद मैंने BSc की, और BSc के बाद फिर मैं एक ऐसा कोर्स ढूंढ रही थी। मैंने MSc में एडमिशन लिया, MSc इन जियोलॉजी, जिसको हम जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान कहते हैं। तो उसमें मेरा इंटरेस्ट नहीं था, उसमें एक्चुअली पत्थरों का अध्ययन होता था जियोलॉजी में, हिंदी में उसे बोलते हैं, मुझे भूगर्भ विज्ञान, हाँ राइट, तो भूगर्भ विज्ञान, तो उसमें पत्थरों का अध्ययन होता था। और वो MSc में मैंने एडमिशन तो ले लिया, लेकिन मैं अंदर से खुश नहीं थी, तो मैंने अपने पापा को भी बोला। और मैं जर्नलिज्म का कोर्स ढूंढ रही थी, मेरे ब्रदर के एक फ्रेंड ने मुझे गाइड किया कि आप, मैंने कहा भैया मुझे कुछ हटके करना है, अपनी आइडेंटिटी एक नई बनानी है, ऐसा कुछ करना है, रूटीन है या नहीं कि BSc कर ली फिर MSc कर लिया, मुझे कुछ ऐसा करना है जिससे मैं समाज की भी सेवा कर सकूं। तो उन्होंने कहा अगर आप ऐसा सोचती हैं तो मेरे हिसाब से आपको जर्नलिज्म का कोर्स करना चाहिए। तो मैं अपनी यूनिवर्सिटी में ढूंढ रही थी जर्नलिज्म का, कि मास्टर ऑफ जर्नलिज्म मुझे मिल जाए तो मैं उसमें MA इन जर्नलिज्म कर सकूं, बट उस वक्त मुझे दिखा नहीं। और मैंने MSc में एडमिशन लिया और मैं 15 दिन गई, रेगुलर क्लास भी की, और पढ़ने में तो अच्छे थे, तो सारे प्रोफेसर लाइक करते थे डिपार्टमेंट में, डिपार्टमेंट ऑफ जियोलॉजी में। लेकिन अचानक उस समय मेरी जो बेस्ट फ्रेंड थी उसने जर्नलिज्म में एडमिशन ले लिया, उसको कहीं एडमिशन नहीं मिला। मैंने तो 4-5 जगहों पर केमिस्ट्री में भी अप्लाई किया था, MSc इन केमिस्ट्री में भी, लेकिन मेरा तो 3-4 जगह हो गया, उसका कहीं नहीं। तो उसको फिर बाद में पता चला कि अभी इस तरीके का एक कोर्स रन कर रही है हमारी यूनिवर्सिटी, विक्रम यूनिवर्सिटी उज्जैन की। तो मैंने सोचा कि अरे ये कोर्स तो मैं ढूंढ रही थी, तुमने इसमें एडमिशन ले लिया, और मुझे तो MSc बिल्कुल करने का मन नहीं था, लेकिन मुझे ये कोर्स मिला नहीं यहाँ लोकल में, इसलिए मैंने MSc में एडमिशन लिया। फिर मैंने अपने पापा से कंसल्ट किया, मैंने कहा पापा मुझे तो MSc बिल्कुल नहीं करनी है, मुझे तो जर्नलिज्म ही करना है, और मैं चाहती हूँ मैं यूनिवर्सिटी से डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट अपनी फीस ट्रांसफर कर लूँ। तो हालांकि जियोलॉजी डिपार्टमेंट के प्रोफेसर और वहाँ के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट सब ने अपोज किया, कहने लगे कि नहीं नहीं इसमें आपको बहुत स्कोप है, को बहुत सारी गवर्नमेंट जॉब इसमें मिलेंगी, और आपको विमेन कैटेगरी से आपको उसका भी फायदा मिलेगा। पर मैंने फिर उनको भी नो नो करते हुए फाइनली फिर मैंने जर्नलिज्म डिपार्टमेंट में एडमिशन लिया। तो वहां से हमने फिर, वो बहुत अच्छा रहा, जर्नलिज्म डिपार्टमेंट में हम जाते थे जगह जगह, हमारे जो प्रोफेसर होते थे वो हमको कई बारी भेजते थे कहीं पे रिपोर्टिंग करने के लिए, लोकल में कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस है तो कहते थे जाओ वहां पे जाके प्रेस रिलीज लिखो, तो प्रैक्टिकल भी करते थे। उसी दौरान फिर मैंने जी न्यूज में इंटर्नशिप भी करी डिपार्टमेंट ऑफ जर्नलिज्म में, जब मैं MA इन जर्नलिज्म कर रही थी, तो दिल्ली में जाके मैंने की। तो एक छोटे स्मॉल टाउन था, मतलब उज्जैन, 2001 की बात में बता रही हूँ, वहाँ उस टाइम पर मीडिया में, अखबारों में या लोकल टीवी चैनल में कोई भी लड़की नहीं काम करती थी। रेयर ऑफ द रेयर केस में एक या एकाधी कोई फीमेल होगी। पूरी तरीके से जर्नलिज्म फील्ड छोटी जगहों में ऐसे ही होता है।
0: जी जी, हाँ, पुरुष लोग ही ज्यादा सम्मिलित होते हैं।
1: तो ऐसे टाइम पे फिर मैंने वहां पे कहा कि भाई हमने काम भी शुरू किया नवभारत पेपर में, साथ में मैं इंटर्नशिप भी कर रही थी, एक नवभारत पेपर अच्छा नेशनल पेपर था। तो मैंने अपने डिपार्टमेंट हेड से कहा कि मुझे आप ये दीजिए इंटर्नशिप की परमिशन, मैं दिल्ली जाके जी टीवी में इंटर्नशिप करना चाहती हूँ। भाई हमारे डिपार्टमेंट हेड ने कहा कि भाई हमारे डिपार्टमेंट से तो इंटर्नशिप के लिए भेजा नहीं जाता है आपको, तो हम कैसे भेज सकते हैं। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, आप ये लिख के दे दो कि ये लड़की करना चाहती है इंटर्नशिप आपके यहाँ जी टीवी में, तो ये हमारे यहाँ से कोर्स कर रही है और अगर आपको ठीक लगता है तो आप इसको इंटर्नशिप करने दीजिए। तो भाई बड़ी मुश्किल से उन्होंने वो लेटर दिया इंटर्नशिप का, क्योंकि डिपार्टमेंट में इंटर्नशिप का रूल नहीं था कि बाहर जाके इंटर्नशिप करे।
0: हाँ, वही करने का होता है।
1: हाँ, वहीं पे।
0: बाहर क्यों जाना चाहते थे?
1: बाहर इसलिए मैं जाना चाहती थी क्योंकि मुझे ये था कि एक टाइम पे मैंने डिसाइड कर लिया था कि मुझे टीवी जर्नलिज्म करना है।
0: अच्छा।
1: हाँ, तो हमारे इसमें एक होता है प्रिंट मीडिया, एक होता है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। तो उस टाइम पर सिर्फ प्राइवेट चैनल्स में एक सिर्फ जी न्यूज ही था, बाकी अच्छा। तो न्यूज के फील्ड में डीडी न्यूज और दूसरे थे सरकारी, लेकिन प्राइवेट कोई इतने न्यूज चैनल्स नहीं हुआ करते थे। तब बस शुरू में एक आज तक शुरू हुआ था, जी के बाद फिर एक आज तक शुरू हुआ था। तो मुझे ये था कि टीवी में मुझे टीवी जर्नलिज्म ही करना है, मैंने ये स्पेसिफिक जर्नलिज्म करना है, लेकिन मेरा गोल भी फिक्स था कि नहीं मुझे टीवी जर्नलिज्म करना है, टीवी जर्नलिस्ट बनना है। तो इतना आसान नहीं था क्योंकि जिस फैमिली बैकग्राउंड से मैं थी, मेरी कोई कजन वगैरह सब लोग शादीशुदा थे और कोई भी जॉब नहीं करता था। मतलब हमारी जो कम्युनिटी है पाल कम्युनिटी, तो उसमें फीमेल्स को इतना और जॉब के लिए इतना नहीं अलाउ किया जाता था। एक तो घर में इकलौती बेटी और उसके बाद उसको भी बाहर पढ़ना है और
0: हाँ, है। दिल्ली जैसे
1: हाँ, हाँ, और वो भी जर्नलिज्म फील्ड, जो कि मेरे पूरे परिवार में कोई जर्नलिस्ट नहीं था, तो मेरा बैकग्राउंड भी नहीं था कि किसी तो, का सपोर्ट मिले।
0: जी जी, तो फिर आपके पापा मान गए आप कोर्स करने के?
1: हाँ, तो मैंने कोर्स भी किया, फिर डिपार्टमेंट हेड को भी मनाया, उनसे इंटर्नशिप लेटर भी लिया, फिर मैं दिल्ली गई। अब फिर दिल्ली जाना है तो भाई खर्चा भी है काफी, दिल्ली आना जाना, वहां रहना, पेंगेस रहना। वहां गई मैं, हमारा कोई इतना नहीं, मेरा कजन था तो उसने थोड़ा सपोर्ट किया, वो वहां गुड़गांव में जॉब करता था, तो शुरुआत में मैं 2-3 दिन उसके यहाँ रही। फिर मैंने एक पेंगेस्ट वहां पे होता था, तो उसमें आपको 2 टाइम का ब्रेकफास्ट और रात का डिनर देते हैं, लंच आप अपने ऑफिस में ही करते हैं। ऐसे एक पेंगेस्ट में रही वहां पे उनके यहाँ 1 महीने, और 1 महीने मैंने इंटर्नशिप की नोएडा में जी न्यूज में, फिल्म सिटी में। बड़ा अच्छा रहा। और आप बिलीव नहीं करेंगी, जब मैं इंटर्नशिप करके दिल्ली से आई तो जैसे हमारा छोटा सा उज्जैन शहर, वहां के सारे न्यूज़पेपर में मेरे ही सीनियर्स हुआ करते थे हमारे ही जर्नलिज्म फील्ड के, तो सब लोग बड़े शॉक्ड हो गए, अरे एक अपने डिपार्टमेंट की लड़की है वो है ना दिल्ली में इंटर्नशिप करके आ गई, वो भी जी न्यूज में इंटर्नशिप करके आ गई।
0: अच्छा।
1: तो बड़ा पूरा जैसे एक एक खबर बन गई सारे मीडिया में।
0: और वहां आपको चांस हाँ, मिल गया?
1: हाँ, वहां इंटर्नशिप कहां, मुझे चांस मिला, लकीली मुझे चांस मिल गया, मुझे कुछ लोगों ने सपोर्ट किया, तो उसके थ्रू ये मेरा हो गया। क्योंकि कहते ना जहाँ दिल की भावना
0: हाँ,
1: बिल्कुल हो, जहाँ आप लक्ष्य रखेंगे वहां लक्षण खुद ही खुद ब आ जाते हैं
0: जी।
1: तो बड़ा ही अच्छा रहा। तो जो मेरे सीनियर्स थे वहां पे, तो लड़कों को ये लगा, खास करके उस टाइम पे, क्योंकि मैंने बताया आपको लोकल मीडिया में कोई भी फीमेल नहीं थी
0: जी।
1: मैं और
0: जी,
1: मेरी एक फ्रेंड, हम मास्कॉम में भी थे, तो हम ही कुछ ऐसी इंटर्नशिप टाइप के वहां पे कर रहे थे, तो बड़ा सब शॉक्ड हो गए, अरे लड़की करके आ गई दिल्ली से, तुम तो लड़के हो। तो लड़कों में भी बड़ा स्पार्क आ गया कि अरे हमारे उज्जैन की लड़की कौन है, कौन है मतलब। तो मेरे एक सीनियर ने बताया कि तुम जब से इंटर्नशिप करके आई हो तब से बड़ा, मतलब दैनिक भास्कर, नई दुनिया, बड़े बड़े पेपर में बड़े बड़ा हल्ला है, लड़के तो बड़े शर्म से डूब मर रहे हैं।
0: क्या बात है ज्योति जी, चलिए आपके तो बड़े सुंदर अनुभव है जिसका हम फिर से सुनेंगे, परंतु पहले एक ब्रेक का समय हो चला है तो एक ब्रेक ले लेते हैं। बने रहिएगा कार्यक्रम वंदे मातरम में, ज्योति जी के बहुत ही गहरे अनुभव है जो हम कंटिन्यू करेंगे, लेकिन सुनते हैं गीत, तो सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: भी साइबर फाइनेंशियल फ्रॉड में फंस जाना तो कॉल 1930 पर लगाना। ऑनलाइन होने वाले धोखाधड़ी और साइबर फ्रॉड से पीड़ित होने पर गृह मंत्रालय भारत सरकार की अधिकृत वेबसाइट www.cybercrime.gov.in पर अपनी शिकायत दर्ज कराएं।
1: बेटी वो खुशबू है जो आंगन महकाए, बेटी वो खुशबू है जो आंगन महकाए, हर रिश्ते में अपनापन जगाए, नन्हे कदमों से सपने बुनती, नन्हे कदमों से सपने बुनती, घर को स्वर्ग सा बना जाए। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम वंदे मातरम और वंदे मातरम में पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ज्योति जी हमारे साथ बने हुए हैं और ज्योति जी के वास्तव में अनुभव आपने सुने हैं जो काफी गहरे थे। आइए इसी कड़ी में और भी आगे बढ़ेंगे। तो ज्योति जी, आपने तो जैसे अपने कॉलेज का नाम कर दिया, अपने शहर का नाम कर दिया, तो लोग भी आपसे प्रेरित हुए?
2: बिल्कुल बिल्कुल, उस टाइम बड़ा अच्छा रहा। तो उसके बाद कुछ लोगों ने फिर जाके उसके बाद दिल्ली में भी जाके कोर्स किया। आज तक का कोर्स होता है आज तक टीवी का, तो वहां भी करे, तो मतलब एक तरीके से एक बड़ा मेरे लिए अपने आप में ये अच्छा अनुभव रहा।
1: उज्जैन शहर में आप पहली बेटी ऐसी है जिन्होंने दिल्ली में जाकर के जर्नलिज्म किया।
2: हाँ, जर्नलिज्म में इंटर्नशिप की और जॉब भी पहली ही मैं हूँ। अच्छा। जिसने दिल्ली जाकर जॉब की।
1: अरे वाह, क्या वाह।
2: तो फिर ये हुआ कि मैं इंटर्नशिप करके 2001 में आ गई, फिर दो साल मुझे टीवी मीडिया में इंटर करना है। और ऐसे में जब जिसका कोई भी बैकग्राउंड नहीं है और दिल्ली में कोई लिंक नहीं है, बस वही लिंक बनी थी मेरी जो जी टीवी में मैंने एक महीने इंटर्नशिप की थी, तो कुछ लोगों से मेरा कांटेक्ट बना था। ऐसे में आपको फिर से जाना है दिल्ली और जॉब सर्च करना है, बहुत ही डिफिकल्ट था। और वहां रहना खाना बहुत महंगा होता है और घर वाले अलाउ भी नहीं करेंगे बिना जॉब के, तो वहां क्या आप अकेले रहें। तो ये बहुत चैलेंजिंग थे ये दो साल मेरे लिए, 2001 से लेकर 2003। पर मैंने हिम्मत नहीं हारी, और कहते हैं ना संकल्प से सिद्धि होती है।
1: बिल्कुल।
2: तो मैं टीवी के आगे बैठती थी, दिन भर टीवी चैनल देखती थी।
1: अच्छा।
2: और मेरा भाई मजाक करता था क्योंकि एडवर्टाइज में कुछ कुत्ते बिल्लियों को भी ऐड आते हैं, ऐसे कुछ होता था, तो कहता था देख अब तो कुत्ते बिल्ली भी आ गए, तू कब आएगी।
1: क्या बात है।
2: तो भाई लोग तो भाई तो ऐसे ही होते हैं, है ना, शरारत थी। तो मुझे बहुत परेशान करते थे घर वालों के टोन। फिर हम मेरे कॉलेज के जो भाई मैं मास्कॉम किया था, तो हमारा जो ग्रुप थी हमारी बैच थे, तो मुझे टोन मारते थे, ये देखो जी टीवी रिटर्न ऐसे करके। मुझे जब हम पब्लिकली सोशली हम मिलते थे किसी के फंक्शन में पार्टी में, तो वो कहते थे, तो इंट्रोड्यूस मुझे कहते थे ये हमारी फ्रेंड है जी टीवी रिटर्न। तो बड़ा मुझे लगता था कि मैं जा नहीं पा रही हूँ दिल्ली, और मुझे तो टीवी जर्नलिस्ट बनना है, क्योंकि मैं बहुत बिंदास टाइप की थी और मैं कुछ भी जो मुझे करना है मैं दिल से खुलकर बोल देती थी। मैं कहती थी मैं तो टीवी जर्नलिस्ट बनूंगी भाई, मुझे किसी चाय वाले अखबार में काम नहीं करना है। कि जो चाय के स्टॉल्स पे छोटे छोटे अखबार नहीं जाते हैं, शाम के पेपर है वो, तो मैंने कहा तुम लोग करो भाई, मुझे तो टीवी जर्नलिस्ट ही बनना है। और मैं बिल्कुल चैलेंज के साथ सबको बोलती थी। अब चूंकि 2003 में सहारा टीवी शुरू हुआ, तो उस टाइम सहारा ने अपना नेशनल चैनल स्टार्ट किया और कई सारे रीजनल चैनल्स भी स्टार्ट किए, उसमें एक मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के लिए भी। मैं कई लोगों को कांटेक्ट करती रहती थी दिल्ली में, फोन करती थी, बस फोन के थ्रू मैं करती थी उन्हें बातें। तो मुझे किसी ने बताया कि तुम ट्राई कर रही हो, तो सहारा वालों ने अपना और पेपर में भी एडवर्टाइज भी काफी आया था, तो उसमें ट्राई करो तुम्हारा हो जाएगा। और बहुत सारी रिक्रूटमेंट्स वहां पे निकली हुई है, मैंने अपना रिज्यूमे वगैरह बनाया। और ऐसे ही एक दिन मैंने वहां का पता चला कि कौन हेड कर रहा है उसको, तो मुझे पता चला विनोद दुआ जी बहुत जाने माने जर्नलिस्ट माने हुए थे। तो मैंने सोचा कि 5-6 लोगों को जिनको मैं बड़े बड़े नाम जानती थी टीवी के, सबके नाम से, जिन्होंने मुझे पता चला जिन्होंने सहारा ज्वाइन किया है, तो मैं सबके नाम से अपना रिज्यूमे उनको ड्राफ्ट करके अच्छे से और उनको पोस्ट कर दिया नोएडा में। और लकीली जिसे कहते हैं ना संकल्प से सिद्धि क्या चीज होती है, तब मुझे पता चला कि अगर आपके सच्चे में कोई ड्रीम है, और विनोद दुआ जी के हाथ में मेरा वो रिज्यूमे लग गया और उन्होंने मुझे कॉल कर लिया लकीली। तो ये बात मैं आपको बता रही हूँ सितंबर 2003 की।
1: अच्छा।
2: हाँ जी
1: जी।
2: उस वक्त मुझे कॉल आया और बोला कि आपको इंटरव्यू में बुलाया गया है। फिर मैं इंटरव्यू देने गई और वहां लकीली मेरा इंटरव्यू, उन्होंने मेरा थोड़ा बैकग्राउंड देखा कि मैंने नव भारत में भी करा है, मास्टर ऑफ जर्नलिज्म मैंने किया है, मेरे फर्स्ट क्लास के नंबर थे, तो उन्होंने मुझे सिलेक्ट कर लिया। और मैंने 1 अक्टूबर 2003 को सहारा टीवी में मेरी ज्वाइनिंग हो गई।
3: क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो ये जैसे घर में तो किसी को नॉलेज नहीं था,
2: हाँ जी,
3: आपको
2: जी।
3: अपने अंतःकरण से ही निकलता था कि मुझे इस फील्ड में जाना है।
2: जी बिल्कुल बिल्कुल।
3: तो फिर घर वाले भी खुश हो गए होंगे जो आपके भाई चिढ़ोते थे।
2: हाँ बहुत चिढ़ाते थे, मेरा भाई तो लिटरली इतना बुरी तरह से कहते थे, देख कुत्ते बिल्ली के भी ऐड आ रहे, तू कब टीवी में दिखेगी। तो मुझे ये बड़े बात बड़ी चुभती थी। और फिर मेरे जो फ्रेंड्स, मेरे प्रोफेसर लोग जो मुझे ये भी बोलते थे कि भाई तुम तो जी टीवी रिटर्न हो, उन्हें जब पता चला अरे सच में उसकी तो टीवी में जॉब लग गई, तो दे आर लाइक शॉक्ड। फिर वो कहने लगे अरे हमें तो पता था आपका उज्जवल भविष्य। तो मुझे लगा देखिए दुनिया कितनी जल्दी अपने थॉट चेंज करती है।
3: दुनिया तो चढ़ती के साथ सलाम करती है,
2: बिल्कुल
3: जब उगता है तो उसको सभी सलाम करते हैं।
2: और वो सारे मेरे फ्रेंड मास्टर जर्नलिज्म के सब मुझे अप्रिशिएट करने लगे, कॉल करने लगे, मुझे बधाइयां देने लगे। तो मुझे लगा कि नहीं बिल्कुल, मतलब बहुत अच्छा रहा। मुझे ये लगा कि मैंने जो ड्रीम सोचा था जब मैं दिल्ली में पहली बार मैंने कदम रखा था इंटर्नशिप के दौरान, तब मैंने कहा था दिस इज माई सिटी, यही मेरी सिटी है और मैं यही रहूंगी। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि जब मैं फिर वहां रहने भी लगी और मुझे जॉब भी मिल गई, तो बहुत अच्छी जर्नी रही। और सहारा ग्रुप बहुत अच्छा था, वो भी एक परिवार की तरह था, सहारा इंडिया परिवार। और मतलब बहुत उस टाइम पे तो एयरलाइंस भी होती थी काफी सारी, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, नई नई चीजें वहां सीखी, बोलना सीखा। कंप्यूटर तो मैं जानती थी पहले ही, मैंने डिप्लोमा एप्लीकेशन कर रखा था कंप्यूटर में 1 ईयर का, लेकिन बहुत सारी चीजें वहां हमको सीखने को मिली। और जब आप काम करते हैं, जॉब करते हैं, तो आपकी पर्सनालिटी धीरे धीरे ग्रूम होती है। और स्पेशली जब जर्नलिज्म फील्ड में होते हैं तो हम इतनी वैरायटी न्यूज सुनते हैं, तो अवेयरनेस का भी लेवल बहुत हाई हो गया। तो ये बहुत अच्छा अचीवमेंट रहा था।
3: जी जी जी। तो जैसे आप दिल्ली रहने लगे, दिल्ली बहुत बड़ा शहर है, आप अकेले रहते थे, तो घर वाले चिंता तो नहीं करते थे कि अब अकेली बेटी शहर में रह रही है इतने बड़े?
2: नहीं, परमात्मा की कुछ ब्लेसिंग कह दीजिए कि हम लोगों के एक कास्ट के ही थे अंकल, उन्होंने ही अपने घर पे मुझे, उनकी बिल्डिंग थी दिल्ली में बहुत बड़ी और हमारे कास्ट के प्रेसिडेंट भी थे, तो उन्होंने एक रूम मुझे रेंट पे दे दिया था। तो ये था कि उन लोगों की पूरी फैमिली थी, उनके 2-3 बेटे थे, बहुएं थी, और वो तो एक फैमिली एनवायरनमेंट मुझे मिल गया था, तो उनका सहयोग मुझे बहुत मिला। तो जैसे कहते हैं कि बहुत जहां आपकी चाह होती है वहां राह मिली जाती है, तो मुझे एक फैमिली एनवायरनमेंट मिला और वहां पे बहुत अच्छे अच्छे लोग भी मिले। फिर धीरे धीरे तो फिर ऑफिस में भी जान पहचान हो गई, तो हम 2-3 लड़कियां मिलके हमने एक फ्लैट ले लिया, फिर हम उसमें रहने लगे, ऑफिस के पास ही फ्लैट लिया, तो ऐसा हो गया कि ट्रैवल भी नहीं करना पड़ेगा ज्यादा, तो उसमें फिर हमें बहुत इजी हो गया।
3: और जर्नलिज्म के नाते तो आपको फील्ड वर्क भी करना पड़ा होगा?
2: फील्ड वर्क था, मैं कभी कभी जाती थी रिपोर्टिंग करने, पर मैंने देखा फिर वहां पे भी मैंने कंपेयर किया कि जो रिपोर्टर होते हैं उनकी लाइफ में बहुत स्ट्रगल होता है, उन्हें कुछ भी पता नहीं होता है कब वो खाना खाएंगे, कब सोनिया गांधी जी से मिलेंगे, कब किस मंत्री से मिलेंगे, तो उनका कुछ फिक्स नहीं होता है। तो मैंने बोला वो और टू मच स्ट्रगल वाला हो जाएगा, तो मैंने ऑफिस ही प्रेफर किया। तो मैं, वो लोग रिपोर्टिंग करते थे और मैं वो जो लिख कर लाते थे अपनी स्टोरी, मैं उसको फाइनल एडिटिंग कर दी, तो मैं एज एडिटर उसके लिए काम करने लगी ऑफिस में ही। तो मैंने बोला अच्छा एसी में बैठ के ये लोग करके लाते हैं मेहनत, और मैं ही उसको वॉइस ओवर करती थी, उसमें आवाज देती थी, स्क्रिप्टिंग लिखती थी, फिर हम बुलेटिन बनाते थे, प्रोग्राम्स बनाते थे, बहुत सारी चीजें हमने वहां पे सीखी, लेकिन मैं ऑफिस ही वर्क करती थी, एज ए प्रोड्यूसर मैंने वहां पे काम किया।
3: जी जी जी, बात है, ऐसा लग रहा है कि मैं सुनती रहूं, आप सुनाते रहे। जी, फिर आपने ऐसे भी बताया था कि 6 साल इधर काम किया।
2: हाँ हाँ, सहारा टीवी में 6 साल काम किया, और उसके बाद फिर मैंने अपना थोड़ा थोड़ा मैंने सोचा कुछ चेंज भी करना चाहिए, तो फिर मैंने कंपनी भी चेंज करी और फिर वहां पे भी अच्छा काम मिला, वहां पे भी कुछ वैरायटी वैरायटी चीजें मुझे करने के मिली।
3: तो कंपनी चेंज की, फिर आपने कहाँ काम किया?
2: हाँ, फिर मैंने एक CVB, मैंने आपको बताया ना, वो UNICEF के साथ उस टाइम टाई अप था, तो सीवीवी में मैंने काम किया, जो सी वोटर करके जो एग्जिट पोल होते हैं हमारे चुनाव के, उसके लिए वो काम करती है। तो उसमें थोड़े टाइम के लिए काम किया, फिर मुझे 6 महीने बाद ही एक और अच्छा न्यूज एक्सप्रेस करके चैनल नया लॉन्च हुआ था, तो हमारे पुराने सहारा के बॉस वहां पे थे, तो उन्होंने मुझे ऑफर किया कि आप आ सकती हैं यहाँ पे, तो फिर मैंने न्यूज एक्सप्रेस चैनल ज्वाइन कर लिया।
3: जो आप छोड़ करके दूसरी तरफ जाते तो उसमें आपका प्रमोशन होता या फिर?
2: हाँ बिल्कुल, आपका फाइनेंशियली भी और आपका डेजिग्नेशन वाइज भी प्रमोशन होता है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ती है और आपकी पदोन्नति तो होती है।
3: जी जी, तो ये 3-4 चैनल में आपने काम किया, आपको विशेष क्या सीखने को मिला, क्या अनुभव हुआ? कहीं देखिए ये तो बाहर की दुनिया है, मतलब कहते हैं कि

0: हम में कॉन्फिडेंस की कमी नहीं थी और इतना किसी से बहुत ज्यादा घुलते मिलते भी नहीं थे कि बहुत ज्यादा। और कोई मान लीजिए आपको लगता है, और सबसे बड़ी बात है, इस फील्ड की सबसे मुझे अच्छी बात ये लगी जर्नलिज्म में, इसमें सब लोग बहुत ओपन है। मान लो किसी को कुछ कहना है, किसी को कुछ ऑफर करना है, मान लो किसी को किसी लड़की को प्रपोज ही करना है, तो वो डायरेक्ट कर देगा। अच्छा। वो ऐसा नहीं कि गोलमाल करके बोलेगा या उसको कुछ करेगा, मतलब ऐसे किसी तरीके से इंडिकेट करेगा या उसको परेशान करेगा, ऐसा नहीं। जर्नलिज्म फील्ड में बहुत चीजें ओपन है, तो अगर किसी को ये था कि भाई किसी को प्रपोज, तो आपको अगर नहीं स्वीकार करना है तो ना स्वीकार करिए। तो इस फील्ड में ये था कि सब लोग ब्रॉड माइंडेड बहुत होते हैं पढ़ने लिखने वाले, तो ऐसा ही थे। कुछ लोग मिलते थे ऐसे कि कुछ प्रपोजल भी दे देते थे,
1: जी,
0: कुछ कर देते थे, तो हम उसको अस्वीकार कर सकते हैं, लेकिन सबको फ्रीडम है। लेकिन कुछ लोग होते होंगे, पर इस तरीके का मुझे तो कभी माहौल मिला नहीं, क्योंकि हमारी फील्ड ही ऐसी थी, तो बहुत ओपन थे वो लोग, तो जो हमको समझ में आता, कोई ऐसा नहीं था कि किसी को समझना है कि ये क्या कहना चाह रहा है या कुछ ऐसे इंडिकेशन दे रहा है या ऐसा कभी भी नहीं लगा। और हम लोग नाइट में भी जॉब करते थे, बहुत अच्छे लोग मिले मुझे, और जिन लोगों के साथ मैंने काम किया मेरे बॉसेस भी बहुत अच्छे थे। और जहां मैंने देखा कि जो लोग अच्छे नहीं थे, तो मैंने खुद ही किनारा कर लिया।
1: जी जी, वो समझ आ जाती है,
0: वो हमें समझ आ जाती है। जब मुझे लगा जॉब में कि मेरे बॉस चेंज हो गए हैं और वहां का एनवायरनमेंट खराब हो गया, तो मैंने जॉब स्विच कर ली।
1: बहुत अच्छा।
0: कुछ चीजें जहां हमारे कंट्रोल में होती है, वो हम उनको कंट्रोल कर सकते, कुछ चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं हो सकती है, तो हम उसको चेंज कर सकते।
1: जी जी, बहुत बढ़िया ज्योति जी, आपके और भी अनुभव सुनेंगे, लेकिन समय का ध्यान रखना बहुत जरूरी है।
0: बिल्कुल,
1: सुनने के बाद पुनः लौटते हैं, कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिएगा कार्यक्रम वंदे मातरम में, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
0: रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: बेटी बोझ नहीं वरदान है, बेटी बोझ नहीं वरदान है, ये सोच बदलनी आज की पहचान है। जिस घर में बेटी हंसती है, जिस घर में बेटी हंसती है, वही सच्चा सुख समाधान है, वही सच्चा सुख समाधान है। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम वंदे मातरम, और वंदे मातरम में ज्योति जी के बहुत ही अच्छे अच्छे अनुभव हम सभी सुन रहे हैं। आपके अंदर कितना टैलेंट है, कितनी एबिलिटी है, और कितना आप भले कहीं पर भी आप नर्वस नहीं हुए, और हर क्षेत्र में आप जैसे झरन लीजिए में आपने काम किया है। इस चैनल में आपको ऐसा लगा तो चेंज करके आप दूसरा आपने पकड़ लिया, लेकिन कहते हैं कि एक अकेली बेटी जिसका किधर से भी सपोर्ट नहीं, खुद के बलबूते पर आगे बढ़ना और खुद ही सपोर्ट का रास्ता ढूंढना, ये बहुत बड़ी विशेषता होती है। तो ज्योति जी, आप जैसे निडर होकर के काम करते रहे दिल्ली जैसे बड़े शहर में, जबकि वहाँ कुछ के कुछ सुनने को मिलते रहते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: तो कभी माता पिता ने भी टेंशन नहीं लिया, उनको पता है कि बेटी बिंदास है?
1: कहीं ना कहीं मेरे पेरेंट्स को लगता था ये समझदार भी है, इसको पता है कहाँ किससे कैसी बात करनी है। खासकर मेरा भाई जो मुंबई में रहता था, तो वो जब दिल्ली आया पहली बार मुझे छोड़ के गया, फिर दोबारा मुझे लेने भी आया। पापा ने भेजा, पहली बार में तो भेजते हैं, तो लेने आया तो उसने देखा, मैं अपने भाई को बोल रही तू ये वाली बस लेना भाई, और है ना ये वाले नंबर पे लेना, इस वाले जगह पे आना, फिर वहां से ये करना। तो मेरे भाई ने ये कहा कि तुझे जब सब कुछ पता ही है तो पापा ने मुझे क्यों भेजा है लेने के लिए, मैं अपना जॉब छोड़ के 2 दिन की छुट्टी लेके तुझे लेने आया हूँ बस यहाँ पे। कहता अगली बार से मैं नहीं आऊंगा। तो अगली बार से मैं फिर अकेले ही दिल्ली गई। सबसे बड़ी बात बताती हूँ, जब मुझे जॉब पहली बार ज्वाइन करना था सहारा में, तो मैं अपने रिलेटिव के ही रुकी हुई थी, तो मुझे 2 पैन कार्ड भी उनको सबमिट करने थे एज ए प्रूफ। तो एक तो मैंने किसी का दे दिया था ऑफिस में ही, और एक उन अंकल का ले लिया जिनके यहाँ मैं रहती थी, हमारे रिलेटिव ही थे वो, तो वो मेरे बहुत पीछे पड़े। हाँ, मैं अपने बेटे की ज्वाइनिंग कराने वो मुंबई गया था तो मैं खुद गया, तुम्हारे पेरेंट्स क्यों नहीं आए। तो मैंने कुछ बहाना बनाया कि मेरे घर, उस वक्त में हमारा घर का कंस्ट्रक्शन भी चल रहा था, तो मैंने कहा हमारे घर का कंस्ट्रक्शन चल रहा, वो नहीं, अपनी बेटी को कोई ऐसे अकेले ज्वाइनिंग के लिए भेजता है क्या? पर ऐसे ही है, हमने करा लिया, कोई वो नहीं था ज्वाइनिंग में, क्या होता है एक फॉर्म ही, तो परमात्मा ने कराया, परमात्मा के भरोसे हम पहुंच गए और हमें अच्छे अपने जैसे लोग मिले, और मेरे काम भी सहज होते गए, ऑफिस के लोग भी सपोर्टिव थे, किसी ने अपना पैन कार्ड दे दिया सपोर्ट के लिए, ज्वाइनिंग में जो चीजें चाहिए होती है छोटी मोटी, मतलब रेफरेंस के लिए, या तो वो सारी चीजें हो गई।
0: जी जी जी, इस तरह आपकी यात्रा शुरू हुई।
1: जी बिल्कुल।
0: कितने समय आपने काम किया और फिर छोड़ने का डिसीजन आपने क्यों लिया?
1: हाँ, तो जैसा कि आपने पहले एक लाइन बोली थी कि मैं बहुत ही शुरू से खुशनुमा बिंदास टाइप की, ओपन रहने वाली और बहुत सोशल टाइप की थी, लेकिन लाइफ में हमेशा एक जैसी कंडीशन नहीं होती है। तो बीच में रिसेशन आया था, 2009 की बात मैं बता रही हूँ, उस कंपनी से कुछ लोगों को हटाया भी गया, तो उस लिस्ट में मेरा भी शायद नाम था, तो मुझे तब तो नहीं हटाया गया, लेकिन फिर किसी कारण से मैंने ही फिर वो जॉब को छोड़ा, फिर नई कंपनी ज्वाइन करी। तो एक टाइम ऐसा भी आया जब हमने रिसेशन में जॉबलेस भी रहे, उस वक्त फिर स्ट्रगल किया, फिर से नए नए, टीवी इंडस्ट्री इतनी छोटा एरिया होता है, वही 4-5 चैनल होते हैं घूम फिर के, तो ऐसे टाइम में फिर से जॉब को रीगेन करना, अपने पॉजिटिव रह के फिर से, तो वो चीज तो खैर हो गई, दोबारा जॉब लगा, CV भी ज्वाइन किया, फिर न्यूज एक्सप्रेस ज्वाइन किया। लेकिन उसके बाद फिर लाइफ में कुछ ऐसी चीजें, हमारी लाइफ जैसे आगे बढ़ी तो लाइफ में फिर आया शादी वाला फेस। तो शादी मेरे पेरेंट्स ने की, लेकिन जिससे मेरी शादी हुई वो फैमिली बिल्कुल अपोजिट थी, वो लोग बिल्कुल रिजर्व टाइप के, ना सोशल, और जितना हमारे घर में फ्रीडम था वो सारा फ्रीडम था नहीं,
0: उधर बंदिशें,
1: वो बहुत सारी बंदिशें थी, हर चीज पूछ के करना है, किसी चीज का फ्रीडम नहीं, आप मतलब अपने पसंद से खाना भी नहीं खा सकते, इतना तक रिजर्व था। तो वो मेरे लिए, आप सोचिए कि जो एकदम ही ओपन और जर्नलिज्म फील्ड में जॉब भी करते हुए सब चीजें, और जहां आपको स्वीकार ही ना करे कोई, तो वो मेरे लिए एक थोड़ा सा निराशा का पीरियड था, और उस वक्त मेरी लाइफ में डिप्रेशन टाइप की चीज हो गई, तो उस चीज से मुझे कॉप अप करना बहुत मुश्किल हो रहा था। मैं जॉब भी कर रही थी लेकिन फिर छोड़ा भी मैंने, मैं नहीं कॉप अप कर पाई। मुझे लगा कि मैं दोनों लाइफ को कैसे बैलेंस करूं, मुझसे नहीं हो पा रहा था क्योंकि फैमिली बिल्कुल अपोजिट थी, उन लोगों की विचारधारा बिल्कुल अपोजिट थी। हालांकि वो लोग भी पढ़े लिखे थे, जॉब करते थे, लेकिन उनकी थिंकिंग इस तरीके से थी। फिर मैंने सोचा, एक बार मैंने ब्रह्मा कुमारी में मेरा जाना हुआ
0: जी।
1: तो मुझे लगा कि अब मुझे कुछ मेडिटेशन या इस तरह की चीज है, तब मैं इंदौर में शिफ्ट हो गई और एक मैं ऐसी नॉर्मल सी कंपनी में जॉब करने लगी।
0: इंदौर पूरा परिवार या आप अकेले आए?
1: नहीं, मैं और जो हस्बैंड थे वो, हम लोग इंदौर गए, एक डेढ़ साल हम वहां रहे। तो उसी दौरान जहां मेरा फ्लैट था, हमने रेंट पे लिया था, उसके नजदीक ही ब्रह्मा कुमारी का सेंटर था। और चूंकि उस वक्त मैं जॉब भी कर रही थी और फैमिली में मेरा ट्रांजिशन पीरियड था और उस वक्त विचार मैच नहीं कर रहे थे, एक अलग फैमिली थी, अलग सोच थी, और दबा के रखना, फाइनेंशियली भी आपसे ही सपोर्ट लेना, तो सारी चीजें वो बहुत सारी, मतलब मुझ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा हो गई थी। फाइनेंशियली भी मुझे घर में खर्च करना पड़ रहा था, इमोशनली भी टाइम देना पड़ रहा था, घर का पूरा वो गृहस्थी वाला चीज भी जो मैंने कभी की नहीं थी, मतलब खाना वाना बनाना, इतना रिस्पॉन्सिबिलिटी कभी निभाई नहीं थी, वो सब मुझे करना पड़ रहा था। तो उस वक्त कॉप अप करना थोड़ा मुश्किल हुआ, लेकिन ऐसे में फिर मैं ब्रह्मा कुमारी सेंटर में गई, मैंने धीरे धीरे मेडिटेशन सीखना शुरू किया, स्पिरिचुअल स्टडी करी। तो फिर साथ में डॉक्टर को भी दिखाया कि क्यों मुझे ऐसी निराशा सी हो रही है, क्योंकि मेरे जीवन में ये चीजें थी नहीं कभी,
0: तो मेरे लिए वो आ जाती है तो स्वाभाविक पूरी लाइफ ही चेंज हो जाती
1: हाँ
0: है।
1: तो मुझे ये लग रहा था कि मैं इतनी सोशल रहने वाली लड़की और मैं किसी का फोन पिक नहीं कर रही हूँ, मेरे फ्रेंड्स मुझे रात दिन फोन करते, मुझे मन ही नहीं करता था बात करना, मुझे किसी से मिलना जुलना पसंद नहीं था। इवन मैं शुरुआत में मेडिटेशन सेंटर में जाती थी, मैं सबसे पीछे बैठती थी क्लास में भी, और जब कोई नहीं रहता था तब मैं अकेले जाके सिस्टर से मिलती थी, उनसे बात करती। फिर मैंने एक साइकेट्रिस्ट को भी दिखाया इंदौर में, अपोलो में बहुत रिनाउंड साइकेट्रिस्ट थे, उनको भी दिखाया कि मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है। तो फिर उन्होंने थोड़ा बहुत काउंसलिंग की कि हो जाता है कभी कभी लाइफ में जब आप इस तरीके नए रिलेशन में जाते हैं तो। लेकिन ये हुआ मेरे पास परमात्मा की कुछ ऐसी होगी दिव्य शक्ति कि मैं उससे धीरे से, फिर एक मैंने और एक नई जॉब ज्वाइन की वहां पर रहते हुए, इंदौर तो छोटा शहर है, तो मैंने जर्नलिज्म में तो नहीं लेकिन एक मैंने मल्टीनेशनल कंपनी में मैंने एज ए ज्वाइन कर लिया एज ए सेल्स पर्सन ही, ताकि मैं बिजी रहूं, क्योंकि उन्हें लगा आप खाली मत रहिएगा। तो मैं खाली नहीं रहती थी, मैं सिस्टर शिवानी को भी मैं सुनती थी, तो मैंने वो भी किया, मेडिटेशन भी किया, और फिर दोबारा मैं वापस दिल्ली आ गई और मुझे एक फिर और बहुत अच्छी जॉब लग गई।
0: क्या बात है।
1: तो तब मैंने न्यूज नेशन चैनल में ज्वाइन किया, तो मुझे फिर लगा नहीं अब मुझे कम बैक करना चाहिए, मुझे अपने प्रोफेशन पे फिर से ध्यान देना चाहिए। चलो वो चीजें नहीं हैंडल हो रही है, कोई बात नहीं अभी छोड़ो, मैंने ये सोचा। थोड़ा फैमिली का भी प्रेशर था कि भाई इस रिश्ता लड़कियों को ही चलाना पड़ता है, कहीं ना कहीं फैमिली में भी मेरी ऐसी सोच थी, मेरी मदर की खास करके बहुत थोड़ी सी रिजर्व थी वो, तो वो कहती थी नहीं सिचुएशंस ऐसी आती है कई बारी पर उसमें लड़कियों को ही हैंडल करना पड़ता। तो ये मेरे लिए बड़ा वो लग रहा था क्योंकि मुझे, मैंने कभी अपने माइंड में सोचा ही नहीं था कि लड़कियों को इतना भी सब हैंडल करना पड़ता है। तो पूरी लाइफ मेरी 360 डिग्री घूम चुकी थी, और मतलब एक तरह से मैंने थोड़ा हंसना भी बंद कर दिया था
0: जी।
1: और लोगों से मिलना जुलना
0: निराशा आ गई थी,
1: बहुत निराशा सी आ गई थी, सेपरेट रहने लगी थी।
0: तो आपके हस्बैंड आपके फीलिंग्स को नहीं समझते थे?
1: हाँ, वो नहीं समझ रहे थे, या कह सकते हैं कि वो भी कहीं ना कहीं अपनी फैमिली के प्रेशर में थे, ऐसा भी कह सकते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि लड़कियों को नहीं, लड़कों को भी अपने फैमिली के प्रेशर से गुजरना पड़ता है। उनकी अपब्रिंग मुझसे बिल्कुल अपोजिट हुई थी, उनकी मदर ने अपब्रिंगिंग की थी, उनके फादर फोर्स में थे, तो वो कभी ना कभी, मतलब उन्होंने कभी वो वैसा फ्रीडम देखा नहीं था मदर फादर को एक साथ। तो मदर थोड़ी सी डोमिनेटिंग थी, उनको फोर्स करती थी तुम्हें अपने हिसाब से चलना है, मेरे हिसाब से चलना है, तो थोड़ा उनको प्रेशर था फैमिली का, मेरे अपोजिट था। जैसे मैं अपने डिसीजन जिंदगी में खुद लेती आई, और उनका ये था कि उनके डिसीजन सारे उनकी मदर ने लिए।
0: अच्छा।
1: तो वो मतलब एक हमारी केमिस्ट्री जम नहीं पा रही थी, क्योंकि मैं तो, मुझे जो सही लगता था मैं वो करती थी, जो जॉब किया, जो फैसले लेने थे अपनी जिंदगी के, और उनके जिंदगी के सारे फैसले किसी पर डिपेंड थे, तो वो चीजें बहुत क्लैश कर रही थी। तो इस वजह से फिर वो रिश्ता चल भी नहीं पाया। वो उसका भी कोई बात नहीं है, ये तो अभी आजकल कॉमन बात है। तो मुझे ये लगता है मेरी लाइफ से जो मैसेज देना चाहूंगी खासकर फीमेल्स को, कि कई बारी हमारे रिश्तों में ऐसा होता है, लाइफ में ऐसा होता है कि हमें ऐसी सिचुएशन से गुजरना पड़ता है जहां हम खुद तो कॉन्फिडेंस होते हैं और हमें किसी के सपोर्ट की जरूरत भी नहीं होती है। मुझे जब मेरी मैरिज हुई मुझे ना कोई फाइनेंशियल सपोर्ट की जरूरत थी कुछ। हाँ, अच्छी बात ये रही, आप बिलीव नहीं करेंगे, जॉब के दौरान मैंने एक छोटा सा दिल्ली में फ्लैट भी खरीद लिया
0: था। क्या बात है,
1: बिफोर मैरिज। तो ये भी मेरा एक बहुत अचीवमेंट था। सबको जब मैंने लिया तो जॉब में, जब मैं न्यूज एक्सप्रेस में थी तो मैंने सबको ऑफिस में भी मिठाई बांटी कि मैंने एक फ्लैट लिया है, तो तब भी वो लोग बहुत शॉक्ड हो गए कि तुम इतनी कम एज में, क्योंकि मेरे फादर का भी सपोर्ट था, उनकी भी विश थी कि तुम लो, क्योंकि मैं बहुत जितना कमाती थी मैं उससे चार गुना खर्चा करती थी। तो मेरे घर में तो कपड़ों की अलमीरा और जूतों की अलमीरा ही हुआ करती थी। तो मेरे पापा आए, 15 दिन मेरे साथ रहे, तो उन्होंने देखा कि इसने कभी 15 दिन में एक भी दिन ड्रेस कभी रिपीट ही नहीं की है। तो कहते तुम करती क्या हो, तुम मुझे कुछ अपना इन्वेस्टमेंट करो, कुछ पैसों को बचाओ। तो फिर उन्होंने कहा तुम एक फ्लैट लो और मैं तुम्हें थोड़ा हेल्प करूंगा और तुम्हारा घर भी हो जाएगा, तुम्हें रेंट वेंट भी नहीं पे करना पड़ेगा और तुम्हारे लिए भविष्य में अच्छा होगा। हम तो इतना सोचते नहीं थे, हम तो बस लाइफ में पता ही नहीं था दुख चीज क्या होती
0: जी,
1: है
0: जी, जी,
1: हाँ
0: जी।
1: लेकिन जब ये वाली चीज हुई लाइफ में, जब मेरा सेकेंड फेज आया आफ्टर मैरिज, तो वो मुझे तोड़ गया एक तरह से, क्योंकि मैं इतना कॉपअप ही नहीं कर पा रही थी, फैमिली अपोजिट। बस फिर ये था, परमात्मा की ब्लेसिंग थी कुछ, और मुझे इतना अच्छा इंस्टीट्यूट ब्रह्मा कुमारी मिला जहां मैंने स्पिरिचुअल लर्निंग की, स्पिरिचुअल स्टडी की, और फिर से अपने माइंड की जो कंडीशनिंग की कर दी थी दुनिया वालों ने, मतलब मैं निराश इसलिए नहीं थी, मुझे लगता है कि मेरे में कैपेसिटी नहीं है या मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूं। मैं ये देखती थी मेरे आसपास जो लोग थे मुझ पर प्रेशर बनाते थे। मैं ऑफिस में जाती थी, अरे मैरिज हो गई अब बच्चे कर लो, मतलब एक रूटीन लाइफ ही जीना था उनको, या फैमिली वाले भी ये बोलते थे कि क्या कर रहे हो, कैसे क्या चल रहा है, और ये तो होता ही है, मतलब वो एक घिसी पिटी बात है जिसको मेरा माइंड स्वीकार नहीं कर पा रहा था, मेरी अंतरात्मा स्वीकार नहीं कर रही थी कि ऐसी जिंदगी क्या मैंने प्लान की थी अपने लिए। तो फिर मैंने उसको बोला नहीं, अब मुझे इस चीज से निकलना है, और इसके लिए मुझे बहुत स्पिरिचुअल स्टडी ने बहुत हेल्प की, मेडिटेशन ने बहुत हेल्प किया। मेडिटेशन से मैंने अपने मन को हील किया, मेरी सारी निराशाएं चली गई। उसके बाद फिर से मैंने फिर अपना धीरे धीरे आध्यात्मिक स्टडी के थ्रू, इसी को मैंने सोचा कि अब जैसे एक योगा वाले नहीं होते, फिजिकल योगा करता है तो किसी को उसको लगता है कि ये फिजिकल योगा, इसको मैं प्रोफेशन बना सकता हूं। तो मुझे सेम ये वाली फीलिंग आ गई कि ये जो मेडिटेशन है जो मैंने ये सीखा है, कई लोग मेरे जैसे निराशा में होंगे, डिप्रेशन में होंगे, लाइफ में टूटे होंगे, क्यों ना मैं इस मेडिटेशन को और लोगों तक सिखाऊं। और स्पिरिचुअल स्टडी कितनी जरूरी है, क्योंकि मुझे तब तक ये नहीं पता था कि स्पिरिचुअल चीज भी हमारी लाइफ में इतनी वैल्यू रखती है।
0: जी जी, तो इस तरह आपका डिवोर्स हो गया और फिर आप अभी स्पिरिचुअल लाइफ जी रहे हैं।
1: हाँ, फिर मैंने इसको ऐसे एज ए स्पिरिचुअल टीचर मैंने सोचा, अब मुझे स्पिरिचुअल, और मैं साथ में मीडिया का भी काम करती हूँ, तो मैं अभी यही ब्रह्मा कुमारीज के भी यूट्यूब चैनल हैंडल करती हूँ, इनकी न्यूज भी लिखती हूँ और भी दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे भी लिखती हूँ, मीडिया विंग से भी जुड़ी हूँ, कई तरह की मैं मीडिया में सेवाएं करती रहती हूँ, ड्यूटीज मैं निभाती हूँ, प्रोफेशनल भी करती हूँ कुछ चीजें। तो इस तरीके से ये जर्नी रही। तो मैं लेकिन यही मैसेज देना चाहूंगी हर फीमेल को कि अप एंड डाउन लाइफ में आते हैं, तो हमें कभी भी निराश नहीं होना चाहिए, और कहीं ना कहीं एक रास्ता, एक किरण हमें जरूर मिलती है जो हमें आगे जीवन में ले जाती है।
0: बिल्कुल, जैसे आप भी निराश हो गए थे लेकिन फिर से आपने अपने आप को खड़ा किया।
1: हाँ बिल्कुल, रीगेन किया जी, बिल्कुल।
0: तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका ज्योति जी, जो आप अपने ही रेडियो मधुबन में, क्योंकि आपने तो रेडियो मधुबन में भी कार्य किया है, तो कभी हम ये बात भी बताएंगे अपने श्रोता बंधुओं को।
1: बिल्कुल जरूर
0: जी, तो बहुत बहुत आभार आपका कि पुनः आप पधारे और आपने हमारे श्रोता बंधुओं के लिए और रेडियो मधुबन के लिए कीमती समय निकाला और अपने जीवन के अनुभव शेयर किए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद उषा जी, थैंक यू सो मच।
0: आप सुन रहे थे कार्यक्रम वंदे मातरम, और वंदे मातरम में ज्योति जी हमारे साथ बने हुए थे। ज्योति जी के अनुभव आप सभी ने सुने हैं कि कितने निडर होने के बावजूद भी इनके जीवन में भी परीक्षाएं आई, और एक समय ऐसा आया कि आप पूरे निराश हो गए, फिर से स्वयं को संभाला और स्वयं को उठ खड़ा किया। ऐसे ही हमारे बहनों को कहना चाहेंगे कि कोई भी जीवन में निराश न होवे, हर एक के जीवन में उतार चढ़ाव आता है, लेकिन स्वयं को संभालना है जैसे कि ज्योति जी ने संभाला है। तो ऐसी नारी शक्ति को, ऐसी भारत देश की बेटी को रेडियो मधुबन सलाम करता है, वंदन करता है, नमन करता है। प्यारी बहनों, अगर आप भी अपने जीवन के अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो नंबर रेडियो मधुबन के है 9414151415 पर आप फोन कॉल्स कर सकते हैं और आप भी अपने जीवन के अनुभव शेयर कर सकते हैं। अब मैं उषा माहेश्वरी आप सभी से इजाजत चाहूंगी, अगले रविवार को फिर मिलेंगे। तब तक के लिए सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: Endless Classical Gem, ब्यूटिफुली रेंडर्ड बाय लता जी। समय से परे कुछ गीत जो हमें उठ खड़े होने में, अपने आप को संभालने में, फिर से रिफ्रेश होकर चलने में मदद करते हैं। रेडियो मधुबन 107.8 FM पर शुरू हो चुका है संगीत का वो सफर, संगीत का वो काफिला, जिस पर चलने के लिए हम सब उतावले रहते हैं। आइए फिर से मतवाले मौसम में मतवाले बनकर चलते हैं एक नई दिशा की ओर। इस दिशा में भी आपके लिए कुछ न कुछ इंतजार कर रहा है। फ्रेंड्स, हम सभी को आगे बढ़ने के लिए सही दिशा चुननी है, और आज के इस सफर पर हमने चुने हैं आपके लिए टाइमलेस क्लासिकल जेम। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, कार्यक्रम है गुलदस्ता। मैं हूँ इस कार्यक्रम की शो होस्ट स्वर्णलता।
1: आप हबरेडिया रेडियो मधुबन 107.8 FM हबरता रेडियो ने मुस्कुराता रेडियो।

0: मन मोहन मन में हो तुम्हें, और हमारे मन में कौन है? हमारे मन में है आज के गीत जो बजने वाले हैं और जो बज चुके हैं। टाइमलेस क्लासिकल अर्थात समय से परे सदाबहार, कभी भी सुनो न्यू लगता है। म्यूजिक जो सभी को भाए, आज के गीतों में अपने मन को रमाए रखें, आज के गीतों को दिल से सुने। क्लासिकल म्यूजिक के स्वर जब तन मन में छा जाए, जो मूड को चेंज कर दे, वही गीत आज हम सुन रहे हैं। वैसे हर एक में क्या परिवर्तन आता है इन गीतों को सुनकर, यह वही बता सकता है ना। हम किसी के मन में झांक कर तो नहीं देख सकते, पर हाँ हम अपने मन के रास्ते को बदल सकते हैं इन सुरमई गीतों को सुनते हुए, मुस्कुराते हुए। रेडियो मधुबन पर आप सभी का फिर से स्वागत है, और स्वागत है कार्यक्रम गुलदस्ता में।
1: द बेस्ट राइटर अवार्ड गोज टू मिस सुरेखा।
2: अरे ये तो देख भी नहीं सकती, फिर भी उसको अवार्ड मिल गया।
1: प्लीज कम ऑन द स्टेज मिस सुरेखा, दो शब्द हमारे बीच रखें। आपको कैसा लग रहा है?
3: मैंने मन की आंखों से देखा है इस दुनिया को। मेरी आंखों में रोशनी ना सही, परंतु जीवन में उजाला ही उजाला है। दिव्यांगता मेरी पहचान नहीं, मेरी काबिलियत ही मेरी पहचान है।
4: रेडियो मधुबन की कोशिश है दिव्यांग लोगों के प्रति हो सही दृष्टिकोण, काबिलियत से बनाए अपनी पहचान, पिछड़ी सोच का खत्म करे नामो निशान।
5: मानवीय हो मानसिकता, सुखद हो व्यवहार, मन की आंखों से देखिए सुंदर ये संसार।

0: हृदय में सरगम गूंजने लगते हैं, हृदय में तान उमड़ने लगते हैं जब ऐसे टाइमलेस क्लासिकल म्यूजिक को हम सुनते हैं। टाइमलेस का अर्थ है कालातीत, टाइमलेस का अर्थ है समय से परे, सदाबहार, चिरस्थाई। इसका तात्पर्य उस वस्तु विचार या शैली से है जो समय के प्रभाव से पुरानी नहीं होती और हमेशा प्रासंगिक या सुंदर बनी रहती है। हाँ जी हाँ साथियों, ऐसे गीत जो हैं वो हमेशा हमारे दिलों में गूंजते हैं, चिरस्थाई बने रहते हैं, चाहे समय का कितना भी परिवर्तन होता हो। समय फैशन के कारण, समय मौसम के कारण, समय हमारे मन के विचारों के कारण परिवर्तनशील है, पर ये गीत परिवर्तनशील नहीं है। ये गीत हमारी पसंद नापसंद से परे हैं। इन गीतों को पसंद करना ही होता है म्यूजिक लवर्स को। कहते हैं गूंजे दिशी दिशी मृदंग, गूंजे दिशी दिशी मृदंग, प्रतिपल नवराग रंग, रिमझिम के सरगम पर छिड़े तान। ऐसे तरानों को, ऐसे मन भावन खुशनुमा गीतों को आज हम सुन रहे हैं और तरोताजा अनुभव कर रहे हैं। अनुभव मूर्त बनाने आती हूँ हर सप्ताह रेडियो मधुबन पर, कार्यक्रम है गुलदस्ता।
1: आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन।
2: गाड़ी में सफर करते समय कोई भी अनजान व्यक्ति से किसी भी प्रकार की खाने पीने की चीजें स्वीकार न करें, इससे आपकी जान व माल दोनों का नुकसान हो सकता है।
1: रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।
3: श्री राम चंद्र आश्रित पारिजात है,

0: जीवन नैया के खेवन हारे, ओ जीवन नैया के खेवन हारे, हे परमेश्वर तुम्ही तो प्रेम की ज्योति जगाते हो, तुम्ही तो स्नेह सिखलाते हो। ऐसा कहकर हम सभी ने उस परमात्मा को बहुत ही अपने दिल के करीब बुला लिया। जय रघुनंदन, जय सियाराम। रेडियो मधुबन पर आज आप सुन रहे हैं टाइमलेस क्लासिकल म्यूजिक, और इसमें वैरायटी भी है। वैरायटी क्लासिकल है, एक भजन आपने सुना जिसमें क्लासिकल म्यूजिक जो है दिखाई दे रहा था। आप सभी को आज हम लेकर जा रहे हैं एक ऐसी दुनिया में जहां पर सिर्फ और सिर्फ सुर तान और सरगम की मेला दिख रही है। दोस्तों, भजन जिसमें शास्त्रीय संगीत का असर है, प्रभाव है, संगीत की शैलियों में एक है क्लासिकल म्यूजिक, जिसमें हम इन सुर तान और संगम की मेला देख सकते हैं। तो अभी आपने एक भजन सुना जिसमें शास्त्रीय संगीत का असर देखने को मिल रहा था। तो ऐसे ही वैरायटी गीत आज आप सुन रहे हैं, लेकिन रहेगा टाइमलेस क्लासिकल। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमारे साथ जुड़ जाइए। अभी तक अगर आप जुड़े नहीं हो कार्यक्रम गुलदस्ता में।
1: वो पहाड़ देख रहे हो?
2: हाँ, कितना सुंदर है।
1: और उनको देख रहे हो?
2: वो तो रतन मोहिनी दादी है ना।
1: वो इस पर्वत से भी ज्यादा अपने नियमों पे अडिग, उसकी चोटी से भी उच्च स्थिति वाली है। उस पर्वत से जैसे सूर्य दिखाई देता है ना, ऐसे ही दादी जी ज्ञान सूर्य यानी परमात्मा से मिलवाती है।
3: ऐसी असीम शक्ति जिन्होंने समाज कल्याण में समर्पित कर दिया अपना जीवन, आइए सुने उनकी कहानी। रेडियो मधुबन 107.8 FM पर हर शुक्रवार रात 9:30 बजे कार्यक्रम शक्ति वंदन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: विरह रस से भरा एक गीत हम सभी ने सुना और आप सभी ने ऑब्जर्व किया होगा, ध्यान दिया होगा कि इसमें भी क्लासिकल म्यूजिक का असर है। का करूं सजनी आए न बालम, यह गीत हम सभी ने सुना यशुदास जी की आवाज में। ऑल टाइम फेवरेट गीत है साथियों, बहुत साल बाद हमने इस गीत को प्ले किया आप सभी के लिए रेडियो मधुबन पर, जहां पर अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गुलदस्ता। और मुझे उम्मीद है कि जो श्रोता अभी तक ज्वाइन नहीं किए वो अभी जुड़ चुके हैं। कहते हैं सरगम कुदरत की देन है, कुदरत को ध्यान से देखकर कला रसिकों ने सरगम और सरगम से रमणीय गीतों की रचना की। एक गीत को बनाने के लिए भी सही विधि और नियम का अनुकरण और अनुसरण करना होता है। किसी भी गीत को जैसे तैसे हम नहीं बना सकते। इस जिंदगी में जो भी कार्य हम करते हैं सभी में कुछ न कुछ विधि अपनानी पड़ती है, वैसे ही गीतों के निर्माण में भी विधियों का बहुत बड़ा रोल है। तो आप सब हैं हमारे साथ, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए और टाइमलेस क्लासिकल म्यूजिक को हम सब मिलकर एंजॉय कर रहे हैं आज के प्रोग्राम में। रेडियो मधुबन हमारे जीवन को सुखमय व समृद्धशील बनाता है। सभी प्रोग्राम्स को बेहतरीन अंदाज में, नवीनता को लिए बेहतरीन क्वालिटी के साथ।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 मेगाहर्ट्ज पर, 107.8 FM पर। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: क्लासिकल म्यूजिक समय और मन दोनों पर ही परिवर्तन ले आता है। यह परिवर्तन हम देख सकते हैं इन गीतों को सुनते हुए। वैसे एक होता है स्थूल समय, घड़ी का समय, और वह समय परिवर्तन के साथ साथ हमारे कार्यों में भी परिवर्तन देखने को मिलता है। जैसे मॉर्निंग के समय में हम सब उठते हैं, अपने कार्यों को करने में लग जाते हैं और रात्रि में हम कार्य से निवृत्त हो जाते हैं। वैसे ही मौसम के परिवर्तन से मन में एक अजीब किस्म की खुशी होती है, और जब सुर ताल सरगम में कोई परिवर्तन देखने को मिलता है वह मन पर भी और समय पर भी असर करता है। तो यह समय जो है यह बहुत कुछ हमारे भीतर परिवर्तन ले आता है। रेडियो पर आप सब हैं स्वर्णलता के साथ, और अभी हम दो ऐसे गीत सुनने वाले हैं जिसमें परमात्मा को प्रीतम कहकर पुकारा गया है, और प्रीतम की याद में हम यह विरह गीत सुन रहे हैं, क्योंकि परमात्मा के विरह में भी लोग गीत रचना करते हैं, और इन रचनाओं में आप क्लासिकल संगीत का, क्लासिकल म्यूजिक का असर देख सकते हैं।
1: बचपन की सुरक्षा है एक खास जिम्मेदारी, इस पर कोई आंच नहीं आनी चाहिए। आप आपातकालीन स्थिति के साथ उन्हें लंबे समय के पुनर्वास के लिए मदद भी करता है चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर। बच्चे या बड़े जो उनकी सहायता करना चाहते हैं डायल कर सकते हैं 1098 अपने फोन से। सजग रहिए, सुरक्षित रहिए। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।

मैं तो प्रेम दीवानी प्रीतम दरस दिखाओ, इन दोनों गीतों में हमने विरह रस को देखा और उसमें क्लासिकल म्यूजिक की जो एक निशानी थी वह भी हमने देखी। तो रेडियो पर आज हम क्लासिकल सॉन्ग सुन रहे हैं, वो भी वैरायटी के क्लासिकल सॉन्ग सुन रहे हैं। आज की जो कलेक्शन है इसमें भजन के साथ भी हमने क्लासिकल म्यूजिक को देखा, फिर विरह गीतों में भी क्लासिकल म्यूजिक को देखा, और आज के गीतों में फिल्मी सॉन्ग भी है, गैर फिल्मी सॉन्ग भी है, तो है ना वैरायटी से भरपूर आज का कार्यक्रम। तो देर ना करते हुए आइए सुनते हैं रफी साहब की आवाज में राग मालकोस पर बहुत ही सुंदर एक गीत। इस गीत को सुनकर आप भी अपने आप को जो है यही कहेंगे, अखियन संग अखियां लागी।

0: फेवरेट टाइमलेस क्लासिकल म्यूजिक आज हम सुन रहे हैं। और अभी हमने रफ़ी साहब की आवाज़ में जो गीत सुना, यह गीत भी बहुत दिनों बाद हमने पेश किया। मुझे ऐसा फील हो रहा था कि हम अपना जो सांस्कृतिक धरोहर है क्लासिकल संगीत के रूप में, और खासकर बॉलीवुड के जो गोल्डन एरा के गीत हैं, यह मिस हो रहे थे काफ़ी दिनों से। तो आज के प्रोग्राम में उन श्रोता बंधुओं को बहुत अच्छा लगा होगा जो पुराने गीतों के शौकीन हैं, जो ऐसे वैरायटी गीतों के शौकीन हैं। तो वैरायटी थीम के अंतर्गत आज हमने सुना टाइमलेस क्लासिकल सॉन्ग म्यूजिक। सफ़र पर साथ चलने में मज़ा है, सफ़र पर साथ चलने में मज़ा है, और साथ मंजिल तक पहुंचने में दुगुना मज़ा है। तो आज के सफ़र में आप सभी शामिल हुए, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज स्वर्णलता को इजाज़त दीजिए, फिर से सुरीले सफ़र पर हम चलेंगे और ऐसे ही मंजिल तक हम साथ साथ चलते रहेंगे। दो गीत बैक टू बैक सुनते हुए हम विदा लेंगे आज के प्रोग्राम से। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आप हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM पर।
1: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
2: लाइफ का जो स्टाइल है उसको लाइफस्टाइल कहते हैं। Lifestyle is not only about what we are eating, drinking, wearing. Lifestyle is about what we are thinking, speaking, behaving. That's my lifestyle.
1: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: नमस्ते दोस्तों। भाई आज मेरा पतंग उड़ाने का बहुत मन कर रहा है।
1: क्या कहा?
0: क्यों? अरे भाई वो इसलिए क्योंकि मीना और रवि भी एक पतंग प्रतियोगिता के बारे में बात कर रहे हैं।
2: रवि तुम देखना, इस बार भी पतंग प्रतियोगिता अपनी सुमी ही जीतेगी।
3: हाँ मीना, आखिर सुमी है ही इतनी बढ़िया पतंगबाज।
4: पतंगबाज? वो काटा की आवाज।
2: अरे वाह पहलवान चाचा, नए ट्रैक्टर पे घूमने निकले हैं, है ना?
5: अरे नहीं नहीं मीना बेटी, मुझे तो रेलवे स्टेशन तक जाना है।
2: पहलवान चाचा अब रेल की टिकट लेने जा रहे हैं?
5: नहीं रवि, मुझे तो ये पर्चे वहाँ दे के आने हैं।
2: ये पर्चे कैसे हैं पहलवान चाचा?
5: मीना बेटी ये पर्चे जावेद भाई के हैं।
2: जावेद भाई? ओ जावेद चाचा, वो तो बाल सुरक्षा समिति के सदस्य हैं, है ना?
5: हाँ, मेरा पुराना दोस्त है जावेद, उसने मुझसे कहा कि मैं ये पर्चे रेलवे स्टेशन तक छोड़ाऊं। तुम दोनों चलोगे मेरे साथ?
2: हाँ पहलवान चाचा जरूर चलेंगे।
5: तो चलो ट्रैक्टर पे बैठ जाओ।
0: मीना और रवि पहलवान चाचा के साथ ट्रैक्टर पर बैठकर रेलवे स्टेशन की तरफ गए। रास्ते में रवि ने ट्रैक्टर में रखे पर्चों में से एक पर्चा उठाया।
2: चाइल्ड लाइन 10-9-8। पहलवान चाचा इसका क्या मतलब है?
5: रवि बेटा, सरकार ने ये हेल्पलाइन मुसीबत में फंसे बच्चों की मदद के लिए बनाई है।
2: मुसीबत में फंसे बच्चे?
5: हाँ, कभी कभी कुछ बुरे लोग भोले भाले बच्चों को तरह तरह के लालच देके अपने साथ ले जाते हैं और फिर वो लोग उन बच्चों से अपनी दुकानों और कारखानों में मजदूरी करवाते हैं।
2: ओहो ये तो बहुत बुरी बात है, इसलिए मैं कभी किसी अनजान व्यक्ति से बात नहीं करता।
5: रवि खतरा सिर्फ अनजान व्यक्तियों से ही नहीं होता, कई बार तो जान पहचान वाले या कभी कभी तो बच्चों के रिश्तेदार भी उन्हें लालच दे के दूर ले जाते हैं और उन्हें खतरे में डालते हैं।
2: ओहो।
5: तभी तो कहते हैं कि बच्चों को अपने आँख कान खोल के रखने चाहिए, यानी हमेशा सचेत और सजग रहना चाहिए।
2: और अगर बच्चे कभी किसी भी मुसीबत में फंस जाए
5: तो उन्हें तुरंत किसी बड़े से बात करनी चाहिए या फिर बाल सुरक्षा समिति के सदस्य के पास जाना चाहिए या चाइल्ड लाइन का सहारा लेना चाहिए।
2: लेकिन पहलवान चाचा ये चाइल्ड लाइन उन बच्चों की मदद कैसे करती है? रवि अगर बच्चे किसी मुश्किल में हो तो वो 10-9-8 पे फोन मिला के अपनी समस्या बता सकते हैं।
5: अरे वाह मीना, तुम्हें तो सब पता है।
2: पहलवान चाचा हमारी बहन जी ने बताई थी ये बात। बहन जी ने? कब? शायद तुम उस दिन स्कूल नहीं आए थे।
5: देखा रवि बेटा, तभी तो कहते हैं कि हर रोज स्कूल जाना चाहिए।
4: स्कूल जाना चाहिए, ज्ञान बढ़ाना चाहिए।
5: लो भाई पहुंच गए रेलवे स्टेशन। मीना रवि तुम दोनों मेरा इंतजार करो, मैं ये पर्चे देके अभी आया।
2: जी पहलवान चाचा।
5: और हाँ, किसी अनजान व्यक्ति से बात मत करना और ना ही ट्रैक्टर से नीचे उतरना।
2: आप चिंता मत कीजिए पहलवान चाचा, रवि और मैं यहीं ट्रैक्टर पे बैठ के आती जाती रेलगाड़ियों को देखेंगे। रवि वो देखो, सिर्फ इंजन ही पटरी पे दौड़ रहा है।
3: मीना लगता है ये इंजन अपने साथ डिब्बों को लाना भूल गया है।
2: मीना सुमी, सुमी सुमी यहाँ पे कहाँ से?
3: वो जो रेलगाड़ी वहाँ खड़ी है उसमें ध्यान से देखो,
2: तूफान मेल। हाँ मीना, जिस डिब्बे पे S4 लिखा है उधर देखो खिड़की के पास।
3: कहाँ रवि, मुझे तो सुमी नहीं दिख रही।
2: ओहो किसी ने खिड़की बंद कर दी।
3: रवि तुम्हें जरूर कोई धोखा हुआ होगा।
2: नहीं मीना, वो सुमी ही थी, उसने लाल रंग की कमीज पहन रखी थी और उसके साथ एक बड़ी बड़ी मूंछों वाला आदमी भी था।
3: रवि सुमी कल ही मुझसे मिली थी, अगर वो कहीं जा रही होती तो मुझे जरूर बताती, और वैसे भी 3 दिन बाद पतंग प्रतियोगिता है, सुमी कुछ भी छोड़ सकती है लेकिन वो प्रतियोगिता नहीं छोड़ सकती।
2: बात तो तुम ठीक कह रही हो सकता है मुझे ही कोई धोखा हुआ हो, रवि, एक काम करेंगे, वापस लौट के हम सुमित के घर चलेंगे, ठीक है?
3: ठीक है।
0: वापस लौटते समय पहलवान चाचा ने मीना और रवि को सुमी के घर के बाहर उतार दिया। वो दोनों जल्दी से सुमी के घर पहुँचे और सुमी की माँ से मिले।
2: चाची जी, सुमी कहाँ है?
1: मीना बेटी, सुमी तो साथ वाले गांव गई हुई है।
2: साथ वाले गांव?
6: कौन है सुमी की माँ?
2: नमस्ते चाचा जी।
6: जीते रहो बच्चों। सुमी तो घर पे नहीं है, वो तो मेरे खास दोस्त रंजीत के साथ मेला देखने गई है साथ वाले गांव में।
1: मैं मीना और रवि को वही बता रही थी।
2: चाची जी, क्या सुमी ने लाल रंग की कमीज पहनी हुई है?
1: हाँ, लेकिन तुम्हें कैसे पता?
6: बोलो मीना।
3: चाचा जी, मीना और मैं अभी पहलवान चाचा के साथ रेलवे स्टेशन गए थे। मैंने एक रेलगाड़ी में सुमी को देखा।
6: रेलगाड़ी में?
3: हाँ, सुमी लाल रंग की कमीज पहने खिड़की के पास बैठी थी और उसके साथ एक आदमी भी था।
6: क्या उस आदमी की बड़ी बड़ी मूछें थी?
3: हाँ चाचा जी, उस आदमी की ये बड़ी बड़ी मूछें थी।
1: हाँ, इसका मतलब रंजीत भाई साहब, लेकिन वो सुमी को रेलगाड़ी में बिठाकर कहाँ?
6: मेरी बच्ची।
3: चाचा जी, हमें फौरन 10-9-8 पे फोन करना चाहिए।
2: नहीं रवि, बहन जी ने बताया था कि ऐसी मुश्किल के समय सबसे पहले बाल सुरक्षा समिति में खबर करनी चाहिए।
6: मीना ठीक कह रही है, चलो।
0: सुमी के माता पिता मीना और रवि के साथ बाल सुरक्षा समिति के सदस्य जावेद के घर पहुँचे और उन्होंने जावेद को सारी बात बताई।
6: जावेद भाई, हमारी मदद कीजिए।
7: अरे आप घबराइए मत भाई साहब, मैं कुछ करता हूँ। तूफान मेल का अगला स्टेशन आने में अभी 1 घंटा बाकी है। रेलगाड़ी के वहाँ पहुँचने से पहले पहले कुछ 10-9-8 पे फोन मिलाता हूँ।
8: नमस्कार, चाइल्ड लाइन में आपका स्वागत है।
7: जी नमस्ते, मैं जावेद बोल रहा हूँ, मैं बाल सुरक्षा समिति का सदस्य हूँ।
8: जी कहिए, मैं आपकी किस प्रकार सहायता कर सकती हूँ?
7: जी, हमारे गांव की एक लड़की है सुमी, करीब 12 साल की, वो तूफान मेल के S4 डिब्बे में है, लाल रंग की कमीज पहने। उसके साथ एक आदमी भी है रंजीत, बड़ी बड़ी मूछें हैं उसकी। हमें डर है कि सुमी को धोखे से कहीं दूर ले जाया जा रहा है। तूफान मेल अब से ठीक 1 घंटे बाद सूरजपुर।
0: जावेद भाई ने चाइल्ड लाइन में फोन करके उन्हें पूरी बात बताई और फिर 3 घंटे बाद।
2: माँ, पिताजी।
1: सुमी,
6: मेरी बच्ची।
9: शुक्रिया इंस्पेक्टर साहब।
10: शुक्रिया तो हमें आपका करना चाहिए जावेद भाई, आपके चाइल्ड लाइन पे फोन करने की वजह से ही हम रंजीत को गिरफ्तार कर पाए।
9: रंजीत ऐसा निकलेगा, मैं सपने में भी नहीं सोच सकता था।
10: भाई साहब, उस रंजीत के साथ 3-4 बच्चे और भी थे, वो उन्हें और आपकी बेटी को शहर लेके जा रहा था एक कारखाने में काम करवाने।
1: मीना, रवि, तुम दोनों के कारण ही मेरी सुमी बच पाई है, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद।
4: धन्यवाद। 10-9-8 रखना याद।
0: कहते हैं अंत भला तो सब भला। मीना और रवि की सूझबूझ ने सुमी को रंजीत के चंगुल से बचा लिया। दोस्तों, अगर आप भी कभी खुद को या किसी बच्चे को किसी भी मुश्किल में पाएं, तो सीधे 10-9-8 पे फोन मिलाएं। चलो अब सुनते हैं मीना और मिट्टू की एक मजेदार कविता।
2: कभी अगर जो आए मुश्किल, बिल्कुल मत घबराना,
4: हिम्मत करना, फोन उठाना, 10-9-8 मिलाना।
0: भाई वाह, क्या खूब कविता लिखते हैं अपनी मीना और मिट्टू। चलो अब सुनते हैं एक बढ़िया सा गाना।

0: बेटा मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारी नौकरी लगवा दूंगा, खूब पैसे कमाओगे।
1: बेटी मेरे साथ शहर चलो, तुम्हें टीवी फिल्मों में काम दिलवाऊंगा, खूब नाम।

0: हा, गाना सुन के तो मजा आ गया। अब कहाँ चलना है? अब चलना है मीना की क्लास में एक नया खेल खेलने।
1: बच्चों, आज हम खेलेंगे अक्षरों की अंताक्षरी। मैं तुम्हें एक शब्द बताऊंगी और तुम्हें उस शब्द के हर एक अक्षर से एक नया शब्द बनाना है और हर नए शब्द से जुड़ा एक मुहावरा बताना है। ठीक है?
2: जी बहन जी।
1: तो आज का शब्द है नगर। चलो बच्चों, अब नगर के हर अक्षर से नए शब्द बनाओ।
3: बहन जी, नगर का पहला अक्षर है न और न से होती है नानी।
4: बहन जी, लगता है सुमी को अपनी नानी की याद आ रही है।
3: दीपू, मुहावरा भी यही है, नानी याद आना, यानी किसी कठिनाई में पड़ना।
1: शाबाश सुमी। चलो बच्चों, अब अगले अक्षर से शब्द कौन बनाएगा?
4: बहन जी, न के बाद नगर में आता है ग और ग से होता है गुड़।
1: शाबाश रवि। और गुड़ से जुड़ा मुहावरा?
4: गुड़ गोबर करना, मतलब बना बनाया काम बिगाड़ देना।
1: बिल्कुल सही। अब अगला शब्द कौन बताएगा?
3: न और ग के बाद नगर में आता है र और र से होता है राई।
1: शाबाश मीना। और राई से जुड़ा मुहावरा?
3: राई का पहाड़ बनाना, मतलब छोटी सी बात को बढ़ा चढ़ा के बताना।
1: बिल्कुल सही। तो बच्चों, खेल के मजा आया ना?
2: बहुत मजा आया बहन जी।
0: मजा तो आपको भी खूब आया होगा, है ना? फिर ठीक है, जल्दी मिलते हैं एक नई कहानी, नए गीत और एक नए खेल के साथ। तब तक अपनी प्यारी मीना को चिट्ठी लिखना मत भूलना, चाहे वो आपके सुझाव हो, आपके विचार हो या आपके अनुभव।
3: दोस्तों, मुझे चिट्ठी जरूर लिखना, मैं इंतजार करूँगी। मेरा पता है मीना की दुनिया, यूनिसेफ, पोस्ट बॉक्स नंबर 3008, लोधी रोड, HPO, नई दिल्ली 1100003।

0: आपके यहाँ है?
1: हाँ चीनी, घर में सब कुछ तो है, लेकिन पड़ोस में रहने वाली कमला के कारण हम लोग बहुत परेशान हैं।
0: अब क्या हुआ आंटी? पिछली बार ही तो मैंने कमला आंटी से आपका पीछा छुड़वाया था।
1: वो क्या है चीनी, आजकल कमला का भाई आया हुआ है।
0: तो आंटी आपकी प्रॉब्लम उनका भाई है?
1: भाई नहीं चीनी, उसके पास एक बेसुरा हारमोनियम है। वह रोज सुबह शाम छत पर बेसुरा रियाज करता है।
0: ओह, तो आपको उनके बेसुरे रियाज से प्रॉब्लम है?
1: सच चीनी, सुबह शाम कान में रुई लगाकर रहना पड़ता है। कल शाम 6 बजे किचन में चाय बना रही थी, जैसे ही कप उठाया कि छिड़ गई बेसुरी तान। घबराहट में हाथ से चाय का प्याला ही छूट गया।
0: घबराइए नहीं आंटी, मैं सब ठीक कर दूंगी। आंटी फिक्र ना करो, अब कान पकेंगे कमला आंटी के।
2: शाम 5 बजे कमला आंटी का भाई कल्लू अपने बेसुरे हारमोनियम के साथ फटी हुई आवाज में राग भोपाली गाने लगे।
0: वाह अंकल, क्या खूब आवाज है आपकी, क्या सुर लगाया है।
3: मिल गया मुझे मेरा कद्रदान, ऐसा कद्रदान बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। बेटा आप वहाँ क्यों खड़ी है, आइए ना मेरे पास।
2: उधर चीनी कमला के घर में आई तो कमला बोली,
4: ए लड़की क्या चाहिए तुम्हें, भागो यहाँ से।
2: तभी कल्लू अपना हारमोनियम छत पर छोड़कर नीचे उतर आया और बोला,
3: दीदी इस बच्ची को आने दो, ये पहली लड़की है जिसने मेरी आवाज को पहचाना है।
4: कल्लू तुम रियाज करो, मैं जानती हूँ यह लड़की बहुत शरारती है।
0: रहने दीजिए कल्लू अंकल, मैं चली जाती हूँ, मैं तो बस इतना कहने आई थी कि आपकी इतनी अच्छी आवाज है, आप फिल्म में ट्राई क्यों नहीं करते।
3: ये तुमने ठीक कहा, मेरे दिमाग में ये बात क्यों नहीं आई। अब मैं ड्राइंग रूम में रियाज करूँगा ताकि कोई मेरा धुन चुरा ना ले।
4: बेवकूफ मत बनो कल्लू, तुम्हारी आवाज से अच्छी तो गधे की आवाज है।
3: क्या कहा दीदी, मेरी आवाज गधे से ही बदतर है, मैं आपको संगीतकार बनकर दिखाऊंगा।
2: अब रोज कमला आंटी के ड्राइंग रूम में कल्लू महाराज बेसुरी रागी गाने लगे। इधर चीनी और नीमा आंटी मजे से हैरी पॉटर की मूवी का मजा ले रही हैं।

नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग के सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी की जानिब से पेश है सातवीं जमात की उर्दू की मुआविन दर्सी किताब उर्दू गुलदस्ता में शामिल नज़्मों पर मुश्तमिल प्रोग्राम।

एकेडमिक गाइडेंस डॉक्टर मोहम्मद नुमान खान, एकेडमिक कोऑर्डिनेटर डॉक्टर चमन आरा, असिस्टेंट्स अब्दुल हक और अशरफ हुसैन, प्रोडक्शन हेड प्रभुदयाल खट्टर, टेक्निकल कंट्रोल सतीश लाड़े, रिकॉर्डिस्ट दीपक पांडे, असिस्टेंट्स इन प्रोडक्शन दाऊदयाल चतुर्वेदी और प्रोड्यूसर रमेश रानी शर्मा।

0: प्रणव हूँ, मैं 8वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। कल जब मैं स्कूल से घर आ रहा था तो पता है मैंने क्या देखा? एक अंकल सड़क पे कचरा फेंक रहे थे। मैंने उनको जाकर बोला कि अंकल सड़क पे कचरा नहीं फेंकना चाहिए, तो पता है उन्होंने क्या बोला?
1: अरे बड़ा है मुझे सिखाने वाला।
0: उन्होंने मेरी बात नहीं मानी और वो चले गए, लेकिन मैंने खुद ही कचरा उठाकर कचरे के डब्बे में डाल दिया।
2: दीदी मेरे बर्थडे आ रहा है, आप मुझे क्या दोगे गिफ्ट में?
3: मैं वो नहीं बताऊंगी क्योंकि वो तो एक सरप्राइज होता है ना।
2: हाँ वैसे सरप्राइज तो मुझे भी अच्छे लगते हैं।
3: मुझे भी। तो चलो दीदी से पूछते हैं कि उन्हें गिफ्ट्स कैसे लगते हैं।
4: हेलो बच्चों।
3: हेलो दीदी,
4: कैसे हो आप लोग?
5: सब बहुत अच्छे।
4: अच्छा कुछ लोग ठीक है, कुछ लोग अच्छे है। अच्छा ये बताओ क्या बात हो रही थी भाई यहाँ पे?
3: हम गिफ्ट्स की बात कर रहे थे।
4: ओ गिफ्ट। अच्छा चलो, तो आप लोग क्यों अकेले अकेले बात कर रहे हो? चलो हम सब गिफ्ट के बारे में बात कर लेते हैं, है ना? ओके अच्छा कौन कौन है यहाँ पे? आपके नाम और क्लास तो मुझे बताओ एक बार।
6: मेरा नाम आयुष है और दीदी मैं 10th क्लास में पढ़ता हूँ।
7: मेरा नाम रोशन और मैं भी 10th क्लास में पढ़ता हूँ।
8: मेरा नाम ओम प्रकाश है और मैं 9th क्लास में पढ़ता हूँ।
9: मेरा नाम अमनप्रीत है और मैं 9th क्लास में हूँ।
10: मेरा नाम शिवानी है और मैं 6th में पढ़ती हूँ।
4: ओके शिवानी अभी सबसे छोटी है। अच्छा ये बताओ बच्चों, आप लोगों को किस किस को गिफ्ट पसंद नहीं है? कोई भी ऐसा नहीं है?
3: नहीं, सबको गिफ्ट पसंद है।
8: सबको पसंद है,
4: सबको पसंद है। अच्छा ये बताओ, गिफ्ट देना ज्यादा अच्छा लगता है कि गिफ्ट मिलना ज्यादा अच्छा लगता है?
3: मिलना,
8: दोनों अच्छे लगते हैं।
4: एक एक करके बोला,
8: दोनों अच्छे लगते हैं, गिफ्ट लेना देना।
6: मुझे गिफ्ट मिलना ज्यादा पसंद है, गिफ्ट देना थोड़ा कम।
4: ओके और रोशन?
7: मुझे भी दोनों पसंद है।
4: ओके अमित?
3: मुझे देने में भी उतनी खुशी होती है, लेने में भी उतनी खुशी होती है।
10: मुझे देने में ज्यादा अच्छा लगता है।
4: अच्छा ये बताओ, अभी तक आप लोगों को बेस्ट गिफ्ट कौन सा मिला है? बताओ। ओम प्रकाश आप बताओगे?
8: मुझे मेरा सबसे बेस्ट वॉच मिला है।
4: वॉच? और किसने दिया?
8: मम्मी ने, करीब 2 साल पहले।
4: ओके तो अभी तक आपने संभाल के रखी है?
8: पहन रखी है।
4: अरे वाह क्या बात है, रोज पहनते हो आप?
8: यस।
4: और कभी कुछ ऐसा दर्द तो नहीं लगता आपको कि कहीं ये इधर उधर ना हो जाए?
8: हाँ पहन के रखता हूँ, कभी निकालता नहीं हूँ। खाली कोई सीरियस बात होगी, कुछ चेंज करना होगा तभी निकालना है।
4: इतना ध्यान रखते हो आप। ओके और आयुष आपको सबसे बेस्ट गिफ्ट क्या लगता है अभी तक जो आपको मिला?
6: दीदी जब बड़ा हो गया हूँ तब तो गिफ्ट मिलने कम हो गए हैं। जब छोटा था तो सबसे बेस्ट गिफ्ट मेरे को एक बड़ा सा टेडी मिला था।
4: अच्छा
6: मेरे से भी बड़ा था।
4: आपसे बड़ा था? तब आप कितने छोटे थे?
6: मैं 4th क्लास में था।
4: और किसने दिया था वो टेडी?
6: वो एक अंकल ने दिया था मेरे।
4: अच्छा
6: उसके साथ मैं रात को खेलता था, सोता था।
4: और कब तक वो टेडी आपके पास?
6: वो करीब 3 साल तक। फिर पता नहीं कहाँ गया, मेरे को याद नहीं है ना।
4: फिर आप बड़े हो गए। अच्छा अमन आपको कौन सा बेस्ट गिफ्ट मिला अभी तक?
3: मुझे तो मेरी बहन ने जो पैसे कलेक्ट करके ला के दिया था ना, इतनी मेहनत से इसने कलेक्ट किया और मुझे ला के दिए, तो मुझे बहुत अच्छा लगा।
4: आपकी छोटी बहन ने?
3: हाँ इसने।
4: क्या बात है, और क्या अच्छा लगा था आपको, क्यों अच्छा लगा था वो?
3: क्योंकि इसने बहुत मेहनत से कलेक्ट किया, इसने कुछ भी खर्चा नहीं किया अपने ऊपर।
4: ओके और शिवानी को कौन सा गिफ्ट सबसे अच्छा लगा अभी तक का? सोचो बताओ।
10: ये तो ड्रेस अच्छी लगी थी।
4: अच्छा और किसने दी थी ड्रेस?
10: वो तो मेरी नानी मम्मा ने दी थी।
4: हाँ कौन सी ड्रेस थी, किस कलर की ड्रेस थी वो?
10: तो व्हाइट रंग की थी और उसमें एप्पल बने थे।
4: अच्छा कब मिली आपको वो ड्रेस?
10: जब मैं बहुत छोटी थी।
4: ओके और वो ड्रेस है आपके पास अभी?
10: नहीं वो तो पता नहीं किधर चली गई।
4: तो शिवानी बड़ी हो गई और ड्रेस छोटी हो गई होगी?
10: पता नहीं किधर है, वो फट फूट गई।
4: ओके और रोशन आपको बेस्ट गिफ्ट मिला अभी तक?
7: दीदी मेरे को एक बार हेडफोन्स मिला था पापा की तरफ से, वो उसके एक दिन पहले मैंने छोड़ दिया था मेरा पुराना हेडफोन, और मेरे पापा को पता भी नहीं था कि टूटा है, और अचानक से मेरे को गिफ्ट में मिला।
4: ओह माय गॉड, और किसने दिया?
7: पापा।
4: पापा ने दिया? और क्या अच्छा लगता है वो हेडफोन आपको, क्यों इतना पसंद आया?
7: उसका जो ट्यून और बेस है बहुत अच्छा,
4: उसे बहुत अच्छा है। ओके अच्छा अब ये बताओ, सबसे ज्यादा बेस्ट गिफ्ट आपने किसको दिया है? जो आपको लगता है कि वो मैंने बड़ा सोच के दिया था और सामने वाला तो बहुत खुश हो गया। हाँ बताओ शिवानी।
10: मैंने तो अपनी मम्मा को किचन बना के दी।
4: हाँ आपने खुद बनाई, कैसे बनाया?
10: वो जो छलने का ऊपर का होता है वो मेरे पास था पहले से, तो नीचे का मैंने बनाया।
4: मतलब आपने कुछ जोड़ा है फेविकोल से ऐसा कुछ तो नहीं?
10: हाथों से।
4: हाथों से बनाया कुछ?
10: वो होता है ना उसको मेटल में जो डालते हैं ना ऐसे से करके उसको दबाया होगा शायद उसने।
4: ओके, और मम्मी को क्या लगा, मम्मी ने क्या कहा जब आपने उनको ये कीचेन बना के दी? तो
10: मम्मी ने कहा इसको तो मैं अपने बैग में टांगूंगी।
4: तो आप खुश हो गए? ओके।
10: और मैंने इसको एक ब्रेसलेट दिया बना के फ्रेंडशिप डे पे।
4: खुद बनाया?
10: मैं उसको स्कूल में पहन के गई थी।
4: क्या बात है, तो शिवानी को वो गिफ्ट सबसे अच्छे लगते हैं देने, वो खुद जो बना के देती है। ओके, आयुष।
6: दीदी मैंने मदर्स डे पे अपनी मम्मी को एक बैग गिफ्ट किया था पॉकेट मनी से। तो मम्मी को बहुत पसंद आया था।
4: अच्छा, कैसा मतलब हैंडबैग?
6: नहीं, पर्स।
4: पर्स दिया था। तो मम्मी ने क्या बोला आपको तब?
6: मम्मी ने बोला ये कहाँ से लाया, कैसे लाया, इतने पैसे कहाँ से आए। बड़ा अच्छा है ये तो। फिर मम्मी अभी भी उसी को यूज करती है।
4: क्या बात है, और मम्मी यूज करती है तो आपको बहुत अच्छा लगता होगा। रोशन।
7: दीदी जब मैं थर्ड स्टैंडर्ड में था तब मैंने एक बहुत मस्त ड्राइंग बना के दिया था मम्मी को मदर्स डे पे, और मम्मी को बहुत पसंद आया, उन्होंने फ्रेम करके हॉल पे लटकाया था।
4: अच्छा, मतलब रोशन की ड्राइंग बहुत अच्छी है। आज तो हमें पता चल गया, अब तो लग रहा है देखनी पड़ेगी रोशन की ड्राइंग।
7: जी दीदी।
4: और आपको ओम प्रकाश?
8: मैंने एक बार मेरे भाई को फुटबॉल दिया था उसके बर्थडे गिफ्ट में। वो भी थोड़ा छोटा है, 4-5 साल का ही है। फिर मैंने सोचा कि इसको क्या दूँ, चॉकलेट्स दूँ, टॉयज दूँ। फिर मैंने फुटबॉल देखा तो मैंने वो खरीद कर उसको दे दिया।
4: फुटबॉल दे दिया फिर आपने? और आपके जो भाई है वो तो बहुत छोटा था, तो उसको कैसा लगा जब बॉल देखा उसने? तो
8: जो उसने बॉल देखा तो मेरे गले मिल गया।
4: ओह अच्छा,
8: उसको अच्छा लगा हुआ तो अभी भी खेलता है फुटबॉल से।
4: क्या बात है, मतलब उसने संभाल के रखी है। बड़ा समझदार भाई है। मेरे एक बार मैंने अपने छोटे भाई को गिफ्ट दिया था, उसने तो एक महीना उसको शायद संभाल के रखा होगा। उसके बाद उसके पेज कहीं और वो गाड़ी कहीं और थी। अच्छा बच्चों, ये बताओ कि आपको जब कोई गिफ्ट मिलता है तो आपको कुछ खुशी के साथ ऐसा भी लगता है अरे इसको बहुत संभाल के रखना चाहिए, संभाल के रखना पड़ेगा, डर लगता है क्या? क्या लगता है बताओ, गिफ्ट को संभालने का डर लगता है क्या? अरे ये तो बहुत ऐसा इंपॉर्टेंट गिफ्ट है, इसको संभाल के रखना चाहिए, किसी को नहीं देना ये गिफ्ट मुझे।
6: हाँ ऐसा लगता है ना।
4: क्या लगता है?
6: जब मेरा बेस्ट फ्रेंड कोई मेरे को गिफ्ट देता है ना।
4: हाँ?
6: तो मैं उसको बड़ा संभाल के रखता हूँ।
4: अच्छा,
6: मेरे बेस्ट फ्रेंड ने मेरे को 7-8 क्लास में गिफ्ट दिया था, एक किचन दिया था छोटा सा, और मैं अभी 10th में हूं, अभी तक वो मेरे पास है सही सलामत।
4: अरे वाह, क्या बात है। और रोशन आप?
7: दीदी मेरे को एक बार पापा ने, मैं शायद 8th क्लास में था तब, तो पापा ने मेरे को एक फाउंटेन पेन दिया था, उसमें मैं बहुत संभाल के लिखता था ताकि निप ना टूटे।
4: ओके।
7: और उसको मैंने अभी तक रखा है पर यूज नहीं।
4: अच्छा, मतलब क्योंकि वो आपके पास रहे संभाल के इसलिए। ओके, मतलब पापा से बहुत प्यार करते हो। अच्छा ओम प्रकाश, आपको?
8: मेरा दोस्त ने मुझे एक बार पेन दिया था। वो पेन का रिफिल तो अभी खत्म हो गया पर मैंने पेन को संभाल के रखा है, वो 4 साल पुराना पेन है।
4: अच्छा, तो उसको कहाँ रखा है आपने संभाल के?
8: मेरे बैग में, पाउच में।
4: पाउच में? तो वो बैग तो आप इधर उधर लेके जाते होगे, तो आपके साथ ट्रैवल करता है आपका पेन?
8: ट्रैवल करता है।
4: आपके दोस्त को बताया आपने कि आपने कब से संभाल के रखा है?
8: हाँ, उसको पता है, मेरे बाजू में बैठता है।
4: तो उसको तो बहुत अच्छा लगता होगा।
8: हाँ।
4: ओके, आप लोग?
10: मुझे ना बर्थडे पे एक फ्रेम मिला था जो कि बहुत अच्छा था, कांच का, और वो मैंने अभी तक संभाल के रखा हुआ है।
4: Okay.
10: कि वो टूट ना जाए, और मैंने उसको यूज भी नहीं किया।
4: कैसे संभाल के रखते हो, कहाँ रखते हो?
10: मैंने उसको खोला ही नहीं, पैकेट से बाहर ही निकाला, बस एक बार देखा और उसमें पैक करके अभी तक रख दिया।
4: तो आप उसको कभी यूज नहीं करोगे?
10: नहीं करूंगी, पर मम्मा को बोलूंगी यूज करने के लिए, मम्मा यूज करेगी कहीं पे भी रखेगी, पर मुझसे क्योंकि मुझसे वो गिर जाएगा कहीं पे,
4: इसलिए आप नहीं निकालते हो। ओके, और शिवानी?
10: मुझे तो रोहित भाई जी ने मेरे बर्थडे पे वो इंजेक्शन वाला पेन दिया था, क्योंकि मुझे सर्दी थी इसीलिए।
4: इंजेक्शन वाला पेन?
10: हाँ।
4: अच्छा,
10: तो उसको मैंने अभी तक रखा है।
4: कहाँ पे रखा है?
10: इसी बर्थडे में दिया था, लेकिन मैंने रिफिल उसके लिए खर्चा की।
4: हाँ।
10: हाँ।
4: तो उसको इतना अच्छा लगता है आपको वो पेन?
10: हाँ, मेरे फ्रेंड्स के लिए कहाँ से लिया।
4: ओके। अच्छा बच्चों, एक बात बताओ, क्योंकि गिफ्ट्स हम देते हैं, हमारे दोस्तों के बर्थडे होते हैं तब भी देते हैं, बट कभी कभी हमें ऐसा लगता है, क्योंकि हमें तो भी पॉकेट मनी मिलती है, हम लोग खुद तो अर्न करते नहीं है, तो क्या कभी कभी आपको लगता है कि मतलब सब लोग गिफ्ट देते हैं इसलिए देना चाहिए, जरूरी होता है, या किसी का गिफ्ट मतलब हमारा गिफ्ट सबसे बेस्ट हो तो हमें कुछ ऐसा खरीदना चाहिए, कभी ऐसा प्रेशर तो फील नहीं होता गिफ्ट देने का?
6: नहीं दीदी,
4: कभी नहीं,
6: नहीं मैं होता। तो दीदी अपनी खुशी से देता हूँ कि मतलब मेरा मन होता है, ऐसे नहीं कि देना है जरूरी है, अरे कैसा अच्छा नहीं लगेगा नहीं दूंगा तो, ऐसा नहीं है,
4: ऐसा कभी नहीं लगता है, किसी को भी नहीं लगता।
8: नहीं
4: हाँ शिवानी,
10: मुझे तो लगता है जब अपने फ्रेंड्स की पार्टी में जाती हूँ तो
4: क्या लगता है
10: बर्थडे पार्टी में, मैं अगर कुछ नहीं दूंगी तो बोलेंगे नहीं।
4: हाँ ऐसा लगता है कि फिर बात नहीं करेंगे उनको, ऐसा लगेगा कि भाई हम तो देते हैं और हमें तो दिया नहीं गिफ्ट कुछ।
10: हाँ।
4: है ना, ऐसा कभी भी होता है। मैं जब कॉलेज में थी, आप लोग तो अभी हालांकि स्कूल में हो, मैं जब कॉलेज में थी और मैं नए नए कॉलेज जाना शुरू किया था, तब मुझे भी ऐसा लगता था कि अरे सब लोग तो एक दूसरे को पता नहीं है क्या क्या गिफ्ट देते हैं, और हम लोग तो उस तरह का रहा नहीं कभी कि भाई ठीक है दिया तो दिया जो मर्जी की, तो प्रेशर लगता था कभी कभी, अरे गिफ्ट देना चाहिए मतलब देना पड़ेगा, मतलब मम्मी पापा से पैसे लो फिर गिफ्ट दो, ऐसा लगता था कभी कभी। बहुत अच्छी बात है आप लोगों को नहीं लगता है ऐसा, तो प्रेशर हालांकि होना नहीं चाहिए दोस्तों में, नहीं तो फिर दोस्ती किस काम की है ना। है ना, और शिवानी अगर आपके ऐसे कोई दोस्त आपसे बात करना बंद भी कर देते हैं ना तो कोई बात नहीं, समझो वो फ्रेंड्स है ही नहीं। है ना, क्योंकि फ्रेंड्स कभी भी गिफ्ट के लिए बात करना अगर बंद करे ना तो वो दोस्त नहीं होते, ये तो पक्का है ना।
8: हाँ दीदी,
4: ये तो तय है। अच्छा ये बताओ कि अगर आप लोग चाहते हो कि आपको बेस्ट गिफ्ट मिले आपके फ्रेंड से, तो अभी कभी आप किसी को कहते हो क्या कि अच्छा मुझे ये गिफ्ट देना?
8: नहीं कभी कहते तो नहीं,
3: वो अपनी मर्जी से ही देते हैं हमेशा तो।
4: कोई भी नहीं कहता कभी?
3: नहीं
4: नहीं,
3: मैं मम्मा पापा को बोल देती हूँ मुझे अगर कुछ चाहिए होता है तो।
4: हाँ मम्मी पापा को बोल सकते हैं,
3: पापा को बोल सकते हैं।
4: ओके, आप लोग बर्थडे पे कभी बोलते हो मम्मी पापा को?
6: हाँ मैं तो बोलता हूँ मम्मी को।
4: क्या
3: प्राइस होता है?
6: दीदी मैं आ रहा था ना जब स्टूडियो में, मैंने मम्मी को फोन करा कि मम्मी मुझे रूबिक्स क्यूब चाहिए। बोले कैसा कहाँ से लाएगा, मैंने कहा मम्मी ऑनलाइन मंगवाऊंगा। पूछा उसके बारे में थोड़ा, फिर बोला ठीक है ला देना।
4: ओके,
6: मेरा बर्थडे भी नहीं है फिर भी।
4: अच्छा बिना बर्थडे वाला गिफ्ट?
10: मैंने तो इससे बोला था इसलिए नहीं लिया।
4: अच्छा
3: कौन सा गिफ्ट
10: जो मुझे चाहिए होता है?
3: मुझे तुमने कब बोला गिफ्ट?
10: मैं बोलती हूँ हमेशा।
4: बापरे लगता है अमन को एक होमवर्क मिल गया है।
3: उसने मुझे कभी बताया नहीं उसे कौन सा गिफ्ट चाहिए
10: जब बर्थडे से पहले। तुमने तो मेरे लिए पैसे भी नहीं जोड़े।
3: मुझे पैसे नहीं मिलते पॉकेट मनी में, इसलिए इसको मिलते थे इससे बुआ से, नानी से, नाना जी से, मामा से।
10: तो मैंने डांस करके कलेक्ट किया।
3: डांस भी करती है ना, सूद दे देते हैं वहाँ के लोग।
4: अच्छा इसलिए कलेक्शन हो गया उसका।
3: मैं नहीं करती वहाँ पे, मैं यहाँ पे थी।
4: अच्छा ये बताओ आप लोगों ने कभी पर्सनली किसी को कुछ बना के, जैसे रोशन ने ड्रॉइंग दिया और शिवानी ने कुछ ऐसा बनाया, आपको लगता है कि पर्सनल बना के दिए वाले जाले गिफ्ट अच्छे होते हैं या खरीद के दिए वाले गिफ्ट ज्यादा अच्छे होते हैं? क्या एक ही करके बताना।
3: मैंने एक बार अपनी मम्मा को बर्थडे पे उनके बर्थडे कार्ड बना के दिया था और उसमें मैंने अपनी पूरी पूरी फीलिंग्स लिख दी थी और मम्मा को बहुत ज्यादा अच्छा लगा और मम्मा ने अभी तक उसको संभाल के रखा हुआ है। और मुझे इसलिए अच्छा लगा क्योंकि मैंने उसको खुद अपने हाथों से बनाया था, पहले कटिंग भी की थी और उसमें डिजाइन भी बनाए थे अपने मन से।
4: ओके, तो आप लोगों को क्या ज्यादा अच्छा लगता है, कुछ खरीद के देना या मान लो आपका कोई दोस्त है वो आपको वो चीज प्रेजेंट करे जो आप चाहते थे, मान लो जैसे रूबिक क्यूब चाहिए आपको या आपको कोई और चीज चाहिए, वो कोई ऐसी चीज दे या खुद बना के या लिख के, मान लो आपको लेटर लिख के दे दे कि आपके बारे में कुछ, तो आपको क्या ज्यादा क्या पसंद आएगा?
6: जो उसने दीदी बना के दिया है कुछ।
4: आयुष को वो पसंद आएगा।
6: जब मैं छोटा सा था ना तब मैंने फर्स्ट टाइम अपनी मैम को एक कार्ड बना के दिया था, बहुत अच्छी डेकोरेशन करी थी, मुझे कुछ आता भी नहीं था, बस कहीं से स्टार मिले वो चिपका दिए उसमें।
4: Okay.
6: स्पार्कल पेन से लिख दिया और बहुत अच्छे से दिया मैम को। तो मैम ने नेक्स्ट डे आके पूछा ये गिफ्ट किसने दिया था मुझे, मैंने कहा मैम मैंने। तो मैम ने सबके आगे मेरी तारीफ की थी, बहुत अच्छा बनाया।
4: क्या बात है, वेरी गुड। ओम प्रकाश,
8: मुझे बना हुआ गिफ्ट अच्छा लगता है और देना भी अच्छा लगता है। मेरी मम्मी को मैंने मदर्स डे पे फेट वर्क बना के देता, एक वुडन का प्लेट होता है ना, वुडन का प्लेट सी सॉ से बना के देने का, एक सॉ होता है उसमें ब्लेड होती है, वो थोड़ा डेंजरस होता है, मतलब अंदर कटिंग करके देना पड़ता है उसको।
4: अच्छा उसमें क्या करते हैं, वो क्या होता है?
8: फेटवर्क बोलते हैं उसको, ऑनलाइन चाहे देख सकते हैं। फेटवर्क मतलब वुडन डिजाइन होता है, वुडन के अंदर वुडन प्लेट जो होता है ना उसके अंदर
4: डिजाइन किया होता है। ओके, काफी इंटरेस्टिंग, कुछ नई चीज पता चली आज तो।
3: मुझे भी नहीं पता था।
4: और रोशन आपको?
7: दीदी मेरे को भी बनाया हुआ गिफ्ट अच्छा लगता है क्योंकि अगर कोई खिलौना या कोई ऑब्जेक्ट मिल गया तो उसको हम संभाल के रखते हैं और थोड़े दिन के बाद भूल भी जाते हैं किसने दिया था। पर अगर कोई ड्राइंग या लेटर किसी दोस्तों या पेरेंट्स की तरफ से मिला तो हमको जब हम बड़े होते हैं तब भी खोल के देखो तो याद आता है किसने दिया था।
4: ये मेमोरी बहुत अच्छी बनती है।
3: हाँ।
4: ये बात तो है। अच्छा मुझे लगता है हम लोग इतनी देर से बातें किए जा रहे हैं तो हमें समय का तो नहीं मालूम पड़ा, लेकिन यहाँ पे हमें जाना तो पड़ेगा। बस जाते जाते मैं आपसे पूछूंगी, मान लो एक सिचुएशन इमेजिन करते हैं, आप लोग एक फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में गए हो, वहाँ बहुत सारे लोग आए हैं और सब लोग कोई ना कोई गिफ्ट लेकर आए हैं और आप नहीं लेके गए हो, तो आपको कैसा लगेगा?
8: बर्थडे पार्टी में जाऊंगा ही नहीं।
4: ओके।
3: थोड़ा सा बुरा लगेगा।
10: मुझे भी
4: बुरा लगेगा।
6: हाँ दीदी मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन मैं बोल दूंगा फ्रेंड को कि ऐसे ऐसे मैं भूल गया ये वो, उसको बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ेगा इस बात से।
4: फ्रेंड है तो नहीं पड़ेगा। आपको क्या लगता है राशन?
7: मुझे भी थोड़ा तो अच्छा नहीं लगेगा। मैं ट्राई करता हूँ कि गिफ्ट लेके जाऊँ, कभी भूल गया तो मैं भी बोल देता और मेरे दोस्त बोलते हैं कोई बात नहीं।
4: लेकिन मुझे तो लगता है ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप लोग गिफ्ट लेके नहीं जाओ, पता है कैसे? क्योंकि आप तो इतने अच्छे अच्छे आर्टिस्ट हो, आप लोग तो कुछ भी बना के वहाँ लिख के दे सकते हो।
3: ओ हाँ,
4: है ना, भूल गए थे अपना टैलेंट। तो अगर नहीं भी लेके गए, वहाँ पे एक पेपर पेन तो आपको कहीं से मिल जाएगा, तो उनके बारे में कुछ लिख के दे सकते हो, वो तो बेस्ट गिफ्ट होता है ना।
6: ये आइडिया भी बहुत अच्छा है।
4: मतलब आप लोग के पास तो कभी खाली होने ही नहीं वाला है गिफ्ट। अच्छा चलो ठीक है बच्चों, बहुत अच्छा लगा मुझे आज आप लोगों से बात करके। और गिफ्ट तो सच्चा सच में वही होता है जो हम दिल से देते हैं और दिल से लेते हैं, वरना अभी तो आप लोग छोटे हो, धीरे धीरे कभी कभी ये प्रेशर बढ़ जाता है हमारे ऊपर, गिफ्ट देना बहुत जरूरी होता है। लेकिन जैसा आप लोगों ने कहा कि जो खुद से बना के देते ना वो मेमोरी सबसे प्यारी होती है। तो बस ऐसे करते रहो, और बहुत बहुत थैंक यू आप लोगों का बात करने के लिए।

उतरती जाती वैसे वैसे ऊपर आती जाती और तेल पर तैरने लगती। एक पूरी फूली नहीं और वह तैरी भी नहीं। यह देखकर उसने गूंधे हुए आटे की एक गोली बनाई और चपटी कर ली। उसने इस चपटे गोले को पानी से भरे बर्तन में डाला, पर यह क्या, वह तो डूब गई। सोचो और अंदाजा लगाओ, अगर आयशा फूली हुई पूरी पानी से भरे बर्तन में रखती तो वह तैरती या डूबती? स्टील की प्लेट पानी में तैरेगी या डूबेगी? और चम्मच? प्लास्टिक का ढक्कन डूबेगा या तैरेगा? शाम को जब आयशा नहाकर आई तो माँ ने कहा, आयशा आज फिर तुमने साबुन पानी में गिरा दिया, पहले उसे निकालकर ऊपर रखो। साबुन रखने की जल्दी में साबुनदानी आयशा के हाथ से छूट गई और पानी में तैरने लगी। पृष्ठ 61। आयशा ने बहुत धीरे से साबुन की टिकिया साबुनदानी में रखी, पर साबुन की टिकिया रखने पर भी साबुनदानी पानी में तैरती रही। आयशा की तरह तुमने भी कभी देखा होगा कि कुछ चीज़ें पानी में डूब जाती हैं जबकि कुछ चीज़ें पानी में तैरती रहती हैं। देखो, ये कविता भी कुछ ऐसे ही सवाल उठा रही है। देखो चाचा इस सुई को तैराना चाहा डूबी, पर भारी भरकम जहाज तो तैरता उसमें क्या खूबी। लोहे का भारी जहाज है सदा तैरता पानी में, सुई हल्की फिर भी डूबी बहती नहीं रवानी में। ये कविता लिखी शिशिर शोभन अष्ठाना ने। पृष्ठ 62। करके देखो। कक्षा में 4-5 दोस्तों के समूह बनाकर ये प्रयोग करो। तुम्हें चाहिए पानी से भरा एक बड़ा बर्तन और तालिका में लिखी कुछ चीजें। अब पानी से भरे बर्तन में ये चीजें एक एक करके डालो और देखो क्या होता है। अपने अवलोकनों को तालिका में भरो। तैरती चीज के लिए सही का निशान और डूबती चीज के लिए गलत का निशान लगाओ। पानी में डाली चीज, खाली कटोरी। तालिका में लिखो, मुझे पहले लगता था, प्रयोग किया तो पाया। दूसरी चीज है, कटोरी में एक एक करके 6-7 कंकड़ डालने पर, मुझे पहले लगता था, प्रयोग करने पर पाया। तीसरी चीज है, लोहे की कील या पिन। फिर है माचिस की तीली, प्लास्टिक की खाली बंद बोतल, पानी से आधी भरी बोतल, पानी से पूरी भरी बोतल। फिर है दवाई की पन्नी, एल्यूमिनियम की, फैली हुई एल्यूमिनियम की पन्नी मोड़कर गोली सी बनाकर, एल्यूमिनियम की पन्नी कटोरी सी बनाकर। इसके अलावा साबुन की टिकिया, साबुन की टिकिया प्लास्टिक की प्लेट पर रखकर, बर्फ का टुकड़ा। अब बताओ और तालिका में लिखो, मुझे पहले क्या लगता था और प्रयोग किया तो क्या पाया। अपने साथी के समूह से भी पता करो, क्या तैरा क्या डूबा, लिखकर पूरा करो। लोहे की कील पानी में रिक्त स्थान गई जबकि कटोरी रिक्त स्थान। मुझे लगता है यह इसलिए हुआ होगा क्योंकि। 2, प्लास्टिक की खाली बोतल तो पानी में रिक्त स्थान, पानी से पूरी भरी बोतल इसलिए रिक्त स्थान होगी क्योंकि रिक्त स्थान। 3, दवाई की पन्नी जब फैली हुई थी तब रिक्त स्थान, खूब दबाकर गोली जैसी बनाने पर रिक्त स्थान। यह इसलिए हुआ होगा क्योंकि रिक्त स्थान। पृष्ठ 63। यह जादू तो नहीं,

ऐशा सुबह उठी तो पता चला कि अम्मी को बुखार है। पापा ने अम्मी के लिए चाय बनाई और दवाई खिलाने लगे। उन्होंने ऐशा से कहा, अंडे उबलने के लिए रख दो, हाँ पानी में थोड़ा नमक डाल देना। ऐशा ने बर्तन में पानी डालकर नमक डाला तो कुछ ज़्यादा ही गिर गया। तब उसने देखा कि बर्तन की तली पर बैठे अंडे अब थोड़ा ऊपर पानी में तैरने लगे। एक गिलास या किसी बर्तन में पानी लो, उसमें एक साबुत नींबू डालो, आधा आधा चम्मच करके उसमें नमक डालो। क्या नींबू को पानी में तैरा पाए? तुम्हें क्या लगता है, नमक डालने पर नींबू तैरा होगा? क्योंकि मृत सागर। वैसे तो सभी सागरों के पानी में नमक होता है, लेकिन मृत सागर दुनिया का सबसे नमकीन सागर है। इतना नमकीन कि लगभग एक लीटर पानी में 300 ग्राम नमक। क्या इतना नमकीन पानी चख भी पाओगे? बहुत ही कड़वा लगेगा। सबसे मज़े की बात तो यह है कि मृत सागर में हम ऐसे तैर सकते हैं जैसे आराम से लेटे हों। याद है नींबू को तुमने नमक के पानी में तैराया था? क्या घुला क्या नहीं। आयशा का चचेरा भाई हामिद उसके साथ खेलने आया। उसने आते ही शक्कर पारे की फरमाइश की। अम्मी ने कहा, मैं पहले बाजार हो आऊं, आकर शक्कर पारे बना दूंगी। तब तक एक बर्तन में दो गिलास पानी लेकर उसमें एक कटोरी शक्कर घोल कर देखो। हामिद ने सोचा, जल्दी ही कर लूंगा, फिर टीवी देखूंगा। तुम हामिद को पानी में शक्कर जल्दी घोलने के लिए क्या क्या उपाय सुझाओगे? पृष्ठ 64। करके देखो। 3-4 साथियों के समूह बनाओ। प्रयोग के लिए 4-5 गिलास और तालिका में लिखी चीजें इकट्ठी करो। हर गिलास में थोड़ा पानी लो। कोई एक चीज एक गिलास में डालो और मिलाओ। जो देखो उसे तालिका में लिखो। चीजें हैं नमक, मिट्टी, चौक पाउडर, एक चम्मच दूध, तेल। अब बताओ ये घुला या नहीं, और 2-3 मिनट रखने पर क्या हुआ? बताओ क्या पानी में घुलने के बाद नमक दिख रहा है? अगर नहीं तो क्यों नहीं? क्या अब पानी में नमक नहीं है? अगर है तो कहाँ? नमक और चौक पाउडर के घोल को थोड़ी देर पानी में रखने पर दोनों में क्या अंतर दिखा? कपड़े से छानकर तुम किस चीज को पानी से अलग कर पाओगे? पृष्ठ 65। आयशा और हामिद में बहस छिड़ गई। आयशा को लगा कि चम्मच से हिलाने पर तेल पानी में घुल गया। हामिद बोला, तेल की पीली पीली नन्ही बूंदें अभी भी अलग दिख रही हैं। आयशा बोली, चलो थोड़ी देर रखने के बाद देखते हैं। तुम्हें क्या लगता है कि तेल पानी में घुल पाया या नहीं? क्यों? बूंदों की रेस। आयशा ने अपने टिफिन के ढक्कन पर एक साथ दो बूंदें तेल की टपकाई। उसी के पास पानी की बूंदें और शक्कर के घोल की बूंदें भी टपकाई। टिफिन के ढक्कन को टेढ़ा करने पर कुछ बूंदें तेजी से बहकर आगे निकल गईं, जबकि कुछ पीछे रह गईं। तुम भी यह करके देखो और बताओ कौन सी बूंदें सबसे आगे निकली? ऐसा क्यों हुआ होगा? पानी गया कहाँ? एक दिन आयशा की अम्मी चाय बना रही थीं। वे पानी चूल्हे पर रखकर भूल गईं। उन्होंने थोड़ी देर में आकर देखा तो कुछ ही पानी बर्तन में रह गया था। सोचो बाकी का पानी कहाँ गायब हो गया? पाठ 4 याद है? सोचो चिट्टी बाबू और चिन्ना बाबू के घर में आम पापड़ बनाने के लिए
उसे धूप में क्यों रखा होगा? तुम्हारे घर में कौन सी चीजें धूप में रखकर बनाई जाती हैं? पृष्ठ 66। डांडी यात्रा। यह घटना 1930 की है, भारत की आजादी से पहले। बहुत सालों से अंग्रेजों ने आम लोगों के नमक बनाने पर रोक लगाई हुई थी। ऊपर से नमक पर भारी टैक्स भी लगा दिया। इस कानून से तो लोग अपने घर के इस्तेमाल के लिए भी नमक नहीं बना सकते थे। भला बताओ, नमक जैसी चीज के बिना गुजारा कैसे हो? लोगों को मजबूरी में दुकानों से महंगा नमक खरीदना पड़ता था। इस बात से लोग बहुत नाराज थे। गांधी जी का कहना था, जो चीज हमें कुदरत ने दी है, उसे बनाने पर बंदिश कैसी? उन्होंने लोगों के साथ मिलकर अहमदाबाद से दांडी के समुद्र तट तक एक लंबी यात्रा की और इस गलत कानून को तोड़ा। जानते हो नमक कैसे बनाया जाता है? समुद्र के पानी को जमीन पर क्यारियों में भर दिया जाता है। तेज धूप में पानी सूख जाता है और नमक के ढेर वहीं रह जाते हैं। हम क्या समझे? तुमने एक रुमाल धोया है, अब तुम उसे जल्दी से सुखाना चाहते हो। सोचो इसके लिए क्या क्या कर सकते हो। चाय बनाने के लिए तुम पानी में कौन कौन सी चीजें डालते हो? पानी में क्या क्या घुल जाता है? तुम्हें मिश्री के टुकड़े दिए गए हैं, उन्हें जल्दी घोलने के कुछ तरीके लिखो। पानी के प्रयोग। अभी आप सुन रहे थे कक्षा 5 की पाठ्य पुस्तक हमारे आसपास का ये 7वां पाठ, प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली, भारत।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मिशन लाइफ के संकल्प को आप सजग रहकर मजबूती दे सकते हैं और रोजाना के कामकाज में कुछ आसान उपायों से अपना योगदान दे सकते हैं। कैसे, आइए जानते हैं। पौधों, फर्श और वाहनों आदि में पानी के उपयोग के लिए होस पाइप या पाइप के बजाय बाल्टी का उपयोग करें। एसी और आरओ से निकले पानी का पुनः उपयोग करें। जल इकाइयों को रिचार्ज करने के काम को बढ़ावा दें और औरों को भी प्रेरित करें। सब्जियों को साफ करने के बाद पानी का पुनः उपयोग पौधों को पानी देने या ऐसे किसी अन्य कार्यों के लिए करें। घर, स्कूल और कार्यालयों में वाटर हार्वेस्टिंग बॉडीज का निर्माण करवाएं। लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट अपनाइए। मिशन लाइफ से दुनिया बेहतर बनाइए।
1: पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: नमस्कार, मधुमन रेडियो से मैं हाकम खान। हमने एक संगीत कला केंद्र खोल रखा है। हमारा भारत में व राजस्थान में विवाह, जन्मदिन, लोकगीतों का कार्यक्रम देते हैं। हम मांगणियार कलाकार रजवाड़ों में लोकगीतों का कार्यक्रम देते हैं। शादी विवाह, जन्मदिन पर ढोल, हारमोनियम बजाने का कार्यक्रम करते हैं। हमारी संगीत का वो गायकी जीवित रहे ताकि हमारे बच्चे संगीत सीख अपनी कला को देश विदेश में प्रोग्राम करवा सके, अपने आजीविका कमा कर परिवार का पालन पोषण कर सके। मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ केसरिया बालम पधारो म्हारे देश। राग मांड साजन आहे हे सखी, मैं कहीं मनवार करूं, थाल भरूं गज मोतिया ऊपर नैन धरूं। साजन आवत देख कर तोड़ दियो गलहार, लोक जाने मोती चुगे झुकझू करे नमन। तो ये केसरिया बालम जो मांड राग में गाया जाता है जब कोई मेहमान घर पे आती है या सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है तो उसमें केसरिया बालम पधारो म्हारे देश शुरुआत करने जा रहा हूँ। केसरिया बालम पधारो म्हारे देश।

नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ आइए बात करते हैं 28 जुलाई के बारे में। आज के दिन विशेष अश्विन नक्षत्र है। रामेश्वर ठाकुर, अनिल जन विजय, सुविज्ञान शर्मा और नंदू नाटेकर इनका जन्मदिन है। इसके साथ ही चारू मजुमदार, महाश्वेता देवी, इंद्र कुमार, जगदीश राज, काजी दोराजी मधुकर दीगे, इन सभी का पुण्य दिवस है। तो आइए आज के इस कार्यक्रम को यादगार बनाते हैं। आप सभी के साथ मिलकर ढेर सारी शुभकामनाएं और मंगल कामनाएं करते हैं। एक सुंदर विचार के साथ कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और आज का दिन आपके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं लाए। ऐसी शुभ आशा के साथ एक नई क्रांति आपको मिले। और बात करते हैं एक सुंदर विचार का। कहते हैं, निगाहों में मजे थी, गिरे और गिरकर संभलते रहे, हवाओं ने खूब कोशिश की मगर चिराग आंधियों में जलते रहे। आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर। जी हाँ, सफर इस कार्यक्रम को, आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं बहुत ही प्यारा सा गीत के साथ। सुनते रहो, मस्कराते रहो।

0: ओए रुके रुके रुके, हाँ जी थोड़ा अपना प्यारा सा मुखड़ा दिखाना शीशे के बाहर झांक के। हैं
1: जी कहिए। अरे ये क्या कर रहे हो?
0: ओ मेरे भाई, पर जिस चीज का कोई फायदा नहीं उसको रखने का फायदा क्या? तो तेरे पास चश्मा होते हुए तेरे को रेड लाइट नहीं दिखती तो फायदा की?
1: पर रोड तो खाली थी, कोई था ही नहीं।
0: ये क्या बात हुई भाई है? इसका मतलब तो ये है कि दुकान पर अगर मालिक नहीं होगा तो तुम बिना पूछे उसका सामान उठाओगे? कोई बॉस नहीं होगा ऑफिस में तो तुम उसकी कुर्सी पे सो जाओगे? और रोड पे कोई हो न हो, सड़क के नियम कायदे कानून कभी नहीं टूटेंगे। और वैसे भी ये तो है मेरी सड़क और मुझे कहते हैं हवलदार कड़क।
2: रेड लाइट होने पर हमें अपनी गाड़ी रोक लेनी चाहिए और उसे ग्रीन होने पर ही आगे बढ़ना चाहिए। ऐसा न करके हम अपनी और दूसरों की जान खतरे में डाल सकते हैं। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।
3: नमस्कार, आप सुन रहे मधुबन 107.8 FM पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ आइए बात करते हैं रामेश्वर ठाकुर के बारे में। अब ये भारतीय विशेष वरिष्ठ नेताओं में से एक, उन्होंने देश के कई विशेष संस्थाओं में महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया। रामेश्वर ठाकुर भारत के कई राज्यों में राज्यपाल के पद पर भी रहे और बताया जाता है 2004 से लेकर 6 तक उड़ीसा में रहे, 2006 से और 7 तक आंध्र प्रदेश और 7 से 9 तक कर्नाटक और 9 से 11 तक मध्य प्रदेश राज्य के राज्यपाल रहे। रामेश्वर ठाकुर शिक्षा के उत्थान, समाज सेवा और ग्रामीण विकास जैसे कार्यक्रमों में सदैव याद किए जाते रहे। आदिवासियों, हरिजनों और अन्य सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों के कल्याण अर्थ भी उन्होंने काफ़ी काम किया। रामेश्वर ठाकुर का जन्म आज ही के दिन 28 जुलाई 1927 को झारखंड में गोंडा जिले के टाको गंगटी नामक ग्राम में हुआ था और भागलपुर पटना विश्वविद्यालय में अपनी आरंभिक शिक्षा प्राप्त की। उसके बाद कोलकाता विश्वविद्यालय से एमए की डिग्री ली और एलएलबी भी कर लिया। रामेश्वर ठाकुर ने इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट नई दिल्ली से FCA किया था। इनका विवाह नर्मदा ठाकुर से हुआ था और रामेश्वर ठाकुर 2 पुत्रों तथा 2 पुत्रियों के पिता है। व्यावसायिक शुरुआत की बात करें तो रामेश्वर ठाकुर ने एक व्याख्याता के रूप में कोलकाता विश्वविद्यालय से अपनी सेवाएं शुरू की। प्रबंधन अध्ययन विभाग दिल्ली में अतिथि प्रोफेसर के रूप में अपने दायित्व का निर्वहन किया और रामेश्वर ठाकुर ने सक्रियता से भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में भाग लिया और संतल पारांगन में राजमहल पहाड़ियों में लगभग 6 महीने के लिए भूमिगत रहे। बाद में इन्हें गिरफ्तार भी कर लिया गया और कोलकाता की सेंट्रल जेल में रखा गया। रामेश्वर ठाकुर 1946 में भी राष्ट्रीय आंदोलन में समृद्ध रहे और सामाजिक सुधार के कार्यक्रमों में भी पूरी सक्रियता से भाग लिया था और विशेष रूप से संतल पारागन में पुनर्निर्माण गतिविधियों के कार्य के लिए विशेष इनका योगदान रहा। इसके साथ इनकी विदेश यात्रा जैसे कि रूस, पोलैंड, बेल्जियम, फ्रांस, पश्चिम जर्मन, इटाली, ब्रिटेन, स्विट्जरलैंड, मिस्र, संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे अनेक राज्यों का जो है इन्होंने विदेश यात्राएं की। और अभिरुचि की बात करें तो शिक्षा, समाज सेवा और ग्रामीण विकास के कार्यों में इनकी विशेष रुचि रही। तो ये थी कुछ खास बातें रामेश्वर ठाकुर के बारे में। और 2015 को दिल्ली में अपने स्थान पर 15 जनवरी के दिन इनकी मृत्यु हुई। आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। जी हाँ, सफ़र इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं तो चलिए हमारे सभी श्रोता मित्रों को कुपाराम जी, भूपत जी और हमारे सुरेश जी जोटाना वाले, सुरेश जी पिंडवाड़ा और दयाराम जी सभी को याद। और महनों में हर्षिता जी, विभा जी और हमारे अभिषेक, अंजिता जी, खुशी जी और सुगना जी, इन सभी को याद करते हैं। आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन पर सफ़र इस कार्यक्रम को। तो लीजिए आप सभी के लिए और भी जो हमारे मित्र हैं जो रेडियो सुन रहे हैं उन सभी के लिए ये एक प्यारा सा गीत, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।

0: वो क्या होता है?
1: अरे तिकुनी पता क्या, इसमें पता है लोग धुए में अपनी फिक्र उड़ा देते। अरे गाना नहीं सुना क्या तूने?
2: हर फिक्र को धुए में उड़ाता चला गया।
0: अच्छा तो फिर मेरे नंबर का माय तो क्या मैं भी ऐसा कर सकता हूँ?
1: अरे कोई भी कर सकता है, तंबाकू तो बड़ा ही कूल होता है।
3: ऐसी बातें बचपन में होती हैं, युवावस्था में या और बड़े होने के बाद भी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि तंबाकू या धूम्रपान व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य के साथ शारीरिक सेहत पर बहुत बुरा असर डालता है। बीड़ी, सिगरेट, गुटखा इत्यादि के सेवन से कई तरह की बीमारियां हो सकती हैं। धूम्रपान करने से धमनियां कमजोर होने लगती हैं और कोरोनरी हार्ट डिजीज या स्ट्रोक भी हो सकता है। सलाह लीजिए डॉक्टर की और हिम्मत बढ़ाइए अपनों की। रेडियो मधुबन द्वारा जानकारी जनहित में जारी।
4: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 FM पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ढेर सारी शुभकामनाएं और मंगल कामनाओं के साथ आइए बात करते हैं एक और शख्सियत के बारे में, बात करते हैं अनिल जैन विजय के बारे में। जी हाँ, अनिल जैन विजय एक हिंदी लेखक, रूसी और अंग्रेजी भाषा के साहित्य अनुवादक है। दिल्ली विश्वविद्यालय से बीकॉम और मॉस्को स्थित गोर्की साहित्य संस्थान से सृजनात्मक साहित्य विषय में एमए किया और इन दिनों मॉस्को विश्वविद्यालय में हिंदी साहित्य का अध्ययन और रेडियो रूस का हिंदी डेस्क देख रहे हैं। तो आइए इनके बारे में बात करते हैं। और 28 जुलाई आज ही के दिन 1957 को बरेली एक मध्यम वर्गीय परिवार में अनिल जैन विजय का जन्म हुआ। शुरुआती शिक्षा बरेली स्थित केंद्रीय विद्यालय से हुई, उसके बाद मां की मृत्यु के बाद दादा दादी के पास दिल्ली आ गया और यहीं इनकी बाकी की पढ़ाइयाँ बीकॉम हिंदी में एमए की डिग्री हासिल की और 1980 में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से रूसी भाषा और साहित्यिक फैकल्टी में एमए की प्रवेश इन्होंने पा लिया। इस तरह से अपनी पूरी परीक्षा पास करने के बाद साहित्यिक जो है उससे ही इनका जो है करियर शुरू हुआ और 1976 में पहली कविता इन्होंने लिखी और 1977 में पहली बार साहित्यिक पत्रिका लहर में कविताएं इनकी प्रकाशित हुई। जैसे ही कविताएं प्रकाशित हुई तो उसके बाद फिर कहानी आगे बढ़ी और 1978 में पश्यंती के कवितांक में कविताएं सम्मिलित की गई और 1982 में पहला कविता संग्रह कविता नहीं है ये प्रकाशित हुआ। ये अद्भुत हिंदी सेवी हिंदी और हिंदी साहित्य की पताका इंटरनेट पर संपूर्ण विश्व में पूर्व मनोयोग से मिलता है। ई पत्रिका के जरिए बस इनका ध्येय रहा कि हिंदी साहित्य के न केवल स्थापित बल्कि वे सभी रचनाकार विश्व पाटल पर आए जो हिंदी साहित्य में अच्छी कार्य कर रहे हैं। और प्रत्यक्ष प्रमाण है कि ये दो वेब पत्रिकाएं कविता कोश एवं गद्य कोश यदि हिंदी और हिंदी साहित्य के लिए महायज्ञ करने वालों की संक्षेप में बात करें, शॉर्ट में बात करें तो अजय जी, डॉक्टर धर्मवीर भारती जी, डॉक्टर शुभम नाथ जी आदि आधुनिक भारत के महान हिंदी सेवियों की सूची में अनिल जैन विजय का नाम भी जोड़ा जा सकता है। अपनी माटी अपनी जड़ों से अदम प्रेम तथा भारत रूस के बीच मजबूत पुल का कार्य करने वाली यह महान हिंदी के लिए विशेष कार्य अपने ढंग से कर रहा है और ई पत्रिका के जरिए इस महानायक का नाम स्वर्ण अक्षरों में अंकित किया जाएगा। तो ये थी कुछ खास बातें विशेष अनिल जैन विजय के बारे में। आप सुना है रेडियो मधुबन पर, जी हाँ, सफर इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं, आप सभी को ले चलते हैं एक और गीत की तरफ। आप सुना है रेडियो मधुबन पर, जी हाँ, सफर इस कार्यक्रम को सुनते रहो, मस्कराते रहो।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
1: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ सुविज्ञ शर्मा के बाद आप करते हैं। ये भी एक कलाकार, चित्रकार और उद्योगी हैं, तो आइए इनके बारे में कुछ खास बातें करते हैं। और जीवन में जब भी आपको कुछ करना हो तो अलग अलग विधाओं में अगर आप पारंगत होना चाहते हैं तो सबकी पढ़ाई पहले करनी होती है। जिस तरह से जन विजय के बारे में हमने बातें की, साहित्यिक जगत ने उन्होंने अच्छा काम किया और बाद में जैसे इंटरनेट की बात आती है तो उन्होंने हिंदी कोश और भारत कोश, ये जो वेबसाइट है हिंदी के, उसमें सभी का अंकित करना अपने आप में एक कमाल की बात थी, जिससे हिंदी का प्रचार और प्रसार बढ़ा। तो ऐसे ही कुछ चीज़ें अगर आप करते हैं और आपके पास कोई प्रोडक्ट है तो उसको अगर आप नेटवर्क में जा यूज़ करते हैं तो वो जल्दी से प्रचार में आ जाता है और आप कम समय में जो है काफ़ी अधिक सफल हो जाते हैं। तो आइए सुविज्ञ शर्मा के बारे में बात करते हैं, और जिन्हें अपनी लघु मित्रों, तंजोर पेंटिंग और फ्रेस्को वर्क और सजीव चित्रों के लिए विशेष रूप से जाना जाता है। और भारत की प्रसिद्ध वस्तुकला धरोहर स्थानों जैसे जयपुर में सिटी पैलेस एवं जामा मस्जिद सहित अनगिनत पुनर्नवीनीकरण और फ्रेस्को पेंटिंग प्रोजेक्ट का श्रेय उनको जाता है। उन्हें प्रतिष्ठित भारत गौरव अवार्ड 2012 से सम्मानित किया गया था और एमएस और विश्वविद्याश्रम स्कूल में पढ़े 32 वर्षीय सुविज्ञा ने क्लाइंट्स में बॉलीवुड सेलिब्रिटी तो है ही है, देश की टॉप बिजनेस फैमिली भी शामिल है। टॉप बी जिनेस फैमिली में एलन मित्तल, अंबानी बिड़ला, बारमंत सिंगिया, पिरामल और बजाज बिजनेस फैमिली भी शामिल है। बजाज के पूर्वजों के पोर्ट्रेट तैयार किए, ये वही एलएन मित्तल कपल पोर्ट्रेट, अंबानी फैमिली के पोर्ट्रेट भी वे तैयार कर चुके हैं। साथ ही सिंगापुर आर्ट म्यूजियम के भी रेस्टोरेंट कर चुके हैं और जयपुर के सिटी पैलेस म्यूजियम के कुछ हिस्से, उदयपुर और किशनगढ़ की हवेली, जैन टेंपल, जामा मस्जिद, गोल्ड फिलिंग का आर्ट वर्क भी सुविज्ञा ने ही किया है। तो है ना कमाल की बात, इतने बड़े कलाकार जिन्होंने कई चीज़ें आपके लिए की हैं। और इनकी कला आकृति मारवाड इंडिया सोसाइटी, हेलो सेवी, डीएनए, मिड डे और टाइम्स ऑफ इंडिया आदि जैसे कई प्रतिष्ठित पत्रिकाओं का समाचार पत्रों में चित्रित की गई हैं। और इनका काम सिमरोज आर्ट गैलरी, चित्रकूट आर्ट गैलरी, चेन्नई आर्ट गैलरी और इसमें प्रदर्शन किया गया है। और 2014 में सुविज्ञ शर्मा ने 24 कैरेट सोने से अलंकृत औपनिवेशिक स्टैम्प पेपर चित्र प्रस्तुत करता हुआ अपना कला संग्रह और आर्ट कलेक्टर्स पैराडाइज, इस तरह के अनावरण बॉलीवुड अभिनेत्री रानी मुखर्जी द्वारा किया गया था। तो ये थी कुछ खास बातें, आप सुन रहे हैं रेडियो माधुबन पर, जी हाँ सफर इस कार्यक्रम को। आइए सुविज्ञ शर्मा के बारे में और भी बातें आपसे करते हैं। आप सुन रहे हैं सफर कार्यक्रम को, लीजिए एक और गीत आपके नाम, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।

0: हाय, मैं हूँ शबाब साबरी और आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
1: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ आइए बात करते हैं सुविज्ञ शर्मा के बारे में कुछ और बातें। इनका जन्म भारत के राज्य राजस्थान के जयपुर में श्री आर के शर्मा जी के एक कलाकार हैं और श्रीमती मीनाक्षी शर्मा जो गृहिणी हैं उनके सुपुत्र के रूप में इनका जन्म हुआ। अपनी स्कूली शिक्षा जयपुर के महाराजा सवाई मानसिंह स्कूल और भारतीय विद्या भवन के विद्याश्रम से प्राप्त की। इसके बाद वे भावनीपुर एजुकेशन सोसाइटी कॉलेज कोलकाता में शिक्षा पूरी करने के लिए गए और विशेष अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय पुणे से विदेश व्यापार और निर्यात प्रबंधन का अध्ययन किया और सिविज्ञ ने लोगों की तस्वीरें या अपने आसपास मौजूद चित्रों के चित्र बनाने शुरू कर दिए थे जब वे केवल 7 साल के थे तब। और सिविज्ञ का विवाह चारू शर्मा से हुआ है जो एक गैर सरकारी संगठन NGO चलाती है जिसके द्वारा समय समय पर जयपुर के पास के गांव में कला शिविरों का आयोजन किया जाता है। इस तरह दोनों जन जीवन साथी इन दूर दराज के क्षेत्रों में युवा लड़कियों और महिलाओं को कला क्षेत्र में अपनी प्रतिभा को पहचानने में मदद करते हैं। इस युगल दाम्पत्य का एक बेटा है जिसका नाम है। करियर की बात करें तो इनका कम ग्रेट इंडियन रीगल कला की विरासत को दर्शाता है जो कि एक समकालीन शैली में अतीत की विरासत को पुनर्निर्मित करता है। तो ये काम इनका विशेष रूप से याद किया जाता है। एन आर्ट क्लासिफाइड पैराडाइज इनका विशेष जो है काम है। और सुविज्ञ शर्मा को 29 की युवा उम्र में भारत गौरव 2012 से सम्मानित किया गया था। तो चलिए, ऐसी विशेष पेंटिंग और दिलचस्प चीज़ें बनाने का श्रेय जो इनको जाता है। और इनके कस्टमर की बात अगर कहें जो इनके ग्राहक हैं वो सभी सेलिब्रिटीज़ और दुनिया के सभी रिच फैमिली इनके साथ जो है जुड़ी हुई है। आप सुना है रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। जी हाँ, सफ़र इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं तो लीजिए एक और खूबसूरत गाना आपके नाम। सुनते रहो,
2: गायक कलाकार हाकम खान ढोलक पे साथ दे रहे हैं, मदन खान खरताल पे संगीतकार, शौकत खान मौनशिया। ये खरताल लकड़ी की बनी हुई होती है, शीशम की लकड़ी की 4 खुली लकड़ी होती है और हाथों के अंदर ये खुले अंगूठे और अंगुलियों के सहयोग से ये बजाया जाता है। शौकत खान है राजस्थान, इन्होंने खरताल के माध्यम से अपना कुछ नाम कमाया है। हर स्टेज पे इनका कार्यक्रम होता है। हकीम लोक संगीत संस्थान के सुमला के अंदर ये बच्चों को संगीत की खरताल में सिखलाई देता है, खुद गाता है। इस संगीत संस्थान में हमारे कलाकारों खरताल, ढोलक, कमायचा, सारंगी, मोरचंग, मुरली, अलगोजा, सहनाई ये सिखलाई दी जाती है। काफ़ी कलाकार हमारे इस संस्थान के माध्यम से संगीत को आगे बढ़ावा दे चुके हैं और विदेशों में भी काम कर रहे हैं। तो आपके सामने अभी पेश किया जा रहा है निमूड़ा। ये निमूड़ा हमारे मांगनिया लोगों का गाया हुआ है, प्रस्तुत करना जा रहा है हाकम खान।

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: एक वाक्य ने मेरे थॉट्स को डिस्टर्ब किया, फीलिंग्स को डिस्टर्ब किया, मेरे शब्द डिस्टर्ब हुए, मैंने शायद वो चीजें बोल दी आपने जो बोलनी नहीं चाहिए थी, फिर आपका बिहेवियर डिस्टर्ब्ड हुआ, फिर रिलेशनशिप एनर्जी एक्सचेंज डिस्टर्ब हुआ एक घंटे के लिए। लेकिन मुझे अपने आप को ये चेक करना है कि ये जो मैं सोच रही हूँ, इज इट कम्फर्टेबल फॉर मी। एक चीज हमने मिस आउट की कि ये सारी थॉट्स एंड फीलिंग्स जो हमने क्रिएट की, उसका इफेक्ट हमारे शरीर पे भी पड़ा। व्हेन वी हैव अंडरस्टूड कि एवरी थॉट दैट वी क्रिएट, जस्ट द अदर डे एक डॉक्टर ने हमें एक्सप्लेन किया, एक साइकाइट्रिस्ट है, तो उन्होंने कहा ब्रेन के अंदर 10,000 करोड़ सेल्स है, जस्ट द ब्रेन, ओके 10,000 करोड़ सेल्स। एंड फिर उन्होंने कहा ये 10,000 करोड़ सेल्स आर, ईच सेल इज कनेक्टेड टू एटलीस्ट 10,000 मोर सेल्स इन द बॉडी, 10,000 करोड़ सेल्स इन द ब्रेन इनटू 10,000, दिस इज द ह्यूमन नेटवर्क, सो मेनी स्विचेस कनेक्टेड टू सो मेनी स्विचेस। अब जब इतने स्विचेस से कनेक्टेड होते हैं, तो एक में भी अगर कुछ ऊपर नीचे होगा तो उसका इफेक्ट कितना लंबा जाएगा। तो जब ब्रेन में 10,000 करोड़ सेल्स कनेक्टेड टू 10,000 सेल्स, ईच सेल कनेक्टेड टू 10,000 सेल्स इन द बॉडी, एंड हर थॉट जो हम क्रिएट कर रहे हैं उसका ब्रेन पर असर पड़ रहा है, ब्रेन से फिर वो केमिकल सिक्रेट होते हैं, फिर उसका असर शरीर पे पड़ता है, और हमने कितने आराम से एक घंटा डिस्टर्ब रहे। अब हम अगर इस इक्वेशन को सिर्फ चेक करें तो एक घंटे में कितना इम्पैक्ट आया होगा हमारे शरीर के ऊपर, उस समय याद नहीं रहता ना, क्योंकि हमें शायद नॉलेज नहीं है, अवेयर नहीं है, या हम अपने आप को अलाउ करते हैं वैसे करना।
0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
2: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ नंदू नाटेकर के बारे में बात करते हैं। अब ये एक बैडमिंटन खिलाड़ी थे जिन्होंने इंटरनेशनल खिताब जीता था, और इनकी उपलब्धि सन 1956 में हासिल की थी, और 61 में भारत के प्रतिष्ठित खेल पुरस्कार अर्जुन पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया था। नंदू नाटेकर ये पुरस्कार हासिल करने वाले भारत के पहले बैडमिंटन खिलाड़ी थे। अपने समय के सबसे लोकप्रिय खिलाड़ियों में से एक माने जाने वाले नंदू नाटेकर दुनिया के पूर्व नंबर 3 खिलाड़ी थे। पश्चिम महाराष्ट्र की सांगली में जन्मे नंदू नाटेकर को 1961 में अर्जुन पुरस्कार से नवाजा गया था। वह अपनी पसंद से बैडमिंटन खिलाड़ी बने थे। इससे पहले उन्होंने क्रिकेट में हाथ आजमाए थे और फिर टेनिस भी खेला। वह जूनियर स्तर तक खेले थे। वह मशहूर रामनाथ कृष्णन के खिलाफ भी खेले। नंदू नाटेकर ने 15 साल से अधिक के अपने करियर के दौरान 1954 में प्रतिष्ठित ऑल इंडिया चैंपियनशिप के कट्टर फाइनल में जगह बनाई, और 1956 में सेलंगर अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट जीतकर अंतर्राष्ट्रीय खिताब जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने। उन्होंने 1951 से लेकर 63 के बीच थॉमस कप में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व करते हुए अपने 16 से 12 एकल और 16 में से 8 युगल मुकाबले जीते थे। जामका में नंदू नाटेकर ने 1965 के राष्ट्रमंडल खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व किया था, और नंदू नाटेकर ने 6 बार नेशनल चैंपियनशिप का खिताब जीता था। अपने करियर में वो 100 से अधिक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खिताब जीतने वाले खिलाड़ी थे। उनके परिवार में बेटा गौरव और 2 बेटियां हैं। तो ये थी नंदू नाटेकर की कुछ कहानी आपके लिए। आइए इसके साथ मैं आपको कहना चाहूँगा कि आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में कुछ नई बातें लेकर। जाते जाते आपके लिए एक और सुविचार, अगर आपने सफ़र शुरू कर ही दिया है तो बीच रास्ते से लौटने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि वापस आने में जितनी दूरी तय होगी, क्या पता मंजिल उससे भी पास हो। आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर, सफर सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

जो हम सुनेगा ये जहां कहेंगे जो हम सुने

रेडियो 107.8 एफएम सुन रहे हैं। आप कार्यक्रम है युवा मंच, युवाओं के इस मंच पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज तारीख है 28 जुलाई और देखते देखते जुलाई भी जा रहा है, अगस्त आ रहा है और अगस्त ला रहा है बहुत सारे फेस्टिवल्स अपने साथ। वैसे ढेर सारी बारिश भी हो रही है और इस बारिश के साथ बहुत सारी चीज़ें आती है। वैसे तो बहुत सुंदर हमारे आसपास का माहौल हो जाता है जब इन पेड़ों को, पंछियों को, पहाड़ों को देखते हैं तो लगता है कि जन्नत तो बस यही है। और सच में बारिश के वक्त अब उससे सुंदर और क्या होगा। दोस्तों हम बहुत लकी हैं जो हम ऐसे वातावरण में रहते हैं, ऐसे पर्यावरण में रहते हैं। तो दोस्तों अब हमारी बारी है कि कुछ पर्यावरण के लिए किया जाए। वो क्या, वो आपको अपने लिए सोचना है। दोस्तों उसको तो सोचेंगे ही, साथ साथ आपको बता दें आज के विषय के बारे में भी, क्योंकि दोस्तों आपको मालूम है कि युवा मंच पे हर हफ्ते हम आपको एक न एक जानकारी ऐसी ज़रूर देते हैं जो आपको इंटरनेट की दुनिया में मदद करे। जी हाँ, इंटरनेट एक ऐसी दुनिया है जहाँ हम सब रहते हैं, जहाँ के नागरिक हम सभी हैं। तो नागरिकों को पता होना चाहिए कि दुनिया में चल क्या रहा है ताकि वो अपने को सुरक्षित रख सके। अब इसमें डर की कोई बात नहीं, लेकिन जानकारी है अपना हथियार। और स्कैमर्स अगर करें कोई भी वार तो हम प्रिपेयर्ड होने चाहिए, यानी हमारे पास सही जानकारी होनी ही चाहिए। तो आज आपको पता चलेगा कि किस तरह से जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उसका गलत इस्तेमाल हो सकता है। तो अपने डॉक्यूमेंट्स को प्रोटेक्ट कैसे रखना है, सही तरीके से कैसे रखना है, ये आपको मालूम पड़ेगा आज। दोस्तों साइबर दोस्त एक बहुत सुंदर सी पहल है होम मिनिस्ट्री की ओर से, तो आपको सही जानकारी मिलती है यहाँ पे। आपको कई जानकारियाँ एक्सपर्ट्स के माध्यम से डायरेक्टली दी जाती हैं। तो इसीलिए दोस्तों आपको आज भी पता चलेगा कि क्या बातचीत हो रही है। लेकिन फिलहाल एक छोटे से ब्रेक की ओर हम आगे बढ़ेंगे, लौट कर आएंगे। युवा मंच जारी रहेगा, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: आप हो रेडिया रेडियो मधुबन 107.8 FM हबरता रेडियो ने मुस्कुराता रेडियो।
1: नमस्कार एंड वेलकम टू दिस वीक साइबर सेफ लाइव ब्रॉट टू यू बाय साइबर दोस्त, द ऑफिशियल साइबर सेफ्टी अवेयरनेस इनिशिएटिव बाय द इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। आज का सेशन साइबर क्राइम के एक ऐसे हिडन थ्रेट पर फोकस्ड है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स का मिसयूज। साइबर क्रिमिनल्स पैन, आधार और दूसरे पर्सनल डॉक्यूमेंट्स का मिसयूज करके फेक बिजनेस रजिस्टर कर रहे हैं, जिसके बाद इनोसेंट सिटीजन्स को GST नोटिसेस, लीगल नोटिसेस और फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। इसी इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करने के लिए आज हमारे साथ है इंस्पेक्टर नीरज पाकोनी, SOG साइबर सेल पित्तौरगढ़, जो साइबर फ्रॉड इन्वेस्टिगेशंस के साथ साथ इमर्जिंग साइबर स्कैम्स के बारे में पब्लिक अवेयरनेस भी एक्टिवली स्प्रेड कर रहे हैं। सर, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे।
2: थैंक यू मैम।
1: का सबसे पहला सवाल, हाल ही में ऐसे केसेस सामने आए हैं जहां विक्टिम्स के नाम पर फेक बिजनेसेस रजिस्टर किए जा रहे हैं, तो क्या आप हमें ये समझा सकते हैं कि साइबर क्रिमिनल्स किसी की आइडेंटिटी का मिसयूज कैसे करते हैं और ऐसे फ्रॉड को कैसे अंजाम देते हैं?
2: एक्चुअली आज की डेट में सभी लोग अपने मोबाइल के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं और जो भी हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं जैसे कि आधार कार्ड या पैन कार्ड, उन सभी का वेरिफिकेशन OTP के थ्रू होता है। साइबर क्रिमिनल्स कई बार फेक लोन ऐप के माध्यम से या फिर ऑनलाइन जॉब का प्रलोभन दे करके लोगों के साथ में कम्युनिकेट करते हैं और जिस समय पर उनके साथ वेरिफिकेशन की प्रक्रिया चलाते हैं तो उस दौरान उनके आधार ऑथेंटिकेशन के जो OTP हैं वो उनको उसके लोन अप्रूवल के लिए मांगते हैं, बट लोगों को जानकारी ना होने की वजह से उनके द्वारा उस आधार ऑथेंटिकेशन का यूज कहाँ किया जा रहा है इस बारे में उन्हें जानकारी नहीं होती है। GST फॉर्म या कोई इस प्रकार की जो फेक फॉर्म अगर रजिस्टर्ड हो रही है तो वहां पर भी यही होता है। जो रिसेंटली हमारे जो पास जो केस आया उसमें लोन के लिए अप्लाई किए जाने के दौरान साइबर स्कैमर्स ने उनको जो OTP भेजा वो GST फॉर्म के आधार ऑथेंटिकेशन का था और उन्होंने इस चीज को चेक नहीं किया और जैसे ही उसमें आधार ऑथेंटिकेशन किया तो वो पोर्टल पर एक फॉर्म के रजिस्ट्रेशन के रूप में वहां पर को उसको एंटर हो गया।
1: सर, लोग अक्सर अपने पैन, आधार या आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स अलग अलग जगह शेयर करते हैं रिक्वायरमेंट के हिसाब से, तो कौन सी ऐसी मिस्टेक्स है जिससे साइबर क्रिमिनल्स उनके डॉक्यूमेंट्स को मिसयूज कर सकते हैं?
2: जनरली आधार कार्ड व्यक्ति की अपनी व्यक्तिगत पहचान है और गवर्नमेंट्स ने नॉर्म्स बनाए हुए हैं कि जो भी आधार अगर किसी जगह पर आप यूज कर रहे हैं तो उसके लिए आपको सुविधा दी गई है OTP के द्वारा वेरिफिकेशन की और पैन कार्ड में भी ये सारी चीजें फैसिलिटी है, लेकिन लोगों को साइबर क्राइम के बारे में अवेयरनेस नहीं है। पर्टिकुलर व्यक्ति जो है मोबाइल के थ्रू बहुत सारी साइट्स पर जाकर के स्ट्रीमिंग करते हैं और ऑनलाइन जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, तो इन जगहों पर जब पैन कार्ड और आधार कार्ड का जब भी वेरिफिकेशन अगर आ रहा है तो उनको हमेशा ये देखना चाहिए कि जो आधार कार्ड या पैन कार्ड हमारे द्वारा शेयर जिसको किया जा रहा है क्या वो ट्रस्टेड साइट है कि नहीं है, वो ट्रस्टेड सोर्स से हमारे पास आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कई बार साइबर स्कैमर्स जो है सेम उसी की तरह रिजेंबल करती हुई साइट्स और फॉर्म बना करके लिंक के थ्रू लोगों को भेजते हैं जिसमें गवर्नमेंट की किसी साइट का नाम हो सकता है या आधार UIDAI जो हमारी आधार की ऑथेंटिकेशन के लिए है उसकी कोई साइट हो सकती है। अगर आप ऐसी जगहों पर अपना आधार या पैन कार्ड की डिटेल बिना उस साइट के वेरीफाई करे हुए केवल लिंक के माध्यम से या फिर किसी अनट्रस्टेड साइट्स पे जाकर के अगर एंटर कर रहे हैं तो ऐसे में आपके आधार और पैन कार्ड का दुरुपयोग होने की संभावना है। साथ ही साथ में आपने देखा होगा कि OLX या बहुत सारे माध्यम ऐसे चैनल्स हैं जहां पर लोग चीजों को शॉपिंग करते हैं, ऐसी जगह पर बहुत सारा फ्रॉड ये होता है कि साइबर स्कैमर्स किसी ऐसी लोक लुभावने ऑफर देते हुए किसी भी पर्टिकुलर सामान को खरीदने का एक एड एंटर करते हैं और लोग उस पर जाकर के जैसे कनेक्ट होते हैं तो वहां पर साइबर स्कैमर्स उनसे उनके आधार कार्ड या पैन कार्ड या इस तरह की जानकारी कि आप तक ये सामान भेजा जाएगा तो उस अपने डॉक्यूमेंट को वहां भी शेयर कर देते हैं। तो ऐसे में स्कैमर्स आपका जो आधार कार्ड या आइडेंटिटी जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको फिर वो अन्य लोगों को चीट करने के लिए यूज करते हैं। ज्यादातर ये हमारे जो आर्मी पर्सनल या जो भी फोर्सेस के लोग हैं उनके आई कार्ड्स और उनके आधार कार्ड इस पर्पज के लिए यूज होते हैं ताकि लोग उन पर जल्दी से विश्वास कर लें।
1: सर, अगर किसी के नाम पर बिना उसकी जानकारी के फेक कंपनी रजिस्टर हो जाए तो विक्टिम को इसका कैसे पता चल सकता है, और ऐसे कोई साइंस है जो सिटीजन को ध्यान रखने चाहिए?
2: जनरली अगर हमारे नाम पर कोई फॉर्म अगर रजिस्टर्ड है फेक, तो इसके लिए हमारे पास जीएसटी का जो हमारा जो पोर्टल है, गवर्नमेंट द्वारा संचालित जो पोर्टल है, उस पोर्टल पर जाकर के यदि मैं ये सर्च करता हूं कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन बाय पैन कार्ड, तो वहां पर आपको, आप जब साइट पर आप चेक करेंगे तो टैक्स पेयर की पूरी लिस्ट एक वहां पर को एक ऑप्शन शो करता है। वहां पर जैसे ही आप अपना पैन कार्ड एंटर करते हैं, यदि आपकी परमिशन के बिना कोई भी जीएसटी फॉर्म वहां पर को रजिस्टर्ड है, तो उस पर पूरी डिटेल्स वहां पर आ जाती है कि इस पैन कार्ड के बिहाफ पे कौन सी फॉर्म रजिस्टर्ड है, उसका टर्नओवर कितना है, उसका एड्रेस क्या रजिस्टर्ड है, और मंथली उसका जो GSTR 1 और GSTR 3 फॉर्म जो है वो फिल किए जा रहे हैं, उसकी लाइबिलिटीज क्या है और कितने का बिजनेस उसने किया। तो ये हम अपने पैन कार्ड के थ्रू उस पर्टिकुलर साइट पर जीएसटी की जानकारी ले सकते हैं। दूसरी चीज, जब भी हमें क्रेडिट स्कोर अपना हमेशा चेक करना चाहिए कि यदि हमारे आधार या पैन कार्ड के आधार पर किसी के भी द्वारा हमारी जानकारी के बिना कोई अकाउंट, बैंक अकाउंट कोई संचालित किया जा रहा है, तो हमें हमारा सिविल स्कोर आपको अचानक से आपका डाउन दिखने लगेगा। उस पे किसी प्रकार का आपकी जानकारी के बिना लोन अप्रूव्ड हो सकता है, उसकी लाइबिलिटीज आप पर आ जाएगी। तो जब आप कभी अपना क्रेडिट स्कोर चेक करेंगे तो वहां पर आपको कोई लोन या उसकी ईएमआई की किस्तें ड्रॉप होने की वजह से आपका सिविल स्कोर डाउन रहेगा। आपको ये पर्टिकुलर चीजों को चेक करना है कि ऐसा कोई साइन अगर आपको आ रहा है। और मेन बात, क्योंकि आधार ऑथेंटिकेशन एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक पार्ट है किसी भी हमारी किसी भी जगह पर रजिस्ट्रेशन के ऑथेंटिकेशन को चेक करने का, तो हमको जो हमारा आधार ऐप है गूगल प्ले स्टोर में अवेलेबल है, या हमारी UIDAI की जो ऑफिशियल साइट है वहां पर जाकर को हमको हमको अपने आधार ऑथेंटिकेशन हिस्ट्री को चेक करते रहना चाहिए कि हमारा आधार ऑथेंटिकेशन मेरी जानकारी के बिना किसी ऐसे पर्टिकुलर फॉर्म रजिस्ट्रेशन में या बैंक अकाउंट खोलने में या सिम जारी करने में तो नहीं हुआ है।
1: सर, जैसे कि आपने भी बताया, आजकल ऑनलाइन KYC, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या लोन एप्लीकेशन के नाम पर डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं। सिटीजंस कैसे वेरीफाई करें कि जो अपने डॉक्यूमेंट्स वो शेयर कर रहे हैं वो कोई जेन्युइन ऑर्गेनाइजेशन ही है?
2: हम जब भी कभी अपने डॉक्यूमेंट शेयर करते हैं तो हमारी जो जेन्युइन साइट्स होंगी, हमको उसको हमेशा हमें उस साइट के सोर्सेस को देखना है जहां पर HTTPS जो हमारा हाइपर टेक्स्ट जो सिक्योर वेबसाइट का जो लिंक है, साथ में पैडलॉक है। तो अगर कभी भी कोई ऐसा लिंक का आपको किसी अनट्रस्टेड उससे आ रहा है, जो सोर्स आपका वैलिड नहीं है, आपको मेल पर इनकम टैक्स से या आपके किसी बैंक के ओर से मेल आ रही है लेकिन वह मेल ऑथराइज सोर्स नहीं है, तो वहां पर कोई भी फॉर्म अगर आपको दिखाई दे रहा है तो उस जगह पर आपको अपना कोई भी डाटा शेयर नहीं करना है। आपको अपने आधार या पैन कार्ड की डिटेल ऐसे किसी फॉर्म पे नहीं भेजनी। आपको आने वाली जो भी साइट्स हैं या लिंक्स हैं उनमें चेक करना है, क्योंकि जैसे गवर्नमेंट्स की जो भी हमारी साइट्स हैं उस तो उसमें .gov.in एक कॉमन एक उसके एड्रेस होता है उसका URL का, तो उस पर हमको ट्रस्टेड जो साइट्स हैं उन्हीं पर हमको ये शेयर करना है। दूसरा, अगर हमें अपना आधार पैन कार्ड अगर किसी भी जगह पर हम फिजिकली अगर शेयर कर रहे हैं तो हमें उस आधार कार्ड के हार्ड कॉपी में जहां पर हम जमा कर रहे हैं उस पे अपना पर्पज लिख देना चाहिए कि हम किस पर्पज के लिए डॉक्यूमेंट यहां पर को शेयर कर रहे हैं, ताकि अगर हमने किसी भी बैंक अकाउंट ओपनिंग के लिए भेजा दिया है या सिम कार्ड के लिए दिया है, अधिकतर जगह पर हमारा बायोमेट्रिक पहचान हम कर रहे हैं, लेकिन हमारी कोशिश है कि अगर हार्ड कॉपी अगर कहीं पर देनी है तो हमें उसके ऊपर पर्पज अवश्य लिखना चाहिए ताकि हमें ये जानकारी में रहे कि हमने किस पर्पज के लिए दिया है, ताकि उस डॉक्यूमेंट का आगे किसी और पर्पज के लिए यूज ना किया जा सके।
1: सर, अगर किसी को अचानक जीएसटी नोटिस, टैक्स नोटिस या किसी अननोन बिजनेस से रिलेटेड लीगल नोटिस मिले, तो सबसे पहले विक्टिम को क्या करना चाहिए?
2: देखिए, जब भी ऐसे फॉर्म से कोई नोटिस अगर व्यक्ति को आता है तो ऑब्वियस सी बात है कि वो शॉक्ड हो जाता है। जैसे रिसेंटली हमारे केस में जो हमारे जवान है, उनको जैसी नोटिस आया तो उन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी। तो ऐसे में सबसे पहले जो नोटिस आया है, आपको पहले ये वेरीफाई करना है कि क्या ये नोटिस वास्तव में जेन्युइन ऑफिस से आया है कि नहीं आया है। माना उसमें जीएसटी या इनकम टैक्स से या किसी भी फॉर्म ऑफिशियल साइट से अगर कोई नोटिस आया हुआ है, तो सबसे पहले तो आपको उसमें जो आपका नोटिस की क्रमांक, DIN नंबर या जो भी उस पर मेंशन होगा, आपकी अगर फॉर्म के रिगार्डिंग अगर कोई आया हुआ है तो उसका GST नंबर होगा, उसको आपको स्वयं से चेक करना है साइट पे जाकर के कि क्या जो नोटिस आया हुआ है, जो GST नंबर मेरे नाम पर दिखाया गया है, वो एक्चुअल में सही है अथवा नहीं। तो उसके लिए जैसा मैंने पहले बताया कि GST की साइट पर आप पैन कार्ड के थ्रू उस GST नंबर से सर्च कर सकते हैं कि ये फॉर्म एक्चुअल में रजिस्टर्ड मेरे नाम पर है अथवा नहीं। जब आपको लगता है कि वास्तव में ये नोटिस सही सोर्स से आया हुआ है और यहाँ पर जो नोटिस मेरे को सर्व हुआ है, मेरी जानकारी यानी मेरी जानकारी के बिना कोई फॉर्म चली है और मुझे पता ही नहीं है, तो आपको हमेशा ये चीज देखनी है कि उस फॉर्म में, उसमें लिखा होता है कि आपकी जो फॉर्म रजिस्टर्ड हुई है वो आधार ऑथेंटिकेशन से हुई है या फिर आपके पेपर सबमिट करने से। यदि आधार ऑथेंटिकेशन से आपकी फॉर्म आपके नाम पर रजिस्टर्ड है तो फिर रेस्पॉन्सिबिलिटी आपकी फिक्स होती है, फिर आपको आपकी जवाबदेही तय की जाती है। तो ऐसे में आपको तत्काल उस ऑफिशियल जो हमारा जहां से नोटिस आया है उसके कार्यालय में जाकर के या मेल के थ्रू उनको अपनी रिक्वेस्ट रेज करनी चाहिए, जाके हम वहां पर को जाकर के अपनी बात सबमिट करें कि सर हमारे द्वारा फॉर्म रजिस्टर्ड नहीं कराई गई थी। तो वहां पर आपको अपने वैलिड डॉक्यूमेंट और जो भी आपकी जानकारी है वो शेयर करनी चाहिए, ताकि वो उस सारे आपके जो फैक्ट हैं उनकी स्क्रूटनी कर सके, उसकी जांच कर सके। लेकिन उसके बाद भी अगर GST फर्म ये मानती है कि आधार ऑथेंटिकेशन के माध्यम से आपने इस फर्म का रजिस्ट्रेशन में, आपने आधार ऑथेंटिकेशन में OTP शेयर करके रजिस्टर्ड किया है, तो आपको तत्काल अपने निकटतम जो साइबर सेल है या पुलिस स्टेशन है और या फिर 1930 cybercrime.gov.in इस पर जाकर के अपनी कंप्लेंट करनी चाहिए इमिडिएटली, ताकि उसमें फर्दर एक्शन हो सके। क्योंकि जो नोटिसेस हैं वो एक टाइम बाउंड में आपसे रिकवरी के लिए आ सकते हैं या आपके खिलाफ कार्यवाही के लिए आ सकते हैं, तो आपको उस टाइम फ्रेम में जाकर के तत्काल अप्रोच करना चाहिए। और ऐसे ऑफिशियल जो हमारे नोटिसेस हैं उनको इग्नोर नहीं करना चाहिए, तत्काल
1: जी
2: जाकर के शेयर करें इस बात को।
1: सर, तो अगर इन केस किसी के साथ ऐसा हो जाए तो घबराए नहीं, पहले वेरीफाई, अगर उनको डाउट है ऐसी चीज पे तो आई थिंक वेरीफाई करने से और उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को रीच आउट करने से वो खुद भी क्लैरिटी मिलेगी, और
2: जी
1: अगर उनके डॉक्यूमेंट्स का मिसयूज हो रहा है तो वो टाइम रहते बचाई जा सकती है, वो चीज रोक
2: बताइए।
1: सकती है।
2: जी एब्सोल्युटली।
1: सर, जैसे आपने बताया रीसेंट इन्वेस्टिगेशन के दौरान, क्या आपको कोई ऐसे कॉमन पैटर्न्स देखने को मिले जहां आइडेंटिटी किसी की बार बार मिसयूज की गई हो?
2: ये पर्टिकुलर केस टू केस वरी करता है कि आपका जो डॉक्यूमेंट है वो किन किन स्थानों पर यूज हो सकते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि आप अगर बिना किसी विश्वास के या बिना किसी सामने वाले व्यक्ति की आइडेंटिटी को पहचाने आप अपने कोई भी डॉक्यूमेंट अगर ऑनलाइन शेयर कर रहे हैं, तो उस डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी का यूजेज कहाँ कहाँ हो रहा है, इसे तो आप पर्टिकुलरली साइट के थ्रू नहीं जान पाएंगे। लेकिन हाँ, अगर आपके जो पेपर्स हैं वो बायोमेट्रिक पहचान के साथ में अगर उसका ऑथेंटिकेशन हुआ है, तो इसके बारे में आपकी जानकारी, जैसे मैंने बताया कि हम आधार ऑथेंटिकेशन हिस्ट्री के थ्रू और इसके द्वारा जान सकते हैं। मल्टीपर्पज जो हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं, उन डॉक्यूमेंट्स का यूज वैसे तो गवर्नमेंट्स द्वारा बहुत सारे नॉर्म्स ऐसे बनाए गए हैं कि अब सिम भी बिना बायोमेट्रिक के आपको जारी नहीं होता है, तो हार्ड कॉपी ऐसी जगह पर यूज नहीं हो सकती। लेकिन आपको शेयर करने से पहले हमेशा सोचना है कि आप जिसको भी शेयर कर रहे हैं डॉक्यूमेंट, क्या वो व्यक्ति जेन्यून है अथवा नहीं, या वो साइट जेन्यून है कि नहीं, या वो ऑफिशियल जो बैकग्राउंड बता रहे हैं वो जेन्यून है कि नहीं। अदरवाइज आपके साथ ये हो सकता है, आपने देखा होगा कि अभी साइबर स्कैम में डिजिटल अरेस्ट और बहुत सारे ऐसे जो फैक्टर हैं, तो अगर आपने अपना डॉक्यूमेंट डेटा ऑनलाइन कहीं किसी पर शेयर किया हुआ है तो वो आपकी पूरी जानकारी, आपके आधार कार्ड नंबर, पैन कार्ड नंबर, इन सब सारी डिटेल्स के आधार पर आपको कॉल करके कस्टम ऑफिसर्स या पुलिस ऑफिसर्स बनके कह सकते हैं कि आपका पर्टिकुलर आधार नंबर ये है, आपका पैन कार्ड नंबर ये है, और इसके इस आधार कार्ड के साथ में इस प्रकार का अपराध हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये फेयर रहता है कि आपके साथ साइबर स्कैम हो सकता है या आपका डॉक्यूमेंट किसी साइबर क्राइम में इन्वॉल्व हो सकता है।
1: सर, हमारे व्यूअर का सवाल आया है
2: जी,
1: पैन, आधार और दूसरे आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स को मिसयूज से बचाने के लिए सिटीजंस को कौन सी सेफ्टी टिप्स ध्यान रखनी चाहिए?
2: सेफ्टी टिप्स में सबसे महत्वपूर्ण ये है कि आपको अपना आधार कार्ड, आपके एप्लीकेशन जो हमारा ऐप है आधार ऐप, साथ में जो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है आधार की, इस जगह पर जाकर के आपको अपना बायोमेट्रिक लॉक रखना चाहिए। बायोमेट्रिक अगर आपका लॉक है तो आपकी परमिशन के बिना कहीं पर भी बायोमेट्रिक यूज नहीं हो सकता। दूसरा, आपको मास्क आधार जो आपका है वो मास्क आधार यूज करना चाहिए, जिसमें कि केवल आपके 4 डिजिट लास्ट के दिखाई देते हैं, शो होते हैं, बाकी आपका मास्क आधार आप दें किसी भी स्थान पर, माना होटल या किसी भी जगह पर आपको चेक इन करना है तो वहां पर आप अपना मास्क आधार वहां पर को देने की प्रवृत्ति बनाएं। तीसरा, आप, मैंने जैसा बताया पहले कि आप अपना डॉक्यूमेंट जहां पर भी दे रहे हैं उसके ऊपर पर्पज जरूर लिखें, जो कि उस पूरे पर्टिकुलर हार्ड कॉपी जहां पर को आधार कार्ड है उसको क्रॉस करता हुआ पर्पज हमारा लिखा होना चाहिए। ये नहीं कि हमने हार्ड कॉपी की एक साइड में लिख दिया पर्पज और बाद में वो स्कैन करके आधार कार्ड आपका वैसे यूज कर लिया। साथ में आपको आधार ऑथेंटिकेशन हिस्ट्री अपनी चेक करनी चाहिए कि जिसमें आपको 6 मंथ की आधार ऑथेंटिकेशन हिस्ट्री मिल जाती है कि आपका आधार कहाँ कहाँ यूज हुआ है। यदि आपको लगता है कि आधार ऑथेंटिकेशन हिस्ट्री में कोई ऐसा ऑथेंटिकेशन हुआ है जो मेरी जानकारी के बिना हुआ है, माना इनकम टैक्स के उसमें भरे जाने में या फिर बैंक के अकाउंट ओपनिंग में, तो आपको तत्काल संबंधित उस पर कंप्लेंट करनी चाहिए। ये कुछ टिप्स हैं जिनके आधार पर हम इन चीजों से बचा सकते हैं। आधार के अंदर आपको TOTP की सुविधा मिलती है, OTP को छोड़ करके जहां पर आप सिग्नल बेस्ड में नहीं है तो वहां पर आप TOTP जनरेट कर सकते हैं जो 30 सेकंड के लिए हमारा वैलिड होता है। तो ये बहुत ऐसी टिप्स हैं, और जैसा कि बताया कि पैन कार्ड आधार कार्ड को आपको किसी भी ऐसे ऑनलाइन जॉब के या लोन एप्स जो वेरीफाइड नहीं है, प्ले प्रोटेक्टेड नहीं है, गवर्नमेंट द्वारा अप्रूव्ड नहीं है, उन स्थानों पर अपने डॉक्यूमेंट को शेयर नहीं करना चाहिए।
1: सर, आखिर में अगर किसी को लगे या कि उनका आइडेंटिटी या उनके डॉक्यूमेंट्स मिसयूज किए जा रहे हैं तो तुरंत उन्हें क्या स्टेप्स लेने चाहिए?
2: अगर किसी की भी जानकारी में ये आ जाता है कि मेरा डॉक्यूमेंट किसी भी पर्टिकुलर स्थान पर दुरुपयोग किया गया है, मिसयूज किया गया है, किसी को बैंक के वहां से कोई नोटिस आ रहा है या आपको SMS आ रहा है या इनकम टैक्स का नोटिस आ रहा है, सडनली आपका आपको लग रहा है कि आपके नाम पर GST फॉर्म का कोई नोटिस आ गया, तो ऐसे जगह पर आपको तत्काल, सबसे पहले तो आपको काम रहना है। ये नहीं कि आपको नोटिस आया और परेशान हो गए। स्कैमर्स की एक चाल हो सकती है कि वो आपकी जो भी डॉक्यूमेंट उसके द्वारा लिए गए हैं उसके बेस पर हो सकता है कि वो आपको एक फेक नोटिस भेजे और खुद से कम्युनिकेट होने

0: आप पुलिस स्टेशन पे सबसे पहले पहुंचिए, 1930 हमारा बहुत ही क्विक रेस्पॉन्डिंग हमारा चैनल है, 1930 पर आप कॉल करिए। कई लोगों की कंप्लेन रहती है कि 1930 नहीं मिलता है, तो ऐसे में cybercrime.gov.in आपके पास एनसीआरपी पोर्टल है, वहां पर जाकर के रिपोर्टिंग कीजिए, अपने नियर साइबर सेल पर जाकर के रिपोर्टिंग कीजिए। लेकिन किसी भी तौर पर आपको उस नोटिस के रिगार्डिंग या किसी ऐसी कॉल के रिगार्डिंग किसी भी प्रकार से एंटरटेन नहीं करना है और ना ही डरना है।
1: सर, आइडेंटिटी थेफ्ट, फेक बिजनेस रजिस्ट्रेशन और पर्सनल डॉक्यूमेंट्स के मिसयूज पर आपकी गाइडेंस हमारी ऑडियंस के लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव रही। आज के डिजिटल वर्ल्ड में सिर्फ बैंक अकाउंट्स ही नहीं बल्कि अपनी आइडेंटिटी और पर्सनल डॉक्यूमेंट्स को सिक्योर रखना भी बहुत जरूरी है, जैसे कि आपने आज समझाया। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे एंड थैंक यू टू ऑल द व्यूअर्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीक सेम टाइम एक और इम्पोर्टेंट साइबर सेफ्टी टॉपिक के साथ। टिल देन स्टे सेफ, स्टे साइबर अलर्ट। थैंक यू।
0: थैंक यू थैंक यू थैंक्स टू

0: आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन।
1: सड़क पर से रेलवे क्रॉसिंग पार करते समय दोनों तरफ पहले देखें, फिर अपना वाहन रेलवे क्रॉसिंग से पार करें। रेलवे क्रॉसिंग पार करते समय उचित नियमों का पालन करें, इसमें आपकी व रेलवे की सुरक्षा है।
0: रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।
2: बातें तो बहुत होती हैं, लेकिन कुछ बातें याद रखने लायक होती हैं।
3: भगवान के साथ संबंध, the relationship with God. And friends, believe me, शायद हमने भगवान को सही अर्थ में नहीं पहचाना। Two good reasons. एक तरफ भगवान को कहते वो प्रेम का सागर है, और दूसरे तरफ आज हम उस प्रेम के सागर से सबसे ज्यादा डरते हैं। We have become God fearing rather than God loving. आप कहेंगे सर नो वी डोंट फियर गॉड, देन देयर इज अ सेकंड गुड रीजन व्हाई वी हैव नॉट अंडरस्टूड गॉड, बिकॉज़ फ्रेंड्स मोर देन 80% ऑफ द वॉर दैट इज फॉट टुडे इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन द नेम ऑफ गॉड। चाहे वो अमेरिका अफगानिस्तान वॉर हो, अमेरिका इराक वॉर हो, जम्मू कश्मीर प्रॉब्लम हो, गुजरात प्रॉब्लम हो, दिल्ली ब्लास्ट हो, हैव वी रियली अंडरस्टूड गॉड? किसी ने क्या खूब कहा है, काबा है घर रहीम का, काशी है घर राम का, दोनों ही बात तो एक है, झगड़ा है बस नाम का। We are fighting in the name of God and we call ourselves intellectuals. Friends, let's understand the name very clearly. Hindus मनाते हैं दिवाली और हमारे इस्लाम भाई बहने मनाते हैं रमजान, लेकिन थोड़ा सा कॉमन सेंस तो हम समझ सकते हैं। अरे दिवाली में है अली ALI तो रमजान में है राम RAM। दिवाली में है अली, रमजान में है राम। दिवाली में है दिल DIL तो रमजान में है जान ZAL। अरे उस प्रेम के सागर को दिल व जान, सिख व प्रेम से याद करना है, ना कि उसके नाम पर युद्ध करना है। तो परमात्मा के साथ वो संबंध जोड़ना जरूरी है। हमें ये समझ होनी चाहिए कि हम सभी जो आत्माएं हैं उस एक परमात्मा के संतान हैं। एंड दैट इज अ ब्यूटिफुल रिलेशनशिप दैट वी कैन एस्टैब्लिश विद द ऑलमाइटी गॉड। एंड दिस इज व्हाट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और उस परमात्मा पर संपूर्ण निश्चय भी होना बहुत बहुत जरूरी है। और जब हम परमात्मा के साथ संबंध जोड़ लेते हैं तो उनका जो स्नेह है, क्योंकि परमात्मा को कहते हैं वो स्नेह और प्रेम का सागर है, तो ऑटोमेटिकली वो स्नेह और प्रेम हमारे में आने लगती है और हमारा जीवन फिर से प्रेममय, सुखमय और शांतिमय बन जाता है। तो हम सबको एक ऐसा कार्य करना है जिससे समाज जो है फिर से ऐसे सुखमय बन जाए।

0: आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन।
1: कृपया जब गाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़ी हो तब मेहरबानी करके शौचालय का उपयोग ना करें, जिससे स्टेशन परिसर में गंदगी फैलती है। इसमें रेलवे की सहायता करें।
0: रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।
2: इसमें भारत के सिटीजन्स को दूसरे कंट्रीज में किसी भी तरह से लोभ देते हुए या उनको फंसाते हुए बाहर बुला जाता है जॉब के, एक आईटी जॉब के बहाने, और वहां पर उनको बंधक बनाकर उनसे साइबर क्राइम करवाया जाता है इंडियन सिटीजन्स के खिलाफ। तो ये कौन से देशों में होता है? कंबोडिया, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, दुबई वगैरह के कनेक्शंस हमको इन ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज क्राइम नेटवर्क्स में मिलते हैं। लेकिन ट्रांसनेशनल तो ठीक है, ये लोग बड़े स्तर के फ्रॉड्स करते हैं, डिजिटल अरेस्ट, इन्वेस्टमेंट फ्रॉड्स, स्टॉक्स के। लेकिन जो हमारे विद इन द कंट्री वाले जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम नेटवर्क्स हैं साइबर क्राइम के, वो आपको मतलब 80% ऑफ, अगर मोटा मोटा देखा जाए तो, ऑफ साइबर क्राइम इज डन बाय ऑपरेटिव्स विद इन द कंट्री। जो पूरा नेटवर्क उनका जो हिंदुस्तान के अंदर ही ऑपरेट करता है। तो आपको एक एग्जाम्पल के की मदद से मैं समझाता हूँ कि अब मैं झारखंड से आता हूँ, यानी झारखंड मेरा कार्डर है आईपीएस में। तो हमने यहाँ का साइबर क्राइम ट्रैक किया है, स्टडी किया है, एंड पैटर्न्स कुछ हमने समझे हैं कि यहाँ के नेटवर्क्स किस तरह काम करते हैं। जामताड़ा की जो नेटफ्लिक्स सीरीज थी उससे काफी कुछ पॉपुलर हुआ है, जो लोगों ने देखा है वो जानते हैं, लेकिन जो लोगों ने नहीं देखा मैं समझाना चाहता हूँ कि इसमें जो संगठन है उसका एक सरगना होता है किंग पिन। तो वो चार पांच काम करता है, यानी अलग अलग उसके नेटवर्क में उसके हेल्पर्स हैं, एसोसिएट्स हैं। ये लोग क्या काम करते हैं आप भी समझिए। एक होता है जो उसको डेटा प्रोवाइड करता है। किस प्रकार का डेटा? विक्टिम्स का डेटा, या तो वो बैंक से लेगा या किसी कंपनी से डेटा लेगा जिसमें लोगों के नाम, फोन नंबर, एड्रेस होगा या कुछ और डिटेल्स, क्रेडिट कार्ड डिटेल्स, किसी भी तरह के डिटेल्स होंगे। तो किसी भी कंपनी से ये लोग अवैध तरीके से किसी से सेटिंग करके किसी को पैसा देके इस तरह का डेटा निकालते हैं विक्टिम्स का। तो इस सरगना ने विक्टिम्स का डेटा ले लिया। फिर वो क्या करता है कि बल्क में सिम कार्ड ये लोग खरीदते हैं, ये भी किस तरह करते हैं हम आगे समझेंगे। तो बल्क में सिम कार्ड्स खरीदते हैं जिससे वो लोग आपको फ्रॉड कॉल करेंगे। तो एक सिम कार्ड प्रोवाइडर हो गया, एक डेटा प्रोवाइडर हो गया, फिर एक होता है इनका टेक्निकल पर्सन जो कंप्यूटर अच्छी तरह जानता है, जो एप्स बनाएगा, जो एपीके फाइल्स बनाएगा, एंड जो मॉनिटर करेगा कि किस तरह टेक्निकली इस सारे काम को किया जाए। तो ये उसको कुछ पैसा देकर मान लीजिए एक तरह के नौकरी पर रखते हैं, क्योंकि वो बंदा उसको उतना इन्वॉल्वमेंट नहीं होता डे टू डे ऑर्गेनाइज्ड क्राइम नेटवर्क की एक्टिविटीज में। उसका काम यही है कि वो ऐप बनाकर दे और आपको रेगुलरली अपडेट करते रहे। तो एक टेक्निकल आदमी हो गया। एंड फिर उसके बाद होते हैं उनके मनी जो है मूवर्स, जो आपका ठगा हुआ पैसा निकालते हैं और वो निकालेंगे कहीं और से, देंगे किसी और को, उसका उपयोग कोई और करेगा। एंड इस सारे नेटवर्क को मैनेज करता है वो किंग पिन सरगना, और वो एम्प्लॉय करेगा जो बेरोजगार युवक है उनको फ्रॉड कॉल्स करने के लिए। एंड इतना आसान है, हमने जो क्रिमिनल्स को क्वेश्चन किया है, इंटरोगेट किया है, ये दो दिन में सीख जाते हैं। इनको अंग्रेजी तक नहीं आती, आठवीं कक्षा पास भी नहीं होते, लेकिन 10 बार सामने वाले को देख ले कि इस तरह बात करनी है, ये आपके 10 सवाल है, ये आपके 10 सेंटेंसेस हैं जो याद कर लिए, जो उन्होंने रट लिए, और उसके आधार पर वो साइबर फ्रॉड में अपना कदम रखकर शुरू कर देते हैं। तो ये एक प्रकार का इस तरह की पिरामिड होती है। अलग अलग इसमें मॉडस ऑपरेंडाई यानी अपराध करने का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन मुख्य तौर पर आपके पास सिम प्रोवाइड करने वाला होगा, आपके विक्टिम्स का डेटा प्रोवाइड करने वाला होगा, आपका टेक्निकल हेड जो आपका एपीके बनाएगा, फाइल बनाएगा, एप्स को अपडेट करेगा वो बंदा होगा, एंड फ्रॉड कॉलर होगा, एंड लास्ट में कैश विड्रॉअर एंड डिस्ट्रीब्यूटर। अब वो कैश से या तो खुद उसका उपयोग करें या अमेजोन से या फ्लिपकार्ट से कुछ ऑर्डर करें, वो भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। लेकिन मुख्य तौर पर आम जनता के लिए समझना यह है कि एक बड़ा नेटवर्क, एक कॉर्पोरेट कंपनी की तरह, ये लोग अपने अपने रोल्स डिवाइड करके दिन रात मेहनत करते हैं आपको ठगने के लिए। तो आपको भी उतनी ही मेहनत करनी होगी, अपने आप को सतर्क और सावधान रखना।
3: जी सर, तो एज अ कॉमन मैन, एज अ कॉमन पर्सन, हम लोगों को किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए इन सारे फ्रॉड से बचने के लिए? कुछ पॉइंटर्स अगर आप हमारे साथ शेयर कर सकें।
2: इसमें पहले तो हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये साइबर अपराधी इतने कामयाब कैसे हैं अपने काम। तो इसके पीछे वो देयर आर सर्टन हिडन ह्यूमन साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स, कि हमारी ही साइकोलॉजी के, हमारी जो है मंतव्य के कुछ चीजें हैं जो वो उसका दुरुपयोग करते हैं। सबसे पहले तो ये है कि हमको समझना है कि उनकी करेंसी क्या है। उनकी करेंसी है ट्रस्ट, कि हम भरोसा करते हैं, हम शक नहीं करते। मानवता का आधार है कि हम डिफॉल्ट हमारा शक करना नहीं है, डिफॉल्ट हमारा भरोसा करना है किसी भी व्यक्ति पर। तो वो हमारे भरोसे को जीतते हैं। वो कैसे जीतते हैं हम ये समझते हैं। अब क्योंकि साइबर क्राइम में भी इतने प्रकार के जो है तरीके होते हैं करने के, तो आपको मैं ब्रीफ समझाता हूँ। एक तो होता है डर बैठाना, कि मेरे ही किसी
4: तो दोस्तों, आशा करते हैं आपको ये जो बात आज बताई गई है, वैसे तो आप टेक्नोलॉजी के युग में यूट्यूब में हर चीज़ें फाइंड आउट कर ही लेते हैं, लेकिन साथ साथ ज़रूरी है ये जानकारियाँ दूसरों तक पहुँचाना भी, क्योंकि दोस्तों कभी भी जानकारियाँ हम जानते हैं कि काम आ सकती हैं। आपको बहुत सारे केसेस सुनने में आते हैं, जब भी किसी से बात करते हैं साइबर सेफ्टी के बारे में, तो लोग बताते हैं कि हमारे साथ ऐसा हुआ, हमारे साथ वैसा हुआ, हमारे पास ये कॉल आया, हमारे पास वो मैसेज या ईमेल आया। और एक एग्जांपल मैं देती हूँ, मेरी एक दोस्त के पास एक ईमेल आया और उनको ये बोला गया कि आपने इस वेबसाइट से ये चीज़ खरीदी थी, तो आपका एक लकी ड्रॉ निकला है जिसमें आपको एक गाड़ी मिलेगी, लेकिन वो गाड़ी मिलेगी तब जब आपको इतना इतना अमाउंट बैंक में हमारे अकाउंट में जमा करना है। और दोस्तों जब उसके बारे में पता किया गया तो पता चला वो बिल्कुल ही फेक था। बिल्कुल उन्होंने वो वेबसाइट का नाम कॉपी कर लिया था और उनको ईमेल कर दिया था। वो वेबसाइट भी उनकी जो वेबसाइट होती है ओरिजिनल वो नहीं थी, मगर उनको फंसाने के लिए ऐसे ईमेल्स और लोगों को भी किए गए थे और लोगों को भी बता दिया गया था कि आप इस तरीके से वो ईमेल, आप बस पैसे अकाउंट नंबर दे दिया गया था, पैसे जमा कर दीजिए तो आपको इतनी कार मिल जाएगी। और उसमें रीज़न लिख दिया गया था, भाई कार को यहाँ जाने, कार डिलीवर करने के ये चार्जेस हैं, तो आप इसको जल्दी से जल्दी, उनको टाइम भी ज़्यादा नहीं दिया गया था, उनको लिख दिया गया था आप टाइम बस इतना ही है आपके पास, दो दिन में आप जमा कर दीजिए। तो लोगों को लगता है अरे इतनी बड़ी कार मिल रही है, हम मिस ना कर दें, 10,000 रुपये ही तो हैं, जमा कर देते हैं। तो कभी ना कभी आपको ये हो सकता है मैसेजेस आए, ईमेल आए, या इस तरीके से आपसे भी कोई भी डिमांड की जाए। लेकिन दोस्तों हमेशा ये याद रखें, सोचे समझे फिर ही कोई डिसीजन लें। दोस्तों सबसे एक आसान तरीका होता है कि अगर आप कोई तुरंत बोल रहा है तो तुरंत ना करें, आप वो कीवर्ड्स पकड़ लें। मान लीजिए कोई कुरियर कंपनी है, जैसे मेरे पास फ़ोन आया था कि आपका जो आधार कार्ड है वो पकड़ लिया गया है बॉम्बे में, कुछ आपका इलीगल सब्सटेंस जा रहा था तो ऐसा करके उसमें लगा हुआ था। फिर मैंने सर्च करके देखा तो मुझे पता चला कि इस तरह के स्कैम बहुत लोगों के साथ हुए हैं। उनको बोलते हैं वो ऑनलाइन आपको एक किसी भी पुलिस वाले से कनेक्ट करने को कहते हैं कि हमने पुलिस वाले से कनेक्ट किया, वो पुलिस वाले नहीं होते, वो स्कैमर होते हैं और वो आपसे पैसे लेते हैं कि हम आपको बचा लेंगे और ऐसा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ होता है, वो सिर्फ आपको डरा रहे होते हैं, आपके डर को इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो इसीलिए हमेशा सर्च करके देखें। आपको इंटरनेट पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने अनुभव शेयर करते हैं कि हमारे साथ ऐसा हुआ, हमारे साथ ऐसा हुआ, तो आपको तुरंत वो लाइन डालनी है जैसे मैंने डाला कि कुरियर सर्विस स्कैम और इस तरीके का आधार कार्ड बॉम्बे, ये कुछ कीवर्ड्स हैं जो मेन शब्द हैं, उसको पकड़ के डाल दीजिए और आपको लोगों के रिव्यूज़ मिल जाएंगे जो बता रहे होंगे कि हमारे साथ भी ऐसा हुआ था, हमारे साथ भी ऐसा हुआ था। तो दोस्तों इसलिए आप सर्च करें, घबराएं नहीं, पहले फ़ोन चाहे तो काटना है तो काट दीजिए, है ना, उसके बाद आप सर्च की ज़रूरी नहीं है कि आप उनको कुछ बोल के ही रखें, आपको लग रहा है कुछ गड़बड़ है आप काट दीजिए फ़ोन, उस पर आगे जाके बातचीत करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो मास्टर होते हैं आपको कन्विंस करने के लिए, वो पीछे पड़े रहते हैं आपको कन्विंस करने के लिए। तो सबसे अच्छी चीज़ है फ़ोन काट सकते हैं, आपके हाथ में तो होता ही है वो, तो बस उसके बाद सर्च कीजिए, पता कीजिए और उसके बाद ही निर्णय लीजिए। कभी भी जल्दबाजी में या डर के मारे आप गलत निर्णय ना करें। दोस्तों आपके पास समय होता है, आपके पास इंटरनेट है, किसी से पूछें, बात करें, यह सबसे बड़ी चीज़ है। इंटरनेट का फ़ायदा लें, उसी इंटरनेट जिससे स्कैम होता है वही इंटरनेट आपको स्कैम से बचने में भी मदद करता है दोस्तों। तो आशा करते हैं आप सभी सतर्क रहेंगे। अगर आप भी कुछ और जानना चाहते हैं या कुछ शेयर करना चाहते हैं तो रेडियो मधुबन पर ज़रूर कॉल कीजिए, हमारा नंबर है 94-14-15-14-15। फिलहाल वक्त हो गया इजाज़त लेने का, अगला कार्यक्रम लेकर आएंगे आरजे मोना, रेडियो मधुबन से जुड़े रहिए, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

हेलो दोस्तों, मैं हूं आप सबका आलमगीर। सबको मेरा प्यार भरा सत श्री अकाल, नमस्कार। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन पर। सुनते रहिए, गाते रहिए और गुनगुनाते रहिए, झूमते रहिए और सबको प्यार से झुमाते रहिए।

0: आ जाओ खाना खा लो वरना ठंडा हो जाएगा। अजी सुनते हो, आप भी आ जाइए, मैं सबको साथ में खाना परोस देती हूँ। आप बैठिए, गर्मा गर्म पूरियाँ बनाती हूँ।
1: क्या बात है, आज गर्मा गर्म पूरियाँ, वो भी मांस के साथ, मुझे सोच कर ही मुँह में पानी आ रहा है। ओ भाई जल्दी से हाथ धो ले, हम लोग भी खाना खा लेते हैं, चल।
2: मेरा हाथ धोना हो गया है, तुम लोग जल्दी आओ, मैं बैठ रहा हूँ।
3: देख कैसी मुसीबत है, अब फिर से खाना खाने के लिए उठना पड़ेगा। अगर खाना मेरे बिस्तर में ही आ जाता तो बहुत ही अच्छा होता। ए भाई आजा।
0: अरे भाई आ रहा हूँ आ रहा हूँ।
2: ना आलसी होना अच्छी बात नहीं है, जब बड़े होगे तो समस्या में पड़ जाओगे।
0: आपने बिल्कुल सही कहा, आपको उसे समझाना चाहिए। 3 दिनों से यही चल रहा है, स्कूल भी नहीं जा रहा है, बस सुबह उठता है, खाना खाता है, फिर सो जाता है और दिन भर सिर्फ खाना सोना यही चलता है।
1: स्कूल जाकर मैं क्या हाथी घोड़ा लूंगा और खाने की क्या कमी है मुझे घर में, हाँ?
0: अरे बेटा ये क्या बोल रहे हो तुम? तुम्हारे पिताजी दिन रात काम करते रहते हैं, परिश्रम करते रहते हैं ताकि हमें खाना मिल सके। अगर तुम ऐसा करोगे तो कैसा चलेगा बेटा?
2: तुम्हारे बड़े भाई विजय को देखो, स्कूल से आते ही मेरे लिए खाना खेत में लेकर आता है, मेरे काम में मदद करता है।
1: पिताजी माँ अभी ये बहुत छोटा है, जब बड़ा हो जाएगा तब अपने आप समझ जाएगा, अभी उसे खाना खाने दो। देखो ना अभी फिर से नींद आ रही है उसे।
3: हाँ तुमने सही कहा, ठीक है मुझे पूरी और मांस दे दो, मैं जल्दी से खा के सो जाता हूँ।
2: कहाँ गई भाग्यवान, मेरे लिए पान लेकर आना।
0: हाँ हाँ देती हूँ, ये लीजिए।
4: अरे कल सुबह मुझे धान बेचने के लिए शहर जाना होगा, समझे? सुबह जल्दी जाना होगा और मुझे आते आते रात हो जाएगी। मुझे बस यही चिंता हो रही है भाग्यवान, कल धान के खेत में पानी कौन डालेगा सारा दिन, फसल बर्बाद ना हो जाए।
0: ओ आप भी ना, आप चिंता मत कीजिए, मैं सब कुछ तैयार करूंगी, आपको खाना मिल जाएगा।
2: कैसे?
0: आपके बड़े बेटे ने पहले ही मुझे बता दिया है कि वो सुबह उठकर गुड़ रोटी खाकर आपके साथ चला जाएगा। आप शहर चले जाएंगे और वो खेतों में जाएगा खेत में पानी देने के लिए।
2: ऐसी बात है क्या, हम कितना खुशकिस्मत है ना भाग्यवान, मेरा बेटा कितना समझदार है, इस उम्र में देखो हमारे सुख दुख में हमेशा खड़ा रहता है। हाँ
5: हाँ विजय हमारा सबसे अच्छा बेटा है, लेकिन मुझे चिंता होती है हमारे बेटे अजय की।
2: क्यों, उसने क्या किया?
0: कुछ करता तो ठीक होता, लेकिन कुछ करता ही तो नहीं है ना, सिर्फ खाता पीता है, दिन भर सोता रहता है या फिर बाहर जाकर अपने दोस्तों के साथ बैठता है, पढ़ाई तो बिल्कुल नहीं करता, पता नहीं उसका क्या होने वाला है।
2: अरे इतना मत सोचो, जब वो बड़ा होगा ना तो सुधर जाएगा।
0: ये भी ठीक है, हमें इस बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए।
2: चलो जाने दो, ये लालटेन बुझा दो, मैं सो जाता हूँ, मुझे सुबह जल्दी उठना होगा ना, बहुत काम है।
0: हाँ हाँ ठीक है जाती हूँ। अरे आप कुछ खा कर जाते तो अच्छा होता, पूरा दिन बाहर का खाना खाना अच्छी बात नहीं है जी।
2: अरे नहीं भाग्यवान, पहले ही मुझे बहुत देरी हो चुकी है और मैं देर नहीं कर सकता।
3: मेरा खाना हो गया है माँ, आप मुझे रोटी और गुड़ दे दीजिए, मैं पिताजी के साथ जा रहा हूँ, जब वो शहर चले जाएंगे तो मैं खेतों का काम शुरू कर दूंगा।
0: हाँ बेटा देती हूँ, लो ये लो और वक्त पर खाना खा लो।
3: माँ मैं आता हूँ, भाई को स्कूल जाने के लिए तैयार कर देना। हाँ नहीं तो उसको स्कूल जाने में देरी हो जाएगी।
0: हाँ ठीक है अपना ख्याल रखना।
6: अच्छा ठीक से जाइएगा, अपना ख्याल रखिएगा।
0: अरे अजय उठो, अभी तक नींद पूरी नहीं हुई, उठो।
1: आज इतनी धूप है कि मैं थक गया, मैं पेड़ के नीचे जाकर आराम कर लेता हूँ।
3: भाई, ओ भाई,
7: क्या हुआ?
3: तुम स्कूल जाने के बजाय यहाँ पर खेल रहे हो, ना काम करते हो ना पढ़ाई करते हो, ऐसे करने से हो जाएगा तुम्हारा?
7: भैया मैं क्यों जाऊँ काम करने,
3: मेरे को कोई कमी है क्या? मैं तुम्हारे जितना बुद्धू नहीं हूँ, जैसे खाने के लिए मर जाऊंगा। तू अभी जो बोल रहा है वो बड़ा होके पता चलेगा। हाँ
7: बड़ा होने के बाद मैं काम करने के लिए काम वाले आदमी रख लूंगा, समझे? हाँ तुम तो ऐसे करते करते ही मर जाओगे, मैं तो खेलने जा रहा हूँ, तुम यहीं पे बैठे रहो।
3: इसमें कब जाने अकल आएगी, कौन जाने।
8: कुछ सालों के बाद
9: गांव में जो भी कुंवारे लड़के हैं उनके लिए एक अच्छी खबर लाया हूँ।
10: हमारे जमींदार साहब की एक विशेष इच्छा है, उनकी इकलौती पुत्री मधुबाला के साथ एक योग्य लड़के के साथ विवाह करवाएंगे। तो सुनिए उनकी क्या क्या शर्तें हैं।
9: जो कोई भी शादी करना चाहते हैं वो जमींदार के घर कल सुबह पहुँच जाए।
11: आज मैं तुम्हें 500 सोने की मुद्राएं और 5 एकड़ जमीन दूंगा खेती के लिए, जिस पर तुम खेती कर सकोगे। और 1 साल बाद हम सब लोग यहीं पर इकट्ठा होंगे और उस जमीन से जो सबसे ज्यादा पैसा कमा कर लाएगा वो बनेगा मेरा दामाद और उसी से मेरी बेटी शादी करेगी।
12: हाँ बिल्कुल जमींदार साहब, बिल्कुल आप एकदम सही कह रहे हैं, बिल्कुल।
11: मेरी एक और शर्त है, जो मेरी समय की अवधि दी गई है उसमें किसी ने मेरे पैसे नहीं लौटाए उसे दंड के तौर पे अगले 1 साल तक जमींदार के यहाँ नौकर बनकर रहना पड़ेगा।
12: जो बोले जमींदार साहब।

0: जिंदगी में पहली बार एक साथ इतनी सारी सोने की मुद्राएं देखी हैं। कुछ सोचा क्या करेंगे भैया?
1: हाँ, पहले कुछ मुद्राओं को खर्च करके मैं जमीन लूंगा और बाकी बचेगी उसकी मैं ऊंट और बैल लूंगा और पूरे साल में अच्छे से मेहनत करके खेती करूंगा। उससे मैं बहुत ज्यादा रोजगार कर पाऊंगा।
0: आप तो बेवकूफ के बेवकूफ ही रहेंगे। पता है मैं क्या करूंगा?
1: क्या करोगे?
0: ये मुद्रा में से आधी मुद्राओं को खर्च करके 4 किसानों को मेरी जमीन पर काम करने के लिए रख लूंगा। और अगले 1 साल तक उन 4 किसानों से मैं बहुत सारा काम करवा के बहुत सारे पैसे कमाऊंगा, समझे?
1: और बाकी मुद्रा का क्या करोगे?
0: और बाकी के पैसे से मैं 1 साल तक मजे करूंगा। भैया, आप में ऐसी बुद्धि कहाँ?

0: बहुत मेहनत करके मैंने ये धन जमा किया है, ये पुरस्कार तो मुझे मिलना ही चाहिए।
1: अच्छा ऐसा है? रुको रुको, मैं जरा अपने किसानों से मिलकर आता हूँ, फिर हम एक साथ जमींदार को मिलने चलते हैं।
0: हाँ ठीक है, लेकिन जल्दी आना भाई।
2: अब क्या बताऊँ भाई, खेत में इतना पानी निकला कि पूरा धान पूरा फसल खराब हो गया, बहुत नुकसान हो गया भाई।
3: पता नहीं ये पेड़ कहाँ से आ गए, हमारी सारे की सारी फसल नष्ट हो गई। अब क्या करेंगे बताइए, क्या करें हम?
4: मैं आपको कुछ भी नहीं दे पाऊंगा शेठ जी, इस साल का अनाज तो अब तक बिका भी नहीं है, अब तो हम कंगाल हो चुके हैं शेठ जी।
5: हाँ ये क्या बोल रहे हो? हाय, अगर भैया की तरह मैं मेहनत करता तो आज ये नौबत नहीं आती, मैं इस मुसीबत में नहीं फंसता।

0: मैं आज अति प्रसन्नता के साथ अपनी बेटी मधुबाला की विवाह की घोषणा विजय के साथ करता हूँ। विजय अपनी मेहनत और बुद्धि के बल पर इस परीक्षा में वो पास हो गया, यही उसका इनाम है। मैं अपनी बेटी के लिए ऐसा ही मेहनती और बुद्धिमान लड़का कब से ढूंढ रहा था।
1: साधु।
0: और शर्त पूरी न होने के कारण अजय को विजय के यहाँ एक साल तक काम करना पड़ेगा, उसका खास आदमी बनना पड़ेगा।

0: तुम्हें बचपन से ही मैंने समझाया था, सोने से कोई लाभ नहीं होता है। उस समय समझ जाते तो आज ये दिन नहीं आता।
1: वेल, हमेशा अपनी जो मेहनत के पैसे हैं उन्हें सही रीति खर्च करना आवश्यक है। वेल दोस्तों, आपको उड़ान में एक बेहतरीन कहानी जरूर सुनाया, आगे कुछ गीत आप तक पेश करते हैं और फिर मैं मोना वापस आऊंगी एक और नई कहानी के साथ, क्योंकि आज की उड़ान में कहानियों का सिलसिला है। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8।

0: बिल्कुल सही कहा, युवा शक्ति ही करेगा भारत को विकसित और महान। बारिश का असली जादू, पहली बारिश होते ही पूरे गांव में मिट्टी की भीनी भीनी खुशबू फैल गई थी। 11 साल की अनन्या और उसका दोस्त विहान खुशी से बाहर दौड़ पड़े। दोनों ने रेनकोट पहने और कागज की नाव बनाकर तैराने लगे। अचानक अनन्या की नजर नाले में फंसी एक छोटी सी गोरैया पर पड़ी। बारिश का तेज पानी उसे बहाकर ले जा रहा था। जल्दी कुछ करो, अनन्या चिल्लाई। विहान ने पास पड़ी एक लंबी टहनी उठाई। अनन्या ने धीरे धीरे गोरैया को उसी की ओर बढ़ाया। कुछ कोशिशों के बाद गोरैया टहनी पर चढ़ गई और फड़फड़ाते हुए सुरक्षित पेड़ की डाल पर जा बैठी। दोनों ने राहत ली। तभी उन्हें पास के पार्क में एक और परेशानी दिखाई दी। बारिश का पानी इसलिए भर गया था क्योंकि नाले में प्लास्टिक की थैलियां और बोतलें पड़ी हुई थी और जिससे नाली बंद हो गया। पानी में बच्चों की कई कागज की नावें भी बस गई। अगर हम इसे साफ कर दे तो पानी भी निकल जाएगा, विहान बोला। दोनों ने घर से दस्ताने लाए और बड़े लोगों की मदद से प्लास्टिक का कचरा हटाना शुरू किया। थोड़ी ही देर में नाली साफ हो गई। पानी तेजी से जो बह निकल पाया, तभी बादलों के पीछे से सूरज झांकना शुरू किया। आसमान में एक सुंदर चमकदार इंद्रधनुष खिल उठा। अनन्या मुस्कुराई और बोली, देखो लगता है इंद्रधनुष हमें धन्यवाद कर रहा है। विहान हंस पड़ा, शायद ये कह रहा है कि बारिश सिर्फ मस्ती करने के लिए नहीं आती, बल्कि ये हमें प्रकृति की देखभाल करना भी सिखाती है। उसी समय पार्क में खेल रहे दूसरे बच्चे भी उनके पास आ गए। सब ने मिलकर तय किया कि अब वे कभी भी प्लास्टिक का कचरा इधर उधर नहीं फेंकेंगे और हर बरसात में अपने आसपास की नालियों को साफ रखने में बड़ों की मदद अवश्य करेंगे। उस दिन अनन्या और विहान को समझ में आ गया कि असली खुशी सिर्फ बारिश में भीगने या नाव चलाने में नहीं, बल्कि किसी की मदद करने और प्रकृति को सुरक्षित रखने में होती है। देखा, प्रकृति को सुरक्षित रखने के लिए कितनी छोटी छोटी पहल हम और आप कर सकते हैं। और तभी आग्रह यही करते हैं कि मिशन लाइफ जरूर अपनाइए, प्रकृति को सुरक्षित जरूर बनाइए।
1: फ्रेंड्स, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मिशन लाइफ के संकल्प को आप सजग रहकर मजबूती दे सकते हैं और रोजाना के कामकाज में कुछ आसान उपायों से अपना योगदान दे सकते हैं। कैसे, आइए जानते हैं। पौधों, फर्श और वाहनों आदि में पानी के उपयोग के लिए होस पाइप या पाइप के बजाय बाल्टी का उपयोग करें। एसी और आरओ से निकले पानी का पुनः उपयोग करें। जल इकाइयों को रिचार्ज करने के काम को बढ़ावा दें और औरों को भी प्रेरित करें। सब्जियों को साफ करने के बाद पानी का पुनः उपयोग पौधों को पानी देने या ऐसे किसी अन्य कार्यों के लिए करें। घर, स्कूल और कार्यालयों में वाटर हार्वेस्टिंग बॉडीज का निर्माण करवाएं। लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट अपनाइए, मिशन लाइफ से दुनिया बेहतर बनाइए।
2: पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: ये तंबाकू क्या होता है?
1: अरे देखो नहीं पता क्या, इसमें पता है लोग धुएं में अपनी फिक्र उड़ा देते। अरे गाना नहीं सुना क्या तूने?
2: हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया।
0: अच्छा तो फिर मेरे नंबर कम आए तो क्या मैं भी ऐसा कर सकता हूँ?
1: अरे कोई भी कर सकता है, तंबाकू तो बड़ा ही कूल होता है।
3: ऐसी बातें बचपन में होती हैं, युवावस्था में या और बड़े होने के बाद भी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि तंबाकू या धूम्रपान व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य के साथ शारीरिक सेहत पर बहुत बुरा असर डालता है। बीड़ी, सिगरेट, गुटखा इत्यादि के सेवन से कई तरह की बीमारियां हो सकती हैं। धूम्रपान करने से धमनियां कमजोर होने लगती हैं और कोरोनरी हार्ट डिजीज या स्ट्रोक भी हो सकता है। सलाह लीजिए डॉक्टर की और हिम्मत बढ़ाइए अपनों की। रेडियो मधुबन द्वारा जानकारी जनहित में जारी।
4: बिल्कुल, रेडियो आपको हर प्रकार से आगाह करता है, आप तक उन सूचनाओं को पहुंचाता है जिससे आप स्वस्थ रहें, मुस्कुराते जरूर रहें। आगे बढ़ते हैं, तकदीर बड़ा है या भाग्य, चलिए ये कहानी के माध्यम से हम और आप जरूर सीख लेते हैं।
5: जहाँ रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था, वो दिन रात मेहनत करता था लेकिन फिर भी उसका गुजारा मुश्किल से होता था। वहीं उसका पड़ोसी शामू बिना ज्यादा मेहनत के भी सुखी जीवन जी रहा था। रामू हमेशा अपनी किस्मत को लेकर परेशान रहता।
6: अरे रामू भाई, आज फिर इस तपती धूप में बैठे हो, क्या बात है? इस बार तो फसल भी अच्छी दिख रही है, फिर चेहरे पर ये उदासी क्यों?
7: क्या बताऊं शामू भाई, मेहनत में मैं कोई कमी नहीं छोड़ता। सुबह सूरज उगने से पहले खेत में आता हूं और रात को अंधेरा होने पर जाता हूं, लेकिन फिर भी किस्मत हमेशा दगा दे जाती है। कभी सूखा पड़ जाता है तो कभी ओले गिर जाते हैं। मुझे तो लगता है मेरी तकदीर में कभी अमीर होना लिखा ही नहीं है, जो तकदीर में लिखा है वही होकर रहता है।
6: अरे रामू, तुम बहुत सीधे हो, तकदीर वकदीर कुछ नहीं होती, सब दिमाग का खेल है। तुम बस मेहनत करते हो, दिमाग में ही लगाते। चलो आज हमारे गांव में एक पहुंचे हुए महात्मा जी आए हैं। सब कह रहे हैं कि वो भूत और भविष्य सब जानते हैं, क्यों ना हम उनके पास चलें और उनसे पूछें कि तुम्हारी तकदीर में क्या लिखा है।
7: क्या सच में वो हमारी तकदीर का लिखा बता सकते हैं? ठीक है शामू भाई, मन की शांति के लिए ही सही, मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ।
5: दोनों दोस्त गांव के बाहर बने एक बड़े बरगद के पेड़ के नीचे पहुंचते हैं, जहां महात्मा जी ध्यान मग्न थे। रामू और शामू शांत खड़े रहकर उनके आंखें खोलने का इंतजार करने लगे। कुछ देर बाद महात्मा जी ने अपनी आंखें खोली।
8: आओ बच्चों, मैं देख रहा हूँ कि तुम दोनों के मन में ढेरों सवाल हैं। पूछो, तुम्हें क्या जानना है?
7: प्रणाम महात्मा जी, मैं बहुत परेशान हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या सच में इंसान की तकदीर पहले से ही लिखी होती है, और अगर हाँ तो मेरी तकदीर में क्या लिखा है? क्या मैं जीवन भर ऐसे ही गरीबी में तड़पता रहूंगा?
8: बेटा रामू, तकदीर का लिखा कोई नहीं बदल सकता। तुम्हारी तकदीर में अगले एक साल तक बहुत संघर्ष लिखा है, लेकिन ठीक एक साल बाद इसी गांव के पुराने खंडहर के पास तुम्हें सोने के सिक्कों से भरा एक घड़ा मिलेगा। ये तुम्हारी तकदीर का लिखा है।
6: और महात्मा जी, मेरी तकदीर में क्या लिखा है? क्या मुझे भी कोई खजाना मिलेगा?
8: शामू, तुम्हारी तकदीर में आज से ठीक 6 महीने बाद एक बड़ा हादसा लिखा है। एक भारी पत्थर तुम्हारे पैर पर गिरेगा जिससे तुम हमेशा के लिए अपाहिज हो जाओगे, यही तुम्हारी किस्मत का लिखा है।
5: महात्मा जी की बातें सुनकर रामू और शामू के जीवन जीने का तरीका पूरी तरह बदल गया। रामू को पता था कि एक साल बाद उसे खजाना मिलने वाला है, इसलिए वो आलसी हो गया। उसने खेतों में काम करना लगभग बंद कर दिया। वहीं दूसरी तरफ शामू डर के साए में जीने लगा।
7: देखा शामू भाई, आखिरकार भगवान ने मेरी सुन ली। अब मुझे इस कड़कड़ाती धूप में पसीना बहाने की कोई जरूरत नहीं है। जब तकदीर में खजाना लिखा ही है तो वो मुझे मिलकर ही रहेगा। मैं तो अब बस उस दिन का इंतजार करूंगा।
9: रामू, तुम्हें तो खजाना मिलेगा, लेकिन मेरा क्या? महात्मा जी ने कहा है कि 6 महीने बाद मेरा पैर टूट जाएगा और मैं अपाहिज हो जाऊंगा। मुझे अपने परिवार की चिंता सता रही है। अगर मैं अपाहिज हो गया तो उनका पेट कैसे पालूंगा? मुझे अभी से बहुत संभल कर रहना होगा।
5: दिन बीतते गए। रामू दिन भर घर पर सोता रहता। उसने अपने खेतों को बंजर छोड़ दिया। दूसरी तरफ श्यामू ने डरने के बजाय एक फैसला लिया। उसने सोचा कि यदि उसका पैर टूटने ही वाला है तो वह बचे हुए 6 महीनों में इतनी मेहनत करेगा कि उसके परिवार के लिए आगे का जीवन आसान हो सके। उसने दिन रात एक करके खेतों में काम करना शुरू कर दिया और हमेशा रास्ते पर देखकर संभल कर चलने लगा।
10: ठीक 6 महीने बीत गए। वो दिन आ गया जिसका श्यामू को सबसे ज्यादा डर था।
5: श्यामू अपने खेत से लौट रहा था तभी अचानक उसका पैर एक कीचड़ पर फिसला।
9: अरे बाप रे, मेरा पैर फिसल गया। अरे मेरा पैर तो ठीक है, बस उंगली में थोड़ी सी खरोंच आई है। महात्मा जी की भविष्यवाणी तो इतनी बड़ी थी, फिर सिर्फ इतनी छोटी सी चोट कैसे लगी?
5: इसी तरह देखते ही देखते 1 साल भी पूरा हो गया। रामू अपनी तद्दीर का खजाना लेने के लिए गांव के उसी पुराने खंडहर के पास पहुंचा। श्यामू भी उसके साथ गया। रामू ने उत्सुकता से वह गड्ढा खोदना शुरू
11: किया। मिल गया श्यामू भाई, देखो मुझे घड़ा मिल गया,
7: मेरी तकदीर का खजाना।
12: ये क्या, इसमें तो सिर्फ लोहे के रद्दी सिक्के और कोयला है, सोने के सिक्के कहां गए? महात्मा जी ने तो झूठ बोला था। चलो श्यामू, आज हम महात्मा जी से इस धोखे का जवाब मांगेंगे।
13: महात्मा जी, आपकी भविष्यवाणी झूठी निकली। आपने कहा था कि मुझे 1 साल बाद सोने के सिक्कों से भरा घड़ा मिलेगा, लेकिन मुझे तो सिर्फ लोहा और कोयला मिला। और आपने श्यामू से कहा था कि वह अपाहिज हो जाएगा, लेकिन उसे तो सिर्फ एक छोटी सी खरोंच आई। आपने ऐसा झूठ क्यों बोला?
8: शांत हो जाओ रामू बेटा, मेरी कोई भी भविष्यवाणी झूठी नहीं थी। तकदीर में जो लिखा था वही होना था, लेकिन तुम दोनों ने अपने कर्मों से अपनी तकदीर को बदल दिया।
9: महात्मा जी, हम कुछ समझे नहीं, कृपया विस्तार से समझाइए।
8: श्यामू, तुम्हारी तकदीर में सचमुच एक बहुत बड़ा हादसा लिखा था।

0: बुरे कर्मों के कारण तुम्हारी तकदीर का वो सोने का घड़ा लोहे और कोयले में बदल गया।
1: महात्मा जी की बातें सुनकर रामू का सिर शर्म से झुक गया। उसे समझ आ गया था कि तकदीर चाहे जो भी लिखे, लेकिन इंसान अपने कर्मों से उसे बदल सकता है।
2: मुझे माफ कर दीजिए महात्मा जी, मुझे समझ आ गया है कि कर्म ही सबसे बड़ी पूजा है। तकदीर के भरोसे बैठकर मैंने अपना सब कुछ खो दिया। अब से मैं कभी मेहनत करने से पीछे नहीं हटूंगा।
1: दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि भाग्य या तकदीर सिर्फ एक संभावना है, लेकिन हमारा कर्म ही हमारे जीवन का असली फैसला करता है। मेहनत और अच्छे कर्मों से हम अपनी बुरी किस्मत को भी बदल सकते हैं और आलस्य से अच्छी किस्मत को भी गवा सकते हैं। इसलिए
2: आज मैं समझ गया। महात्मा जी की बात सुनकर मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरी आंखों से आलस की पट्टी हटा दी हो।

0: मत कर माया पर अहंकार। सचमुच हम जब अहंकार करते हैं तो अहम के साथ जो आकार निर्माण होता है हमारे खुद का, वो शायद हमें पसंद भी ना आता हो, और उस अहंकार की वजह से कई गलतियां हमसे होती हैं और फिर पछताते भी हैं। तो चलिए, तीन भाइयों की अद्भुत परीक्षा की एक और कहानी आप तक पहुंचाते, क्योंकि आप सुन रहे उड़ान रेडियो मधुबन पर। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
1: किसी को मजदूर चाहिए क्या? मजदूर
2: मैं सारा काम कर सकता हूँ, क्या कोई काम देगा हमें?
3: तुम लोग कौन हो बच्चों?
1: हम तीनों अनाथ भाई हैं,
4: इसीलिए गांव-गांव घूम रहे हैं। शायद कोई दयालु मालिक मिल जाए तो फिर हम उसके लिए काम कर सके।
2: हाँ, और उसे अपने पिता की तरह आदर और सम्मान भी देते हैं।
1: हाँ।
3: अच्छा अच्छा, तो आज से मैं तुम्हारा धर्म पिता होऊंगा।
5: वो तीनों भाई तैयार हो गए और उस बूढ़े के साथ चल पड़े। अंधेरे जंगल के अंदर से त्रिभुजाकार मैदान को पार करते हुए उन्हें मिला एक बड़ा मकान जो बहुत ही सुंदर था। पास ही था एक बगीचा और उसमें रंग बिरंगे फूल। एक सुंदर सी लड़की उस बगीचे में पानी दे रही थी।
1: अरे वाह, कितनी सुंदर है। अगर ऐसी लड़की से मेरी शादी हो जाती और मेरे पास कुछ गाय भी होती तो फिर हम अपनी जिंदगी सुख से बिताते।
3: तुम्हारे मन की इच्छा मैं पूरी कर सकता हूँ।
1: सच में आप पूरा कर सकते हैं?
3: तुम लोग मेरे धर्म पुत्र हो तो क्या मैं तुम्हारे लिए इतना भी नहीं कर सकता?
5: बूढ़े ने आगे जाकर उस लड़की से बात की।
3: तुम्हारी किस्मत अच्छी है। वो लड़की तैयार है?
1: तैयार है।
3: चलो चलो, आज ही तुम लोगों की शादी करवाऊंगा। बस तुम लोग सच्चाई का रास्ता मत भूलना बेटा। हाँ।
5: बूढ़े ने जैसा कहा वैसा ही किया। शादी धूमधाम से हो गई। अब रास्ते पर आगे बढ़े मझला भाई, छोटा भाई और वो बूढ़ा।
4: वाह, अब जाकर भैया के सुख के दिन शुरू हो गए। हमारा क्या होगा कौन जाने।
3: अगर किस्मत में हुआ तो तुम्हें भी सब मिलेगा।
5: वो बूढ़ा आदमी दोनों भाई को लेकर आगे बढ़ता गया।
4: बाबा बाबा, मैं और नहीं चल सकता हूँ बाबा।
3: ठीक है ठीक है, वो वहाँ जो रोशनी जल रही है उसी घर में जाकर हम आश्रय लेंगे। हाँ।
4: वाह, कितना बड़ा और सुंदर मकान है।
2: हाँ, मकान के बाहर तालाब भी है। और वो क्या है?
3: आटा चक्की।
4: वाह, काश ऐसी आटा चक्की और तालाब हमारे भी होते।
3: कोई घर में है क्या?
4: वाह, कितनी सुंदर है। अगर ऐसी लड़की मेरी बीवी होती तो फिर मैं ही आटा चक्की में गेहूं पीसता और खाते पीते सुख के दिन उसके साथ बिताता।
6: जी कहिए।
3: हमें आज रात के लिए आश्रय और कुछ खाना चाहिए।
6: अच्छा ठीक है, आइए।
4: बाबा बाबा, क्या मैं इस लड़की से शादी नहीं कर सकता? दरअसल वो
3: क्या तुम्हारे घर में और कोई नहीं है बेटी?
6: नहीं, मेरे माता पिता की मृत्यु हो चुकी है।
3: अच्छा अच्छा, अगर तुम्हें एतराज ना हो तो पिता होने के नाते अपने इस पुत्र के साथ क्या मैं तुम्हारी शादी करवा सकता हूँ बेटी, अगर सहमति हो तो?
6: ठीक है, मैं तैयार हूँ।
3: अच्छा अच्छा, तो मैं कल ही तुम लोगों की शादी करवाऊंगा। और हाँ सुनो, कभी भी सच्चाई का रास्ता मत भूलना।
5: इसी तरह बड़े भाई की तरह ही मझले भाई की भी शादी हो गई और आखिर में सिर्फ धर्म पिता और छोटा भाई सफर में आगे बढ़े।
2: कितना सुंदर गांव है, कितनी शांति है चारों ओर। ऐसा लग रहा है कि काश ऐसे ही किसी गांव में एक छोटा सा घर बनाकर मैं रह जाता।
3: हाँ, यहाँ के लोग बहुत गरीब हैं, पर बहुत ही ज्यादा सुखी हैं।
2: मैं भी ऐसे ही सुखी होना चाहता हूँ पिताजी। बड़ा आदमी बनकर क्या होगा अगर शांति ही ना रहे।
3: वाह वाह वाह, ठीक है ठीक है।
5: उसी वक्त वहाँ झोपड़ी से हाथों में घड़ा लिए एक बहुत ही सुंदर लड़की बाहर आई। छोटे भाई की नजर उस पर पड़ी।
2: देखिए पिताजी, वो लड़की कितनी सुंदर है, अगर ऐसी लड़की मेरी पत्नी बन जाती तो।
3: लेकिन ये तो बहुत ही गरीब है।
2: उससे क्या, हम दोनों मिलकर अपना गुजारा तो आराम से कर लेंगे पिताजी, और कोई कमी भी नहीं होगी।
3: अच्छा अच्छा, तो फिर चलो मेरे साथ। बेटी, थोड़ा पानी दोगी? बेटी बहुत प्यास लगी है।
6: आप दलान में बैठिए बूढ़े बाबा, मैं अभी लाती हूँ, ठीक है।

0: अब जाकर प्यास मिटी बेटी। तुम्हारा नाम क्या है?
1: मैं यशोदा हूँ।
0: बेटी यशोदा, मैं इस लड़के का धर्म पिता हूँ। मेरे बेटे को तुम बहुत पसंद आ गई हो बेटी। अगर तुम चाहो तो मैं अपने बेटे को तुम्हारे हाथों में सौंपना चाहता हूँ।
1: पिताजी,
0: हमेशा खुश रहो बेटी यशोदा, खुश रहो। और तुम सुनो बेटा, सच्चाई की राह कभी मत भूलना, समझे? अब मैं चलता हूँ।
2: इसके बाद कुछ साल बीत गए और इन सालों में बड़ा भाई बहुत ही ज्यादा अमीर हो गया और वो मोहरे जमा करने लगा। मझला भाई भी अपने धंधे में फलने फूलने लगा और छोटा भाई कष्ट से अपना निर्वाह किया करता, पर जो कुछ भी उसे मिलते उससे वो खुशी खुशी अपना जीवन यापन कर रहा था। कुछ समय बाद वो बूढ़ा आदमी तीर्थ से लौटा और अपने तीनों बेटे को देखना चाहा।

0: मालिक जरा दया करिए और इस बिचारे बूढ़े को कुछ खाने को दे दीजिए।
1: हे, तू बूढ़ा कहाँ है? अगर चाहे तो तू कुछ काम करके अपना पेट भर सकता है। चल भाग यहाँ से, भाग।
0: नया घर बनवाया है, भंडार में पूरा सामान भरा पड़ा है, चावल की बोरियाँ, अनगिनत रुपए, फिर भी एक मुट्ठी भीख नहीं दे पाए।
2: थोड़ी दूर आगे जाने के बाद वहाँ से कुछ ऊंचाई पर जाकर बड़े भाई के घर द्वार को अच्छे से देखने लगा, तभी सब जलकर राख हो गया।
1: हाय हाय, ये क्या हो गया?
3: पानी, पानी, पानी, पानी, पानी,
2: पानी। उसके बाद वो मझले भाई के पास गया।
4: ए सुनो, अच्छे से बोरियों का मुंह सुनो, समझे?
0: बेटा, थोड़ा सा आटा दे दो, पूरा दिन कुछ भी नहीं खाया है।
4: अरे हटो, तुम्हारे जैसे यहाँ बहुत आते जाते रहते हैं, अगर मैं सबको खिलाता रहा तो मेरे लिए कुछ नहीं बचेगा। जाओ जाओ, पता नहीं कहाँ से चले आते हैं।
2: खाली हाथ वो बूढ़ा आदमी वहाँ से चला गया। कुछ दूर जाकर उसने पहले की ही तरह देखा और फिर आग और धुएं से भर गई वो आटा चक्की।
3: बचाओ, बचाओ, बचाओ।
0: ओ प्यारे भले इंसान, कुछ खाने को है तो दे दो, पूरा दिन कुछ भी नहीं खाया है बेटा।
5: अजी सुनती हो?
6: जी आई, बोलिए।
5: इन्हें घर में ले जाकर बिठाओ और कुछ खाने को दो।
6: अच्छा, आइए बाबा, अंदर आइए। बाबा, आपके कपड़े ना बिल्कुल फट चुके हैं, लीजिए ये पहन लीजिए।
5: ये क्या, आपके सीने पर क्या हुआ है?
0: ये पुराना घाव है जो ठीक नहीं हो रहा है, इसी घाव की वजह से ही मैं जल्दी ही मर जाऊंगा।
6: अरे ये क्या बात हुई, इस घाव को ठीक करने की कोई दवा नहीं है क्या?
0: है, पर दे सकने के बावजूद कोई नहीं देगा।
5: क्यों नहीं देगा, बताइए क्या दवा है, हम लोग देंगे।
0: ये काम बहुत ही कठिन है, अगर कोई मकान मालिक अपनी सारी चीजों के साथ अपना घर जलाकर उसकी राख मेरे शरीर पर छिड़क दे, तभी मेरा ये घाव सूखेगा।
5: हैं? क्या कहा? सुनो, तुम क्या कहती हो?
6: देखिए, थोड़ा दुख उठाकर हम दूसरा मकान तो बना लेंगे, लेकिन अगर एक इंसान मर जाए तो क्या हम उसे वापस ला पाएंगे?
5: हाँ, सही कह रही हो, तो चलो चलो चलो, सभी बाहर चलते हैं।
2: छोटे भाई ने अपने हाथों से घर में आग लगा दी, पूरा घर लहलहाता हुआ जल उठा। वहाँ पर खड़ा दिखाई दिया एक बड़ा विशाल मकान।
5: ये क्या देख रहा हूँ मैं? बूढ़े बाबा, ये कैसे हुआ, आपका घाव?
0: नहीं है। बेटा, मैं तुम लोगों का वही धर्म पिता हूँ।
5: बाबा,
0: तुम तीनों में सिर्फ एकमात्र तू ही है जिसने सच्चाई की राह नहीं छोड़ी। सुखी रहो, सुखी रहो।
5: पिताजी।
7: वेल दोस्तों, तीन भाइयों की अद्भुत परीक्षा तो हो गई और आज आप दोस्तों से विदाई लेने की बारी भी आ गई। जी हाँ, कल मिलने का वादा है ठीक शाम 6 बजे उड़ान कार्यक्रम से। आप सभी दोस्तों को मैं कल फिर से जोड़ लूंगी। तब तक के लिए उड़ान से कहना चाहूंगी गुड बाय। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM। डगर है मुश्किल,

0: प्रकृति बेटा, पृथ्वी पर तुम्हें क्या करना है तुम्हें पता है ना?
1: मुझे लोगों को प्यार से इंस्पायर और लाइफ के लिए एजुकेट करना है, ताकि वो नेचुरल रिसोर्सेज का उपयोग कर इस पृथ्वी को बचाए रखें।
0: इसमें तुम्हारी मदद करेंगी ये तीन चीजें। पहली टियारा ऑफ फ्लावर्स, जो तुम्हें हमेशा हैप्पी और एनर्जेटिक रखेंगे। दूसरा ये बैज ऑफ लाइफ, जो लोगों को पर्यावरण के लिए लाइफ जीवन शैली की याद दिलाएगा। जब वे प्रकृति की रक्षा करेंगे तो प्रकृति उनकी रक्षा करेगी। तुम ये बैज उन लोगों को भी दे सकती हो जो हमारे प्लैनेट की बेहतरी के लिए योगदान करते हैं। और तीसरा ये बैग ऑफ होप, जब भी कोई एनवायरनमेंट को हार्म करे तो तुम इसमें से इको सस्टेनेबल अल्टरनेटिव निकाल कर उसे देना।
1: ओके, अब मैं अपने मिशन पर चलती हूँ।

0: नमस्ते, राम राम और ओम शांति। मेरा नाम पवित्र मल्लिक और आप सुन रहे हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का सामुदायिक रेडियो रेडियो मधुबन 107.8 FM पर कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल। आज हमें बहुत खुशी और हर्ष का साथ यहां पर पहुंचे क्योंकि ईश्वरीय विश्वविद्यालय और राजकीय विद्यालय दोनों विद्यालय की मिलित सहयोग से बच्चों का विद्यार्थी विकास में आज बारी बारी उनका प्रस्तुतियां सुनने को मिलेगा। क्योंकि सामुदायिक रेडियो होने के नाते सामुदायिक का गतिविधि सामुदायिक तक पहुंचाने के लिए एक मंच मिलता है बच्चों को, और उनका हुनर जो टैलेंट है जो विशेषता है जो भाव है जो भावना है जन जन तक पहुंचाने के लिए आज रेडियो मधुबन पहुंचा। राज्य के उच्च प्राथमिक विद्यालय डेरना में पहुंचा जो कि और ग्राम पंचायत में ही आता है, और बाजू में ही देलदर भी है, तो देलदर स्कूल और स्कूल और अपना आज हम डेरना स्कूल में पहुंचे। बच्चों का प्रतिभा को सुनने को मिलेगा। तो पहला प्रस्तुति कोई भी कार्यक्रम करते हैं तो पहले प्रार्थना के रूप में हर विद्यालय में होते तो प्रभु याद में हम करते हैं। तो पहला प्रस्तुति का प्रार्थना के रूप में सुनेंगे बच्चों को। सभी बच्चे अपना नाम, स्कूल का नाम और कौन सा गाँव से बोलेंगे।
1: राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय डेरना जमुना। राजकीय उच्च प्राथमिक डेरना आशिता।
0: आशिता वेरी गुड।
2: राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय डेरना बागेश्वर।
3: राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय डेरना।
0: डेरना नाम बता।
3: पूजा। राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय डेरना।
0: क्या बात है।
4: रूपी। राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय डेरना।
5: कृष्णा। राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय डेरना।
0: गुड।
6: मानवी। राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय डेरना।
0: वेरी गुड।
7: चंपा। राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय डेरना।
0: बहुत अच्छी।
8: पूजा। राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय डेरना।
0: पूजा, चंपा, सभी को नाम का साथ धन्यवाद देते हैं और इस कार्यक्रम को सुंदर रूप में सजाए। बारी बारी उनका आवाज ही उनका पहचान होगा जब उनका मम्मी पापा भाई बहन टीचर लोग सुनेंगे ये तो पूजा का आवाज है, ये तो हमारा गुड़िया का ही आवाज है। सभी का नाम सुनने को मिलेगा तो खुशी लगेगा और नामांकन में भी विद्यालय में बढ़ चढ़कर लोग भाग लेंगे। और ऐसे सांस्कृतिक कार्यक्रम में जो बच्चे बढ़ चढ़कर लेते हैं और आकाशवाणी में जब उनका आवाज जाएगा तो हमें खुशी लगेगा और हमारा परिवार वालों भी खुशी होगा और नामांकन में तो वृद्धि होगा ही। बच्चे पढ़ाई का साथ साथ इस तरह कार्यक्रम में भाग लेते हैं। तो पहला प्रस्तुति माँ शारदा का भजन के रूप में जो हर प्रार्थना में करते हैं तो आज का प्रार्थना सत्र में सुनेंगे क्योंकि बच्चे सच्चे होते हैं। और पहले प्रार्थना करेंगे तो प्रार्थना के बाद माँ शारदा के सबको तो आता ही है ना, तो प्रार्थना करेंगे। ओके, तो सभी रेडी हो गए, नाम तो बता दिए और शुरू करते हैं पहला प्रस्तुति।

बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह प्रार्थना में बच्चे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं और अपना भाव और भावना को माँ सरस्वती तक पहुंचाते हैं, क्योंकि बच्चे सच्चे होते हैं और बच्चे मन का बात को भाव को जन जन तक पहुंचाते हैं। ऐसे प्रार्थना सत्र में अपना बात को रखते हैं। तो लेते हैं छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद पुनः मिलेंगे बच्चों से और एक गान सुनने के लिए। बच्चों को नाम का साथ धन्यवाद देते हैं। ये था राज के उच्च प्राथमिक विद्यालय डेरना का बच्चों का आवाज, उनका दिल का भावना को रखें। तो सुंदर प्रस्तुति के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेते हैं छोटा सा ब्रेक।

0: कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। ब्रेक का पहले हम सुन रहे थे बच्चों का भाव और भावना को प्रार्थना के रूप में, और अभी चलते हैं भारत आजादी का अमृत महोत्सव की तरफ चल रहा है। और अमृत काल के बच्चे, क्योंकि भारत आजादी होते हुए आज इतना साल हो गया, और जब 100 साल पूरा करेगा तो ये बच्चे ही हमारा आगे भविष्य में नाम रोशन करेंगे। तो तीन छात्र इस कार्यक्रम को और सजाने के लिए आए हैं उसी ग्रुप में। तो वो तीन छात्र अपना अपना नाम बताएंगे और कौन सा गांव से।
1: पूजा डेना, जसोदा डेना।
0: और पूरा विद्यालय का नाम?
2: राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय डेना।
0: चलिए शुरू करते हैं।

0: बच्चा राम है।
1: बच्चा बच्चा राम है सही में। राम तो अयोध्या में नाम सुनते तो अयोध्या का जो याद आता है, राम जी का मंदिर है ना अयोध्या में। और हमारा भारत के हर बच्चा राम जैसे प्रतिमा जैसे पूरा एक एक देवी देवता है। और आज तो दिव्य गुण रहेगा, अच्छा देखेंगे, अच्छा सोचेंगे, अच्छा खाएंगे, अच्छा पहनेंगे तो अच्छा बन जाएंगे। तो भारत हमारा महान, भारत देश मान, बोलो भारत माता की
0: जय,
1: भारत माता की जय होते हैं। क्योंकि भारत जैसे कोई देश है नहीं, पूरे विश्व में घूम कर आओ लेकिन भारत जैसे कोई देश संसार में नहीं। क्योंकि यहाँ पर अनेक नदियां है, गंगा जमुना सरस्वती सब नदियां है ना। और हम सब सच्चे बच्चे हैं, एक बाल और बालिका हमारा अच्छे होते हैं, अच्छे होते हैं ना बच्चे, सब बच्चे अच्छे होते हैं। चलिए वंस मोर और एक प्रस्तुति सुनेंगे, लेकिन सभी मिलकर प्रार्थना के रूप में करेंगे सामूहिक रूप में। तो लेते हैं छोटा सा ब्रेक, आप सब सुन पा रहे रेडियो मधुबन कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल यानी माय विलेज माय एरिया। इस कार्यक्रम में हमारा गांव और अंचल का आवाज आप तक पहुंचा रहे हैं। पहला बार आए फिर भी कोई झिझक नहीं, कोई डर नहीं, बच्चे बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं और सभी को धन्यवाद देते हैं। लेते हैं छोटा सा ब्रेक।

0: सुनते रहिए मुस्कुराते रहे कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल, और गांव और अंचल का आवाज, और खास कर हमारे बच्चों का आवाज, जो विद्यार्थी बच्चे सच्चे होते हैं और इस कार्यक्रम में सजाएंगे अपना आवाज को बुलंद करके, हमारा जो श्रोता सुन रहे उसका वॉल्यूम को तेज करते हुए फ्रीक्वेंसी में 107.8 एफएम पर। चलिए सभी को स्वागत करते नाम का साथ, एक बार पुनः नाम बताएंगे।
1: पूजा देना।
0: कौन सा क्लास?
1: क्लास 8।
0: चंपा
1: देना 8। कृष्णा देना 6।

0: सारे मा।
1: सही बात, कितना गीत में भजन में कितना सार है, हमें अंधकार से प्रकाश की ओर चलना है, अज्ञान से ज्ञान की तरफ से, समझदार बेसमझ से समझ की ओर हम चलेंगे। जब माँ सरस्वती का आशीर्वाद कृपा रहेगा, उनका बरसात हमारा पर पड़ेगा, और हम जब दिल से प्रार्थना करते माँ सरस्वती को, माँ शारदा को, उनका आशीर्वाद, उनका ब्लेसिंग, उनका जो वर्षा हमारा ऊपर गिरेगा, और हम हृदय से उनको तहे दिल से ध्यान याद करते हैं। ऐसे याद करेंगे तो हमें आगे बढ़ पाएंगे। इसलिए हर विद्यालय में प्रार्थना सत्र में माँ शारदा को ध्यान करते हैं। जिसका हाथ में बिना ज्ञान का बिना मुख से गीत गाते हैं, बिना बजाते हैं, तो ज्ञान बिना जब बजता है तो हमें खुशी होता है। ज्ञान मंदिर में हमारा चरित्र निर्माण होता है, हमारा चरित्र निर्माण होता है। पढ़ाई का साथ साथ हमें अच्छा देखना है, अच्छा पढ़ना है, अच्छा पहनना है, अच्छा करना है, और अच्छा सोचना है। जैसे आपको सोच होगा, जैसे आपको इच्छा होगा, इस तरह बनेंगे। आपका सोच अच्छा होना चाहिए। जैसे महात्मा गांधी का तीन बंदर नाम सुने होंगे ना, बुरा मत देखो और बुरा मत सुनो और बुरा मत बोलो। महात्मा गांधी हमें सिखा कर गए कि नहीं, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो, और इसका पहले बुरा मत सोचो। क्या बोलेंगे?
0: बुरा मत सोचो।
1: इसका प्रति भी बुरा नहीं सोचना है। आपका इच्छा शक्ति स्ट्रांग होना चाहिए, पावरफुल होना चाहिए, सात्विक होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए, तब आपका चरित्र निर्माण होगा। चरित्र निर्माण के लिए बुद्धि सत प्रधान होना चाहिए। सत प्रधान माने अच्छा होना चाहिए। आपका चरित्र अच्छा होने के लिए आपका सोच भी अच्छा होना चाहिए, क्योंकि जैसे हम सोचेंगे, जैसे एज यू थिंक, जैसे आप सोचेंगे ऐसे बनेंगे। डॉक्टर बनेंगे सोचेंगे तो डॉक्टर बनेंगे, मैडम बनने के लिए सोचेंगे तो क्या बनेंगे?
0: मैडम
1: बनेंगे। अच्छा सोचेंगे, बुरा नहीं सोचना है। चोर बनेंगे बोलेंगे तो चोर बन जाएंगे। इसलिए सोच ऊपर डिपेंड करता है। आप जितना अच्छा सोचेंगे अच्छा होगा, आपका चरित्र श्रेष्ठ होगा, और माँ सरस्वती का जो ज्ञान का भंडार है आपका प्रति लुटाएंगे। ले लो, जितना लेना हो ले लो। कब? जब हम सात्विक अच्छा बनेंगे, अच्छा सोचेंगे, पर उपकार करेंगे, दूसरों को हेल्प मदद करेंगे। मदद करते ना बच्चे?
0: जी सर।
1: किसको किसको मदद करते हैं घर में? किसको मदद करते हैं?
0: मम्मी।
1: मम्मी को मदद करते, वेरी गुड। क्या करते मदद में? झाड़ू पोछा ना खाना बनाते। क्या करते बच्चे? झाड़ू पोछा करते हैं घर में, साफ सफाई।
0: जी सर।
1: और पिताजी का काम में हेल्प करते हैं?
0: जी सर।
1: पिताजी को क्या हेल्प करते हैं? पानी पिलाते हैं, रोटी भी देते थे। अच्छा वेरी गुड। मम्मी का काम आप कर लेते, वेरी गुड। रोटी भी मांगते तो खाने का टाइम में प्यार से पूछना, पापा और क्या चाहिए, पानी ला दू, ऐसे प्यार से
0: पूछना चाहिए।
1: क्योंकि माँ बाप हमारा क्या होते हैं? भगवान तुल्य। माँ बाप हमारा क्या होते हैं?
0: भगवान तुल्य।
1: उसका बात मानना चाहिए कि नहीं?
0: मानना चाहिए।
1: अच्छा, माँ बाप का बात तो मानेंगे, और किसका बात मानना चाहिए?
0: दादा दादी।
1: वेरी गुड, दादा दादी, वेरी गुड, बहुत अच्छा बात बताया। और किसका? गुरु जी का। वेरी गुड, गुरु जी का बात मानना
0: चाहिए।
1: और किसका बात मानना चाहिए तुम बता दीजिए? बड़ा दीदी है कि नहीं? बड़ा दीदी, बड़ा भाई
0: का। हाँ।
1: बोलो।
0: चाचा चाची।
1: चाचा चाची, वेरी गुड। बड़े जो होते हैं ना, उनका बात मानेंगे तो बड़े हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत होते हैं, वो हमारा भलाई चाहते हैं, इसलिए उनका बात मानना
0: चाहिए।
1: नहीं मानेंगे तो हम खराब हो जाएंगे, मानेंगे तो हमें बड़े में हमारे शिक्षक गण आते हैं, हमारा बड़े जो दादा दादी नाना नानी चाचा काका काकी सब आते, तो वो आपका भलाई के लिए चाहते हैं। हमारा बच्चिया आगे बढ़े, अच्छा करे स्कूल में, पढ़ाई के साथ साथ माँ बाप का भी हेल्प करना
0: चाहिए,
1: और बुरा नहीं सोचना
0: चाहिए।
1: बहुत अच्छा। तो लेते हैं छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद और दो छात्र उपस्थित है, तो उनको भी इस कार्यक्रम में सजाने के लिए निमंत्रण, उनको बुलाएंगे, लेकिन वो भी प्रस्तुत है, तो लेते हैं छोटा सा ब्रेक।

0: एक का बाद एक गीत कविता प्रस्तुति हो रहा है और बच्चे तो बड़ों को देखकर भी सीख जाते हैं और ऐसे संगठन में बल मिलता है, एकता होता है, संगठन में बल होता है, सब सामूहिक रूप में बोल रहे तो बहुत अच्छा लग रहा है सभी को ध्यान देते हुए। चलिए और दो छात्रा है तो नाम बताएंगे, अपना अपना नाम बताओ।
1: जमुना डेरना।
0: और कौन सा क्लास?
1: फाइव।
0: फिफ्थ क्लास, ओके।
1: अर्षिता डेरना, सिक्स।
0: और हर्षिता तुम बड़ा क्या बनेगी?
1: मैडम।
0: मैडम, वेरी गुड। तुम?
1: मैडम।
0: आप भी मैडम। आपका स्कूल में कितने मैडम है?
1: एक है।
0: नाम बताओ।
1: सविता मैडम।
0: क्या पढ़ाते हैं?
1: इंग्लिश।
0: अरे वाह, तुम क्या टीचर बने? इंग्लिश टीचर बनेंगे ना हिंदी मैडम? कौन सा मैम बनेंगे?
1: हिंदी,
0: गणित। अरे वाह, ये तो अलग है, वेरी गुड। चलिए शुरू करिए, कौन सा प्रस्तुति सुनाएंगे?
1: जी।

0: में कुछ करना है तो मन के मारे बैठो, आगे आगे बढ़ना है तो हिम्मत हारे मत बैठो।
1: चलिए चलिए, और एक प्रस्तुति, छोटे बच्चे होते हैं और छोटे बच्चे तो सच्चे होते हैं। सर मैं और एक बोलूं, मैं एक बोलूं, ऐसे मैं करते करते हम हो गए, मैं बोलकर दो आगे, तीन आगे, चार छह हो जाते हैं। चलिए बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि खुशी लगता है, बच्चों को तो ऐसे मंच मिलना चाहिए, जब मिलता है तो सुनते हैं। और एक प्रस्तुति तो सुनते हैं, ये तीनों क्या प्रस्तुति करेगी, लेकर आए कॉपी लेकर आए हैं, बोलेंगे कुछ। सबसे पहले प्यार होना चाहिए, प्यार जैसे खुराक नहीं है, जब प्यार मिलता है तो हमें आगे बढ़ते हैं। तो प्रभु का प्यार, माँ सरस्वती का प्यार, और हमारा बड़ों का भी प्यार है हमारा प्रति, और हमारा शिक्षकगण का भी प्यार है, तब तो हम स्कूल में आते हैं, विद्यालय में आते हैं विद्या अर्जन करने के लिए। चलिए तीन विद्यार्थी इस कार्यक्रम को सजाएंगे। सबसे पहले प्यार बनाया जाना चाहिए, शुरू करते हैं।

0: ड्यूटी संडे
1: सबसे पहले प्यार मनाया।
2: प्यार तो पूरा सीमेंट का काम करता है, चाहे रेती पत्थर और आयरन को भी जोड़ देता सीमेंट। तो प्यार ऐसे है, हम सबका साथ प्यार है और सबका साथ स्नेह है, तब तो हम विद्यालय में आते और विद्यालय का प्रति भी हमारा प्यार है कि नहीं, और पढ़ाई का साथ भी हमारा प्यार है। प्यार है तब हम आते हैं। विद्यालय में क्या क्या मिलता है वो बताएंगे अभी। हाँ बताओ, क्या क्या पोषण मिलता है बता देखिए। खाने के लिए क्या क्या मिलता है सुबह शाम को? कभी कभी मिलता है ना, डेली मिलता है, सादा मिलता है?
3: दूध और रोटी और सब्जी।
2: रोटी सब्जी ओके।
3: ढोकरी।
2: हाँ ढोकरी।
3: दाल सब्जी।
2: दाल सब्जी। अरे फल फ्रूट्स,
3: केला,
2: केले मिलते हैं, सब मिलता है। क्योंकि बच्चों को सरकार का तरफ से कोई कुपोषित नहीं रहे, सभी सुपोषित रहे, अच्छा बने, इसलिए पोषण में सब भोजन मिलता है। तो लेते हैं छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद पुनः मिलेंगे, सुनते रहे कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल रेडियो मधुबन।

मैं हूं अनूप जलोटा और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन। सुनते रहो, गुनगुनाते रहो। जो तू मिटाना चाहे जीवन की तृष्णा।

0: चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अगला प्रस्तुति की ओर जा रहे। एकल कविता बा ज्ञान सुनने के लिए राज्य के उच्च प्राथमिक विद्यालय डरने का आवाज आप सब सुन पा रहे, और एक छात्र इस कार्यक्रम को सजाएंगे और उनका दिल है भाई हम और एक एकल करेंगे, एकल मैंने सभी के साथ में एकल करेगी तो अपना प्रस्तुति तो बहुत अच्छा लगेगा, तो उनको भी धन्यवाद देते हैं, स्वागत करते हैं। नाम बताओ।
1: भाग्यश्री।
0: भाग्यश्री आज तो भाग्य का रेखा पूरा खुद खींचेंगे, जितना खींचना हो खींच लो भाई, कलम मिला भाग्य का कलम। भाग्यश्री भाग्य का कलम लेकर आए हैं, देखिए हमारा श्रोता मित्र कितना उसका भाग्य को ले पा रहे हैं, क्योंकि भाग्य बिना कुछ है नहीं, पुरुषार्थ पुरुषार्थ करना पड़ेगा, कर्म करेंगे तो भाग्य आ जाएगा, और पुरुषार्थ का बिना भाग्य नहीं मिलता है, इसलिए पुरुषार्थ करना पड़ता है, काम करना पड़ता है, पढ़ाई करना पड़ेगा तो जाकर भाग्य मिलेगा, और भाग्य का कलम खुद लिखेंगे। चलिए भाग्यश्री को स्वागत करते, भाग्यश्री रेडी शुरू करें।
1: इंद्रधनुष से पंख पसारे, पंछी गाते गुन गुन, सांस सकारे गायों के दल, दौड़े जाते रुंझुन रुंझ, तेरे तोता कुछ कोयलिया, चीची चिड़िया चुनमुन चुनमुन, ओ आऊई टन टन टन टन, चुटकी की धूं खेतों में एक चुलाता गेहूं उसकाता है, सरसों के संग चना गुलाबी पगड़ी पहने मना है दूल्हा, परे उमंग नंबर के आंगन में बादल हर्षा बजा रहे डब ढोल, शादी मग जुमदा सावन और मचल दे फागुन के, कर कर गराता ट्रैक्टर दौड़ रहे खेतों की ओर, उड़ी पतंगे तितली जाचे खींच रही खेतों की ओर, कुलार डंडा कुछ दे कबड्डी और भाई खेत खो खो का खे शोर, शहर से मीठी नटखट छन छन, मेरे गांव की प्यारी बोर,
0: मेरे गांव माई विलेज, मेरा गांव मेरा अंचल जैसे प्रोग्राम का नाम है, और ये गांव का कविता जो बच्चे सुना इस भाग्य से खुशी लगा, क्योंकि ऐसे गांव में हम रहते हैं और गांव में पले बड़े और यहां तक पहुंचे, गांव का मिट्टी हवा को भूल नहीं पाएंगे। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए और एक प्रस्तुति सभी मिलकर करेंगे, ये लास्ट अंतिम प्रस्तुति होगी, सभी छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चियां चौथी फिफ्थ क्लास के बच्ची है, सभी बच्चियां को स्वागत करेंगे, सभी हमारा परियां गुड़िया है और सुनेंगे एक प्रस्तुति।

0: पृथ्वी से सीखो प्राणी की सेवा करना, जल धरा से सीखो आगे जीवन पर बढ़ाना,
1: दीपक से सीखो
0: जीवन जलाना, और धुएं से सीखो एकदम एकदम ऊंचे पर चढ़ना।
2: पहला बार आए फिर भी बच्चे अपना अचानक में आते तो कुछ ना कुछ छोड़ देते हैं, तो कोई बात नहीं, बच्चे इसे विद्यालय में पढ़ते हैं और हमें खुशी है क्योंकि बच्चे थोड़ा एक अंतरा होता है एक मुखड़ा हो, लेकिन उनका जो सांस है मुझे तो रख नहीं देते, बोले सर मैं मेरा रुक गया मैं नहीं बोला, ऐसे ऐसे बोलते बोलते पूरा कार्यक्रम को सजा दिए। तो सभी को धन्यवाद देते हैं, आज के लिए हमें दीजिए इजाजत और कल मिलेंगे इसी वक्त इसी समय और किसी बात को लेकर। ये था बच्चों का आवाज और खासकर सभी सर को धन्यवाद देते हैं और हमारा सर भी, सर क्या रेडियो मधुबन इस तरह बच्चों को मंच दिया तो बच्चे भी बढ़कर हिजल। आप अपना परिचय दीजिए सर।
3: मेरा नाम रमन लाल।
2: जी सर रमन करेंगे आज। हाँ
3: राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय देना
2: जी,
3: मैं यहाँ पर संस्कृत का अध्यापक हूँ।
2: जी सर,
3: और बच्चों ने बहुत अच्छी प्रस्तुति दी। सबसे पहले तो मैं बीके पवित्र भाई को धन्यवाद देता हूँ, तो यहाँ पधारे और बच्चों की जो प्रतिभा थी उसको निखारने का कार्य किया और उसको जन जन मानस तक पहुँचाने की
2: कोशिश कर रहे हैं,
3: और बच्चों का इससे बहुत बड़ा उत्साहवर्धन होता है। देखिए हमारी आवाज रेडियो पे आएगी, मोबाइल पे सुनेंगे तो बच्चों का उत्साहवर्धन होगा और इससे बच्चों को एक अंदर से नई प्रेरणा का स्रोत प्राप्त होगा, जिससे कि ये जीवन के अंदर और आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। हर कोई मंच पर बोलने के लिए समर्थ नहीं होता है और ये जीवन होता है, यहाँ से ही संघर्ष और समर्थवान बनने की परिकल्पना अपन शुरू करते हैं। इन मुन्ने बच्चे जो चौथी पांचवी और तीसरी के जो बच्चे हैं, इन लोगों का आज ये जो मंच दिया पवित्र भाई ने, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद पवित्र भाई का। और इसी प्रकार से आप पवित्र भाई यहाँ पधारे और बच्चों की जो भी आवाज है उसको जन जन मानस तक पहुँचाने की कोशिश करें।
2: धन्यवाद सर जी।
0: सर
2: जी भी आपका आवाज सुनकर बोला धन्यवाद, और हमारा सभी सर को धन्यवाद देते हैं। नाम का साथ
3: भारत
2: भी
3: बहुत अच्छा कार्य
2: करते हैं, सांस्कृतिक कार्य में उसका बहुत इच्छा रहता है। और जब हम केवल में गर्ल्स स्कूल में देखा था बहुत अच्छा से प्रस्तुतियां देते थे और कभी तो रेडियो सुनते थे, लेकिन वो बोला भाई मैं तो हमेशा सुनता था लेकिन आज मेरा आवाज मैं दे रहा हूँ लोग सुनेगा और मैं भी सुनूंगा, इसे एक बार बोला था सर ने।
3: सही
2: सर मिला, मैं हमेशा सुनता था बच्चों का, लेकिन आज इंटरव्यू ले रहे हैं और मेरा इंटरव्यू मैं सुनूंगा जरूर।
3: ये बात ऐसी है ना सर, बच्चे गीत गाते हैं जैसे कमरे में गा रहे ठीक है कि स्कूल में गा रहे, अब आवाज बाहर तक पहुंचती है तो बहुत उत्साह तो होता है बच्चों के अंदर, नहीं मेरी आवाज सुनाई दे रही है।
2: दे रही, तो बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सभी स्टाफ को और एचएम साहब को भी धन्यवाद देते हैं और सभी बच्चों को नाम का साथ धन्यवाद देते हैं। आज के लिए हमें दीजिए इजाजत, फिर कल मिलेंगे इसी वक्त इसी समय और किसी बात को लेकर। यह था खासकर राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय डरने का आवाज़।

0: नमस्कार आदाब सत श्री अकाल केम छो की कैन हो। जी हाँ दोस्तों, रात के बज चुके ठीक 8 और आपकी शाम को तरन्नुम से भरने, आपके चेहरे पे मीठी सी मुस्कान लाने आ गया हूँ आपका हम नवाब, आपका दोस्त केवल। आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 FM पर अपना पसंदीदा शो खुशी के नगमे दिल की बातें। दिन भर की भागदौड़, काम की चिंता और काम की चिंता, दिन भर की भागदौड़ करते ही जब बात होती है तो सबसे पहले हमारे साथ हमारे कॉलर जुड़ गए, क्या बात है। हेलो
1: हेलो जी, नमस्कार बाबू
0: मुरलीलाल जी, नमस्कार, कैसे हैं आप?
1: बहुत ही बढ़िया है। आप आए जो बाहर आए और हम भी आए आपके पास में आए,
0: क्या बात है।
1: दूर का मिलना फंक्शन होता है।
0: हाँ,
1: क्या करे, मजबूरी में लेकर के आज तक कुछ मौसम खुला है,
0: आज मौसम खुला है,
1: गाना ऐसा हो जाएगा जो आनंद आ जाएगा।
0: बिल्कुल सुनाइए।
1: जिंदगी एक सफर जाना, यहाँ कल क्या होगा किसने जाना, उल्ली उल्ली उल्ली ये गाना हो जाएगा, आनंद आ जाएगा।
0: बिल्कुल जरूर से आपको ये गाना सुनाएंगे।
1: आ रही है सर?
0: बिल्कुल बिल्कुल आ रही है। आपको आ रही है मेरी आवाज? अच्छा, शायद हो सकता है बाकी मौसम ठीक होने के बाद अब आपको आराम लग रहा है, थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। अच्छा चलो बढ़िया है, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। नमस्कार सभी की तरफ से, आपको भी नमस्कार। जी बिल्कुल बिल्कुल, जी हाँ। तो ये थे हमारे बुरीलाल जी और इन्होंने सभी को प्यार से नमस्कार कहा है, तो उनकी तरफ से आप सभी को जो भी सुन रहे हैं उन सभी को नमस्कार। और बात वही है कि दिन भर की भागदौड़, काम की चिंताएं सब बाहर छोड़ाइए, अगले एक घंटे सिर्फ आप, हम और सुनहरे दौर के ये नगमे जो सीधे दिल में उतर जाते हैं। तो बस एक कप गर्म चाय या कॉफ़ी अपने पास रखिए और आराम से बैठ जाइए। दोस्तों कहते हैं कि आखिर का पर जब ढलने लगता है और रात अपनी चादर बिछेरती है तब सबसे हसीन साथी संगीत ही बनता है। और जब बात हो 50, 60 या 70 के दशक के उस गोल्डन एरा की तो क्या ही कहने। आज की महफिल की शुरुआत करते एक ऐसे ही सदाबहार नगमे के साथ जो आपके दिल के तार को जोड़ देगा। जी हाँ दोस्तों, बढ़ते हैं अगले नगमे की और अगला नगमा जो है वो भी कुछ ऐसा ही आज के मौसम को लेकर के, क्योंकि आबूरोड में आज के समय का जो मौसम है, खैर आज पूरे दिन में बारिश हुई नहीं थी लेकिन जो बाहर था, जो मौसम था वो बहुत ही सुहाना था। और इसी को लेकर के आज ये गाना हमने लगाया है। और उससे पहले हम सुनेंगे एक यूथ एंथम और उसके बाद हम नगमा सुनेंगे। चलिए सुनते हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM पर, सुनते रहिए और मुस्कुराते रहिए।

मैं जानकी हिमलानी, मैं कुछ कहना चाहती हूँ। हम शपथ लें कि आज के बाद जब कभी भी हम गाड़ी चलाएंगे तो स्पीड का ख्याल रखेंगे, खुद का भी ख्याल रखेंगे और सामने वाले का भी ख्याल रखते हुए हेलमेट पहन करके ही अपनी गाड़ी को चलाएंगे। रेडियो मधुबन

0: वेलकम बैक दोस्तों। कहते हैं कि दिन का आखिरी पहर जब ढलने लगता है तो, और बात है जब शाम की, कि शाम थोड़ी खास है, थोड़ी रंगीन है और थोड़ी मस्ताने अंदाज वाली है। जब बात होती है 1960 के दशक की, तो एक ऐसे एक्टर का नाम जहन में आता है जिन्होंने अपनी फुर्ती, अपने अनोखे डांस स्टाइल और सफ़ेद जूतों से पूरे हिंदुस्तान को अपना दीवाना बना दिया। जानते हैं उसका नाम? जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ हमारे प्यारे जंपिंग जैक यानी जितेंद्र जी की। और जब 1967 में ये फिल्म फर्ज आई, तो इस फिल्म में ना सिर्फ जितेंद्र जी के स्टार बना दिया, बल्कि इसके गानों ने रेडियो पर वो तहलका मचा दिया कि आज भी लोग झूमने पर मजबूर हो जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, बात कर रहे हैं फिल्म फर्ज की। तो ये एक जासूसी थ्रिलर फिल्म थी जिसमें जितेंद्र जी एक एजेंट 116 के किरदार में थे और उनके साथ थी खूबसूरत बबीता जी। शायद हमारे साथ कोई कॉलर जुड़ रहे, चलिए सुनते हैं उनसे सबसे पहले। हेलो
1: जी, नमस्कार। हेलो जी, नमस्कार।
0: नमस्कार मदन लाल जी, कैसे हैं आप?
1: बहुत बढ़िया। आपकी आवाज़ सुन के और भी बढ़िया हो रहा है। और बहुत दिन से बात कर रहे हैं
0: जी,
1: खुशी के नगमे और दिल की बातें। और आपको नमस्कार है बहुत बहुत, और आपके आस पास बैठे हैं इनको भी नमस्कार है, और इसके ऊपर जो भी ऑफिस में बैठे हैं मधुबन में
0: जी,
1: इन सभी को, बहनों को, भाइयों को, और सभी को नमस्कार करते हैं। और हमारे जो दोस्त सुन रहे हैं इन सभी को भी नमस्कार कर रहे हैं
0: जी।
1: और आपको बहुत दिन से बात हो रही है तो
0: जी, बहुत दिनों के बाद। बस आप बताइए, मेहसाणा में बारिश के क्या हाल चाल है?
1: बिल्कुल यही बात, अभी बारिश चालू हुई।
0: अच्छा, अभी चालू है बारिश?
1: अभी चालू है, आज पूरे दिन भर नहीं आई थी।
0: अच्छा।
1: और मैं बिल्कुल शाम को निकला तो मैं सोच रहा हूँ कल कीचड़ थे रोड पर और आज धूल उड़ रही है, क्या बात है, क्या मौसमों का मिजाज है
0: जी, बिल्कुल
1: क्या समय है
0: जी, बिल्कुल।
1: तो मैंने बोला, और अभी बारिश आई है।
0: अच्छा।
1: और बारिशों की बूंदे हमारे ऊपर पड़ रही है
0: जी।
1: हम चाहते हैं कि जितनी बारिशों की बूंदे हैं इतनी हम मधुबन रेडियो को दुआ करते हैं। आज प्रगति दिवस है तो हम धरती माँ को भी नमन करते हैं
0: जी।
1: और हमें सब कुछ दिया है तो बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और आपको नमस्कार करते हैं। और बस गाना सुनते हैं, गाना धरती मेरी माता पिता आसमान है, धरती मेरी माता पिता आसमान, ये गाना
0: जी
1: लगा देना आप
0: बिल्कुल।
1: और बारिश थैंक यू सर,
0: बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच मदनलाल जी। और आपका ये जो गाना है, कोशिश करते हैं अगर हमारे प्लेलिस्ट में है तो हम जरूर से आपके लिए प्ले करेंगे
1: जी।
0: थैंक यू सो मच मदनलाल जी। जी हाँ, तो ये थे हमारे मदनलाल जी मेहसाणा से। हाँ, लेकिन आज बात ये है, बारिश ने रुख वापस से हल्का सा मोड़ा है। आज पूरे दिन में बारिश हुई नहीं है। आप अपने एरिया में क्या हाल है बारिश के, क्या चल रहा है बारिश के बारे में, आप हमें कॉल करके ज़रूर से बताइए। 9414151415 पे आप हमें कॉल करें और हमसे बात करें। जी हाँ दोस्तों, तो हम बात कर रहे थे जितेंद्र जी की फिल्म 1967 में आई फिल्म फर्ज की, फर्ज़ की हम बात कर रहे हैं। चलिए अब जरा इस गाने के बारे में भी, इसके मिजाज की गहराई को समझते हैं। आनंद बख्शी साहब ने जब लिखा था, मस्त बहारों का मैं आशिक, मैं जो चाहे यार करूं, तो इसमें एक बेफिक्री, दिलफेक और आज़ाद ख्याल इंसान की झलक मिलती है। मस्त बहारों यानी ज़िंदगी में जो हर तरफ रंग और खुशी बिखरी हुई है। गायक खुद को इस खूबसूरत लम्हे में आशिक कहता है। जी हाँ, यह तीसरा कमान का मतलब कोई हथियार नहीं बल्कि प्यार की वो नज़र है जो सीधे दिल पर लगती है। यह गाना हमें सिखाता है कि ज़िंदगी को किसी भारी बोझ की तरह नहीं बल्कि एक मस्त अंदाज में, खुले दिल में जीना चाहिए। जब आप दिल में साफ नीयत और मोहब्बत लेकर निकलते हैं तो पूरी दुनिया आपकी बन जाती है। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले नगमे की। और अगला जो नगमा है, हमारे प्यारे भूरीलाल जी ने हमें फरमाइश दी है, ज़िंदगी एक सफ़र है। तो सुनते हैं ये प्यारा सा नगमा और फिर करते हैं ढेर सारी बातें। सुनते रहिए रेडियो मधुबन 107.8 FM, सुनते रहिए और मुस्कुराते रहिए।

नमस्कार, मैं हूँ हरमीत सिंह, वन ऑफ द मीत ब्रदर्स अंजन, म्यूजिक डायरेक्टर्स एंड सिंगर्स फ्रॉम द फिल्म ओ माई गॉड, और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: वेलकम बैक दोस्तों। और गाना खत्म होते ही सबसे पहले हमारे साथ हमारे कॉलर जुड़ रहे, चलिए सुनते हैं उनसे, हमारे कॉलर से। हेलो।
1: हेलो
0: जी, नमस्कार।
1: नमस्कार, बुरा राम बोल रहा हूँ। और से
0: जी, बुरा राम जी, कैसे हैं आप?
1: बस ठीक है साहब, आपके प्रोग्राम सुन रहा हूँ। और बैठे
0: क्या बात है, तबीयत ठीक है अभी आपकी?
1: मैं बोला राम राम तो कर दो शाम को।
0: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत अच्छा किया आपने ये।
1: और सब मधुबन भाइयों को और सबको, और सुरेश भाई, मदन भाई, भूरे लाल जी और सबको मेरी तरफ से हाथ जोड़ के राम राम।
0: बिल्कुल, सबकी तरफ से आपको भी राम राम।
1: अच्छा, और थोड़ा मेरा भी एक गाना सुनाएंगे तो अच्छा है?
0: बिल्कुल बिल्कुल सुनाएंगे।
1: ये मौसम भीगा भीगा है, हवा भी ज्यादा ज्यादा है, क्यों न मचलेगा दिल मेरा, तुमको पाने का इरादा है, ये ऐसा करके गाना है, सुनाएंगे?
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल सुनाएंगे, क्यों नहीं सुनाएंगे। चलिए आपके लिए गाना कोशिश करते हैं प्ले करने के लिए। okay, सुनते रहिए रेडियो और okay, बने रहिए रेडियो के साथ ही सीधा। थैंक यू सो मच बुरा राम जी कॉल करने के लिए। जी हाँ दोस्तों, तो हम बात कर रहे थे हमारे गीत के बारे में, जो अभी हमने गाना सुना, और गीत जो हमारे लिरिक्स हमें जो दिया था, जो हमारी फरमाइश थी, जिंदगी एक सफ़र है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। लेकिन उससे पहले शायद हमारे साथ फिर से कॉलर जुड़े, चलिए सुनते हैं उनको। हेलो, शायद गलत कॉल था, कनेक्ट नहीं हुआ। बट अभी जो हमने गाना सुना, ऐसे तो ये किशोर कुमार साहब और आशा भोसले जी दोनों ने इसे गाया है। एक है मेल वर्जन, एक है फीमेल वर्जन। अभी आज हमने जो सुना वो था फीमेल वर्जन, आशा भोसले जी की आवाज़ में। और इसका जो संगीत दिया था हसरत जयपुरी जी ने, और संगीतकार जय किशन जी। मूवी थी अंदाज 1971 का, आप सभी को पता है ये गाना जब फीमेल वर्जन में आता है तब लास्ट में एंड में ये गाना बजता है। शायद फिर से हमारे साथ हमारे कॉलर जुड़ रहे। हेलो,
2: ओम शांति, गुड इवनिंग हमारे के आज केवल जी भाई जी।
0: नमस्कार।
2: और सभी हमारे दोस्त नाम के सहित रेडियो मधुबन परिवार सभी को सुभाष भाई का नमस्कार। और चार्जर से सुन रहा हूँ मैं
0: जी।
2: बुराम भाई, मदन भाई आ गए
0: जी, जी।
2: और फर्ज क्या गीत, ये आप भूल गए। मस्त बाहरों का मैं आशिक, बहुत ही अच्छा गीत था भाई जी। सभी को नमस्कार
0: जी।
2: ओम शांति,
0: ओम शांति सुभाष जी, सभी की तरफ से आपको भी राम राम, नमस्कार, गुड इवनिंग। थैंक यू सो मच सुभाष जी, आपका कॉल आया। आपके कॉल आने से सभी के अंदर उमंग उत्साह बढ़ जाता है।
2: हाँ जी, थैंक यू, शुक्रिया
0: शुक्रिया सुभाष जी। तो ये थे हमारे सुभाष जी जिन्होंने हमें कॉल किया था। और जी हाँ दोस्तों, तो अभी हम जो बात कर रहे थे फीमेल वर्जन के सॉन्ग की, आप सभी को पता है कि ये गाना उस वक्त आता है जब फिल्म एंड सीन होता है और हेमा मालिनी जी इसको गाती है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले नगमे की, और हमारा जो अगला नगमा है हमारे मदन लाल जी की तरफ से, उन्होंने एक बहुत ही प्यारा नगमा हमें दिया है, धरती मेरी माता पिता आसमान। सुनते हैं प्यारा सा नगमा, फिर करते हैं ढेर सारी बातें।

ढूंढई गांव से हूँ। आप सब सुन रहे हो रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: वेलकम बैक दोस्तों। और अभी आपने बहुत ही प्यारा नगमा सुना, धरती मेरी माता पिता आसमान। हमारी इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक जो चारों दीवारों की सुख सुविधाओं में खुशी ढूंढते हैं, और दूसरे वो जो प्रकृति की गोद में खुले आसमान के नीचे सच्ची आज़ादी और खुशी पाते हैं। चलिए हमारे पहले कॉलर से बात करते हैं। हेलो,
1: हाँ जी सर, नमस्ते, गुड इवनिंग।
0: गुड इवनिंग,
1: कैसे हो सर?
0: बढ़िया बढ़िया सुरेश जी, गुड इवनिंग। हम ठीक है, आप कैसे हैं?
1: बस हम भी बहुत अच्छे। कल सर मैं कार्यक्रम सुनना भी भूल गया, पता नहीं क्या हुआ सर।
0: क्योंकि दो हफ्तों से आपने रेडियो नहीं सुना है इसलिए।
1: हाँ, इसलिए कल मैं बिल्कुल भूल गया सर। आज मुझे याद आया कि कल मैंने रेडियो क्या नहीं सुना, मैं बहुत भूल गया।
0: कोई बात नहीं, लेकिन कल सभी ने आपको बहुत याद किया है।
1: चला कि अरे यार तो कार्यक्रम तो रहेगा आज का।
0: हाँ, लेकिन कल सभी ने आपको याद किया है।
1: कोई बात नहीं, क्योंकि दो हफ्ते आप नहीं थे तो इसलिए थोड़ा सा
0: जी आगे पीछे हो जाता है, याद नहीं आता है।
1: चलो कोई बात नहीं, आज तो मैं सुन रहा हूँ कार्यक्रम, लेकिन मैंने जब जब कॉल करना चाहा हमारे और एक मित्र आ जाते थे।
0: हाँ, कोई ना कोई आ ही जाता है।
1: हमारा बुरेलाल जी, बाद में बुराराम जी आया, मदन लाल जी आया, हमारे सुभाष भाई आया, तो मैंने सोचा चलो अब तो मैं लगा ही कॉल।
0: बिल्कुल, अब आखिरी तो आप ही के था।
1: बिल्कुल सर, तो चलो हमारे सभी दोस्तों को मित्रों को आपको तो हमारे तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं आज के दिन की सर।
0: शुक्रिया शुक्रिया।
1: और एक गाना भी मैं दे दूं आपको भी कि वो फिल्म का नाम है सौदागर, बहुत पुराना फिल्म है सौदागर, जो अमिताभ बच्चन और नितिन परमायवा जो चलाई थी
0: जी।
1: तो उसमें एक गाना था क्योंकि हमारा साथ तो हरदम रहता है, तो ऐसा ही गाना सुना है मैंने की
0: हमारा साथ
1: मेरा साथ रहे तेरा।

0: तेरा मेरा साथ रहे, क्योंकि हमारा भगवान और रेडियो और हमारा साथ तो हरदम
1: बिल्कुल
0: सदियों तक चलता ही रहेगा सर और रहेगा। तो हमारे सभी को आमंत्रित करके बहुत बहुत शुभकामनाएं आज के दिन के सर
1: आपको भी।
0: चलो गाना आज नहीं तो कल कोई बात नहीं, टाइम मिले तो सही है बनना।
1: बिल्कुल बिल्कुल नहीं, आज बिल्कुल से बजेगा क्योंकि प्लेलिस्ट में हम कोशिश करते हैं सभी के गाने हम प्ले करें और उन्हें सुनाएं।
0: कोई बात नहीं सर, नमस्ते।
1: नमस्कार, थैंक यू सो मच सुरेश जी कॉल करने के लिए, और आपकी तरफ से सभी को और उन सभी की तरफ से आपको आज के दिन की खूब खूब शुभकामनाएं। जी हाँ दोस्तों, हम जो बात कर रहे थे इस गाने के बारे में, धरती मेरी माता पिता आसमान है, तो कई लोगों को मैंने देखा है जब हम सोचते उस चीज़ के बारे में, तो कोई लोग सोचते हैं कि हमें चार दीवारों की छांव में या चार दीवारों के अंदर खुशी ढूंढते हैं। कुछ लोग होते हैं जो बाहर खुले आसमान को अपना सब कुछ मान लेते हैं, है ना। इतना प्यारा ये गीत अभी हमने सुना है, और चलिए बढ़ते हैं अगले नगमे की ओर, क्योंकि जो अगला नगमा है इसी तरह से कुछ है। और ये जो मूवी अभी ये जो हमने गाना सुना था, फिल्म थी गीत का था चल, सिंगर थे जसपाल सिंह, और इसको लिखा था रविंद्र जैन जी ने। बहुत ही प्यारा था गीत का था चल मूवी का ये गाना, और गीत का था चल की बात ही अलग थी। सचिन पिलगांवकर जी और सारिका जी की मासूमियत ने इस फिल्म में चार चांद लगा देते। सचिन जी का निभाया श्याम का किरदार, कई मामूली इंसान नहीं था वो, तो बस अपनी खजरी बजाते थे, गाता हुआ गाँव गाँव घूमते और जहाँ जाता खुशियाँ भी कर देता। चलिए बढ़ते अगले नगमे की ओर, क्योंकि अगला जो नगमा है वो भी बहुत प्यारा है। दिल विल प्यार यार मैं क्या जानू रे, चलिए सुनते हैं।

वेलकम बैक दोस्तों। ये भी गाना अभी हमने सुना, दिल विल प्यार व्यार मैं क्या जानू रे, दिल विल प्यार व्यार मैं क्या जानू रे, जानू तो जानू बस इतना कि तुमको अपना मानू रे, दिल विल प्यार। या दोस्तों, ये गाना जब भी बजता है रेडियो पे, चाहे किसी भी सेट पर, चाहे टीवी हो, मोबाइल हो, कहीं भी बजता है, बड़ा प्यार से, बड़ा मज़े से ये गाना हम सुनते हैं। और खास करके अंताक्षरी के समय पे तो ये गाना भी बड़ा हम यूज़ करते थे, प्ले करते थे। दोस्तों, जब किसी के दिल में पहली बार प्यार का एहसास जागता है ना, तो इंसान समझ ही नहीं पाता कि उसके साथ हो क्या रहा है। मन में एक अजीब सी हलचल होती है, चेहरा बिना बात के मुस्कुराने लगता है और इंसान खुद से ही कहने लगता है, मुझे नहीं पता ये प्यार व्यार क्या होता है, बस इतना पता है कि तुमसे बहुत प्यार है या तुम बहुत प्यारे लगते हो। होता है कई बार आपके साथ भी, किस किस के साथ ऐसा हुआ है कि जब किसी से हमें प्यार होता है तो बस उसी के लिए हम खो जाते हैं। इसी मासूम में तो चुलबुलेपन को बयां करता 1967 की सुपरहिट फिल्म शागिर्द। जी हाँ दोस्तों, ये शागिर्द मूवी का ये गाना था। महान संगीतकार मजरूल सुल्तानपुरी साहब की कलम से एक अजीब सी ताजगी थी। उन्होंने इस गाने में किताबी प्यार की परिभाषाओं को दरकिनार करके दिल की सबसे साफ भावनाओं को पिराया। जहाँ सायरा बानो जी, हाँ जी, इस मूवी में सायरा बानो जी का किरदार है, सीधी साधी भाषा में कह रही है कि मुझे प्यार शब्द से के जाल या दिलियादारी के मतलब नहीं समझ आते, मुझे नहीं पता कि इश्क के कायदे क्या होते हैं, लेकिन मेरा मासूम दिल बस इतना जानता है कि मैं तुम्हें सब कुछ अपना मान लिया। जी हाँ दोस्तों, तो ये गाना था शागिर्द मूवी से। लता मंगेशकर की आवाज़ और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी का संगीत इसमें था। पढ़ते हैं अगले नगमे की ओर, क्योंकि अगला जो नगमा है वो भी हमारी एक फरमाइश है और गाने के बोल है, तेरा मेरा साथ रहे, हमारे सुरेश भाई की तरफ से। और एक गाना है ये मौसम भीगा भीगा, ये हमारे मदन लाल जी की तरफ से था, सॉरी भूरा राम जी की तरफ से था ये मौसम भीगा भीगा। और इससे पहले जो भी हमने गाना सुना था, ये था हमारे खास दोस्त का। चलिए सुनते हैं ये अगला नगमा, रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। सुनते रहिए और मुस्कुराते रहिए।

0: कनव हूँ, मैं 8वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। कल जब मैं स्कूल से घर आ रहा था तो पता है मैंने क्या देखा? एक अंकल सड़क पे कचरा फेंक रहे थे। मैंने उनको जाकर बोला कि अंकल सड़क पे कचरा नहीं फेंकना चाहिए, तो पता है उन्होंने क्या बोला?
1: अरे बड़ा है मुझे सिखाने वाला।
0: उन्होंने मेरी बात नहीं मानी और वो चले गए, लेकिन मैंने खुद ही कचरा उठाकर कचरे के डब्बे में डाल दिया।
2: इतना तो हम कर सकते
3: हैं। वेलकम बैक दोस्तों, अभी जो हमने फरमाइश सुनी हमारे भूरा राम जी ओर से, उन्होंने बहुत ही प्यारा ये गाना सुनाया है हमें फरमाइश में दी। ये मौसम भीगा भीगा है, हवा भी ज़्यादा ज़्यादा है, लता मंगेशकर की आवाज़ में जब ये गाना सुनते हैं तो सच में ऐसा मौसम जब होता है तो हाथ में चाय की चुस्की और दिल कहीं बाहर मौसम को देख रहा हो ऐसा महसूस होता है ना। बारिश की बूंदें जब सूखी धरती पर पड़ती है तो सिर्फ मौसम नहीं बदलता, दिल का मिजाज भी बदल जाता है। ठंडी हवाओं के झोंके, बादलों की ओढ़नी, ऐसे मौसम में दिल बस यही चाहता है कि कोई अपने पास हो और बैकग्राउंड में सुनहरे दौर का कोई रूहानी नगमा बज रहा हो। जी हाँ दोस्तों, साल 1970 में आई फिल्म धरती, अभी जो हमने गाना सुना, अपने ज़माने की एक बड़ी देशभक्ति और स्पाई थ्रिलर फिल्म थी जिसमें राजेंद्र कुमार जी यानी हमारे जुबली कुमार और वहदा रहमान जी की जोड़ी ने कमाल कर दिया था। लेकिन इस संजीदा फिल्म में जब ये गाना आता है तो पूरे माहौल को एक हसीन असीम ताजगी और रूमानियत घोल जाती है। संगीतकार शंकर जयकिशन जी की धुन इतनी मखमली है कि सुनते ही ऐसा लगता है जैसे हम खुद की किसी हसीन चांदी में बारिश की बूंदों के बीच खड़े हैं। और आवाज़ किसकी? सुरों के सम्राट मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की। जी हाँ दोस्तों, जब ये दोनों दिग्गज एक साथ गाते हैं तो हर बोल दिल में उतर जाता है। सच में ये गाने के जो बोल है, ये मौसम भीगा भीगा है हवा भी ज़्यादा, मतलब सोचिए कितने नॉर्मल वर्ड्स यूज़ किए, ज़्यादा ज़्यादा भीगा भीगा, इतने प्यारे हल्के शब्द उस ज़माने में जब बोल इतने हैवी हुआ करते, हिंदी इतनी हैवी हुआ करती थी उस वक्त, ऐसे सिंपल सादे बोलों को लेकर के इतना सदाबहार गाने लिखना या सदाबहार गाना बनाना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले नगमे की ओर, क्योंकि ये जो अगला नगमा है ये हमारे सुरेश भाई का फरमाइश है, तेरा मेरा साथ रहे सौदागर मूवी से। सुनते हैं ये प्यारा सा नगमा, बने रहिए रेडियो के साथ, सुनते रहिए रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: मम्मी मम्मी।
1: हाँ बेटा।
0: आज जब मैं स्कूल से आया तो मैंने पता क्या देखा कि एक बच्चा चाय बांट रहा है, वह फिसल गया और उसके हाथ से चाय का ग्लास गिर गया। उसे बहुत डांट पड़ी। मम्मी मैं सोच रहा हूँ कि हमारे घर के बाजू में जो शंभू है वह भी तो काम करता है, उसे भी तो ऐसी ही डांट पड़ती होगी, क्यों ना हम उसे पढ़ाएं।
2: इतना तो हम कर सकते हैं।
3: वेलकम बैक दोस्तों, अभी बहुत ही प्यारा आपने गाना सुना।

0: ना साथ रहे। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर गाना अभी हमने सुना सौदागर मूवी से। लता मंगेशकर जी की आवाज़, सच में दोस्तों जब लता मंगेशकर जी इस तरह का कोई गाना गाते हैं तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो गाना लोगों के दिल में ना बस जाए। रविंद्र जैन जी की लिखी और जो इसका जो म्यूज़िक दिया था, क्या ही प्यारा। रविंद्र जी ने ही म्यूज़िक दिया है, रविंद्र जी ने ही इसको संगीत दिया है, और लता मंगेशकर ने जिस तरह से इसको गाया है दोस्तों, इसी तरह से आपका और हमारा भी जो साथ है रेडियो के साथ, इस शो के साथ, बस ऐसे ही हमारा बना रहे, चाहे दिन हो चाहे शाम हो चाहे रात हो चाहे शाम, कोई सा भी समय हो, बारिश हो, हम आपके साथ ऐसे ही मिलते रहे, बातें करते रहे और हमारा ये सफ़र ऐसे ही चलता रहे। चले दोस्तों, वक्त है आप सभी से विदाई लेने का, और अगला जो कार्यक्रम है सह स्वास्थ्य, आप सुनते रहे इसी चैनल पे, रेडियो 107.8 FM। आप सभी से हम लेते हैं विदा। गुड नाइट, शबा खैर, शुभ रात्रि, फिर मिलेंगे हम कल आपसे। सुनते रहिए रेडियो मधुबन 107.8 FM, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
1: गुड मॉर्निंग,
2: छोड़,
1: गुड मॉर्निंग,
2: छोड़,
1: गुड मॉर्निंग, 1 2 3 4,
2: अरे 1 2 3 4, मैं कैसे हूँ,
1: अरे 1 2 3 4,
2: दूंगी थप्पड़ रख के।
1: डाबरा के डाबरा,
3: डाबरा का डाबरा,
1: डाबरा का डाबरा,
2: अरे इधर डाबरा के डाबरा, बड़ा आया अंग्रेजी बोलने वाला।
1: कॉफी, यस, व्हाट, वाटर स्टैंड, राइट हैंड, बंदूक बैंड, टिंग पटे हो जन।

0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। मैं हूं आपका दोस्त आरजे श्री और ये है कार्यक्रम सहज स्वास्थ्य। सहज स्वास्थ्य कहते ही हमारे बहुत सारे दोस्त ऐसा समझते हैं कि स्वास्थ्य और सहज ये तो दो ऑपोजिट चीजें हैं जिसे हम एक साथ मिलाकर हम एक ऑक्सीमोरॉन बना रहे हैं। कई लोग तो ये भी समझ लेते हैं कि ये हैप्पी मैरिज जैसी बात करी जा रही है, मगर बहुत सारे लोग ये भूल गए हैं कि वास्तविकता में किसी भी संबंध को खुशी के लिए ही जोड़ा गया होता है। आज हम कुछ ऐसी गलतियां करते हैं जिसकी वजह से हमें इन चीजों में ज्यादा तकलीफें महसूस होती हैं। सहज स्वास्थ्य का भी अर्थ कुछ ऐसा ही है कि स्वास्थ्य हमेशा से सहज रहा है, मगर धीरे धीरे हमने कुछ ऐसी चीजें बदलते बदलते आज अपने स्वास्थ्य को मुश्किल कर लिया है। आज कई लोग ऐसा मानते हैं कि स्वास्थ्य के परिचायक अस्पताल हैं या चिकित्सक हैं या चिकित्सा कर्मी हैं, मगर हमेशा से भारत में या दुनिया में भी इसका डेफिनेशन ऐसा नहीं रहा है। प्रायः लोग स्वास्थ्य को एक घरेलू मुद्दे की तरह देखते थे और छोटी मोटी चीजों के लिए तो घर में ही इलाज कर लेते थे। आज ये देखने को मिलता है कि हम हर छोटी मोटी चीज के लिए या तो अस्पतालों की ओर भागते हैं या फिर तुरंत दवाई की दुकान पर जाकर दवाइयां खरीदते हैं। और तो और हालात यहाँ तक पहुंच गए दोस्तों कि हम में से लगभग हर एक के घर में दवाइयों का एक डब्बा मौजूद ही रहता है। सिर दर्द हो गया तो ये ले लो, पेट दर्द हो गया तो ये ले लो, बुखार हो गया तो ये ले लो। ये दवाइयां तो हम बिना डॉक्टर के जांच पड़ताल के उनके परामर्श के खुद ही अपने अनुभव के आधार पर लेने लगते हैं और समझते हैं कि ये होने से इस चीज में हमें राहत मिलती है। कई लोग तो एंटासिड्स और एंटासिड जैसे अनेक द्रव्यों का भी उपयोग करते हैं जिनको एसिडिटी इत्यादि की समस्या होती है। कई लोग तो और अनेक ब्रांड्स की चीजें इस्तेमाल करते हैं जो है तो मेडिकल दवाइयां, मगर उसे घरेलू स्वास्थ्य से संबंधित इलाज के रूप में उसका इस्तेमाल करने लगे हैं। क्या ये सब कुछ सही है या हमें चिकित्सकीय राय सही तरीके से लेना है या स्वास्थ्य का जो मापदंड है उसे ही हम बदल चुके हैं? यही सब कुछ हम समझते हैं सहज स्वास्थ्य में। आज हमारे साथ चर्चा के लिए स्टूडियो में डॉक्टर राहुल मोदी जी हैं। डॉक्टर राहुल मोदी पेशे से एक ऑस्टियोपैथ हैं। भारत के प्रसिद्ध ऑस्टियोपैथ होने के साथ साथ भारत के प्राचीनतम प्रकृति चिकित्सा केंद्रों में से एक आरोग्य मंदिर गोरखपुर में प्रैक्टिस करते हैं, जहां पर उनके परिवार के अनेक पीढ़ियों ने लोगों को स्वास्थ्य लाभ पहुंचाया है। आइए आज करते हैं उनसे बातचीत और लेते हैं उनसे मार्गदर्शन। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है आज के कार्यक्रम में।
1: नमस्कार, ओम शांति।
0: डॉक्टर साहब, सर्वप्रथम तो मैं यहीं से शुरुआत करना चाहूंगा कि आज हम सहज स्वास्थ्य को मुश्किल समझ लेते हैं, सोचते हैं कि डॉक्टर, अस्पताल या स्वास्थ्य कर्मी ही स्वास्थ्य के बारे में जानकारी रखने वाले लोग हैं और स्वास्थ्य से हमारा कोई लेना देना नहीं है। कुछ भी हो जाए वो लोग जिम्मेदार हैं, हम वहां जाएंगे, वो ठीक करेंगे और वापस भेज देंगे। साथ ही हम अपने घरों में इतनी सारी दवाइयों की दुकान लगा रखे हैं कि भाई जब चाहे हम दवाई की दुकान पे जाके खुद ही दवाई ले लेते हैं। और आजकल घरेलू दवाइयों के नाम पे हमारे पास एक डब्बा पड़ा रहता है जिसमें अनेक दवाइयां हम रख लेते हैं। और साथ ही साथ हमारे रिश्तेदार, दोस्त, किसी को भी अगर हम बोल दें कि आज मेरे को ये तकलीफ हो रही है, तो वो अपनी दवाइयां और प्रिस्क्राइब कर देते हैं फोन पे कि जाओ ये दवाई ले लो, ठीक हो जाएगा। तो ऐसे में क्या ये स्वास्थ्य का डेफिनेशन सही है?
1: श्री भैया, इस समय हम एक बहुत ही भयावह स्थिति से गुजर रहे हैं। आपने जैसे आज एंटासिड की अभी बात की, सर दर्द होने पे दवाई गोली खाने की बात करी, लोग इस समय अपने आप बहुत कुछ सेल्फ मेडिकेट कर ले रहे हैं। ये बहुत इजी हो गया है। हम सबके पास अब एक दवा की कुंजी है जो हमारा मोबाइल फोन है, हम उससे अपनी समस्या का नाम डालते हैं। और भैया, अब तो ये स्थिति हो गई है कि हम जाकर एक डॉक्टर से दवा लिखवा के लाते हैं, वो जो दवा लिखता है उसका सस्ता स्वरूप क्या मिल सकता है या और क्या हम उसकी जगह खा सकते हैं, ये भी ढूंढने लगे हैं। हमारे भारत की एक और जो समस्या मैं महसूस कर रहा हूँ कि आदमी अब दवा खाने से पहले ये सोचता ही नहीं है कि उससे नुकसान क्या होगा। जैसे भैया आपने मेरा बताया कि मैं ऑस्टियोपैथ हूँ, मैं कमर दर्द के मरीज को देखता हूँ और पैर में दर्द हो रहा है, कमर में दर्द हो रहा है, नसों में तनाव है, पैर में तनाव आ रहा है। तो मैंने ये नोटिस किया कि मेरे पास एक पेशेंट आया, उन्होंने बताया मैं दवा खा रही हूँ। मैंने कहा ये दवा आपको किसने लिखी? तो उन्होंने कहा किसी ने नहीं लिखी, जो मेरे को जिम में एक्सरसाइज कराता है उसने बताया। मुझे बड़ा अचंभा हुआ कि वो एक बहुत ही ऐसी मेडिकेशन है जो हमारे यहाँ बिना प्रिस्क्रिप्शन के नहीं बिकती है, वैसी दवा को उस आदमी ने बताया। वही सेम मेडिसिन भाई थोड़े दिनों बाद मैंने ये नोटिस किया कि एक फिजियोथेरेपिस्ट ने अपने पेशेंट को प्रिस्क्राइब की और उस पेशेंट ने फिर अपने किसी और घर वाले को भी प्रिस्क्राइब कर दी, ना ये जानकर कि उस दवा से और दवाइयों का क्या इंटरेक्शन होगा और आपको अगर कोई बीमारी हो रही है तो आप क्या करेंगे। मैं ये देखने लगा हूं कि जितने भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं वो अपने पेशेंट को बहुत जल्दी हेल्प करना चाह रहे हैं। तो मसाज करने वाले, फिजियोथेरेपी करने वाले, आयुर्वेद के ज्ञानी, होम्योपैथी के ज्ञानी, इवन एलोपैथ के ज्ञानी अपने मरीज को तुरंत दवा लिख दे रहे हैं और ये भी नहीं सोच रहे हैं कि उससे क्या नुकसान होगा। अच्छा, और मरीज भी चाहता है कि मुझे तुरंत दवा लिख दी जाए या मुझे तुरंत लाभ दिया जाए। आप किसी भी एक व्यक्ति को कहिए कि जैसे हम प्राकृतिक चिकित्सा चला रहे हैं, लोग आप पूछे कि आप वजन कम करना है, आप बोलिए आप हमारे हिसाब से भोजन करेंगे, इलाज कराएंगे, आपको महीने में 8-10% आपका वजन कम होगा। उसके बाद 2-3 दिन बाद वो तुरंत पूछता है कोई दवाई है क्या जिसको मैं खा लूं और मुझे ये व्यायाम न करना पड़े, एक्सरसाइज न करना पड़े, ये नीरस भोजन न करना पड़े, मुझे तुरंत इससे छुटकारा बता दीजिए। सो मैं ये सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम हो गई है कि व्यक्ति को तुरंत लाभ चाहिए और इससे भी गुरेज नहीं कर रहा है कि हमको दवा दे दी जाए और उसका क्या नुकसान होगा उसके बारे में उसको एकदम चिंता नहीं करनी है। हम बस डायबिटीज के मरीज आते हैं, वो कहते हैं डॉक्टर साहब कोई अच्छी गोली लिख दीजिए कि हम मीठा खा सकें। ये तो मतलब इसको हम कैसे समझाओ लोगों को कि आपके शरीर में आप मीठा अब नहीं खा सकते हैं और हम आपको गोली खिलाकर आपकी शुगर को नीचे लाने की कोशिश कर रहे हैं, प्राकृतिक चिकित्सा से आपको नीचे लाने की कोशिश कर रहे हैं, आयुर्वेद से, विभिन्न योगासनों से आपकी शुगर को नीचे लाने की कोशिश कर रहे हैं और आपको मैं मीठा खिलवा दूं कि आप उसको तुरंत ऊपर बढ़ा दें। तो ये सारी समस्याएं आजकल होने लगी है। हम सोच नहीं रहे हैं कि हम क्या खा रहे हैं और हम मेहनत नहीं करना चाह रहे हैं, हमको तुरंत लाभ चाहिए और उस लाभ के स्वरूप हमको उससे क्या हमें नुकसान हो रहा है हम इसके बारे में नहीं बात कर रहे हैं। श्री भैया आपने एक बात और बोली कि अब हर एक के घर में एक दवाई का डब्बा है। भैया अब एक दवा की अलमारी हो गई है, वो इतने दवाइयां बढ़ गई हैं और दवाइयां बीमारियों के साथ साथ आजकल हेल्थ सप्लीमेंट के नाम पे भी बहुत सारे लोग बहुत कुछ खा रहे हैं क्योंकि वो प्रकृति से वो भोजन नहीं ले पा रहे हैं या वो प्रकृति से वो भोजन लेना नहीं चाहते हैं, वो तुरंत सप्लीमेंटेशन के नाम पे दवा खा रहे हैं। और मुझे विदेशों की एक बात बड़ी अच्छी लगती है कि आप चाहकर भी एंटीबायोटिक दुकान पे जाके नहीं खरीद सकते जब तक कोई एक डॉक्टर ने उसे लिखा नहीं है। हमारे यहाँ ये नहीं है, हमारे यहाँ आप जाइए आप तुरंत जो दवा चाहेंगे वो ले लेंगे। मैंने अभी एक पेशेंट करीब 5-6 दिन पहले देखा, उसमें जो डॉक्टर साहब मुझसे पहले जिन्होंने देखा था उन्होंने प्रिस्क्रिप्शन पे ये लिखा था सेल्फ मेडिकेटेड थ्रू मेडिकल शॉप फॉर 6 मंथ। मतलब उस मरीज ने 6 महीने तक जो दवा की दुकान में काम करते हैं उनके सहयोग से अपना इलाज किया और उन्होंने कोई डॉक्टर को नहीं दिखाया। तो इस समय हम सबको ये, मैं सभी श्रोताओं को कहना चाहूंगा, कोई भी दवा खाने से पहले कृपा करके प्लीज उसके बारे में पढ़ लीजिए, उसके नुकसान के बारे में पढ़ लीजिए और जब तक बहुत जरूरी ना हो कोई दवा को या कोई औषधि को मत खाइए।
0: अब जब आप दवाई के बारे में कह रहे थे, अब हम दवाई के एक डब्बे से हटकर अब दवाई की अलमारी या दवाई का एक कबर्ड बन गया है, ये चीज हम समझ गए हैं। प्रायः घरों में ये चीज देखने को मिलती है कि घर में अगर 4 लोग रहते हैं या 6 लोग रहते हैं जिसमें से 2 बुजुर्ग हैं, 2 बच्चे हैं और 2 युवावस्था के 2 लोग और रहते हैं, तो ये चीज अक्सर देखने को मिलती है कि छोटे बच्चों की दवाई का एक खाना बना हुआ है उस कबर्ड में, बड़ों का जो उम्रदराज लोग हैं उनकी दवाइयों का एक खाना बना हुआ है और दूसरी चीजें जो इन युवाओं के लिए चाहिए वो दवाइयां रखी हुई हैं। प्रायः ये चीज सोचने में आती है कि जो बुजुर्गवार हैं उन लोगों के लिए सिर्फ दवाइयों का एक खाना नहीं है, वहां पर उनका दवाइयों का एक ट्रे बना हुआ होता है कि सुबह ये खाना है, दोपहर को ये खाना है, खाने से पहले ये खाना है, खाने के बाद ये खाना है, शाम को ये खाना है, रात को सोने के बाद खाना है, सोते समय खाना है। अब ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं और ये भी हम देखते हैं कि आज हम ये मान लेते हैं कि जैसे पिछले दिनों हम डायबिटीज के बारे में बातचीत कर रहे थे, लोग सोचते थे कि हाँ डायबिटीज तो चलो ठीक ही है ना, दवाई लेना है और जीते रहना है तो उसमें तो हम कुछ कर नहीं सकते। अब डायबिटीज के साथ साथ एक और चीज, या कई कई घरों में डायबिटीज न सही तो बीपी की भी एक बीमारी है, उसके लिए भी गोलियां लोग ले लेते हैं। लोग अक्सर पूछते भी हैं, मतलब ये कॉमन सी चीज हो गई है, जैसे लोग हालचाल पूछते हैं ऐसे पूछते हैं किसी को। अगर आप किसी के घर चले जाएं आपको चाय नाश्ता इत्यादि ऑफर करने से पहले पूछ लेते हैं, आपको बीपी तो नहीं है, शुगर तो नहीं है आपको? तो अब ये बीपी जो चीज है ये भी डायबिटीज जैसा ही एक कॉमन नेम बन चुका है। तो पहले हम ये समझें बीपी क्या है, ये भी कोई बीमारी है, क्या चीज है ये लोग इतने आसानी से बीपी बीपी कह देते हैं।
1: बीपी वो अगर हम ये शॉर्ट फॉर्म है, इसका फुल फॉर्म ब्लड प्रेशर है। तो नॉर्मली मेरा भी रक्त एक प्रेशर के साथ हमारी धमनियां जो हैं, जो आर्टरीज हैं, उनमें चल रहा है, और मेरा खून, आपका खून, हम सब का खून किसी न किसी प्रेशर के साथ उस धमनी में चल रहा है। जब भी शब्द बीपी का प्रयोग किया जाता है तो नॉर्मल बोलचाल की भाषा में इसको बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर की तरह इसको समझा जाता है। ये मतलब आपको बीपी हो गया है, ये मतलब हम सबके पास ब्लड प्रेशर है, हम सबके पास बीपी है, मगर जब ये बोला जाता है कि आपको बीपी हो गया है, इसका मतलब है कि आपका ब्लड प्रेशर जो है वो बढ़ गया है। और नॉर्मली हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो स्पिग्नोमैनोमीटर या ब्लड प्रेशर वाली मशीन से मापा जाता है, और ये 120 बटे 80 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी इसको माना जाता है। और अब एक रेंज की बात करते हैं तो मतलब 130 से लेके 110 के बीच में हम इसे नॉर्मल मान लेते हैं, और नीचे 90 से लेके 70 तक हम इसे नॉर्मल मान लेते हैं। और ये किसी की लंबाई, मोटाई, उसने क्या काम किया है, क्या अवस्था है, जैसे अगर कोई दौड़ कराया तो उसका बीपी अपने आप नॉर्मली बढ़ा मिलेगा, तो इस तरीके से हम देखते हैं। पर अगर आपका ब्लड प्रेशर जो है वो ऊपर वाला, मतलब जो 120 है उसकी जगह अगर 140 आ रहा है, और नीचे आपका जो बीपी है वो करीब 90 के ऊपर है या 100 के ऊपर है, तो आपको ब्लड प्रेशर का मरीज माना जाता है। और एक बार में, मतलब 3 बार अगर हम इसकी जांच करें और आपको कुछ ब्लड प्रेशर के लक्षण हो रहे हो कि आंख से धुंधला दिख रहा हो, सर में दर्द हो रहा हो, घबराहट हो रही हो, पसीने छूट रहे हो, तो एक माना जाता है कि आपको ब्लड प्रेशर की समस्या है। अच्छा भैया, ब्लड प्रेशर बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। अधिकतर लोगों में ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ मिलता है, जो मतलब अगर हम बीपी का शब्द इस्तेमाल करते हैं तो अधिकतर जो मरीज हमें भारत में मिलते हैं वो हाई बीपी के मिलते हैं। अभी का जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का और वर्ल्ड हार्ट एसोसिएशन का जो डेटा है उसके हिसाब से करीब 10 से 11 करोड़ आदमियों को भारत में ब्लड प्रेशर की समस्या है। मतलब इतने लोगों को ब्लड प्रेशर की दवा की आवश्यकता है। और आपको ये जान के अचंभा होगा कि वर्ल्ड हार्ट एसोसिएशन कहता है कि हमारे यहाँ करीब 12 से 14 करोड़ को शायद ब्लड प्रेशर हो, मतलब उनका ब्लड प्रेशर कभी न कभी बढ़ जा रहा है जो उनको नुकसान दे रहा है। तो ये जो फिगर है अगर हम इसको जोड़ते हैं तो ये करीब 22 से 24 करोड़ आता है। मतलब हमारे देश की अमूमन 18 से 20% की जनसंख्या को इस ब्लड प्रेशर की बीमारी से वो ग्रसित है, और मोटा मोटी 7 से 8% से लेकर 10% की तो जनसंख्या इसकी दवा खा रही है। और हमारे देश की जनसंख्या इतनी बड़ी है कि 1-2% भी हमारे यहाँ करोड़ों में होता है। तो सोचिए 15 से 20% की जब जनसंख्या इस समस्या से ग्रसित है तो हमारा देश कहाँ जाएगा।
0: जब आप ये बात बता रहे हैं कि इतनी बड़ी संख्या में आबादी को ब्लड प्रेशर की समस्या है और ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, तो लोग इसे एक आम रीति के रूप में ही देखते हैं कि भाई बढ़ा हुआ है, तो ये चिंता का क्या विषय है? क्यों मतलब ब्लड प्रेशर बढ़ा होना कोई सोचने वाली बात होनी चाहिए?
1: बड़ा अच्छा सवाल आपने श्री भैया पूछा। आप एक साधारण सा बात समझिए कि आप पाइप से पानी दे रहे हैं और एकाएक आपने जो पाइप है उसका मुंह आगे से बंद कर दिया, तो जैसे ही आप बंद करेंगे तो उस पाइप में प्रेशर बढ़ जाएगा, तो पानी निकलने की कोशिश करेगा। तो हम अमूमन देखते हैं कि जहां से पाइप नल से लगा हुआ है वहां से निकल जाता है, या आप जब दबाते हैं आगे से पाइप को तो वो पानी जो की धार है वो ज्यादा दूर तक जाके गिरती है। तो जब ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ रहता है और ये धमनियों में चल रहा होता है तो इससे हमारी धमनियां जो हैं वो फट सकती हैं। इसीलिए बीपी को साइलेंट किलर कहा जाता है। इसे भैया हमारे हृदय की धमनियां फट सकती हैं, हमारे दिमाग में जो जो छोटी छोटी धमनियां हैं वो फट सकती हैं, और बड़ी धमनियों में कुछ नहीं होता, पर जो छोटी छोटी धमनियां जो हमारी आर्टरीज हैं, जो हमारे ब्रेन में हार्ट में वहां चल रही हैं, उनमें एकाएक ब्लीडिंग हो जाती है और एक इतने जरूरी जो हमारा अंग है उसमें खून बहने लगता है, उस पर प्रेशर पड़ने लगता है और इससे हमको हमारा हृदय काम करना बंद कर सकता है, हमारी किडनियां हैं वो काम करना बंद सकती हैं, हमारा दिमाग है वो काम करना बंद सकता है। ये हमको एकाएक झटके में हमको इससे एक व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। आप बहुत बार सुन भी लेंगे अब कि अरे वो तो ठीक से चल रहे थे, एकाएक उनको हार्ट अटैक आया और उनकी डेथ हो गई, या एकाएक उनके हार्ट में कुछ परेशानी हुई उनकी मृत्यु हो गई। तो ये इतना खतरनाक है, इससे एक एक सेकेंड में मतलब तुरंत इससे मृत्यु हो सकती है, या किसी अंग में रक्त सराव के बाद वो अंग का काम करना बंद हो सकता है या नुकसान हो सकता है। जी भाई, आप एक चीज और नोटिस करेंगे कि आप हैं और मैं हूं, हम लोग बहुत सारे अच्छे जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं विश्व भर में वहां जाकर काम करते हैं या वहां जाकर लेक्चर देते हैं, वहां जाकर इंट्रैक्शन करते हैं लोगों से। मैंने इधर नोटिस करना शुरू किया कि अब भारत की जितने भी बड़े ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि मानव जन कल्याण के लिए काम कर रहे हैं, वो सब अपने यहाँ अस्पताल खोल रहे हैं, वो सब अपने यहाँ डॉक्टरों को रख रहे हैं, वो सब यही शिक्षा दे रहे हैं कि हल्का खाइए, मानसिक रूप से शांत रहिए, मेडिटेशन करिए, अपने दिमाग को शांत रखिए, अपनी लालसाओं को अपनी जरूरतों को संयम में रखिए, सब यही बात कर रहे हैं और सिर्फ इसीलिए कह रहे हैं कि शांति बनी रहे। और भैया शांति रहेगी तभी ब्लड प्रेशर कम रहेगा, तभी नॉर्मल रहेगा।
0: डॉक्टर साहब जब आप ये बात कहते हैं तो ये बात समझ में आ रही है कि आज हम ब्लड प्रेशर को कोई बड़ी समस्या के रूप में ना देखते हुए, ये भी एक आम चीज है, इसके लिए हम गोलियां खा रहे हैं, उस हिसाब से हम चल रहे हैं, मगर ये बात समझ में आ रहा है कि ये कितना खतरनाक हो सकता है बीपी का बढ़ा होना। और अगर हम इसे, चलिए दवाई खा रहे हैं तो फिर तो कम से कम समझ में तो आता है, अगर किसी को पता ही ना हो उसको बीपी हो रहा है या नहीं हो रहा है या है भी ये समस्या मेरे को, ये व्यक्ति को कैसे पता चलेगा? मतलब कोई सिम्टम्स हैं जिससे व्यक्ति जाके जांच करा ले कि भाई हाँ, जैसे डायबिटीज के लिए हम जानते हैं कि कुछ सिम्टम्स हैं जिसके बारे में आपने बताया था, ऐसे बीपी के लिए क्या व्यक्ति को जागरूक रहने की जरूरत है कि अगर हाँ मेरे शरीर में ये चीज मैं नोटिस कर रहा हूँ तो मैं जाके डॉक्टर की सलाह लूं या मैं चिकित्सक के पास पहुंचूं?
1: जो सबसे कॉमन चीज मैंने अनुभव की है और बोला भी जाता है कि सबसे पहले आपको सरदर्द होने लगेगा और आपको अक्सर सरदर्द होगा और आप ये सोचेंगे यार कोई कारण नहीं है मेरे सरदर्द होने का, मुझे सरदर्द हो रहा है। आपको थकान होने लगेगी, आपको ऐसा समझ में आएगा कि मेरे धड़कन, मेरी बार बार मेरी धड़कन बढ़ रही है, हल्का एंजाइटी होने लगेगी। भैया कुछ केसेस में ये देखा जाता है कि नाक से खून निकलने लगता है, अक्सर बार बार नाक से नोज ब्लीड हो रही है, तो ये आपको यही दिखेगा। और कभी कभी ऐसा लगेगा कि सांस फूल रही है, छाती में दर्द हो रहा है, अगर बैठे बैठे आपको आपकी आंख के सामने धुंधलापन होने लगेगा, फिर वो ठीक हो जाएगा फिर थोड़ी देर में, फिर तो ये सिम्टम्स जैसे ही आपको महसूस हो तो आपको तुरंत अपना बीपी की जांच करानी चाहिए, ये कि आपको ये सारी समस्या हो रही है और आपको तुरंत किसी डॉक्टर को दिखाना चाहिए।
0: ये बात बहुत ही फायदेमंद है कि हम पहले तो इस बात पे सजग रहें कि हमारे शरीर में क्या हमें तकलीफें हो रही हैं, क्या ऐसी चीजें हैं जो मुझे बीपी का मरीज हूं या बीपी की समस्या मुझे है, ये समझने के लिए आवश्यक है। साथ ही ये भी चीज समझ में आती है कि बीपी को आपने साइलेंट किलर कहा कि पता भी नहीं चलेगा और व्यक्ति उसकी वजह से अपने मौत को न्योता दे सकता है अगर वो इग्नोर करता है इन चीजों को, इसलिए अपने ब्लड प्रेशर के बारे में जागरूक रहना भी आवश्यक है। वक्त कहता है कि इस मोड़ पर यहाँ रुकना होगा दोस्तों, मगर बहुत ही आज एक ऐसी बीमारी के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं कि जो घर में उसकी दवाइयां हमारे घर के सदस्य खा रहे हैं और हम ये मानकर चल रहे हैं चलो दवाई तो खा ही रहे हैं ना ये, मगर हम उनके स्वास्थ्य के प्रति ज्यादा जागरूक नहीं है, ना हम जागरूक हैं ना जो व्यक्ति स्वयं दवाई खा रहा है वो जागरूक है। साथ ही ये भी बात आज हमने इस चर्चा में सुनी और समझी कि अपने ही मर्जी से दवाइयां लेना, अपने घर में दवाइयों का कबर्ड या बक्सा बनाकर रख लेना और छोटी मोटी चीजों के लिए खुद ही दवाई लेना, ये हितकारी नहीं है। इसलिए हमें अपने स्वास्थ्य के प्रति बेहतर समझ को ले आने की आवश्यकता है, और जब हम अपने स्वास्थ्य के प्रति सही समझ लाएंगे तब हम सहज रीति से स्वस्थ रह पाएंगे। आज डॉक्टर राहुल मोदी हमारे बीच आए और उन्होंने हमें स्वास्थ्य से संबंधित मार्गदर्शन दिए हैं। अगले एपिसोड में बीपी और उससे जुड़ी हुई अन्य स्वास्थ्य संबंधी जानकारियां उनसे लेते रहेंगे। आज हम सभी श्रोता मित्रों को उन्होंने इन प्रश्नों का उत्तर दिया, इसके लिए आप सभी श्रोताओं की ओर से मैं डॉक्टर मोदी का धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका।
1: नमस्कार, ओम शांति।
0: दोस्तों, यह है कार्यक्रम सहज स्वास्थ्य और आज हम सहज स्वास्थ्य को सहज बनाने की ओर, हमें क्या जागरूकता रखनी है, क्या हमें करने की जरूरत है, बीपी जैसे बीमारियों के बारे में भी नई जानकारी आज हासिल हुई है। अगली चर्चा में इस विषय पर और गहराई से चिंतन करेंगे। आज आप सभी हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं कि आप सभी अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाने की ओर एक कदम लेंगे। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: काए हम। रेडियो मधुबन सुनते रहिए मुस्कुरा।
1: हेलो बच्चों, परी और मनी दीदी आ गए हैं बारिश के साथ सपनों की सैर कार्यक्रम को लेकर के।
2: हाँ बच्चों, और बारिश तो आई ही गई है आखिरकार। इतनी गर्मी के मौसम के बाद जब बारिश आती है तो ताजगी का एहसास लेकर आती है और साथ साथ कुछ चुनौतियाँ भी लेकर आती है ना परी?
1: बिल्कुल मनी दीदी, चुनौतियाँ तो होती ही है, कहीं बाढ़ आ जाता तो कहीं जल भराव हो जाता।
2: हाँ, और जब बाढ़ आती है तो आपने बाढ़ का मंजर भी देखा होगा बच्चों न्यूज़ चैनल्स में, कितना ज्यादा पानी का बहाव होता है कि सब बह जाता है।
1: और बच्चों, बारिश में बिल्कुल ध्यान रखना, क्योंकि मच्छरों से फैलने वाले रोग जैसे डेंगू और मलेरिया भी हो जाता है।
2: हाँ, और पहाड़ी क्षेत्रों में तो पहाड़ की जो चट्टाने हैं वो भी फिसलने लगती है।
1: और बच्चों, यातायात और जनजीवन प्रभावित होने लगता है।
2: सही बात है, बारिश के मौसम में तो कहीं पर भी यात्रा करना सेफ भी नहीं होता है बच्चों, क्योंकि कई बार तो बारिश का पानी रेल की पटरियों के ऊपर भी आ जाता है और फिर ट्रेन भी लेट हो जाती है, और फिर ट्रेन में तो पता है ना, फिर रुक जाती है ट्रेन तो कितना वेट करना पड़ता है।
1: तो बच्चों, प्लस माइनस तो होता ही है, लेकिन मॉनसून जरूरी भी तो है ना।
2: सही कहा परी, बारिश के बिना तो सूखा अकाल ही पड़ जाए भाई, पानी भी तो जरूरी है। भले ही ये कुछ चैलेंजेस होते हैं जिसके लिए हमें मन से हमें मेंटली प्रिपेयर भी रहना चाहिए।
1: बिल्कुल मनी दीदी, तो चलो बच्चों, अब आगे पता है ना क्या करना है।
2: हाँ, आगे तो परी की कहानी सुननी है, तो चलो लेते हैं छोटा सा ब्रेक और मिलते हैं इस प्यारे से गाने के बाद।
1: सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए
2: रेडियो मधुबन 107.8 FM पर।

0: प्रकृति बेटा, पृथ्वी पर तुम्हें क्या करना है तुम्हें पता है ना?
1: मुझे लोगों को प्यार से इंस्पायर और लाइफ के लिए एजुकेट करना है, ताकि वो नेचुरल रिसोर्सेज का उपयोग कर इस पृथ्वी को बचाए रखें।
0: इसमें तुम्हारी मदद करेंगी ये तीन चीजें। पहली, टियारा ऑफ फ्लावर्स, जो तुम्हें हमेशा हैप्पी और एनर्जेटिक रखेंगे। दूसरा, ये बैज ऑफ लाइफ, जो लोगों को पर्यावरण के लिए लाइफ जीवन शैली की याद दिलाएगा। जब वे प्रकृति की रक्षा करेंगे तो प्रकृति उनकी रक्षा करेगी। तुम ये बैज उन लोगों को भी दे सकती हो जो हमारे प्लैनेट की बेहतरी के लिए योगदान करते हैं। और तीसरा, ये बैग ऑफ होप, जब भी कोई एनवायरनमेंट को हार्म करे तो तुम इसमें से इको सस्टेनेबल अल्टरनेटिव निकाल कर उसे देना।
1: ओके, अब मैं अपने मिशन पर चलती हूँ।

0: पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार।
1: बच्चों चलो चलो बैठो रेडियो के पास, अब शुरू हो रही है आज की कहानी। आज भेड़िया और सारस की कहानी सुनेंगे। बच्चों भेड़िया तो पता है ना लालची होता है, तो एक दिन वो खूब जल्दी जल्दी भोजन कर रहा था, तो भोजन करते करते उसके गले में एक हड्डी अटक गई। भेड़िए ने हड्डी बाहर निकालने की बहुत कोशिश की, पर वो हड्डी नहीं निकाल सका। वो विचार करने लगा कि अगर हड्डी मेरे गले से बाहर नहीं निकली तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, मैं खा पी नहीं सकूंगा और भूखा प्यासा मैं तो मर जाऊंगा। बच्चों नदी के किनारे एक सारस रहता था। भेड़िया भागता भागता सारस के पास पहुंचा। उसने सारस से कहा, सारस भैया मेरे गले में एक हड्डी फंस गई है, आपकी गर्दन तो लंबी है, वो हड्डी तक पहुंच जाएगी, कृपा करके मेरे गले में फंसी हुई हड्डी निकाल दो, मैं तुम्हें अच्छा सा इनाम दूंगा। बच्चों सारस ने कहा, ठीक है मैं अभी तुम्हारे गले की हड्डी निकाल देता हूँ। भेड़िए ने अपना जबड़ा फैलाया, सारस ने फौरन अपनी गर्दन भेड़िए के गले में डालकर हड्डी बाहर निकाल दी। अब सारस ने कहा, मेरा इनाम दो। तो बच्चों भेड़िए ने कहा, इनाम कैसा इनाम, इनाम की बात भूल जाओ, भगवान का शुक्रिया अदा करो कि तुमने अपनी गर्दन मेरे गले में डाली और वो भी सही सलामत बाहर चली आई, इससे बड़ा इनाम और क्या हो सकता है। तो देखा बच्चों, धूर्त की बातों में कभी आना नहीं चाहिए, उन्हें एहसान भुलाने में देरी नहीं लगती, इसलिए कभी भी बच्चों किसी को धोखा नहीं देना और किसी ऐसे वैसे लोगों के बातों में भी मत आना, समझदारी से काम लेना, ये कहानी हमें समझाती है। तो चलो सुनते हैं प्यारा सा गाना, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। सब

0: यार मोहित, कभी कभी मैं सोचता हूँ कि दिव्यांग व्यक्तियों का जीवन कितना नीरस है, उनके लिए दुनिया कितनी अलग है।
1: बात तो सही कह रहे हो तुम, ऐसे जीवन का भी क्या फायदा। खैर छोड़ो, चलो बाजार चलते हैं, मुझे कुर्ता पैजामा दर्जी को सिलाई के लिए देना है।
0: चलो चलते हैं।
1: बहन जी, मुझे यह कुर्ता पैजामा सिलवाना है और 5 दिन में मुझे यह चाहिए।
2: ठीक है, आप अपना नाप दीजिए, हमारे दर्जी सिलाई कर देंगे और आप 5 दिनों के बाद आकर इसे ले सकते हैं।
1: धन्यवाद। सौरभ, तुमने एक बात पर ध्यान दिया कि दर्जी ने हमारी तरफ एक बार भी नहीं देखा, वो बस अपना काम कर रहा था। मुझे लगता है वो सुन नहीं सकता था।
3: हाँ, मुझे बताया था उस दर्जी वाली बहन जी ने कि दर्जी सुन नहीं सकते हैं, परंतु मैं सोच रहा हूँ कि मैं कितना गलत था।
1: हाँ, जो शारीरिक विकलांग होते हैं वो भी तो हमारी तरह सामान्य जीवन जी सकते हैं।
4: रेडियो मधुबन की मुहिम का हिस्सा बने, पुरानी मानसिकता को बदलें और समझने का प्रयास करें। शारीरिक रचना का हमारी बुद्धिमत्ता से कोई ताल्लुक नहीं। मन स्वस्थ तो जीवन स्वस्थ।
5: मानवीय हो मानसिकता, सुखद हो व्यवहार, मन की आंखों से देखिए सुंदर ये संसार।
6: चलो बच्चों, आ जाओ जल्दी से तेनाली राम की अनोखी दुनिया की किताब की। हम पढ़ रहे हैं कहानी 99 का चक्कर, जिसमें एक फरियादी है जिसने अपना कमरा किराए पर दिया हुआ है और उसका जो किराएदार है मोची, वो सारा दिन तो बहुत अच्छे से कमाई करता है, बहुत ही भला आदमी है, लेकिन शाम को आते ही वो ढोल बजा बजा कर जोर जोर से भजन गाता है, जिससे उस फरियादी को काफी तकलीफ हुई। तो वो अपनी फरियाद लेकर महाराज के पास पहुंचा है और तेनाली राम ने उससे कहा कि ठीक है, तुम्हें 99 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। तुम ऐसा करो कि मखमल की थैली में 99 रुपए के सिक्के डालकर उस मोची के कमरे में रखाओ और फिर 1 सप्ताह के बाद आकर महाराज को उस मोची के भजन का हाल सुनाना। तो फिर चलो, अब आगे क्या हुआ वो मैं आपको बताती हूँ बच्चों। फरियादी महाराज के दरबार से बहुत आशंकित मन से लौटा। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि यह उसकी समस्या का कोई समाधान है। वह मन ही मन सोचता जा रहा था, आज के जमाने में गरीबों की कौन सुनता है कि राजा महाराजा सुनेंगे। खैर चलो, यहाँ आए तो 99 के चक्कर में पड़े, न आते तो अच्छा था। अपने घर पहुंचकर फरियादी ने मखमल की थैली में 99 रुपए गिनकर डाले और मोची के कमरे में फेंक आया। उसे इसका कोई परिणाम मिलने की आशा नहीं थी। दूसरी तरफ महाराज भी तेनाली राम की सलाह से सहमत नहीं थे। उन्होंने तेनाली राम से पूछा, तेनाली राम, तुमने उस फरियादी को 99 रुपए की थैली मोची के कमरे में फेंकने की सलाह तो दे दी, लेकिन इससे क्या होगा मुझे बताओ। तेनाली राम ने हंसते हुए कहा, महाराज, इससे मोची 99 के चक्कर में पड़ जाएगा। तो महाराज ने चौंक कर फिर पूछा, 99 के चक्कर में? तो बच्चों, आप भी सोच रहे होगे ना कि क्या है ये 99 का चक्कर। तो हमें पता चलेगा अगली कड़ी में। तो लेते हैं छोटा सा ब्रेक और जानेंगे कि आगे क्या हुआ अगले एपिसोड में। तो चलो सुनते हैं ये प्यारा सा गाना और फिर अगली कड़ी में फिर से मिलेंगे आपसे परी के साथ। पिछली कड़ी में परी ने जो पहेली पूछी थी उसका जवाब भी तो जानना है ना। तो चलो लेते हैं छोटा सा ब्रेक। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM पर सपनों

0: आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन।
1: कृपया करके रेलवे परिसर में धूम्रपान न करें, यह वर्जित है। इसके लिए आपको 200 रुपए तक का जुर्माना या फिर जेल भी हो सकती है।
0: रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
2: बच्चों बैठो, रेडियो के पास फिर से परी और मनी दीदी आ गए हैं आपसे बातें करने और पहेलियों के जवाब सुनाने और कुछ पहेलियां सुनाने। तो चलो, हमने पिछली कड़ी में पूछा था, कागज की नाव बनाते हैं, पानी में उसे तैराते हैं, बचपन की सबसे प्यारी याद कौन सा मौसम देता साथ?
3: तो सही जवाब है मानसून, है ना। बारिश के मौसम में ही तो कागज की नाव बनाते हैं, पानी में उसे तैराते हैं, क्योंकि खूब बारिश होती है।
2: हाँ, और सबसे फेवरेट खेल ये बच्चों का होता है नाव बनाकर तैराना।
3: हाँ, वैसे परी मुझे अभी भी पसंद है कागज की नाव बनाकर उसे जब हम तैराते हैं तो।
2: बिल्कुल मनी दीदी, हम तो परी लोक में गोल्डन गोल्डन नाव बनाते हैं।
3: अरे वाह, क्या बात है। तो बच्चों सुना आपने, गोल्डन नाव, आप भी कागज की नाव बनाकर उसमें कुछ कलर करके उसको भी क्रिएटिव बना सकते हो।
2: बिल्कुल बच्चों, तो चलो बातें तो होती रहेगी लेकिन पहेली की बारी भी तो है, तो नोट कर लो आज की पहेली। धरती पर जब पानी गिरता, हरियाली से मन खिलता, धान की फसल उगती है, कौन सा मौसम आता है?
3: कौन सा मौसम आता है बच्चों, उसी की तो बातें हम कर रहे हैं। तो चलो जल्दी से 9414151415 पर वॉइस नोट या मैसेज करके सही जवाब हमें भेज दीजिए।
2: हाँ, हमें आपके जवाब का इंतजार रहेगा। और आगे क्या करना है मनी दीदी?
3: भगवान जी को सॉरी और थैंक यू कहना है।
2: बिल्कुल बच्चों, तो चलो सॉरी और थैंक यू करके उनकी गोदी में सो जाओ, जैसे हम सोते हैं। हम करते हैं गुड नाइट,
3: स्लीप टाइट,
2: गुड बाय। सुते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM पर।

नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। हमारी सबसे बड़ी शक्ति हमारे विचार हैं। सोच को सकारात्मक और रचनात्मक बनाएं। मैं हूं आपका हमसफर आरजे रमेश। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

समय सुबह का तब बनता है एकदम खास जब आती है उषा अशना के साथ। नमस्कार जी आप सभी को, राम राम जी, जय श्री कृष्ण, खम्मा गणिसा। अगर तिल्ली की खराबी है तो क्या करेंगे, जरा सोचिए। उपाय तो जरूर बताएंगे लेकिन आप भी कुछ सोचिएगा। और जी हाँ सेजल, आज भी आपको एप्पल की कटिंग कैसे करेंगे, कैसे उसको सुंदर तरीके से सजा करके रखेंगे कि एकदम इच्छा हो जाएगी खाने की, तो बहुत ही क्रिएटिव तरीका सिखाएगी सेजल। और जी हाँ मैं भी आपको कुछ सिखाने वाली हूँ, परंतु क्या वो आप आशियाना सुनेंगे तभी जान पाएंगे। और आज हम कैसे अपने जीवन में क्रिएटिव रहेंगे, कुछ न कुछ क्रिएटिव कार्य करते रहेंगे तो मन हमारा खुश भी रहेगा, स्वस्थ भी रहेगा, तो इस विषय पर ही हम बातचीत भी करेंगे। और सदैव मीठा वचन बोलना चाहिए, इससे सभी जगह आदर प्यार और स्नेह प्राप्त होता रहेगा। जरा विचार करिएगा कि ऐसा क्यों। प्रश्न तो आज का बड़ा ही सुंदर और सरल है, तो ये सब कुछ सुनेंगे आप आशियाना में। रेडियो मधुबन सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

चाहे गांव में रह रहे हो चाहे करसान, सभी के मुंह पे सिर्फ एक चर्चा अभी इन दिनों चल रही है, क्या है? पहले क्या होता था, आषाढ़ महीने से बरसात शुरू हो जाती थी, लेकिन अभी पता नहीं भगवान क्यों रूठ गए। एक ऐसी कल्पना है, मैं निवेदन करूं, शब्द बहुत सुंदर।

भजनों के साथ में यदि आपके सच्चे मन की जो ये तार है ना, यदि ये जुड़ गए ना भगवान से, तो ये जो हवा चल रही है, यदि दो घंटे भी बंद हो जाएगी हवा चलती हुई तो सीधी बरसात है। लेकिन आप सभी लोगों के तार उनसे जुड़ने जरूरी है। हम बैठे हैं, हमारा शरीर यहाँ पर है, हमारा मन यहाँ पर नहीं है, तो फिर काम नहीं बनने वाला। शरीर, तन और मन दोनों एक साथ में जुड़ेंगे तो आनंद आएगा।

0: याद रखें, एक बाइक पर कभी भी दो से ज्यादा लोग एक साथ ना जाएं। यह एक दंडनीय अपराध है। सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करें। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।
1: पुनः आप सभी का आशियाना में बहुत बहुत स्वागत है। आज का सुंदर सा विचार इस प्रकार है, सदैव मीठा वचन बोलना चाहिए। इससे सभी जगह आदर, स्नेह, प्यार सब कुछ प्राप्त होता है। सदैव मीठा वचन बोलना चाहिए, इससे सभी जगह आदर, सत्कार, प्यार, स्नेह सब कुछ प्राप्त होता है। कैसे? तो आइए आज के विचार का विस्तार एक दृष्टांत के साथ करना चाहूंगी कि एक बार एक राजा थे, वन विहार को निकले थे। रास्ते में प्यास लगी, नजर दौड़ाई, एक अंधे की झोपड़ी दिखी। उसमें जल भरा घड़ा दूर से ही दिखाई दे रहा था। राजा ने सिपाही को भेजा और एक लोटा जल मांग लाने को कहा। सिपाही वहां पहुंचा और बोला, ए अंधे, एक लोटा पानी दे दे। अंधा भी बड़ा आकड़ू था, उसने तुरंत कहा, चल चल, तेरे जैसे सिपाहियों से मैं नहीं डरता, पानी तो तुझे नहीं मिलेगा। सिपाही निराश होकर लौट पड़ा। इसके बाद सेनापति को पानी लाने के लिए भेजा गया। सेनापति ने पास में जाकर कहा, अंधे, पैसा मिलेगा, पानी दे दे। अंधा फिर अकड़ पड़ा, उसने कहा, पहले वाले का यह सरदार मालूम पड़ता है, फिर भी चुपड़ी बातें बना करके दबाव डालता है, जा जा, यहां से पानी नहीं मिलेगा। सेनापति को भी खाली हाथ लौटता देखकर राजा स्वयं चल पड़े। समीप पहुंचकर वृद्ध जन को सबसे पहले नमस्कार किया और कहा, प्यास से गला सूख रहा है, एक लोटा जल दे सके तो बड़ी मेहरबानी होगी। अंधे ने सत्कार पूर्वक उन्हें पास बिठाया और कहा, आप जैसे श्रेष्ठ जनों का राजा जैसा आदर है, जल तो क्या, मेरा शरीर भी स्वागत में हाजिर है, कोई और भी सेवा हो तो बताइए जनाब। राजा ने शीतल जल से अपनी प्यास बुझाई, फिर नम्र वाणी में पूछा, आपको तो दिखाई नहीं पड़ रहा है, फिर जल मांगने वालों को सिपाही, सरदार और राजा के रूप में कैसे पहचान पाए? अंधे व्यक्ति ने कहा, वाणी के व्यवहार से हर व्यक्ति के वास्तविक स्तर का पता चल जाता है। तभी कहा जाता है मेरे प्यारे श्रोता बंधुओं कि सदैव मीठा वचन बोलना चाहिए, इससे सभी जगह आदर, सत्कार, प्यार, स्नेह सब कुछ प्राप्त होता है। तो ये हुआ आज का सुंदर सा विचार, जिस पर जरूर गौर करेंगे और सुनेंगे पुनः एक प्यारा सा गीत। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन।
2: घरेलू नुस्खों का खजाना आशियाना,
3: रेडियो मधुबन, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
1: आइए अब आपको बहुत ही सुंदर नुस्खे दूंगी कि तिल्ली की खराबी हो जाए तो क्या करेंगे। देखिए, अजवाइन का चूर्ण 2 ग्राम ले लीजिए और सेंधा नमक लेना है 1/2 ग्राम और फिर आप इनको आप मिला दीजिए। दोनों समय भोजन के बाद गर्म पानी के साथ लीजिएगा, इससे तिल्ली की खराबी ठीक हो जाएगी, प्लीहा की विकृति दूर होगी। अजवाइन का चूर्ण 2 ग्राम ले लीजिए, सेंधा नमक 1/2 ग्राम लेना है। इन दोनों को मिक्स करके आप फाकी लेकर के ऊपर से गर्म पानी पी लीजिएगा दोनों ही समय, सुबह और शाम को, ठीक है, भोजन के बाद। जब हम दोपहर का भोजन करते हैं उसके बाद और शाम का भोजन करते हैं उसके बाद आप ले लीजिए गर्म पानी के साथ, तो प्लीहा की विकृति दूर होगी। और भी सुंदर आपको उपाय बता रही हूँ कि तिल्ली अथवा जिगर, जिसको यकृत भी कहते हैं, तिल्ली माने प्लीहा, दोनों अगर बढ़ जाती है तो क्या करेंगे। तो ऐसी सिचुएशन में आप पुराना गुड़ 1.5 ग्राम और बड़ी पीली हरड़ के छिलके का चूर्ण, दोनों ही बराबर वजन मिला करके एक गोली इसकी बनाइए और ऐसी गोली दिन में 2 बार सुबह सुबह शाम को हल्के गर्म पानी के साथ 1 महीने तक लेना है। इससे यकृत और प्लीहा यदि दोनों ही बड़े हुए होंगे ना तो भी ठीक हो जाएंगे, ठीक है। तिल्ली और जिगर जिसको हम यकृत और प्लीहा कहते हैं, अगर ये बढ़ जाता है तो भी बड़ी मुश्किल हो जाती है। देखिए, शरीर हमारा ऐसा है कि कोई भी ऐसी वैसी समस्या शरीर सहन ही नहीं कर पाता है। कुछ अंदर गड़बड़ होने लगती है, वो हमसे सहन नहीं होता है। तो आप डॉक्टर को ज़रूर दिखाइएगा, लेकिन साथ ही साथ आप घरेलू नुस्खे भी आजमा सकते हो कि अगर यकृत और प्लीहा दोनों ही बड़ा हुआ हो या बढ़ने की शिकायत है, तो आप पुराना गुड़ लीजिएगा 1.5 ग्राम और बड़ी पीली वाली हरड़, इसके छिलके का चूर्ण बरोबर मात्रा में लेना है। गुड़ और ये चूर्ण, इन दोनों को मिला करके आप गोली बनाइए और फिर गोली बना करके 2 बार आपको लेना है, सुबह और शाम को। और ये गोली लेने के बाद हल्का गर्म पानी, 9 सेक का पानी आप पीजिएगा। 1 महीने तक लेंगे तो इससे यकृत और प्लीहा यदि दोनों ही बड़े हुए होंगे तो ठीक हो जाएंगे। इसके 3 दिन के प्रयोग से ही अम्ल पित्त का भी नाश हो जाता है। और लास्ट उपाय आपको बता रही हूँ, पेट दर्द में अजवाइन का चूर्ण 6 भाग और काला नमक पिसा हुआ 1 भाग लीजिएगा और इसमें से 2 ग्राम मतलब आधा चम्मच गर्म जल से लीजिए। इससे पेट दर्द में तुरंत आराम मिलेगा। बच्चों को अगर देना हो तो आधी मात्रा दीजिए। इससे क्या है, अपारा, वायु, गोला और पेट की गैस भी मिट जाती है। तो फिर से इस नुस्खे को दोहरा रही हूँ, ध्यान से सुनेंगे आप कि अजवाइन का चूर्ण लीजिएगा 6 भाग और काला नमक पीसा हुआ लेना है आपको 1 भाग। फिर दोनों को मतलब आधा चम्मच आप ये ले सकते हैं। पहले आपको मात्रा तो बताई दी है, अब आप इसकी फाकी लीजिए, ऊपर से गर्म जल पी लीजिएगा। इससे पेट के दर्द में तुरंत आराम मिलेगा। अगर बच्चों के पेट की तकलीफ है तो उनको आधी मात्रा दीजिए, ठीक है। जैसे उम्र आपको बताना चाहूँगी, बच्चे 10 साल के, 11 साल के, ऐसे बच्चों के पेट में तकलीफ है तो आप आधी मात्रा दीजिए। इससे भी कम, जैसे 4-5 साल के बच्चों के तकलीफ है तो आधी से भी आधी मात्रा दीजिए। देखिए, इससे अपारा भी ठीक होगा, वायु, गोला और पेट की गैस भी मिटेगी। तो ये सारे ही नुस्खे बहुत ही अच्छे हैं और चाहो तो आजमा सकते हो। डॉक्टर को तो दिखाना ही है, लेकिन घरेलू नुस्खे कहते हैं ना, दवा और दुआ दोनों ही करिएगा, ठीक हो जाएंगे। और आइए अब आज के प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आज का प्रश्न है, ध्यान से सुनिएगा कि 5 जून को हम सभी कौन सा दिवस मनाएंगे और पृथ्वी दिवस कब है। बहुत ही सुंदर प्रश्न है, इसके 2 जवाब है, 2 प्रश्न मिक्स है, दोनों ही जवाब आपको देना है कि 5 जून को हम सभी कौन सा दिवस मनाने जा रहे हैं और पृथ्वी दिवस कब है। जवाब देने के लिए रेडियो मधुबन के नंबर है 9414151415 पर आप फोन कॉल्स कर सकते हो और आज के प्रश्न का जवाब दे सकते हो। आइए एक गीत सुनने के बाद पुनः लौट रही हूँ, कहीं भी जाइएगा नहीं, कार्यक्रम अभी बाकी है। तो सुन लेते हैं एक गीत, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन।

ओम शांति। मैं हूं ब्रह्मा कुमारी प्रेमलता और आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो मुस्कुराते।

0: हेलो,
1: आपको कर रहा हूँ मैं कि एक तो आपने वो प्रश्न पूछा था ना कि 5 जून को क्या क्या मनाते हैं।
0: हाँ जी,
1: तो 5 जून को तो विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं।
0: अच्छा,
1: विश्व पर्यावरण दिवस
0: जी,
1: यानी वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे
0: जी,
1: और पृथ्वी दिवस मनाते हैं 22 अप्रैल को।
0: अच्छा ठीक है, तो आप इंतजार करिएगा।

0: आपके प्रश्न का जो आपने जवाब सुनाया है हम जरूर उसको सुनाएंगे बहुत ही जल्दी कार्यक्रम के अंत में, ठीक है जी? जी शुक्रिया। तो ये थे मुरलीधर जी माउंट आबू ढूंढाई से, और प्रश्न का जवाब देने की इन्होंने बहुत ही अच्छी कोशिश की है, आप भी जरूर कोशिश करिएगा। प्रश्न भी आज का बहुत ही सुंदर और सरल है कि 5 जून को हम सभी कौन सा दिवस मनाने जा रहे हैं और पृथ्वी दिवस कब है, ठीक है? और आइए अब आशियाना के किचन में पधारिए, आज कुछ क्रिएटिव करेंगे। सेजल जिसने 10th का एग्जाम दिया है अब 11th में आई है और ये आब रोड की रहने वाली है। ये कहते हैं ना बच्चे बड़े ही क्रिएटिव होते, कुछ न कुछ तो क्रिएटिव करते ही रहते हैं, और सचमुच में हमारे ये नन्हे मुन्ने जो बच्चे होते हैं ना उनका फल फ्रूट रखोगे ना तो नहीं खाएंगे। हाँ उनको आप पैकेट ला करके दे दोगे, कुरकुरे है इस तरह की चीज़ें वो खाने के लिए लालायित रहेंगे लेकिन फल फ्रूट से दूर भागेंगे। लेकिन वही फल फ्रूट को अगर हम क्रिएटिव तरीके से प्लेट में सजा करके रख देते हैं अपने टी टेबल पर या अपने डाइनिंग टेबल पर या फिर जहाँ पर भी आप भोजन करते हो, भोजन कक्ष में जहाँ बच्चों की नज़र तुरंत पड़ती है, तो ऐसी जगह पर आप इस तरह क्रिएटिव तरीके से रखेंगे तो बच्चे अपने आप खाने के लिए कहेंगे, मांगेंगे जिद करके कि मुझे ये खाना है ये खाना है। और क्रिएटिव तरीके से जो रखी हुई चीज़ है तो क्यों नहीं, बच्चों का तो क्या बड़ों का भी दिल करता है। तो सेजल बहुत ही अच्छे तरीके से हमें बताएगी कि एप्पल को किस क्रिएटिव तरीके से हम काट करके अपने मेज पर रखेंगे कि बच्चे खाने के लिए मचलेंगे। है सेजल स्वागत रेडियो मधुबन में, स्वागत।
1: थैंक यू।
0: अच्छा तो एप्पल को कैसे आप काटोगी, किस क्रिएटिव तरीके से काट करके आप प्लेट में सजाओगी, बताओगे आप हमारे श्रोता बंधु को?
1: जी जब हम कोई एप्पल है ना तो जैसे कि उसको नीचे का भाग तो हम रहने देंगे, उसके 3 भाग कर लेंगे और बीच का रहने देंगे उसे, मतलब कि जैसे कि जो काट लेंगे वो जो...
0: अच्छा एक एप्पल लेनी है, साइज कौन सी लेनी है, बड़ी छोटी मीडियम?
1: कोई सी भी
0: साइज। फिर उसको क्या करना है, पहले तो धुलाई करनी है, स्वच्छ कपड़े से पोंछना है। फिर आपने कहा है कि 3 भाग में उसको काटनी है, तो ऊपर के भाग जिधर डंठल होता है उधर से काटनी है या नीचे के भाग से?
1: नीचे का भाग रहने देना है और डंठल की तरफ से काटना है।
0: अच्छा तो ये कट कौन सा लगाना है, खड़ा कट लगाना है या आड़ा?
1: आड़ा।
0: आड़ा कट। अच्छा फिर?
1: फिर उसके 3 भाग मतलब कि जो है ना उसको भाग करके उसके ऊपर वापस रख के उसमें जो लकड़ी की जो उसको ऐसे ऊपर की तरफ करके और उस पर लकड़ी लगा दो।
0: अच्छा तो 3 कट लगाने हैं एप्पल के ऊपर, 3 आड़ा कट, और फिर नीचे से भी आड़ा कट ही लगाना है?
1: हाँ
0: नीचे से भी आड़ा कट लगाना है मेरे प्यारे श्रोता बंधु, ऊपर से भी आड़ा कट लगाना है और तीनों ही भाग को काट देना है, नीचे जुड़ा रहे ऊपर भी जुड़ा रहे, ठीक है? और बीच में से उन फाकों को पतली परत से काटना है, ऐसा नहीं कि पूरी की पूरी फाक काट रहे आप, पूरी पूरी फाक अगर आप काटेंगे तो एप्पल के 2-3 टुकड़े हो जाएंगे, हमें टुकड़े नहीं करना है, ठीक है? 3 भाग से जैसे हम आलू की स्लाइस करते हैं ना ऐसे एप्पल के थोड़ी मोटी वाली स्लाइस निकालनी है ना सेजल?
1: हाँ।
0: और फिर क्या करना है इनको?
1: फिर इनको डिजाइन में आप जमा दो।
0: अच्छा तो सेजल ने बताया है कि जैसे हमने 3 स्लाइस तीनों ही भाग से काटी है, ठीक है, इनकी फिर आपको फाके करनी है, 3-3 फाके करके अब आपको जैसे नीचे का भाग आपका जगह हो चुकी है यहाँ पर, तो आप एक फाक रखिए, फिर उसको थोड़ा सा बरोबर मात्रा में न रख करके उसको थोड़ा सा आगे की तरफ रखिए, दूसरी फाक उसके ऊपर, तीसरी फाक रखिए थोड़ी सी और आगे, तो जैसे आप सीढ़ी चढ़ते हैं ना ऐसे हो जाएगा। तो फिर आप ये तीनों ही फाके तीनों ही तरफ लगाइएगा, और एक लकड़ी की स्टिक आती है जिससे हम फ्रूट भी खाते हैं तो उसका मुंह तीखा होता है, उसको आप डाल दीजिए ताकि ये फाके अलग नहीं पड़े, ठीक है? तीनों ही फाकों को 3 भाग जो काटे हैं तीनों ही तरफ फाके करके इन स्लाइस की और सजाइएगा और स्टिक लगा दीजिएगा। तो ये क्या है कि स्टिक लगाने से आपकी ये फाके गिरेगी नहीं, और फिर इसको आप प्लेट में रख दीजिए, और फिर आप जहाँ भी आप भोजन करते हैं जहाँ पर भी आप रखना पसंद करते हैं कि आपके बच्चों की नज़र पड़े ऐसी जगह पर रखिए, तो बच्चे क्या जैसे ही किचन में आएंगे नज़र पड़ेगी कि ये क्या चीज़ है मम्मी, ये तो हमको खानी है, एकदम बच्चे खुद मांगेंगे। तो माता तो बड़ी खुश हो जाएगी ना, क्योंकि हर माँ चाहती है कि उसका बच्चा फल फ्रूट खाए ताकि हेल्दी रहे, है ना। तो अब नहीं खाते, अक्सर बच्चों के नखरे होते हैं, वो ऐसी चटपटी चीज़ें खा लेंगे लेकिन फ्रूट से दूर भागते हैं। तो जो भी बच्चे दूर भागते हैं फ्रूट से, उनको आप इस तरीके से खिलाएंगे तो ज़रूर बच्चे खुद मांगेंगे और बड़े चाव से बड़े प्यार से खाएंगे। ठीक है, तो एप्पल काटना तो आपने सीख लिया ना। अब देखिए, ये क्या वीडियो तो है नहीं कि मैं आपको काट करके बता दूं, लेकिन अभी सेजल ने क्या है प्रैक्टिकल में काटा है और काट करके मुझे बता रहे हैं कि दीदी ऐसे ऐसे किया जाता है और आपके सामने बोल रहे हैं। तो बहुत ही सुंदर लग रही है ये एप्पल, ज़रूर आप भी ट्राई करिएगा। अगर कहीं कुछ आप भूल जाए या नहीं सही तरीके से हो रहा है तो आप फोन कॉल्स कर सकते हो, नंबर तो आप जानते ही हो, 9414151415 पर आप फोन कॉल्स करिएगा। और एप्पल काटने का तरीका में कुछ भी थोड़ा सा आपको गड़बड़ लग रहा है तो हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो सेजल बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने बहुत ही अच्छा क्रिएटिव तरीका सिखाया है एप्पल को कैसे काटा जाता है।
1: थैंक्स।
0: आइए आज के प्रश्न की तरफ फिर से बढ़ते हैं। आज का प्रश्न बड़ा ही सरल है, ध्यान से सुनेंगे कि 5 जून को हम सभी कौन सा दिवस मनाने जा रहे हैं और पृथ्वी दिवस कब है। ठीक है, दो प्रश्न है, दो जवाब आपको देना है। नंबर रेडियो मधुबन के है 94-14-15-14-15। और आइए एक गीत सुनने के बाद हम पुनः लौट रहे हैं, तो बने रहिएगा आशियाना में, सुनते रहो मुस्कुराते रहो रेडियो मधुबन।

0: मधुबन हमारे जीवन को सुखमय व समृद्धशील बनाता है। सभी प्रोग्राम्स को बेहतरीन अंदाज में नवीनता को लिए बेहतरीन क्वालिटी के साथ
1: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 मेगाहर्ट्ज पर, 107.8 FM पर। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: पुणे आशियाना में आप सभी का स्वागत है। महेश भाई शर्मा आबू रोड से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नमस्कार नमस्कार महेश भाई, कैसे हो आप?
1: नमस्कार जी, नमस्कार, बढ़िया है, एकदम फर्स्ट क्लास है जी।
0: जी जी, और आज के प्रश्न का जवाब देंगे आप?
1: हाँ बोलो, क्या प्रश्न है जी?
0: जी, आज का प्रश्न है, 5 जून को हम सभी कौन सा दिवस मनाने जा रहे हैं और पृथ्वी दिवस कब है?
1: अच्छा, 5 जून को ये आ रहा है मातृ दिवस, मदर डे, ये तो नहीं है?
0: वो तो आपको जवाब देना, अभी हम नहीं बताएंगे।
1: अच्छा, मदर

0: ठीक है।
1: अच्छा
0: वाह,
1: दो प्रश्न है, दो जवाब आपको देना है। पृथ्वी दिवस कब है? हाँ जी,
0: पृथ्वी दिवस।
1: हाँ जी,
0: पृथ्वी दिवस तो यार जानते हो सर मेरे भी।
1: कोई बात नहीं, आप फिर से फोन कॉल्स कर सकते हो। ठीक है
0: ठीक है ठीक है ठीक है ठीक
1: जी, बहुत बहुत आभार आपका
0: जी।
1: तो आशियाना के किचन में आप सभी हो, और सेजल ने बहुत ही अच्छे तरीके से, क्रिएटिव तरीके से एप्पल को काटना सिखाया, जिसको हम सेब भी कहते हैं, तो बहुत ही अच्छे तरीके से काटा है। अब आइए मैं आपको सिखाती हूँ कि अमरुद को कैसे काटा जाता है। लेकिन हमारे पहले श्रोता बंधु जुड़ना चाहते हैं, तो उनसे ज़रूर बात करेंगे। नमस्कार, स्वागत आपका रेडियो मधुबन में।
2: फिरोज भाई पालमपुर से बोल रहा हूँ।
1: हाँ जी फिरोज भाई, नमस्कार, कैसे हो आप?
2: बस एकदम अच्छे। अभी मेरे पास बहन जी रेडियो नहीं है, तो आज के कोई प्रश्न हो तो बोलो, बताओ।
1: हाँ जी, आज का प्रश्न है, 5 जून को हम सभी कौन सा दिवस मनाएंगे, और मतलब पृथ्वी दिवस कब है?
2: पृथ्वी दिवस,
1: हाँ जी, 5 जून को कौन सा दिवस मनाने जा रहे हैं हम सभी, और पृथ्वी दिवस कब है?
2: अच्छा जी, तो पृथ्वी दिवस है ये अपना 22 अप्रैल
1: जी। और दूसरा जवाब?
2: और दूसरा सवाल है, ये 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, और उसमें क्या वो 5 तत्वों का जो ये प्रदूषण हो रहा है, तो उसको बचाने के लिए जंगल है, हवा है, पानी है, उसका वो पर्यावरण को बचाने के लिए कुछ करना चाहिए
1: जी।
2: और दूसरा ये 22 अप्रैल को जो पृथ्वी पर जो ये हो रहा है, तो उसका जो
1: ये हम बात करेंगे फिरोज भाई, विस्तार में हम बात करेंगे। आज तो प्रश्न का जवाब ही दीजिएगा, जब भी होगा उस दिन हम बात करेंगे, है ना?
2: जी जी जी जी,
1: तो बहुत बहुत आभार आपका। तो अब आप सभी आशियाना के किचन में हैं, और मैं आपको सिखाने जा रही हूँ अमरुद को कैसे हम काटेंगे कि बच्चे फिर से नहीं दोहराऊंगी, मैं पहले भी बोल चुकी हूँ कि हम अच्छे क्रिएटिव तरीके से फल फ्रूट को काट के रखते हैं, तो बच्चे अपने आप वो मन से मांगते हैं और खा भी लेते हैं। तो अमरुद की धुलाई करिएगा, धुलाई करके स्वच्छ कपड़े से पोंछिएगा। अगर थोड़ा सा बड़े साइज का है तो अच्छी बात है, ठीक है, और नहीं है तो कोई बात नहीं, जो भी साइज है आप लीजिएगा। और हमारे श्रोता बंधु से हम जरूर बात करेंगे, लेकिन हम यही कहेंगे कि विषय को जो हम सिखा रहे हैं उसको पूरा करके। पर अभी चलिए उठा लेते हैं फोन। हेलो
3: हेलो, नमस्कार, ओम शांति उषा बहन जी।
1: हाँ जी नमस्कार दयाराम जी, कैसे हो आप?
3: बिल्कुल अच्छा हूँ, बढ़िया हूँ, बाबा की कृपा है, आप सभी मित्रों की कृपा है, और आज मधुबन सुन रहा था, बहुत ही अच्छे नुस्खे भी बताए, और एप्पल भी किस तरह काट के रखना चाहिए वो भी सिखाया, तो बच्चों को भी कोई भी नहीं खा सकता, वो भी अपनी ओर आकर एप्पल को देख कर आकर्षित होगा, खाएगा।
1: जी जी दयाराम जी, आज के प्रश्न का जवाब देंगे आप?
3: बिल्कुल मैम।
1: हाँ जी, प्रश्न तो आपने सुना ही है या दोहराऊं?
3: मैंने सुना है दीदी
1: जी।
3: आज के प्रश्न का सही जवाब है, जो हम 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाती है और 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाती है, तो विश्व पर्यावरण दिवस इसलिए मनाया जाता है, तो प्रकृति के प्रति सभी को जागरूक करना है।
1: जी जी जी, हम उस दिन जरूर बात करेंगे, है ना, जिस दिन विश्व पर्यावरण दिवस होगा उस दिन आप जरूर जुड़िएगा, ठीक है? बहुत सारे विस्तार में हम बातें करेंगे। बहुत बहुत आभार, आप रेडियो मधुबन से जुड़े और आपने प्रश्न का जवाब देने की काफी अच्छी कोशिश की। तो बहुत ही देखिए सुंदर तरीके से आपको सिखाने जा रही हूँ अमरुद को कैसे काटेंगे, अमरुद जिसको हम राजस्थान में जामफल भी कहते हैं, ठीक है। आप जो भी साइज है लीजिएगा, धुलाई करके स्वच्छ कपड़े से पोंछ करके, फिर ऊपर जो थोड़ा सा डंठल ऐसा होता है ना, उसको आप कट करके निकाल दीजिए। अब आप नीचे की साइड में से तो चिपका रखना है, ऐसे बिल्कुल फांके अलग नहीं पड़नी चाहिए, और सभी तरफ से फांके इस आकार से काटिएगा कि जैसे कि गुलाब का फूल दिखाई दे, ऐसा ही। तो बीच में जो आप काटेंगे ना, तो बीच में से तो आप वो कटिंग रखिएगा, और अब आपको क्या करना है, ऐसे ही 3 कट आपको लगाना है, आड़ा कट, ठीक है, थोड़ा सा नीचे तक, लेकिन नीचे का डंठल अलग नहीं होना चाहिए, नीचे का जो भाग है उससे अलग नहीं होना चाहिए। नीचे का भाग चिपका रहे, ऊपर आप वो डंठल का भाग काट करके फिर बीच में थोड़ा सा रखना है, साइड में से मोटी मोटी स्लाइस तीनों तरफ से आपको कट करनी है। कट करने के बाद भी पूरे अलग नहीं करनी है, उसके बाद उसके लंबे लंबे चीरे लगाने हैं, तो सब तरफ से ये फांके हो जाएगी और बीच में वो जो डंठल का भाग काटा है वो डंडी की तरह दिखाई देगा, पतला पतला डंडी दिखाई देगा और नीचे से चिपका रहेगा। तो इस तरह अमरुद को काट करके भी अगर आप अपनी मेज पर रखते हैं, टी टेबल पर रखते हैं या डाइनिंग टेबल पर रखते हैं एक प्लेट के अंदर, तो भी बच्चे आकर्षित होंगे, खुद ब खुद मांगेंगे कि ये क्या चीज़ है मम्मा, ये हमें खाना है। तो बच्चे बड़े ही उत्साह से मांगेंगे और हर एक की इच्छा रहती है कि बच्चे इस तरह के फ्रूट खाए। तो इस तरह आप काट करके रख सकते हैं। देखिए हम सीधे सिंपल तरीके से सभी काटते हैं, लेकिन कभी कभी क्रिएटिव तरीका भी आजमाते हैं तो कुछ नवीनता भी आ जाती है और बच्चे बड़े चाव से बड़े प्रेम से खाते हैं। और बच्चे स्कूल जा रहे हैं तो भी उनके डिब्बे में इस तरह आप काट करके रख दीजिए टिफिन बॉक्स में, तो वो खोलेंगे तो अपने आप ही इच्छा हो जाएगी कि हम खा ले, है ना। तो ये अमरुद की कटिंग हो गई। अब मैं एक और तरीका बता रही हूँ, पापड़ जो जग जाहिर है, भोजन के साथ अक्सर लोग पापड़ लेते ही हैं, पापड़ को हम सेकते हैं, ठीक है, सेकते हैं, उस समय वो गरम गरम होता है तो एकदम नरम होता है, फिर वो ठंडा हो जाता है तो फिर वो कड़क हो जाता है। तो आप क्या करेंगे, पापड़ को सेकने के बाद उसका आकार समोसे की तरह कर दीजिए, फिर आप रखिए प्लेट में, कोई मेहमान भी आ गए या बच्चे हैं या आप खाना चाहते जो भी है घर के अन्य परिवार के सदस्य हैं, सभी को आप प्लेट में जो पापड़ पूरा ही सेक करके ऐसे खुला खुला रखते हैं, इसकी जगह आप समोसे का आकार दे करके फिर आप रखिए, फिर ये ठंडा होने के बाद आकार आप नहीं दे पाओगे और ये टूटेगा नहीं, ठीक है ना, जब तक आप प्रेशर नहीं दोगे तो टूटेगा नहीं। इसलिए जैसे ही सेका तुरंत ही गरम गरम को आप जो भी आकार चाहे दे सकते हो और फिर आप भोजन में पिरसिए पापड़ को, तो इस तरह भी अच्छा लगेगा कि अरे वाह ये क्या चीज़ है। एक सेकंड के लिए तो इंसान कंफ्यूज हो जाएगा कि ये क्या चीज़ है, कहीं समोसा तो नहीं लेकिन समोसा तो आप सभी जानते हो कि समोसा का थोड़ा सा कलर अलग होता है, थोड़ा फुला हुआ होता है, लेकिन फिर भी एक नई चीज़ समझेंगे कि ये क्या चीज़ है, फिर समझ जाएंगे कि अच्छा पापड़ है लेकिन बहुत अच्छे तरीके से रखा है। तो वो कहते हैं ना कि ऐसे नहीं कि हमको भाई रोज भोजन कर रहे हैं और चलेगा, चलाना नहीं है, भोजन को आप रोज ही अलग अलग तरीके से रखिएगा और बड़े प्यार से बड़े ही भाव से रखिएगा कि खाने वाले की अपने आप इच्छा उत्पन्न हो और बड़े प्यार से वो भी खाए। तो ये पापड़ भी हो गया है और मसाला पापड़ भी आप बना सकते हो। मसाला पापड़ के लिए भी आप क्या करेंगे, जैसे पापड़ आपने सेक लिया, ठीक है, सेक करके इसको एक कोन का आकार दे दीजिए, जैसे हम कोन वाली आइसक्रीम खाते हैं ना, ऐसे कोन का आकार आपको देना है। फिर इस आकार में आप थोड़े से टमाटर की कटिंग कर लीजिए, पत्ता गोभी की बारीक बारीक कद्दूकस कर लीजिए या कटिंग कर लीजिए, और हरा धनिया भी इसमें डाल दीजिए, अनार के दाने भी, इन सभी को थोड़ा सा मिक्स करके इसमें आप थोड़ा जलजीरा डाल सकते हैं, थोड़ा सा सेंधा नमक और ये सभी, मतलब काली मिर्च पाउडर भी आप चाहो तो डाल करके मिक्स करके आप पापड़ के अंदर भर करके, जैसे कोन बनाते हैं उसमें आइसक्रीम होती ना, ऐसे आप इसमें भर के भी प्लेट में दे सकते हो। तो देखिए सलाद भी हो जाएगा साथ में और पापड़ भी हम भोजन में रखते हैं तो पापड़ भी हो जाएगा। तो हो गए ना एक पंथ दो काज, कि पापड़ भी है सलाद भी है और खाने वाले बड़े प्यार से खाएंगे कि वाह क्या खूब सजा के रखा है। तो कुछ जीवन में क्रिएटिव ज़रूर होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए पापड़ अमरूद एप्पल सबको क्रिएटिव तरीके से तो सजा दिया है। अब भोग तो कोई भी चीज़ हम बनाते हैं, भोग ज़रूर लगाइएगा, सात्विक चीज़ों का भोग लगाना आवश्यक है, क्योंकि देखिए भोग लगाते समय हमारी भावनाएं एकदम निश्चल हो जाती है ना, बहुत ही भाव पूर्ण हो जाती है, बड़े ही ईश्वर के प्रति प्रेम की भावना उमड़ती है, तो वो वाइब्रेशंस भी भोजन में जाते हैं, जो भी हम बना रहे हैं उसमें जाते हैं, और फिर वो जो भी परिवार के सदस्य स्वीकार करते हैं तो उनमें भी वो भाव उत्पन्न होते हैं। इसलिए भोजन हमेशा प्यार से पिरसना चाहिए और भोजन को प्यार से करना चाहिए। भोजन करते समय अक्सर हम देखते हैं ना, कुछ भी खाते पीते हैं तो मोबाइल देखते हुए खाते हैं, भले मुँह का कवा खत्म हो गया है दूसरा कवा लेना है, लेकिन नहीं, मोबाइल में लगे हुए हैं। इसलिए कितने ही जने क्या भोजन के समय मोबाइल चलाते हैं तो आधा आधा घंटा पौन पौन घंटा पूरा कर देते हैं। ऐसा नहीं करना है, भोजन और भजन हमेशा एकाग्रता में करना है, हमेशा एकांत में करना है। एकांत बोले तो ऐसा नहीं कि परिवार के सदस्यों से हट करके आप करो, नहीं, परिवार के सभी सदस्यों के साथ करिए, प्यार भी बढ़ेगा, स्नेह भी बढ़ेगा, और हो सके तो उस समय बातें कम करिएगा, भोजन पर ज्यादा ध्यान रखिएगा, और साथ ही साथ ईश्वर का धन्यवाद भी करिएगा कि परमात्मा सभी को भूखा उठाता है लेकिन किसी को सुलाता नहीं है। तो अच्छी अच्छी भावनाओं के साथ जब हम भोजन करते हैं तो सचमुच में वो भोजन एकदम महाप्रसाद बन जाता है और वो हमारे मन बुद्धि पर बहुत ही अच्छा पॉजिटिव असर करता है। ठीक है, तो ये तो आपने क्रिएटिव तरीका सीखा है। अब हम गीत सुन करके पुनः आशियाना में आगे बढ़ेंगे। तो आज के प्रश्न में फिर से दोहरा रही हूँ, बहुत ही सुंदर और सरल प्रश्न है। आप ऐसा मत सोचिएगा कि अरे भाई हमारे श्रोता बंधु जुड़ रहे हैं, जवाब दे रहे हैं, जरूरी नहीं कि सभी का सही है। और मान लीजिए सही है तो भी क्या बात है, आपका भी तो नॉलेज काम आना चाहिए ना। तो आप भी जरूर जुड़िएगा रेडियो मधुबन से और जवाब देने की कोशिश जरूर करिएगा कि 5 जून को हम सभी कौन सा दिवस मनाएंगे और पृथ्वी दिवस कब है। तो जवाब देने के लिए रेडियो मधुबन के नंबर है 94-14-15-14-15। और आइए अब सुनेंगे गीत, उसके बाद हम पुनः आपसे रूबरू होंगे। तो सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन।

0: आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन।
1: कृपया चलती गाड़ी में चढ़ने का प्रयास ना करें, यह जानलेवा हो सकता है। रेल के डिब्बों की छत पर बैठकर यात्रा ना करें, क्योंकि ओवरहेड वायर्स में 25,000 वोल्ट का करंट है। इनके संपर्क में आने से आपकी जान को खतरा हो सकता है।
0: रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
2: जीवन में नवीनता लाते रहिए, जीवन में नवीनता लाते रहिए और जीवन को खुशनुमा बनाते रहिए। आप सुन रहे हो कार्यक्रम आशियाना, और आशियाना में अब हम खुशनुमा जीवन की बातें करेंगे कि जीवन में नवीनता लाते रहिए और जीवन को खुशनुमा बनाते रहिए। क्या कहेंगे आप, हम तो आपके द्वारा जानना चाहते हैं। आज का प्रश्न भी बहुत ही सुंदर और सरल है, विषय भी बहुत अच्छा है, जरूर आप जुड़िएगा। आज का प्रश्न है, 5 जून को हम सभी कौन सा दिवस मनाएंगे और पृथ्वी दिवस कब है। 2 प्रश्न है, 2 जवाब आपको देना है, क्योंकि सरल प्रश्न है, तो दोनों ही प्रश्नों के जवाब जरूर दीजिएगा। और विषय भी बहुत ही सुंदर है कि जीवन में नवीनता लाते रहिए और जीवन को खुशनुमा बनाते रहिए। दोनों में ही आप जरूर जुड़िएगा, जवाब भी दीजिएगा, अपने विचार भी व्यक्त करिएगा। नंबर हमारे है 9414151415 पर आप फोन कॉल्स कर सकते हो और आज के विषय को आप स्पष्ट कर सकते हो कि जीवन में नवीनता लाना क्यों जरूरी है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये उषा दीदी पता नहीं क्या क्या विषय लेकर के आ जाती है, लेकिन नवीनता तो देख के हर कोई चाहता है ना। चाहे हम कितने भी पैसे वाले हैं या कितनी भी फैसिलिटी में रहने वाले हैं, लेकिन फिर भी थोड़े दिनों में ही हम ऊब जाते हैं उन चीज़ों से। फिर ऐसा लगता है कि अरे क्या रोज़ ये का ये, कुछ तो नवीनता होनी चाहिए। फिर लोग प्लान बनाते हैं, चलो थोड़ा सा घूम आए या फिर चलो कुछ नया करें, कुछ बनाए, जैसे कि भोजन का ही देख लेते हैं, ठीक है। रोज़ आपको सुबह पोहे खिला दिया जाए नाश्ते में, दिन के खाने में आपको रोटी सब्जी और शाम को कड़ी खिचड़ी, रोज़ यही, कोई चेंज नहीं। 4 दिन में आप लोग थक जाएंगे और आप ज़रूर कहेंगे कि अरे ये क्या, रोज़ पोहे, रोज़ रोटी सब्जी और रोज़ कड़ी खिचड़ी, ना भाई ना, कुछ तो बनाओ, है ना। सभी के साथ होता है, घबराइए नहीं, ऐसा नहीं कि आप अकेले ही हैं, हर कोई। मैं भी होंगी तो मैं भी 4 दिन के बाद 5वें दिन परिवर्तन जरूर चाहूँगी कि नहीं नहीं, मुझे भी कुछ अलग बना करके खाना है। चाहे कोई बना के दे या नहीं दे, स्वयं ही बनाने लग पड़ते हैं फिर। तो जीवन में नवीनता क्यों जरूरी है, आपका क्या ख्याल है? क्या आप नवीनता नहीं चाहते हैं? नवीनता चाहते हैं तो जरूर जुड़िएगा। भाई फोन कॉल से लगाना है आपको, ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, नंबर लगा दीजिए 9414151415 पर कि आप किस तरह की नवीनता जीवन में लाते हैं। देखिए कपड़े का भी देख लीजिए, हम रोज ही आपको कोई कह दे कि आपको यही ड्रेस पहननी है 2 दिन में, ठीक है, आज पहननी है, कल धुलाई करनी है, कल दूसरी ड्रेस, फिर परसों वापिस पहननी है, 1 सप्ताह तो आप चला लेंगे। 1 सप्ताह के बाद आप क्या करेंगे, अरे मैं रोज क्यों ये पहनूं,

0: क्या मेरे पास कपड़े नहीं है? नहीं है तो लाने की कोशिश करेंगे और चेंज करने की कोशिश करेंगे कि आज ये कल वो परसों वो। तो हर चीज़ में हम नयापन देखते हैं, नवीनता चाहते हैं, तभी तो जीवन एक सुंदर तरीके से चलता है और शांति भी रहते हैं जीवन में। हेलो, हमारे श्रोता बंधु थे शायद, चलिए फिर से फ़ोन कॉल्स करेंगे, कुछ कारण से बात नहीं हो पाई है, कोशिश कर रहे हैं। हेलो
1: नमस्ते, सुरेश भाई बोलता हूँ।
0: हाँ जी सुरेश भाई नमस्कार, स्वागत आपका रेडियो मधुबन में, कैसे हो आप?
1: बस बिल्कुल बढ़िया है, अच्छे है और अच्छी बातें भी सुन रहे हैं और विषय भी बहुत अच्छा रखा है और कहीं ना कहीं बिल्कुल सही दीदी बताया आपने कि भोजन की भी जो आपने बात की थी, हम हर रोज इतना ही भोजन करते हैं तो थोड़ा सा ऐसा लगता है इतना क्या खाना, कुछ अच्छा बनाइए कुछ नया बनाइए, ये भी सही है। हमारा रोज इतना एक कपड़े पहनते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है चलो आज दिन के दिन नया कपड़ा पहनते तो अच्छा रहेगा, कुछ नया चेंजिंग करेंगे। तो जीवन में भी दीदी ऐसा ही है कि हम कुछ न कुछ नया करने की जरूरत है। देखो हम कोई भी काम करते हैं तो अच्छा काम करते हैं तो बुरा भी काम करते हैं, कभी कभी अच्छा भी काम करते हैं, लेकिन हम कुछ नया चेंज करें, चलो आज हमने एक अच्छा काम कर दिया, चलो सेवा को कोई काम कर दिया तो हम आगे जाते और भी कोई नया सेवा का काम करेंगे, थोड़ा आगे जाके कुछ किसी को मदद करेंगे, किसी को कुछ काम आएंगे और कुछ नया करने की भी कोशिश करेंगे। जीवन में कई मोड आते हैं दीदी
0: जी,
1: और परिवर्तन बिल्कुल जरूरी है, परिवर्तन के बिना तो जीवन चलता ही नहीं है
0: जी।
1: हम एक ही बात हर दौर लगा रखे हैं तो कोई ऐसा ना करे, लेकिन कुछ नया करने की कोशिश जरूर करना, तो नया चेंजिंग करना है जीवन में, कुछ नया धारण करना है, कोई अच्छी सेवा अच्छी कोई बात किसी को काम आना, किसी की मदद करना, ये भी जरूरी है
0: जी।
1: तो बस हम तो यदि यही कि हर रोज नया कुछ करने की कोशिश जरूर करना जीवन में। हम कभी कभी हमारे को कच्चा किसी के पास हम बैठते तो अच्छा कोई किसी को गुण धारण करना ये भी जरूरी है
0: जी। तो सुरेश भाई जैसे आप सिलाई काम करते हैं, ठीक है, रोज एक जैसे सिलते हैं या कुछ अलग अलग डिजाइन भी रखते हैं आप?
1: नहीं दीदी हम अलग अलग काम करते हैं
0: जी,
1: कभी कपड़े तो एक जैसा नहीं आते हैं और एक डिजाइन भी नहीं आती है, डिजाइन में थोड़ा परिवर्तन करना पड़ता है
0: जी,
1: चेंजिंग बननी करनी पड़ती है। हम कभी नए कोई फैशन आती है तो नए फैशन का भी बनाना पड़ता है
0: जी। तो फिर आप पहले सीखते हैं फिर बनाते हैं?
1: हाँ पहले देखते हैं बाद में बनाते हैं
0: जी।
1: और कभी कभी तो खुद पोस्टर भी ऐसा आता है कि इस पोस्टर से बनाना है तो बन जाता है
0: जी जी जी,
1: और हम बना भी देते हैं,
0: कोशिश करते हैं तो हो जाता है।
1: हाँ हो जाता है क्योंकि आज देखो कितनी फैशन डिजाइन जो मार्केट में आ रही है तो चलना तो जरूरी है
0: जी।
1: इतना ही कपड़ा हम एक टाइप का पहनते तो पता ऐसा लगता है, देखो हम एक एक सैंपल दे तो जो जेठालाल का कार्यक्रम हम देखते हैं
0: जी।
1: तो खुद जेठालाल अलग अलग फिर डिजाइन का कपड़ा पहनते हैं
0: अच्छा। जी।
1: तो मैं कई बार देखा है कि सभी जो शॉर्ट होता है इसका अलग अलग डिजाइन का बनता है
0: जी।
1: तो चेंजिंग जरूरी है दीदी, और करना है जीवन में चेंजिंग करना है
0: जी,
1: तरीके से भी जीना है
0: जी जी। बहुत सुंदर, आभार आपका जी। तो ये थे सुरेश भाई झोटाना से, सिलाई काम करते हैं तो आपका कहना है कि सिलाई में भी हम नवीनता लाते हैं, कितनी बार तो पोस्टर के द्वारा भी डिजाइन कही जाती है कि ये पोस्टर और ये डिजाइन आपको डालनी है तो भी बता रहे हैं कि हो जाता है, बिल्कुल कोशिश करते हैं तो हो जाता है सब कुछ। तो नवीनता जीवन में लाना बहुत जरूरी है, आपका क्या ख्याल है? हर कोई चाहता है जीवन में नवीनता लाना, क्योंकि भाई आज भले हम क्रिएटिव नहीं करते हैं ना, रोज ही कुछ न कुछ होता रहता है। हेलो
2: हेलो नमस्कार, ओम शांति दीदी।
0: हाँ जी हाँ जी नमस्कार दयाराम जी, कैसे हो आप?
2: बहुत ही अच्छा हूँ, बढ़िया हूँ, दोस्तों मित्रों की कृपा है और आसपास का माहौल भी अच्छा है और हरदम कुछ नया नया करने की जो जोश और जज्बा रखते है और हर दिन कहीं न कहीं से कोई नई जानकारियों भी प्राप्त करके और ये ऐसे कोई ग्रुप बनाए हुए उसमें डालना ये हमारा स्वभाव है। तो दीदी मैं एक मेरा जो एग्जाम बताता हूँ
0: जी,
2: जो मैं दीदी पहले किसान था तो हम कई मजदूरियों करते थे तो उसमें कहीं हमें सफलता ही नहीं मिलती थी, जैसे हम जो 400-500 रुपये मिलते थे तो उसमें हमारा गुजारा जो पूरा चलता ही था, तो हमने कुछ न कुछ नया करने के लिए सोचा और कुछ पैसे ब्याज के लाके कुछ दो भैंसे खरीदी और दो भैंसे जो ब्याई तब हमने डेयरी में दूध भरना चालू कर दिया
0: जी।
2: डेयरी में दूध भरना चालू कर गया तो हमारी एक आमदनी आने लगी हर साल 5,000-6,000 रुपया महीने का, जो 10,000 तक पगार आया करते थे
0: जी।
2: तो हमने कुछ नया करने के लिए प्लान बनाया और सोचा, तभी हम आगे बढ़ पाए और उसमें हम सफल भी हुए
0: जी।
2: तो हर इंसान इस तरह का कार्यक्रम अच्छा अच्छा नया करने का कुछ जज्बा रखे, कुछ अपने जो माइंड से काम ले तो वो बिल्कुल एक खुशनुमा जीवन जी पाएंगे और दूसरों को भी प्रेरणा रूप भी बनेंगे। बस नमस्कार दीदी
0: जी,
2: सभी
0: बहुत
2: को,
0: सुंदर
2: आपको भी
0: बहुत सुंदर, आभार आपका दयाराम जी। तो ये दयाराम जी लाखनी से थे और इनका कहना था कि पहले ये किसान थे लेकिन किसान के साथ साथ जैसे 400-500 रुपए कमा लेते थे लेकिन गाय भैंस ला करके दूध बेचना शुरू किया तो और भी ज़्यादा पैसा मिलने लगा। तो बिल्कुल हर कोई चाहता है कि कुछ और भी नया करे। एक रस जीवन में टिक नहीं सकता है क्योंकि एक रस से हम बोर हो जाते हैं, अलग अलग रस को सभी प्राप्त करना चाहते हैं। जैसे कि मैंने आपको भोजन में कहा ना कि एक तरह का भोजन 4 दिन के बाद 5वें दिन तो बंदा परेशान ही हो जाएगा और कुछ न कुछ जरूर डिमांड करेगा कि भाई कुछ अलग बनाओ। तो हर कोई जीवन में नवीनता चाहता है और नवीनता के द्वारा ही ये खुशियाँ बरकरार रहती हैं। हम और भी आपसे रूबरू होंगे, मिलेंगे, परंतु समय हो चला है एक अल्प विराम लेने का। तो अल्प विराम लेकर के पुनः लौट रहे हैं, बने रहिएगा आशियाना में, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन।

जो था कंगाल केसरिया आज बजरिया गाता है। आप सुन रहे हो कार्यक्रम आशियाना और आशियाना में हम खुशनुमा जीवन की बातें कर रहे हैं कि कैसे जीवन में नवीनता लाना जरूरी है, जीवन में बदलाव लाना बहुत जरूरी है। तो बहुत ही हमारे श्रोता बंधुओं ने भी अच्छी बातें बताई है। हम तो चाहते हैं कि आपके द्वारा और भी सुने कि कैसे हम जीवन में नवीनता लाएंगे, कैसे हम अपने जीवन को क्रिएटिव बनाएंगे। देखिए जैसे कि आप आशियाना सुनते हैं, ठीक है, अब मैं रोज एक एक भजन सुनाऊंगी या एक ही गीत या एक ही कविता रोज सुनाऊंगी तो आप बोर हो जाएंगे ना। आप क्या कहेंगे, अरे ये उषा दीदी तो पता नहीं दूसरा कुछ सुनाती नहीं है, एक ही भजन एक ही कविता या एक ही गीत सुनाती है। दूसरे दिन आप सुनना बंद कर देंगे। हर कोई नयापन चाहता है, हर कोई बदलाव चाहता है, तो कौन लाएगा, हमें ही लाना पड़ेगा ना। देखिए हमारे वैज्ञानिक है, अगर वो आविष्कार ही नहीं करते तो क्या हम साइंस के इतने चीजों का आनंद ले पाते हैं? नहीं ले पाते ना। हम बस में ही चलते हैं, फ्लाइट आती नहीं तो फ्लाइट में कभी जाते ही नहीं, ट्रेन नहीं आती, या फिर मान लीजिए बस नहीं आती, या भले मान लीजिए टू व्हीलर नहीं आता, लेकिन नवीनता आई है ना। समय के साथ बदलाव आया है और बदलाव आया है तो क्रिएटिविटी बढ़ी है ना, इसलिए कुछ ना कुछ करते रहिए। छोटे बच्चे को आप देखोगे खिलौने खेलते हैं लेकिन वो भी अजीब तरीके से खेलेंगे, कुछ ना कुछ बनाने की कोशिश करेंगे, है ना, कुछ ना कुछ बनाएंगे। जैसे हम उनको खिलौने देंगे, जो भी करेंगे तो उनको गोल गोल गोल गोल सजाएंगे या टेढ़े मेढ़े सजाएंगे, लेकिन कुछ ना कुछ वो करते रहेंगे। उनको देख करके हमें भी बड़ा अच्छा लगता है कि वाह देखो बच्चे ने क्या मतलब किस तरीके से ये सजा रहे हैं। भले उनको नहीं पता कि वो क्या कर रहे हैं, लेकिन उनके इन छोटी सी हरकत को देख करके हमें तो आनंद आता है ना कि बच्चे भी कुछ करना सीख रहे हैं। जैसे बच्चों को पढ़ाना सिखाते हैं, भाई वन लिखो एक लिखो, गुजराती में तो एक एक कहते हैं, लेकिन हम जब वन लिखाना सिखाते एक लिखाना सिखाते हैं, बच्चे को बार बार घुटाते हैं और बार बार वो घोटता है उसी को एक, जब तक वो परफेक्ट नहीं होता आगे नहीं बढ़ते, लेकिन जैसे ही उसको एक लिखना आ गया फिर वो कुछ और सीखने की कोशिश करेगा कि एक तो लिख लिया ना, कितनी बार सिखाओगे, अब आगे बताओ। फिर हम उसको दो सिखाएंगे, फिर तीन सिखाएंगे, तो बच्चों के लिए तो वही नवीनता है ना। ऐसे हर एक के जीवन में नवीनता बहुत जरूरी है, नहीं तो जीवन से हम बोर हो जाएंगे, और जीवन से बोर नहीं होना है। जहां हम जीवन से बोर हुए समझ लीजिए जीवन हमारा खत्म, निराशा में डूब जाएगा, और निराशा वाला जीवन भला कोई जीवन है? आप अक्सर देखते होंगे रास्ते में कोई मिलता है तो एक तो खिलखिलाहट के साथ मिलता है, उसके चेहरे की मुस्कुराहट देख करके ही आप में भी तरोताजगी आ जाती है कि चलो इस बंदे से बात ही कर लेते हैं, भले पहचान नहीं है फिर भी बोलेंगे राम राम जी, राम राम, नमस्कार, कुछ तो बोलेंगे ना, जय श्री कृष्ण, कुछ भी बोलेंगे, भले पहचान नहीं है लेकिन बोलेंगे। और एक आप देखेंगे कि अरे सामने वाले का चेहरा तो जैसे कि ऐसा लटका हुआ है कि 10 मन का वजन उसके सिर पर रख रखा है, तो पहचान वाला होगा फिर भी आप किनारा कर लेंगे, अरे भाई इसका मूड नहीं अच्छा लग रहा है, चलो अपन साइड से निकल जाते हैं, है ना, ऐसा होता है। तो जब एक उदास चेहरा कोई देखना पसंद नहीं करते हैं तो सोचिए कि जीवन में एक ही चीज एक ही चीज एक ही चीज कौन पसंद करेगा, कोई ना कोई नवीनता आती रहती है और आनी ही चाहिए। जैसे कि मैं आपको भोजन की बात बता रही थी कि हमारी माताएं बहनें हमारे भाई लोग भी ट्राई करते रहते हैं, बहुत जने तो YouTube में से भी चीजें सीखने की कोशिश करते हैं कि भाई परिवार वालों को रोज एक सा भोजन क्यों फिर से, चलो आज YouTube में से ये चीज सीख लूँ वो चीज सीख लूँ, ऐसे कुछ भी सीखेंगे और फिर बनाएंगे खिलाएंगे, तो ये सारी नवीनता है। तो जीवन में नवीनता बहुत जरूरी है, कुछ न कुछ करते रहिए मेरे प्यारे श्रोता बंधु। वो कहते ना एक ही आप लाइन में चलेंगे तो थक जाएंगे जीवन से, बोर हो जाएंगे, इसलिए कुछ न कुछ नवीनता जरूरी है। और हाँ जैसे कोई हमको कह दे कि आपको तो अब घर में ही रहना है एक सप्ताह के लिए, घर से बाहर नहीं निकलना है, कोई एक सप्ताह तक घर में नहीं रह पाएगा, घर में सब कुछ है, खाना पीना उठना बैठना पंखा लाइट हवा सब कुछ है पानी वगैरह, फिर भी हम एक सप्ताह घर में टिक नहीं सकते, अच्छा नहीं लगेगा, अरे हम क्या घर में ही बंधे रहेंगे क्या, क्यों हमें भी जीने का अधिकार है, इस तरह की बगावत भरी वाणी बोलने लगेंगे कि हम तो बाहर जाएंगे कौन रोक सकता है हमें। हर कोई चेंज चाहता है, अब बाहर क्या है, बाहर जाएंगे तो भी आना तो हमको घर में ही है, मिलेगा तो सब कुछ घर में से ही, फिर भी इंसान बाहर जाता है, क्यों जाता है कि भाई चार जनों से मिलेंगे, चार जनों से बात करेंगे, कुछ नया देखेंगे कुछ सीखेंगे, इसलिए हम घर से बाहर जाते हैं, है ना। तो कहने का भाव यही है कि जीवन में नवीनता बनी रहनी चाहिए, उसके लिए
ज्यादा खर्चा करने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि भाई नवीनता लाने के लिए हमें बड़े बड़े खर्चे करने पड़ रहे, हमें नहीं चाहिए नवीनता, ऐसा नहीं है। बिना खर्चे के भी आप नवीनता कर सकते हैं, जैसे कि भोजन के लिए आपको कहा है, जैसे कि कपड़ों के लिए कहा है कि भाई दो ड्रेस आप रोज पहनेंगे तो वो जल्दी फटेगी, चार ड्रेस पांच ड्रेस रखेंगे तो थोड़ी देर से फटेगी, और नवीनता आती रहेगी, आज ये पहन लिया दूसरे तीसरा दिन वो पहन लिया तो नवीनता आती रहेगी, बोर भी नहीं होंगे, है ना। तो ऐसा नहीं है कि हमें बड़े बड़े खर्चों के द्वारा ही जीवन में नवीनता लानी है। आप चाहो तो आप किसी भी तरह नवीनता ला सकते हो। जैसे आप घर से बाहर निकले हो, कोई बुजुर्ग है उनकी मदद कर लीजिए। जैसे बहुत सारे हम गांवों में देखते हैं पानी की व्यवस्था नहीं होती, बुजुर्ग भी जा करके दूर दूर से पानी लेके आते हैं, तो उनको कहिएगा कि आप रुक जाइए, हम आपके लिए ले आते हैं। ये भी एक नवीनता आ गई ना कि चलो कुछ तो किया आपने, किसी के लिए खुशियाँ मिली आपको अंदर से ही, वो भी दुआ देंगे और अंदर से भी खुशी होगी। कोई बच्चा है उसके माता पिता नहीं पढ़ा रहे हैं, गरीब का बच्चा है, तो आप उसको थोड़ी सी मदद कर लीजिए, पढ़ा दीजिए। ये भी एक नवीनता आ गई कि चलो कुछ तो किया है और हमारी पढ़ाई भी वो बनी रहती है, नहीं तो फिर एक समय आता है हम सब कुछ भूल जाते हैं। तो अपने जो भी शौक है मौज है उनको जिंदा रखिए और किसी न किसी तरीके से उसको आप आजमाते रहिए बीच बीच में, ठीक है। और कुछ नया सीखते रहिए, नया सीखेंगे तो जीवन में स्फूर्ति रहेगी और जीवन में खुशियाँ बनी रहेगी कि मैंने कुछ सीखा है। जैसे कि हमारे श्रोता बंधु ने बताया ना कि कैसे वो कपड़ों में भी नई नई डिज़ाइन डालते हैं, फिर खुशी तो मिलती है ना, अरे वाह मैंने तो सोचा ही नहीं कि ये डिज़ाइन मैं बना सकता हूँ या बना सकती हूँ, मैंने बना दी तो खुशी हुई ना। स्वयं से वो कहते हैं नवीनता ला करके स्वयं को ही खुश रखना है। दूसरों के साथ तो खुशी से रहना ही है, दूसरों को खुशियाँ देनी ही है, लेकिन सबसे पहले खुशी किसको मिलती है, स्वयं को मिलती है ना, कि मैं कुछ नया कर रही हूँ तो मुझे खुशी मिलेगी। जैसे मैं आपके समक्ष कभी दो पंक्तियाँ बना बना करके रखती रहती हूँ तो अब आपको कितनी खुशी मिलती है मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे खुशी मिलती है कि मैंने कुछ बनाया और आपके समक्ष पिरसा, है ना। तो नवीनता लाते रहिए, यही खुशनुमा जीवन का राज है कि नवीनता से ही हमारा जीवन और भी सुचारू रूप से चलता है और एनर्जी बनी रहती है। आइए अब फिर से सुनेंगे गीत, उसके बाद पुनः लौट करके आ रहे हैं, कहीं भी जाइएगा नहीं, सुनते रहो मुस्कुराते रहो रेडियो मधुबन।

0: हाय फ्रेंड्स, मैं हूं प्रवीण मंगल, शूद्र का चरना, और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं।
1: सवाल चाहे स्वास्थ्य का हो या सफाई का, जवाबों के लिए सुनते रहिए रेडियो मधुबन।
2: प्यारे श्रोता बंधु, समय अब समाप्त होने को आया है। आज के कार्यक्रम आपने सुने हैं, बहुत ही सुंदर कार्यक्रम था। विचार आप सभी ने सुना है कि मीठे वचन हमेशा बोलिए, इससे आपको सम्मान भी प्राप्त होगा, प्यार स्नेह सभी का मिलेगा। और रेसिपी में आज आपको क्रिएटिव तरीके से कैसे एप्पल काटा जाता है, अमरुद काटा जाता है, कैसे पापड़ आप समोसे की तरह डिजाइन बना कर रखेंगे या मसाला पापड़ बनाएंगे वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीज़ें। ऐसे नहीं कि खाली हमने सीखा ही वही है, बहुत सारी चीज़ों को आप क्रिएटिव तरीके से बना सकते हैं, सजा सकते हैं। और खुशनुमा जीवन की बातें भी बहुत ही अच्छी हुई। तो आज का प्रश्न बहुत ही सुंदर था कि 5 जून को हम सभी कौन सा दिवस मनाएंगे और पृथ्वी दिवस कब है। हमारे श्रोता बंधुओं ने सभी ने सही जवाब दिया है। सबसे पहले फ़ोन कॉल्स आया था माउंट आबू ढूंढई गाँव से मुरलीधर जी का। उन्होंने कहा है कि 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस है और पृथ्वी दिवस कल है 22 अप्रैल को। सुरेश भाई छोटाना से, महेश भाई शर्मा आबू रोड से, इन्होंने गलत जवाब दिया है। इन्होंने कहा 5 जून को मदर्स डे मनाएंगे, वो गलत है। फिरोज भाई पालनपुर से, आपका भी जवाब सही है। दयाराम जी लाखनी से, तो आप सभी ने सही जवाब दिया है, इसके लिए ढेर सारी तालियां। और बाकी सभी ने बहुत ही अच्छी कोशिश की है, इसके लिए भी सभी के लिए ढेर सारी तालियां। आज का मीठा मोती इस प्रकार है, दूसरों को बदलने का प्रयत्न करने के बजाय स्वयं को बदल लेना कहीं अधिक अच्छा है। अब मैं आपको नवीनता पर एक प्यारी सी कविता सुनाऊंगी, आप लेंगे कविता का आनंद और मुझे देंगे इजाजत। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए राम राम सा, जय श्री कृष्ण सा, गणिक खम्मा सा। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो रेडियो मधुबन। कल एक झलक जिंदगी को देखा, कल एक झलक जिंदगी को देखा, वो राहों पे मेरी गुनगुना रही थी, फिर ढूंढा उसे इधर उधर, वो आंख मिचोली कर मुस्कुरा रही थी। एक अरसे के बाद आया मुझे करार, वो सहला के मुझे सुला रही थी। हम दोनों क्यों खफा है एक दूसरे से, मैं उसे और वो मुझे समझा रही थी। मैंने पूछ लिया क्यों इतना दर्द दिया कमबख्त तूने, वो हंसी और बोली, मैं जिंदगी हूँ पगली तुझे जीना सिखा रही थी। दो पल की जिंदगी है, आज बचपन कल जवानी, परसों बुढ़ापा फिर खत्म कहानी। दो पल की जिंदगी है, आज बचपन कल जवानी, परसों बुढ़ापा फिर खत्म कहानी। चलो हम सभी हंस कर जिए, फिर ना आने वाली ये रात सुहानी, फिर ना आने वाला ये दिन सुहाना। कल जो बीत गया सो बीत गया, क्यों करते हो आने वाले कल की चिंता। कल जो बीत गया सो बीत गया, क्यों करते हो आने वाले कल की चिंता। आज और अभी जियो दूसरा पल हो या ना हो, आओ जिंदगी को गाते चले कुछ बातें मन की करते चले। आओ जिंदगी को गाते चले कुछ बातें मन की करते चले, रूठों को मनाते चले। आओ जीवन की कहानी प्यार से लिखते चले, कुछ बोल मीठे बोलते चले, कुछ रिश्ते नए बनाते चले। क्या लाए थे क्या ले जाएंगे, आओ कुछ लुटाते चले, आओ सबके साथ चलते चले। जिंदगी का सफर यूं ही काटते चलो।

0: बहू मुझे लड़का ही चाहिए।
1: माँ माँ माँ माँ माँ माँ अभी तो भगवान ने मेरे हाथों पे किस्मत की लकीरें भी नहीं बनाई और उनसे पहले ही आप सबने मेरी तकदीर का फैसला सुना दिया। माँ मुझे जी लेने दो, अपनी कसम मैं आपको कभी तंग नहीं करूंगी। माँ मेरी स्कूल फीस की चिंता मत करना, मैं भैया की किताबों से अपने आप ही पढ़ लिख जाऊंगी। और हाँ पापा से कहना मेरे दहेज की चिंता ना करे, मैं आपके साथ रहकर आपके बुढ़ापे का सहारा बनूंगी। अगर फिर भी आपको लगता है कि मैं आप पर बोझ बनूंगी तो आप इस ऑपरेशन पर भी खर्चा मत करना, मैं ही भगवान जी से कह दूंगी कि मेरी माँ मेरा मरा मुंह देखे।
2: माँ अब तो बस करो।
0: बहू क्या सोच रही हो, घर चले, नन्नी परी के स्वागत की तैयारियां भी तो करनी है ना। चलो
3: शोक को कवर ना बनाए, खुशी खुशी बिटिया को दुनिया में लाए।
4: रेडियो मधुबन 107.8 FM सुन रहे हैं आप, कार्यक्रम है लव यू जिंदगी। दोस्तों कभी कभी ना जब हम पढ़ाई करते हैं तो कुछ सब्जेक्ट टफ लगते हैं, कुछ आसान लगते हैं, पर फिर भी जिंदगी का सब्जेक्ट सबसे ज्यादा मुश्किल लगता है कभी कभी। कभी कभी अपनी भावनाओं को समझना ही आसान नहीं लगता और लगता है बाकी चीजें तो समझ में आ रही है पर खुद को कैसे समझे। तो अगर सवाल आपके दिल में भी है तो जवाब हमारे पास है क्योंकि ये कार्यक्रम ही ऐसा है। दोस्तों हमारे साथ जुड़ जाते हैं हमारे एक्सपर्ट। सबसे पहले हम स्वागत कर रहे हैं कल्पना जी का, सीधा ग्लोबल अस्पताल से आप हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप एक साइकोथेरेपिस्ट भी हैं, स्पिरिचुअल काउंसलर भी हैं और बहुत सारे लोगों की मदद करते हैं रेडियो के माध्यम से भी। आपके साथ जुड़ते रहते हैं हम दीदी, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
5: शुक्रिया आरुषि जी, बहुत अच्छा लगता है अपने श्रोताओं से मिलकर, उनसे बातें करके और खास कर अपनी इमोशंस को उनके साथ शेयर करके। जो हल्कापन, जो रिलैक्सेशन फील होता है वो किसी और ही लेवल का होता है।
4: बिल्कुल, और वो हम समझ रहे हैं धीरे धीरे, बहुत इजीली समझ रहे हैं, आसान भाषा में समझ रहे हैं। हमारे साथ जुड़ गए हमारे दूसरे एक्सपर्ट श्रीनिधि जी, जो कि मोटिवेशनल स्पीकर है, साथ साथ जाने माने एंकर और आरजे भी है। श्रीनिधि जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है।
6: बहुत बहुत शुक्रिया आरुषि जी, कल्पना जी नमस्कार, हमारे सभी श्रोताओं को नमस्कार। और एक और लव यू जिंदगी के एपिसोड में आते हैं तो कुछ और सीखने की तैयारी के साथ में वापस आ गए।
4: और हम बात कर रहे थे सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, यानी अपनी भावनाओं यानी इमोशंस के बारे में। पिछले एपिसोड में भी बातें हुई थी, उसी को हम आज कंटिन्यू करेंगे। और सबसे पहले एक सवाल आया था जो मैं आप दोनों से ही जानना चाहूंगी, वो ये, किसी ने पूछा कि बहुत अच्छा चल रहा होता है सब कुछ, कुछ चेंज भी नहीं हुआ होता है, लेकिन अचानक से बुरा लगने लगता है या डाउन लगने लगता है, लो फील होने लगता है और कुछ हुआ भी नहीं होता है, तो ये अंदर क्या बदल जाता है कि ऐसा होता है कि अंदर उदासी लगने लगती है विदाउट एनीथिंग हैपनिंग, कैसा होता है या इसे क्या समझे?
5: जी बिल्कुल, ऐसा हो सकता है। हमारी लाइफ एक, जैसे बोलते हैं ना, हार्ट का ये होता है, स्कैनिंग होती है, एनालिसिस होता है, तो हमारी लाइफ सीधी सीधी रेखा में नहीं है, तो हमारा ग्राफ कभी ऊपर कभी नीचे मूड का हो सकता है। इसमें बहुत ज्यादा हाथ होता है हमारे ब्रेन के केमिकल्स का। कई बार हमारी ब्रेन में कुछ ऐसी गड़बड़ियां उत्पन्न होती है कुछ समय के लिए, जिससे हमारा मूड, हमारी फिजिकल बॉडी, हमारी मेंटल हेल्थ अफेक्टेड होती है। और इसके लिए जब इस बात की समझ आती है कि ब्रेन के केमिकल्स का कुछ अप डाउन है, तब डॉक्टर की सलाह लेना जरूरी है, किसी काउंसलर या किसी गाइड या साइकोथेरेपिस्ट को मिलकर इसके बारे में पूछताछ करना जरूरी है। परंतु ये हमारा जो सिम्टम है, ये 3 हफ्तों से ज्यादा अगर चले तभी हमें डॉक्टर की सलाह की जरूरत, अदरवाइज तो 24 घंटे में भी 3 बार या 4 बार हमारा मूड चेंज हो सकता है। सो, ये एक नॉर्मल चीज है जिसके कारण घबराने की जरूरत नहीं। हाँ, इसके लिए हमें कुछ पैटर्न्स को पहचान कर उसके लिए कुछ स्ट्रेटजी बनानी पड़ती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर हफ्ते में 2 या 3 बार मेरा मूड अपसेट हो जाता है या मुझे लो फील होता है और मुझे कहीं मन नहीं लगता है, तो वो कौन सा ऐसा समय है, क्या पैटर्न है मेरे मूड के अप डाउन होने का, उसको एक बार पहचान लेंगे और फिर उसके लिए स्ट्रेटजी बनाएंगे। जैसे मूड ठीक नहीं है तो हो सकता है मैंने नींद नहीं अच्छे से की है तो मैं अच्छी नींद ले लूं। मूड ठीक नहीं है, गुस्सा आ रहा है, चिड़चिड़ाहट हो रही है, हो सकता है मैंने खाना ठीक से नहीं खाया है या मुझे समय पर खाना नहीं मिला है, नींद नहीं हुई है। दूसरा, हो सकता है मैंने बाहर थोड़ा एक्सपोजर नहीं किया है, बहुत लंबा समय तक अंदर ही अंदर बैठ के काम किया है। जैसे कई लोग कंप्यूटर पर काम करते हैं, वर्क फ्रॉम होम करते हैं और घर में बैठे रहते हैं, बाहर जाते नहीं है, तो बाहर की खुली हवा का, नेचर के सानिध्य का एक्सपोजर नहीं हुआ है, तो बंद बंद वातावरण में हो सकता है मेरा मूड खराब। तो सबसे पहली बात है अपने पैटर्न्स को पहचानना और दूसरी बात है उस उदासी भरे मूड से अपने आप को बाहर निकालने की स्ट्रैटेजी बनाना। तो स्ट्रैटेजीज में हम क्या बना सकते हैं कि म्यूजिक सुन लिया, शॉर्ट ब्रेक ले लिया, 10 मिनट का एक्सरसाइज कर लिया, पानी पी के बाहर घूम के आ गए, खुली हवा में चले गए, किसी दोस्त से बात कर ली। ज्यादातर समय पर हमें जिस जगह पर हम हैं वहां से दूर किसी नेचुरल जगह पर जाकर खुली हवा में सांस लेने की आवश्यकता होती है। सो, इस तरह से हम अपनी स्ट्रैटेजीज को बना सकते हैं।
7: ओके, इंटरेस्टिंग। तो पहले मतलब फिगर आउट करें या पहले उससे बाहर निकलने की स्ट्रैटेजी बनाएं, पहले क्या करें?
5: नहीं, पहले फिगर आउट करना जरूरी है, अपने पैटर्न को पहचानना जरूरी है। जैसे कि महिलाएं होती है, उनमें मूड स्विंग्स तब होते हैं जब उनको पीरियड्स आने वाले होते हैं या पीरियड्स जा रहे होते हैं या पीरियड्स के पहले 3-4 दिन और उसके बाद 1-2 दिन उनका मूड डिस्टर्ब रहता है। तो ये पैटर्न है, इस पैटर्न के लिए हम स्ट्रैटेजी बना सकते हैं।
7: ओके, तो हमें समझना है और फिर उसको स्ट्रैटेजी बनानी है। उसके लिए परेशान होने की बहुत जरूरत नहीं है कि क्यों हो रहा है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, क्या हो गया। मतलब वो हम कभी कभी सिनेरियोज इमेजिन करने लगते हैं, इसकी बात बुरी लगी, उसकी बात बुरी लगी, बुरा लग रहा है और फिर ढूंढने लगते हैं कि किस बात से बुरा लगा। तो उस पे ज्यादा ओवरथिंक ना करें, पैटर्न को समझें और स्ट्रैटेजी बनाएं। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग अप्रोच है। श्रीनिधि जी, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे इसमें?
6: मैं समझता हूँ जो कल्पना जी बात कह रहे थे, हम अक्सर ये अपने आप को रीड करने के बारे में सोचते नहीं। जब मूड खराब है तो ये समझने की जरूरत है कि क्यों खराब है। कभी कभार जैसे रिपीटेडली मूड खराब होता है या समझ लीजिए एक पैटर्न बना हुआ है कि ये चीजें होती है तो मेरा मूड खराब होता है। जैसे कल्पना जी कह रहे थे, समझो आपको भूख लगी है, आपको खाना नहीं

0: कि नहीं अभी मैं नहीं दे सकता, 10 मिनट बाद आप मेरे से मिल सकते हैं। तो मैं इस तरीके से अपने लाइफ स्टाइल के बीच में मैं ऐसे मोमेंट्स चुरा रहा हूँ, अपने लिए स्पेसेस क्रिएट कर रहा हूँ जिससे मैं अपने इमोशंस को बेहतर तरीके से मैनेज करता हूँ। और खाने की बात तो है कि मैं खाने के टाइम पे किसी और चीज को टाइम नहीं देता। मैं कहता हूँ भाई मैं खाना खा के बाद में बात करूँ, अभी नहीं बात करूँ। तो बहुत बार ये ओवरवेलमिंग हो जाता है, तो इन चीजों को जानना जरूरी है कि क्या चीजें आपको ट्रिगर करती हैं, क्या चीजें आपको ऐसे जोन्स में पुश करती हैं जो आपको इरिटेट करती हैं, या आपको गुस्सा दिलाती हैं, या आपको सैड फील कराती हैं, या आपको एंग्शियस बनाती हैं, अनेक इमोशंस हैं। तो इन चीजों के बारे में खुद अपनी परख करना जरूरी है। और जब मैं अपने आप को ऐसे समझ लेता हूँ, जानता हूँ कि मैं इन चीजों से ट्रिगर होता हूँ, ये चीजें मेरे ट्रिगर्स हैं, तो फिर आपको उन ट्रिगर्स के सॉल्यूशंस भी पता होते हैं। अगर यही ना पता हो कि भाई चाकू से कट सकता है हाथ, तो फिर आप चाकू के साथ खेलते रहेंगे। जब आपको पता चल जाए कि हाँ ये मैं प्रोन हूँ इस चीज के लिए, जैसे कुछ लोगों के लिए हम मेडिकल लैंग्वेज में कहते हैं कि कुछ लोग कुछ इन्फेक्शन के लिए प्रोन होते हैं, उनके बॉडी में कुछ फिजिकल सिस्टम्स वीक होते हैं। जैसे कुछ लोग होते हैं उनको सर्दी खांसी जल्दी हो जाती है, कुछ लोग होते हैं जो लाउड म्यूजिक या कुछ ऐसा हवा में बदलाव होने की वजह से उनको हेडेक होने लगता है। तो हम सबको पता होना चाहिए कि क्या चीजें हैं जो हम प्रोन है, किन चीजों के लिए हम प्रोन है, क्या चीजें हमें तकलीफ में डाल। तो अगर वो समझ जाते हैं तो फिर शायद उन्हें बेहतर तरीके से मैनेज किया जा सकता है।
1: तो यानी हमें कुछ बाउंड्रीज भी सेट करनी जरूरी है जो हमें लगता है कि हमें ट्रिगर कर रही है या हमें परेशान कर रही है, जिसके कारण हमारी मूड चेंज हो रहा है, इफेक्ट हो रहा है। तो बाउंड्रीज सेट करें और ना कहना भी सीखें। ये भी समझ में आया, कई बार ना कहना नहीं आता है और मुश्किल लगता है। यदि आप इस बारे में कुछ कहना चाहेंगे कि हम बाउंड्रीज क्यों नहीं बिल्ड कर पाते, या बाउंड्रीज एक्चुअली होती क्या है, क्या हमारी भावनाओं से लिंक्ड है, इसका कोई कनेक्शन है?
2: मैं बिल्कुल सहमत हूँ श्री जी से कि अपनी बाउंड्रीज को सेट करना और ना कहना सीखना बहुत जरूरी है। मैं कल का ये एग्जाम्पल बताती हूँ। कोई मुझे शेयर कर रहे थे कि अरे मैंने इनको इतना गाइड किया, कदम कदम पर इनको किया, लास्ट मोमेंट पर भी ये मुझे से पूछ रहे हैं बात, इतना डिपेंडेंट हो रहे हैं। तो जब हम लोगों को अपना टाइम देते हैं और उस टाइम की हम कदर नहीं करते हैं, तो लोग हमारे ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं, वो हमारे टाइम की भी कदर नहीं करते हैं और छोटी छोटी बात के लिए वो हमसे ही सपोर्ट लेना चाहते। तो ऐसे समय पर कोई भी व्यक्ति आपके पास आए या आपसे कुछ फेवर ले या कुछ मांगे, तो आपको आपकी बाउंड्रीज सेट करने आना चाहिए कि भाई इतना तक मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ और इससे आगे आपको खुद को हेल्प करनी होगी। क्योंकि मेरी लिमिटेशंस ये है, इस टाइम में ही मैं आपसे मिल सकता हूँ, क्योंकि इसके अलावा जो मेरा टाइम है वो मेरा मेरे लिए टाइम, मैं उसमें अवेलेबल नहीं हूँ। सो नो कहना आना चाहिए। कई प्रिय प्रेशर में आ जाते हैं कि चलो यार पार्टी में चल रहे हैं, बर्थडे पार्टी है, सब कुछ फ्री ही है, खाना पीना सब कुछ मिल जाएगा, चलो फोर्स करते। आप अपनी पढ़ाई का, अपने इम्पोर्टेंट काम छोड़कर, पढ़ाई छोड़कर आप पार्टीज में शामिल हो जाते। जब एक बार आप पार्टीज में गए, उनके साथ समय बिताया, फिर नेक्स्ट टाइम के लिए भी वो आपको समझते हैं कि हाँ इनका टाइम तो हमारे साथ गुजारने के लिए अवेलेबल है।
1: तो ग्रांटेड ले लेते हैं जैसे आपको।
2: बिल्कुल, कई आपके काम रह जाते हैं और आपको इन्हीं के साथ टाइम स्पेंड करना पड़ता है। अच्छा, इसके पीछे साइकोलॉजी ये है कि मैं सबको खुश करना चाहती, किसी को ना नहीं कहना चाहती, कोई नाराज हो गया तो, मेरे से बात करना छोड़ दिया तो, या मेरे बारे में कुछ बुरा सोच लिया तो, इसलिए हम उसको कहते पीपल प्लीजिंग पर्सनालिटी। सबको संतुष्ट करना चाहते, लेकिन हम सबको हर समय संतुष्ट करते करते खुद की टाइम, खुद की एनर्जी, खुद का हेल्थ, खुद की नींद, खुद का कंफर्ट सब कुछ गवा चुके हो, और फिर हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि मेरे लिए तो मेरे पास टाइम ही नहीं। घर की मदर्स का ऐसे ही होता है, सबको खुश करने के हाँ सिलसिले में वो खुद पर ध्यान देना ही छोड़ देती।
1: तो मतलब अपने लिए टाइम निकालना भी बहुत जरूरी है, और पीपल प्लीजिंग ये एक बहुत बड़ा विषय है, मुझे लगता है इसके बारे में भी बात करेंगे, क्योंकि कई बार हम इसमें इतने इन्वॉल्व हो जाते हैं कि खुद की पर्सनालिटी भी दूसरों की तरह बनती जाती है। या हमने पिछले एपिसोड्स में भी बात की थी कि चेंज किसके लिए होना चाहते हैं, आपने भी वो कहा था कि आप चेंज पॉजिटिवली हो रहे हैं या फिर किसी को देख के हो रहे हैं, वहाँ भी डिफ्रेंशिएट करना बहुत जरूरी है।

0: श्रीनिधि जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? बाउंड्रीज क्या होती है, थोड़ा सा अगर एक्सप्लेन करें इसे।
1: बाउंड्रीज मैं समझता हूँ एक हर व्यक्ति का एक कंफर्ट का दायरा होता है। अलग शब्दों में लोग इसे कंफर्ट जोन भी कहते हैं। कंफर्ट जोन्स को आप अलग अलग तरीके से डिफाइन कर सकते हो। कभी कभार हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाने की भी जरूरत होती है, जब हम कुछ अचीव करना चाहते हैं या फिर हम कुछ नया ट्राई करना चाहते हैं या ग्रो करना चाहते हैं। मगर कंफर्ट जोन और बाउंड्री के बीच में अंतर ये है कि हम सबकी हदें हैं, कि हम कुछ चीजें अपनी कैपेसिटी तक मैं इतना कर सकता हूँ, इसके बियॉन्ड कर पाना मैं अपने आप को टैक्स कर रहा हूँ, यानी मैं अपने आप को स्ट्रेच कर रहा हूँ कि मैं कंफर्टेबल तो नहीं हूँ बट मैं फिर भी मतलब अपने आप को खींच रहा हूँ कि भाई चलो ठीक है, इनके लिए तो थोड़ा बहुत तो करना पड़ेगा। तो ये चीज समझ में आनी चाहिए कि जब आप अपने आप को खींच करते हो, स्ट्रेच करते हो, तो आपको बाउंस बैक करने का भी मौका मिलना चाहिए। वो आपने स्ट्रेच किया है उसको वापस रिलैक्स होने का भी मौका मिलना चाहिए। तो ये हम सबको पता होना चाहिए कि मैं अपने आप को कितना स्ट्रेच कर सकता हूँ, क्या मेरी बाउंड्रीज हैं, क्या मेरी लिमिट्स। और कभी कभार जब हम, जैसे कल्पना जी अभी कह रहे थे कि पीपल प्लीजिंग पर्सनैलिटी की जब हम बात करते हैं तो हम हर चीज के लिए हाँ कह देते हैं। अक्सर अंग्रेजी में इसको यस मैन सिंड्रोम कहा जाता है, कि हर चीज के लिए यस कहते हैं। और आजकल प्रोफेशनल वर्ल्ड में हम इसको कहते हैं कि यस बॉस, हर चीज के लिए यस बॉस कहना। जरूरी नहीं है कि बॉस आपसे कोई चीज कह रहे हैं, आपका काम आपसे कोई रिक्वायरमेंट दे रहा है, बट आपको ये पता होना चाहिए कि आप उस चीज को कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब ये नहीं कि आप नई चीजें करने के बारे में सोचे नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि आप नवीनता के बारे में, इनोवेशन के बारे में, अपने आप को ग्रो करने के बारे में सोचे नहीं। इसका मतलब ये है कि जस्ट बिकॉज आप अपने बॉस को खुश करना चाहते हैं इसलिए आप सारा काम अपने ऊपर ले लेना चाहते हैं। आप ऑलरेडी ओवरवर्क्ड हैं, आपके पास ऑलरेडी 10 काम है करने के लिए, तो जस्ट बिकॉज आपको दिया जा रहा है आप बोल रहे हाँ हाँ ये भी दे दो कोई बात नहीं। और आपको 10 बजे 11 बजे 12 1 बजे तक लोग बैठ के काम कर रहे हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि वो ना नहीं कर पाए, और इसकी वजह से उनके पारिवारिक संबंध खराब होते हैं, बच्चों के लिए टाइम नहीं दे पाते, या हस्बैंड वाइफ के लिए, या घर में पेरेंट्स रहते हैं या जो भी रहते हैं उनके लिए हम टाइम न देकर अपने आप को ओवरवर्क महसूस करते हैं। तो ये अलग अलग फील्ड्स में लागू होता है। ऐसा नहीं है कि बाउंड्रीज सिर्फ हमारे पर्सनल वेलबींग के स्पेस में है, हमारे प्रोफेशनल स्पेसिस में भी होता है। हम दोस्तों के लिए भी बहुत कुछ करना चाहते हैं, हमारे फ्रेंडशिप्स हैं तो वहां पर हम अक्सर दोस्तों को कहते ही हैं कि भाई तुम्हारे लिए तो जान हाजिर है। अब ये कहने वाली बात तो शायराना लग सकती है कि जान हाजिर है, इसका मतलब ये नहीं कि वो सामने वाला मुझसे जान मांगेगा और ना ही मैं जान देने वाला हूँ उसके लिए। कहने का भाव ये है कि मैं तुम्हारे लिए अपने लिमिट्स को पार करके करने के लिए तैयार हूँ, मगर क्या ऐसा आप हर किसी के लिए करना पसंद करेंगे?
0: संभव भी नहीं है शायद।
1: संभव नहीं है क्योंकि वहाँ उस रिलेशनशिप में वो गिव एंड टेक है, वहाँ पर एक कंफर्ट जोन है, हम दोनों एक दूसरे से कुछ चीजों के प्रति कंफर्टेबल हैं, परिवार में भी हम लोगों के लिए करते हैं, मगर
0: नहीं करना चाहते तो सेल्फिश फील करते हैं कि अरे मैं
1: मैंने किया नहीं,
0: मेरा परिवार है और मेरी बाउंड्रीज इसमें कैसे बीच में आ सकती है, हैव टू गिव।
1: जैसे अभी कल्पना जी होम मेकर्स का उदाहरण दे रहे थे, ऐसे महिलाएं जो घर का काम सारा देखती हैं, घर संभालती हैं, वो अपने आप में एक फुल टाइम जॉब है घर संभालना। तो वहां पर भी उनको अपना स्पेस चाहिए। जब कोविड का समय था, कोरोना काल था, उस समय पर हमने देखा कि बहुत सारी महिलाओं को बहुत ज्यादा स्ट्रेस फेस करना पड़ा क्योंकि बच्चे भी घर पे हैं, हस्बैंड भी घर पे हैं, और जो लोग घर से बाहर चले जाते थे तो सुबह उनके लिए नाश्ता बना के दे दिया, टिफिन बॉक्स पैक करके दे दिया, आप शाम को आएंगे बच्चे तो उनको देखा जाएगा, हस्बैंड रात को आएंगे तो उनको देखा जाएगा। तब तक उनके पास एक ब्रीदिंग स्पेस था, वो अपने लिए कुछ करना चाहते थे तो वो सब कुछ कर सकते थे, अपना टाइम टेबल था। अब अचानक वो टाइम टेबल मेसअप हो गया, ये सारे टाइम घर पे हैं और घड़ी घड़ी पूछ रहे मम्मी मेरे को ये दो ऐसा करो वैसा करो, तो उसकी वजह से स्ट्रेस लेवल्स बाउंस हो गए। और ये इसलिए भी होता है क्योंकि उस समय पर एक नेचुरल बाउंड्री एग्जिस्ट करती थी कि बच्चे घर पे नहीं है, हस्बैंड घर पे नहीं और मैं अपना काम कर रहा हूँ। बट जब वो बाउंड्रीज हट गई तो सब कुछ मिक्स हो गया, तो मैनेज करना मुश्किल हो गया।
0: इसलिए कहीं ना कहीं पर्सनल बाउंड्रीज भी जरूरी है। दीदी मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि कुछ ऐसी भावनाएं हैं जैसे हमें लगता है कि वो प्यार है, लेकिन उस प्यार में जब हम कुछ चीजें लिमिट लगा देते हैं या बाउंड्री सेट करते हैं तो गिल्टी या सेल्फिश फील करता है, बुरा फील करता है, तो क्या ये फील करना चाहिए या नहीं चाहिए?
2: बहुत ही अच्छा सवाल पूछा आपने। गिल्टी फील करना ये सबसे बड़ी सजा है इंसान के लिए, चाहे आप गलती करो या ना करो। कई लोग ऐसे हैं जिनकी आदत होती है कि वो हमेशा गिल्टी फील करते रहते हैं। गिल्टी फील करने का कारण है लो सेल्फ एस्टीम एंड सेल्फ लव की कमी।
0: ओके,
2: खुद के महत्व को, खुद की स्ट्रेंथ को न जानकर, उसकी परवाह न करना, उसको इम्पोर्टेंस न देना, इस वजह से, सेल्फ वर्थ को न जानने की वजह से गिल्टी फील करते हैं। दूसरा, सेल्फ लव नहीं, खुद से प्यार नहीं करते हैं, खुद को अप्रिशिएट नहीं करते हैं, इसलिए छोटी छोटी बात में जब दूसरों को हम प्रसन्न नहीं कर पाते, संतुष्ट नहीं कर पाते, तो हमें गिल्टी फील होता है। जैसे मदर का भी ही मैं एग्जांपल दूंगी, जो होम मेकर्स है उनका, कि समझो फॉर एग्जांपल एक घटना बताती हूँ। बच्चा आया स्कूल से, है ना, मैं मेरी ही लाइफ का उदाहरण देती हूँ। बच्चे को चावल पसंद है, लेकिन माँ ने आज चावल किसी कारण से नहीं बनाए, रोटी सब्जी ही बना के रखी। बच्चा स्कूल से आया, उसने बोला मम्मी चावल कहाँ है, तो कहा बेटा आज तो नहीं बने हैं, आज तुम रोटी सब्जी ही खाओ। तो बच्चे ने रोना धोना शुरू कर दिया कि तुम्हें तो पता है ना मुझे चावल ही पसंद है, फिर तुमने चावल क्यों नहीं बनाए, और अभी मुझे तो चावल ही चाहिए। तो माँ को गिल्टी फील होता है कि अरे मेरे बच्चे को ये चाहिए था और मैंने ये नहीं बनाया या नहीं बना पाई, या अभी है नहीं घर में उस स्टॉक में, तो उसे गिल्टी फील होता है। अब बताइए क्या उस माँ को गिल्टी फील होना चाहिए या उसे बच्चे को ऐसा ट्रेन करना चाहिए कि बच्चा जब कुछ चीज नहीं है तो उसके लिए जिद करने की जरूरत नहीं। अच्छा ठीक है, बच्चे ने तो जिद किया, लेकिन मुझे गिल्टी फील नहीं करना है, मुझे करने की आवश्यकता नहीं है, जो उसके लिए जरूरी था मैंने किया है, और किसी कारण की वजह से मैं उसकी पसंदीदा चीज नहीं बना पाई। तो यहाँ पर सेल्फ रिस्पेक्ट और सेल्फ एस्टीम और सेल्फ वर्थ को जानना, अरे मैंने सुबह से लेकर दिन भर इनके लिए सब कुछ करती हूँ मैं, अब छोटी सी चीज अगर मैं नहीं कर पाई तो उसके लिए मुझे गिल्टी फील करने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा मैं बच्चे के साथ बात करूंगी, उसको एंटरटेन करूंगी, उसको अच्छे से समझाऊंगी, वो समझेगा, नहीं समझा तो थोड़ी देर के लिए रो लेगा और चुप हो जाएगा, भूख लगेगी तो खा लेगा। सो ये है बच्चों का अपने माँ बाप को मैनिपुलेट करने का तरीका। अब वो हमारी भावनाओं से खेल रहे और हम गिल्ट में चले जा रहे
0: फील कर रहा है जैसे ना जी। ओके, तो फील नहीं होना चाहिए मतलब। लेकिन दीदी जैसे ये आपने एक मदर के कॉन्टेक्स्ट में बताया, क्या मैं आप दोनों से पूछना चाहूंगी कुछ यूथ के कॉन्टेक्स्ट में भी हम इसे समझ सकते हैं क्या कि कब वो गिल्टी फील करते हैं या मतलब नहीं जहां उन्हें करना चाहिए। कई चीजें तो ऐसी भी हैं जो समझनी चाहिए, लेकिन कई चीजें क्या ऐसी हैं जो गिल्ट में ले जाती हैं पर नहीं होना चाहिए। हम मॉडर्न रिलेशनशिप्स में भी देखते हैं, फ्रेंडशिप में भी देखते हैं, क्या ये वहां पे भी कुछ इस तरह की चीजें आती हैं जो हमें लगता है हम इसे नाम दे देते हैं दोस्ती का या प्यार का, लेकिन फिर हम खुद ही गिल्ट में जाते जाते हैं या फिर बुरा फील करते जाते हैं। क्या ऐसा उस कॉन्टेक्स्ट में भी क्या हम थोड़ा और समझ सकते हैं इस बात को, श्रीनिधि जी या दीदी आप में से कोई?
1: मैं समझता हूँ ये एक ऐसा चीज है जहाँ पर रिलेशनशिप्स की जब हम बात करते हैं, ये जरूरी नहीं कि ये फैमिली के रिलेशनशिप्स हो, बच्चे या माँ के बीच में हो, मगर ये सारे ही रिलेशनशिप्स पे लागू करता है। आपने फ्रेंडशिप्स की बात कही, मैं वर्क प्लेस रिलेशनशिप्स की भी बात करता हूँ। अगर आप कोलीग्स के साथ काम करते हैं तब आप कुछ ऐसा कह सकते हैं या कर सकते हैं जिससे सामने वाले व्यक्ति को आप गिल्ट फील करा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कि मैं हर दिन किसी के काम में मदद करता हूँ, ठीक है, और क्योंकि मैं हर दिन ही कर रहा हूँ, इट इज टेकन फॉर ग्रांटेड कि मतलब मैं जब भी मदद मांगूंगा ये व्यक्ति मेरे लिए एक ही अवेलेबल। ऑफिस का ही काम है, समझ ले कि मैं किसी के डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में मदद कर रहा हूँ, मगर आज मेरा कुछ और काम निकल आया जिसकी वजह से मुझे बैंक जाना पड़ रहा है और उसी समय उस व्यक्ति ने मुझे बुलाया और कहा कि भाई आप आओ, ये काम अभी करना है अर्जेंट, और मैंने कहा कि नहीं मैं अभी बैंक जा रहा हूँ, कोई और मेरा इंतजार कर रहा है मुझे इसलिए जाना है। तो अब उन्होंने कहा अरे मेरी जरूरत नहीं होती तो मैं आपको क्यों बुलाती, जरूरत के समय पर तो दोस्तों की मदद की जरूरत होती है ना, आप तो बैंक चले जाना चाहते हो। तो अब मुझे ये गिल्ट फील होता रहेगा कि भाई ये क्या जरूरत के टाइम पे मदद नहीं की, क्योंकि हमने ये चीज सुनी हुई भी है कि भाई जरूरत के समय पर तो मदद हमेशा देने की जरूरत है। अब मैं इस चीज को कैरी फॉरवर्ड करके चल रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने ऐसा कहा, उन्होंने ऐसा कहा, उन्होंने ऐसा कहा, जरूरत के समय पर उनके काम नहीं आया। बिल्कुल, हम अंग्रेजी में ये कहावत सुनते हैं, फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड, पर सही अर्थों में अब मैं दोस्त ही नहीं रहा।
0: ये भी होता है, मैं अच्छा दोस्त ही नहीं हूँ।
1: हाँ, और आप अपने आप को उस लेवल के साथ अब चला के चल रहे हो कि भाई मैं तो ऐसा हूँ, बट एक्चुअल रियलिटी में ऐसा नहीं है। हर व्यक्ति हमेशा मौजूद हो, अवेलेबल हो, हर चीज को कर सके, ऐसा संभव नहीं होता। हर एक व्यक्ति के अपने लिमिटेशंस हैं, हर एक व्यक्ति अनेक चीजों से घिरा हुआ है, हर एक के अपने अपने रोल्स हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, तो इन चीजों को समझ कर चलना शायद आवश्यक होता है। और दोस्तों में जब ये खास चीज होता है तो तब हम अक्सर समझाने का प्रयास नहीं करते। जब ऐसे कोई लेबल्स पास किए जाते हैं, आपको गिल्टी फील करा दिया जाता है, तो आप उस गिल्ट को कैरी करते हैं, और उस समय पर ये आवश्यक होता है कि हम कैसे इस चीज को प्रोसेस करें। ऐसी घटनाएं होती हैं, बट उन घटनाओं को प्रोसेस करने के तरीकों के बारे में समझना
0: होता है।
1: कल्पना जी बता सकते हैं कि भाई ऐसे अनेक घटनाओं को लोग संजो कर रखते हैं जिसमें वो उन्हें अपने आप को गिल्टी फील कराया और गिल्ट लेके चलते।
0: भारीपन वो गिल्ट।
2: जैसे ऑफिस में जब हम काम करते हैं ना, तो हम क्या करते हैं, जो भी काम आता है उसको पेंडिंग में रखते जाते हैं, है ना, फाइल के ऊपर फाइल, फाइल के ऊपर फाइल, पेंडिंग रह जाती, और फिर हमें स्ट्रेस आता है उन पेंडिंग फाइल्स को देखकर कि अरे इतनी ज्यादा हो गई। इमोशंस का भी ऐसे ही, इमोशन को भी अगर हम पाइल अप करते जाएंगे, जैसे गिल्ट को बचपन से लेके बड़े होने तक मैं गिल्ट को कैरी कर रही। बचपन में मैंने कुछ गलत किया, उसका गिल्ट कैरी किया, मेरे से कुछ गलत हुआ बचपन में, उसका गिल्ट कैरी कर लिया, तो वो आदत बन जाती है गिल्टी फील करने की। और हर छोटे बड़े जिसमें मुझे गिल्टी फील करने की जरूरत भी नहीं है, मैंने कोई गलती नहीं भी की, उसमें भी मुझे गिल्टी फील होता है, सेल्फ ब्लेम शुरू हो जाता है, मेरी वजह से सब कुछ हो रहा है, मेरे कारण सबको तकलीफ हो रही, इस तरह से खुद को विक्टिम बना लेते। तो अब क्या करना है, जो फाइल्स हम पेंडिंग पेंडिंग पेंडिंग में डाल रहे हैं ना, उसको उसी समय क्लियर करना है। समझो कि फॉर एग्जाम्पल किसी के साथ आपकी कोई बात हो गई, आपसे कुछ गलती हो गई या आपको गिल्टी फील हुआ, अब वो गिल्टी कॉन्शियस को हम कैसे रिलीज करें। तो सबसे पहले है, जिसके साथ आपको गिल्टी फील होता है उनके साथ जाकर बात करें, तुरंत जाकर सॉरी भी कहने की जरूरत नहीं, बात करें, एक नॉर्मल बात करें, एक्सेप्ट करें कि मेरे से गलती हो गई, इस बार ये छोटी सी गलती थी, कई बार मेरे से बड़ी भी गलतियां हो जाती है, इसी कोई बात नहीं है। और इंसान अगर जिंदा है तो उसे गलती ना हो ऐसा तो हो नहीं सकता। हाँ, तो गिल्ट फीलिंग को उसी समय रिजॉल्व करना है, जाकर बात करो सामने वाले से, सॉरी कह दो एक बार, बार बार सॉरी कहना भी आपकी लाचारी को दर्शाता है, और उस बात को भूल जाओ सामने वाले से, फिर नॉर्मल व्यवहार में आ जाओ, फिर उस बात को बार बार याद नहीं करो, तो मैं बार बार उसी बात को सोचती रहूंगी, वो मेरा ऑब्सेशन हो जाएगा, फिर वो गलत बात मेरे दिमाग से नहीं निकले। सो गिल्टी फील करने की जो फाइल्स है उसको पाइल अप ना करें, उसी समय उसे रिजॉल्व कर दे।
0: रिजॉल्व करना बहुत इम्पोर्टेंट है। दीदी, क्या हम जाते जाते कुछ ऐसा मेडिटेशन प्रैक्टिस कर सकते हैं जो हमने अभी तक जो पाइल अप करके रखा है उसको कहीं ना कहीं हम रिजॉल्व कर सकें?
2: बिल्कुल। सो अपनी गिल्ट को, अपनी नेगेटिव इमोशंस को ओवरकम करने के लिए पॉजिटिव अफर्मेशंस की बहुत आवश्यकता है, और पॉजिटिव अफर्मेशंस हमारा सेल्फ एस्टीम बढ़ाते। हर एक इंसान के अंदर कुछ न कुछ गुण और शक्तियां होती है, उन शक्तियों को हम याद करें, उन स्ट्रेंथ्स को याद करें, और अपने आप को याद दिलाएं, आई एम वर्थ टू लिव, मुझे जीने का हक है और मुझे खुशी से जीने का हक है। तो आइए चलिए कुछ मिनटों के लिए एक निश्चित स्थान पर आराम से बैठ जाए, गहरी और लंबी सांस ले, अपने सांसों को ऑब्जर्व करें, पूरा ध्यान अपनी सांसों पर एकाग्र करें, अपने मन के विचारों को सांसों की लयबद्धता के साथ ट्यून करें। जैसे ही मैं गहरी और लंबी सांस ले रही हूं, मेरा मन और शरीर शांत शांत शांत और रिलैक्स हो रहा, अनुभव करें उस शांति और रिलैक्सेशन का। अपने आप को याद दिलाए, मैं एक मनुष्य के रूप में एक महत्वपूर्ण इंसान हूं, सृष्टि नाटक का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा हूं, मैं अपने लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हूं। अपनी स्ट्रेंथ्स को याद करें, मुझ में ये गुण विशेषताएं हैं। अपनी काइंडनेस को, अपनी अच्छाई को याद करें। गहरी और लंबी सांस लेते हुए अपने आप से बात करें, मैं जो हूं जैसी हूं खुद को वैसे ही एक्सेप्ट करती हूं, मुझ में बहुत सारी अच्छाइयां हैं और कुछ कमियां भी, उन कमियों के साथ मैं खुद का स्वीकार करती हूं। आई एक्सेप्ट माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ, आई केयर माई सेल्फ। कई बार मुझसे गलतियां होती हैं, लेकिन मैं खुद के साथ कंपैशनेट रहकर उन गलतियों को आगे के लिए सुधारने में प्रयासरत रहती हूं। मेरी गलतियों के लिए गिल्टी फील करने की बजाय मैं उसके लिए सॉरी कहकर उसके बोझ से अपने आप को मुक्त करती हूं। हर बार मेरी ही गलती हो ऐसा जरूरी नहीं, जैसे मैं खुद की गलती को माफ करती हूँ वैसे मैं दूसरों की भी गलती, मैं शांत हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ, मैं एकाग्र हूँ, मैं खुश हूँ। धन्यवाद।
0: थैंक यू सो मच दीदी। एक्चुअली बहुत लाइट फील हुआ ये एक्सपीरियंस करके, और ऐसा लग रहा है सच में 5 मिनट एक्सपीरियंस करके बहुत बड़ा चेंज आ जाता है, शिफ्ट आ जाता है। तो डेली अगर हम कर लें तो कितना फायदा होने वाला है हमें, सिर्फ 5 मिनट और फायदा 24 घंटे का और उससे भी ज्यादा, बल्कि फायदा ही फायदा है। थैंक यू सो मच इस एक्सपीरियंस के लिए। और फिलहाल वक्त हो गया है हमारे दोस्तों से इजाजत लेने का, लेकिन इस वादे के साथ कि अगली कड़ी में फिर मुलाकात होगी, अपनी भावनाओं से भी और इस कार्यक्रम से भी। तब तक आइए जिंदगी को मिलकर कहते हैं कि लव यू जिंदगी। रेडियो मधुबन से जुड़े रहिए, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: नमस्ते, राम राम और ओम शांति। मेरा नाम पवित्र मल्लिक और आप सुन रहे हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का सामुदायिक रेडियो रेडियो मधुबन 107.8 FM पर कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल। आज हमें बहुत खुशी और हर्ष का साथ यहां पर पहुंचे, क्योंकि ईश्वरीय विश्वविद्यालय और राजकीय विद्यालय दोनों विद्यालय की मिलित सहयोग से बच्चों का विद्यार्थी विकास में आज बारी बारी उनका प्रस्तुतियां सुनने को मिलेगा। क्योंकि सामुदायिक रेडियो होने के नाते सामुदायिक का गतिविधि सामुदायिक तक पहुंचाने के लिए एक मंच मिलता है बच्चों को, और उनका हुनर जो टैलेंट है जो विशेषता है जो भाव है जो भावना है जन जन तक पहुंचाने के लिए आज रेडियो मधुबन पहुंचा है। राज्य के उच्च प्राथमिक विद्यालय डेरना में पहुंचा, जो कि और ग्राम पंचायत में ही आता है, और बाजू में ही देलदर भी है। तो देलदर स्कूल और स्कूल और अपना आज हम डेरना स्कूल में पहुंचे, बच्चों का प्रतिभा को सुनने को मिलेगा। तो पहला प्रस्तुति कोई भी कार्यक्रम करते हैं तो पहले प्रार्थना के रूप में हर विद्यालय में होते तो प्रभु याद में हम करते हैं। तो पहला प्रस्तुति का प्रार्थना के रूप में सुनेंगे बच्चों को। सभी बच्चे अपना नाम, स्कूल का नाम और कौन सा गांव से बोलेंगे।
1: राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय डेरना जमुना। राजकीय उच्च प्राथमिक डेरना आशिता।
0: आशिता, वेरी गुड।
2: राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय डेरना बागेश्वर।
3: राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय डेरना।
0: डेरना, नाम बता।
3: पूजा। राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय डेरना।
0: क्या बात है।
4: रूपी। राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय डेरना।
5: कृष्णा। राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय डेरना।
0: गुड।
6: मानवी। राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय डेरना।
0: वेरी गुड।
7: चंपा। राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय डेरना।
0: बहुत अच्छी।
8: पूजा। राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय डेरना।
0: पूजा, चंपा, सभी को नाम का साथ धन्यवाद देते हैं और इस कार्यक्रम को सुंदर रूप में सजाए। बारी बारी उनका आवाज ही उनका पहचान होगा, जब उनका मम्मी पापा भाई बहन टीचर लोग सुनेंगे ये तो पूजा का आवाज है, ये तो हमारा गुड़िया का ही आवाज है। सभी का नाम सुनने को मिलेगा तो खुशी लगेगा, और नामांकन में भी विद्यालय में बढ़ चढ़ कर लोग भाग लेंगे, और ऐसे सांस्कृतिक कार्यक्रम में जो बच्चे बढ़ चढ़ कर लेते हैं और आकाशवाणी में जब उनका आवाज जाएगा तो हमें खुशी लगेगा और हमारा परिवार वालों भी खुशी होगा, और नामांकन में तो वृद्धि होगा ही, बच्चे पढ़ाई का साथ साथ इस तरह कार्यक्रम में भाग लेते। तो पहला प्रस्तुति माँ शारदा का भजन के रूप में जो हर प्रार्थना में करते, तो आज का प्रार्थना सत्र में सुनेंगे, क्योंकि बच्चे सच्चे होते हैं और पहले प्रार्थना करेंगे। तो प्रार्थना के बाद माँ शारदा के सबको तो आता ही है ना, तो प्रार्थना करेंगे। ओके, तो सभी रेडी हो गए, नाम तो बता दिए और शुरू करते हैं पहला प्रस्तुति।

बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह प्रार्थना में बच्चे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं और अपना भाव और भावना को माँ सरस्वती तक पहुंचाते हैं, क्योंकि बच्चे सच्चे होते हैं और बच्चे मन का बात को भाव को जन जन तक पहुंचाते हैं। ऐसे प्रार्थना सत्र में अपना बात को रखते हैं। तो लेते हैं छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद पुनः मिलेंगे बच्चों से और एक गान सुनने के लिए। बच्चों को नाम का साथ धन्यवाद देते हैं। ये था राज के उच्च प्राथमिक विद्यालय डेरना का बच्चों का आवाज, उनका दिल का भावना को रखें। तो सुंदर प्रस्तुति के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेते हैं छोटा सा ब्रेक।

0: कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए ब्रेक का पहला हम सुन रहे थे बच्चों का भाव और भावना को प्रार्थना के रूप में, और अभी चलते हैं भारत आजादी का अमृत महोत्सव की तरफ चल रहा है। और अमृत काल के बच्चे, क्योंकि भारत आजादी होते हुए आज इतना साल हो गया, जब 100 साल पूरा करेगा तो ये बच्चे ही हमारा आगे भविष्य में नाम रोशन करेंगे। तो 3 छात्र इस कार्यक्रम को और सजाने के लिए आए हैं उसी ग्रुप में, तो वो 3 छात्र अपना अपना नाम बताएंगे और कौन सा गांव से।
1: भाग्यश्री देना, पूजा देना, जसोदा देना।
0: और पूरा विद्यालय का नाम?
2: राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय देना।
0: चलिए शुरू करते हैं।

0: बच्चा राम है।
1: बच्चा बच्चा राम है सही में। राम तो अयोध्या में नाम सुनते तो अयोध्या का जो याद आता है, राम जी का मंदिर है ना अयोध्या में। और हमारा भारत के हर बच्चा राम जैसे प्रतिमा जैसे पूरा एक एक देवी देवता है। और आज तो दिव्य गुण रहेगा, अच्छा देखेंगे, अच्छा सोचेंगे, अच्छा खाएंगे, अच्छा पहनेंगे तो अच्छा बन जाएंगे। तो भारत हमारा महान, भारत देश महान। बोलो भारत माता की
2: जय,
1: भारत माता की जय होते हैं। क्योंकि भारत जैसे कोई देश है नहीं, पूरे विश्व में घूम कर आओ लेकिन भारत जैसे कोई देश संसार में नहीं। क्योंकि यहाँ पर अनेक नदियां है, गंगा जमुना सरस्वती सब नदियां है ना। और हम सब सच्चे बच्चे हैं, एक बाल और बालिका हमारा अच्छे होते हैं, अच्छे होते हैं ना बच्चे, सब बच्चे अच्छे होते हैं। चलिए वंस मोर और एक प्रस्तुति सुनेंगे, लेकिन सभी मिलकर प्रार्थना के रूप में करेंगे, सामूहिक रूप में। तो लेते हैं छोटा सा ब्रेक। आप सब सुन पा रहे रेडियो मधुबन कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल, यानी माई विलेज माई एरिया। इस कार्यक्रम में हमारा गांव और अंचल का आवाज आप तक पहुंचा रहे हैं। पहला बार आए फिर भी कोई झिझक नहीं, कोई डर नहीं, बच्चे बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं और सभी को धन्यवाद देते हैं। लेते हैं छोटा सा ब्रेक।

0: सुनते रहिए मुस्कुराते रहे कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल, और गांव और अंचल का आवाज, और खास कर हमारे बच्चों का आवाज, जो विद्यार्थी बच्चे सच्चे होते हैं और इस कार्यक्रम में सजाएंगे अपना आवाज को बुलंद करके, हमारा जो श्रोता सुन रहे उसका वॉल्यूम को तेज करते हुए फ्रीक्वेंसी में 107.8 FM पर। चलिए सभी को स्वागत करते हैं नाम का साथ, एक बार पुनः नाम बताएंगे।
1: पूजा देना।
0: कौन सा क्लास?
1: क्लास 8।
0: चंपा
1: देना 8। कृष्णा देना 6।

0: सही बात, कितना गीत में भजन में कितना सार है। हमें अंधकार से प्रकाश की ओर चलना है, अज्ञान से ज्ञान की तरफ से, समझदार बेसमझ से समझ की ओर हम चलेंगे। जब माँ सरस्वती का आशीर्वाद कृपा रहेगा, उनका बरसात हमारा पर पड़ेगा, और हम जब दिल से प्रार्थना करते माँ सरस्वती को, माँ शारदा को, उनका आशीर्वाद, उनका ब्लेसिंग, उनका जो वर्षा हमारा ऊपर गिरेगा, और हम हृदय से उनको तहे दिल से ध्यान याद करते हैं। ऐसे याद करेंगे तो हमें आगे बढ़ पाएंगे। इसलिए हर विद्यालय में प्रार्थना सत्र में माँ शारदा को ध्यान करते हैं। जिसका हाथ में बिना ज्ञान का बिना मुख से गीत गाते हैं, बिना बजाते हैं, तो ज्ञान बिना जब बजता है तो हमें खुशी होता है। ज्ञान मंदिर में हमारा चरित्र निर्माण होता है, हमारा चरित्र निर्माण होता है। पढ़ाई का साथ साथ हमें अच्छा देखना है, अच्छा पढ़ना, अच्छा पहनना, अच्छा करना है, और अच्छा सोचना है। जैसे आपको सोच होगा, जैसे आपको इच्छा होगा, इस तरह बनेंगे। आपका सोच अच्छा होना चाहिए। जैसे महात्मा गांधी का 3 मंत्र नाम सुने होंगे ना, बुरा मत देखो और बुरा मत सुनो और बुरा मत बोलो। महात्मा गांधी हमें सिखा कर गए कि नहीं, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो, और इसका पहले बुरा मत सोचो। क्या बोलेंगे?
1: बुरा मत सोचो।
0: इसका प्रति भी बुरा नहीं सोचना है। आपका इच्छा शक्ति स्ट्रांग होना चाहिए, पावरफुल होना चाहिए, सात्विक होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए, तब आपका चरित्र निर्माण होगा। चरित्र निर्माण के लिए बुद्धि सत प्रधान होना चाहिए। सत प्रधान माने अच्छा होना चाहिए। आपका चरित्र अच्छा होने के लिए आपका सोच भी अच्छा होना चाहिए। क्योंकि जैसे हम सोचेंगे, जैसे एज यू थिंक, जैसे आप सोचेंगे ऐसे बनेंगे। डॉक्टर बनेंगे सोचेंगे तो डॉक्टर बनेंगे, मैडम बनने के लिए सोचेंगे तो क्या बनेंगे?
1: मैडम
0: बनेंगे। अच्छा सोचेंगे, बुरा नहीं सोचना है। चोर बनेंगे बोलेंगे तो चोर बन जाएंगे। इसलिए सोच ऊपर डिपेंड करता है। आप जितना अच्छा सोचेंगे अच्छा होगा, आपका चरित्र श्रेष्ठ होगा, और माँ सरस्वती का जो ज्ञान का भंडार आपका प्रति लुटाएंगे। ले लो, जितना लेना हो ले लो। कब? जब हम सात्विक अच्छा बनेंगे, अच्छा सोचेंगे, पर उपकार करेंगे, दूसरों को हेल्प मदद करेंगे। मदद करते ना बच्चे?
1: जी सर।
0: किसको किसको मदद करते हैं घर में? किसको मदद करते हैं?
1: मम्मी।
0: मम्मी को मदद करते, वेरी गुड। क्या करते मदद में? झाड़ू पोछा ना खाना बनाते। क्या करते बच्चे? झाड़ू पोछा करते हैं घर में, साफ सफाई।
1: जी सर।
0: और पिताजी का काम में हेल्प करते हैं?
1: जी सर।
0: पिताजी को क्या हेल्प करते हैं? पानी पिलाते हैं, रोटी भी देते हैं। अच्छा, वेरी गुड। मम्मी का काम आप कर लेते, वेरी गुड। रोटी भी मांगते तो खाने का टाइम है प्यार से पूछना, पापा और क्या चाहिए, पानी ला दो, ऐसे प्यार से
1: पूछना चाहिए।
0: क्योंकि माँ बाप हमारा क्या होते हैं? भगवान तुल्य। माँ बाप हमारा क्या होते हैं?
1: भगवान तुल्य।
0: उसका बात मानना चाहिए कि नहीं?
1: मानना चाहिए।
0: अच्छा, माँ बाप का बात तो मानेंगे, और किसका बात मानना चाहिए?
1: दादा दादी।
0: वेरी गुड, दादा दादी है, वेरी गुड, बहुत अच्छा बात बता। और किसका? गुरु जी का। वेरी गुड, गुरु जी का बात मानना
1: चाहिए।
0: और किसका बात मानना चाहिए तुम बता देती? बड़ा दीदी है कि नहीं? बड़ा दीदी, बड़ा भाई
1: का। हाँ।
0: बोलो।
1: चाचा चाची।
0: वेरी गुड। बड़े जो होते हैं ना, उनका बात मानेंगे तो बड़े हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत होते हैं, वो हमारा भला ही चाहते हैं, इसलिए उनका बात मानना
1: चाहिए।
0: नहीं मानेंगे तो हम खराब हो जाएंगे, मानेंगे तो हमें बड़े में हमारे शिक्षक गण आते हैं, हमारा बड़े जो दादा दादी नाना नानी चाचा काका काकी सब आते, तो वो आपका भलाई के लिए चाहते हैं। हमारा बच्चिया आगे बढ़े, अच्छा करे स्कूल में पढ़ाई का साथ साथ, माँ बाप का भी हेल्प करना चाहिए और बुरा नहीं सोचना
1: चाहिए।
0: बहुत अच्छा। तो लेते हैं छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद और 2 छात्र उपस्थित है, तो उनको भी इस कार्यक्रम में सजाने के लिए निमंत्रण, उनको बुलाएंगे, लेकिन वो भी प्रस्तुत है। तो लेते हैं छोटा सा ब्रेक।

0: एक का बाद एक गीत कविता प्रस्तुति हो रहा है और बच्चे तो बड़ों को देखकर भी सीख जाते हैं और ऐसे संगठन में बल मिलता है, एकता होता है, संगठन में बल होता है, सब सामूहिक रूप में बोल रहे तो बहुत अच्छा लग रहा है सभी को ध्यान देते हुए। चलिए और दो छात्र है तो नाम बताएंगे, अपना अपना नाम बताओ।
1: जमुना डेरना।
0: और कौन सा क्लास?
1: फाइव।
0: फिफ्थ क्लास, ओके।
1: अर्षिता डेरना, सिक्स।
0: और हर्षिता तुम बड़ा होकर क्या बनेगी?
1: मैडम।
0: मैडम, वेरी गुड। तुम?
1: मैडम।
0: आप भी मैडम। आपका स्कूल में कितने मैडम है?
1: एक है।
0: नाम बताओ।
1: सविता मैडम।
0: क्या पढ़ाते हैं?
1: इंग्लिश।
0: अरे वाह, तुम क्या टीचर बने? इंग्लिश टीचर बनेंगे ना हिंदी मैडम? कौन सा मैम बनेंगे?
1: हिंदी,
0: गणित। अरे वाह, ये तो अलग है, वेरी गुड। चलिए शुरू करिए, कौन सा प्रस्तुति सुनाएंगे?

0: कुछ करना है तो मन के मारे बैठो, आगे आगे बढ़ना है तो हिम्मत हारे मत बैठो।
1: चलिए चलिए, और एक प्रस्तुति, छोटे बच्चे होते हैं और छोटे बच्चे तो सच्चे होते हैं। सर मैं और एक बोलूं, ऐसे मैं करते करते हम हो गए, मैं बोल को दो आगे, तीन आगे, चार छह हो जाते हैं। चलिए बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि खुशी लगता है बच्चे को तो ऐसे मंच मिलना चाहिए, जब मिलता है तो सुनते हैं। और एक प्रस्तुति तो सुनते हैं, ये तीनों क्या प्रस्तुति करेगी, लेकर आए कॉपी लेकर आए हैं, बोलेंगे कुछ। सबसे पहले प्यार होना चाहिए, प्यार जैसे खुराक नहीं है, जब प्यार मिलता है तो हमें आगे बढ़ते हैं। तो प्रभु का प्यार, माँ सरस्वती का प्यार, और हमारा बड़ों का भी प्यार है हमारा प्रति, और हमारा शिक्षकगण का भी प्यार है, तब तो हम स्कूल में आते हैं, विद्यालय में आते हैं विद्या अर्जन करने के लिए। चलिए तीन विद्यार्थी इस कार्यक्रम को सजाएंगे। सबसे पहले प्यार बनाया जाना चाहिए, शुरू करते हैं।

0: इससे सबका है नाता। ए रियाली वन बागो की कलियो सुन लो का खिलना, तितली बबलों का मंडारा एक दूजे से मन मिल, सारी वो सुनना प्यार भरी है दर्शन तुझे समझाया, बहुत जरूरी समझे सबसे पहले प्यार मनाया।
1: प्यार तो पूरा सीमेंट का काम करता है, चाहे रेती पत्थर और आयरन को भी जोड़ देता है सीमेंट। तो प्यार ऐसे है, हम सबका साथ प्यार है और सबका साथ स्नेह है, तब तो हम विद्यालय में आते और विद्यालय का प्रति भी हमारा प्यार है कि नहीं, और पढ़ाई का साथ भी हमारा प्यार है। प्यार है तब हम आते हैं विद्यालय में। क्या क्या मिलता है वो बताएंगे अभी। हाँ बताओ क्या क्या पोषण मिलता है, बता देखिए। खाने के लिए क्या क्या मिलता है सुबह शाम को, कभी कभी मिलता है ना, डेली मिलता है, सादा मिलता है,
2: दूध और रोटी और सब्जी।
1: रोटी सब्जी ओके,
2: टोकरी।
1: हाँ टोकरी,
2: दाल सब्जी,
1: दाल सब्जी। अरे फल फ्रूट्स,
2: केला,
1: केले मिलते हैं, सब मिलता है, क्योंकि बच्चों को सरकार का तरफ से कोई कुपोषित नहीं रहे, सभी सुपोषित रहे, अच्छा बने, इसलिए पोषण में सब भोजन मिलता है। तो लेते हैं छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद पुनः मिलेंगे, सुनते रहे कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल रेडियो मधुबन।

मैं हूं अनूप जलोटा और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन। सुनते रहो, गुनगुनाते रहो। जो तू मिटाना चाहे जीवन की तृष्णा।

0: चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अगला प्रस्तुति की ओर जा रहे। एकल कविता बा ज्ञान सुनने के लिए राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय डरने का आवाज आप सब सुन पा रहे, और एक छात्रा इस कार्यक्रम को सजाएंगे और उनका दिल है भाई हम और एकल करेंगे, एकल मैंने सभी के साथ में एकल करेगी तो अपना प्रस्तुति तो बहुत अच्छा लगेगा, तो उनको भी धन्यवाद देते हैं, स्वागत करते हैं। नाम बताओ।
1: भाग्यश्री।
0: भाग्यश्री आज तो भाग्य का रेखा पूरा खुद खींचेंगे, जितना खींचना हो खींच लो भाई, कलम मिला भाग्य का कलम। भाग्यश्री भाग्य का कलम लेकर आए हैं, देखिए हमारा श्रोता मित्र कितना उसका भाग्य को ले पा रहे हैं, क्योंकि भाग्य बिना कुछ है नहीं, पुरुषार्थ पुरुषार्थ करना पड़ेगा, कर्म करेंगे तो भाग्य आ जाएगा, और पुरुषार्थ का बिना भाग्य नहीं मिलता है, इसलिए पुरुषार्थ करना पड़ता है, काम करना पड़ता है, पढ़ाई करना पड़ेगा तो जाकर भाग्य मिलेगा, और भाग्य का कलम खुद लिखेंगे। चलिए भाग्यश्री को स्वागत करते, भाग्यश्री रेडी शुरू करें।
1: इंद्रधनुष से पंख पसारे, पंछी गाते गुन गुन, सांस सकारे गायों के दल, दौड़े जाते रुन रुन, तोता कुछ कोयल।

0: मुकम्बर के आंगन में बादल हर साल बजा रहे डब ढोल, शादी मग जुमदा सावन और मचल दे फागुन के कर कर गराता ट्रैक्टर दौड़ रहे खेतों की ओर, उड़ी पतंगे तितली जाचे खींच रहे खेतों की ओर, कुलार डंडा कुछ दे कबड्डी और भाई खो खो का खे शोर, शहर से मीठी नटखट छन छन मेरे गांव की प्यारी भोर।
1: मेरे गांव माई विलेज, मेरा गांव, मेरा अंचल जैसे प्रोग्राम का नाम है और गांव का कविता जो बच्चे सुना इस भाग्य से खुशी लगा क्योंकि ऐसे गांव में हम रहते हैं और गांव में पले बड़े और यहां तक पहुंचे, गांव का मिट्टी हवा को भूल नहीं पाएंगे। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए और एक प्रस्तुति सभी मिलकर करेंगे, ये लास्ट अंतिम प्रस्तुति होगी। सभी छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चियां चौथी फिफ्थ क्लास के बच्ची है, सभी बच्चियां को स्वागत करेंगे, सभी हमारा परियां गुड़िया है और सुनेंगे एक प्रस्तुति।

0: बना, पृथ्वी से सी को प्राणी की करना, जल धरा से सी को आगे जीवन बढ़ाना,
1: दीपक से सी को
0: जाना, और धुएं से सी को एकदम एकदम ऊंचे पर चढ़ना।
2: पहला बार आए फिर भी बच्चे अपना अचानक में आते तो कुछ ना कुछ छोड़ देते हैं, तो कोई बात नहीं, बच्चे इसे विद्यालय में पढ़ते हैं और हमें खुशी है क्योंकि बच्चे थोड़ा एक अंतरा हो चाहे एक मुखड़ा हो लेकिन उनका जो सांस है मुझे तो रख नहीं देते। बोले सर मैं मेरा रुक गया, मैं नहीं बोला, ऐसे ऐसे बोलते बोलते पूरा कार्यक्रम को सजा दिए। तो सभी को धन्यवाद देते हैं, आज के लिए हमें दीजिए इजाजत और कल मिलेंगे इसी वक्त इसी समय और किसी बात को लेकर। ये था बच्चों का आवाज और खासकर सभी सर को धन्यवाद देते हैं और हमारा सर भी, सर क्या रेडियो मधुबन इस तरह बच्चों को मंच दिया तो बच्चे भी बढ़कर हिजल। आप अपना परिचय दीजिए सर।
3: मेरा नाम रमन लाल।
2: जी सर रमन करेंगे आज। हाँ
3: राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय देड़ना
2: जी,
3: मैं यहाँ पर संस्कृत का अध्यापक हूँ।
2: जी सर,
3: और बच्चों ने बहुत अच्छी प्रस्तुति दी। सबसे पहले तो मैं बीके पवित्र भाई को धन्यवाद देता हूँ जो यहाँ पधारे और बच्चों की जो प्रतिभा थी उसको निखारने का कार्य किया और उसको जन जन

0: मानस तक पहुंचाने की
1: कोशिश कर रहे हैं, बता रहे हैं,
0: कर रहे हैं। और बच्चों का इससे बहुत बड़ा उत्साहवर्धन होता है, क्योंकि हमारी आवाज रेडियो पे आएगी, मोबाइल पे सुनेंगे, तो बच्चों का उत्साहवर्धन होगा और इससे बच्चों को एक अंदर से नई प्रेरणा का स्रोत प्राप्त होगा, जिससे कि ये जीवन के अंदर और आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। हर कोई मंच पर बोलने के लिए समर्थ नहीं होता है, और ये जीवन होता है, यहाँ से ही संघर्ष और समर्थवान बनने की परिकल्पना अपन शुरू करते हैं। इनने मुन्ने बच्चे जो चौथी पांचवी और तीसरी के जो बच्चे हैं, इन लोगों का आज ये जो मंच दिया पवित्र भाई ने, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद पवित्र भाई का। और इसी प्रकार से आप पवित्र भाई यहाँ पधारे और बच्चों की जो भी आवाज है उसको जन जन मानस तक पहुँचाने की कोशिश करें।
1: धन्यवाद सर जी।
2: धन्यवाद सर जी।
1: सर जी भी आपका आवाज सुनकर बोला धन्यवाद, और हमारा सभी सर को धन्यवाद देते हैं। नाम का साथ
0: बारोत
1: बारोत भी
0: बहुत अच्छा कार्य
1: करते हैं, सांस्कृतिक कार्य में उसका बहुत इच्छा रहता है। और जब हम केवल में गर्ल्स स्कूल में देखा था, बहुत अच्छा से प्रस्तुतियां देते थे, और कभी तो रेडियो सुनते थे, लेकिन वो बोला भाई मैं तो हमेशा सुनता था, लेकिन आज मेरा आवाज मैं दे रहा हूँ, लोग सुनेगा और मैं भी सुनूंगा, इसे एक बार बोला था सर ने।
0: सही
1: सर, बोला मैं हमेशा सुनता था बच्चों का, लेकिन आज इंटरव्यू ले रहे हैं और मेरा इंटरव्यू मैं सुनूंगा जरूर।
0: ये बात ऐसी है ना सर, बच्चे गीत गाते हैं जैसे कमरे में गा रहे, ठीक है कि स्कूल में गा रहे, अब आवाज बाहर तक पहुंचती है तो बहुत उत्साह तो होता है बच्चों के अंदर, नहीं मेरी आवाज सुनाई दे रही है।
1: दे रही, तो बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सभी स्टाफ को और HM साहब को भी धन्यवाद देते हैं, और सभी बच्चों को नाम का साथ धन्यवाद देते हैं। आज के लिए हमें दीजिए इजाजत, फिर कल मिलेंगे इसी वक्त इसी समय और किसी बात को लेकर। यह था खासकर राज्य के उच्च प्राथमिक विद्यालय डरने का आवाज़।

बेरू राग से बालीनाथ जी की टोनी में चल जावे जब कहीं बात बने। देखो रामदेव जी झोंपड़ी में कुटिया में छुप जावे, बेरू राग से गुदड़ी ने कांच पर लगा।

राक्षस भूतड़ी ने खेच पा लाग्यो, भूतड़ी को पाल नहीं पायो। भूतड़ी ने चोट बैरूडो पर जंगल में रवाना हो कहीं बाद बने।

दिख रहे हैं देखो।

0: मधुबन 107.8 FM, सुनते रहो मुस्कुराते रहो, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।
1: अरावली की वादियों से आप सुनने जा रहे हो कार्यक्रम वंदे मातरम, आपकी अपनी उषा के साथ। वंदे मातरम उस मात्र शक्ति को नमन जिसके आंचल से संस्कार मिलते हैं, जिसकी ममता से जीवन सवर जाता है। आज का ये मंच केवल शब्दों का नहीं मेरे प्यारे श्रोता बंधुओं,

0: नारी के साहस, समर्पण और शक्ति का वंदन है, क्योंकि नारी केवल सृजन नहीं, वह संकल्प है, वह संस्कृति है, वह राष्ट्र की आत्मा है। इसी भाव के साथ नारी शक्ति को समर्पित हमारे विशेष कार्यक्रम वंदे मातरम में आप सभी का स्नेहिल स्वागत है। और आज फिर से आपको मिलवाने जा रही हूँ ज्योति पाल से, जिनका आपने गए रविवार भी सुना और इस रविवार भी आप इनको ही सुनेंगे। तो ज्योति जी के हमने काफी बातें बताई थी। उम्र तो आपकी 45 वर्ष की है, आपने बीएससी किया हुआ है, आप जर्नलिज्म है, साथ ही साथ अध्यात्म में आपकी गहरी रुचि है, आप पढ़ने में हर एक बात में सबसे आगे रहे हैं, प्रतियोगिताओं में भी आप हमेशा दूसरों को टक्कर दे करके आगे बढ़ जाते थे, और आपने टीवी चैनल में भी काम किया हुआ है, टीवी जर्नलिस्ट भी है, बहुत सारी विशेषता है जो आपने गए रविवार भी सुनी और इस बार भी सुनेंगे। तो आपके ही द्वारा ज्योति जी पुनः आपका स्वागत है वंदे मातरम कार्यक्रम में।
1: थैंक यू उषा जी, वंदे मातरम आपको भी। और पिछले रविवार को हमने बात की थी,
0: हाँ, तो आपके स्टूडेंट लाइफ, आपकी कॉलेज लाइफ के बारे में, आपको पढ़ाई में किस तरह रुचि थी, कौन से गेम्स आप ज्यादा खेलते थे, बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई है आपने ज्योति जी। तो अब आपकी सफर की बात करेंगे, फिर आप कैसे आगे बढ़ते गए जरा।
1: जी, तो जैसा कि हमने बात की थी कि कॉलेज लाइफ की, कॉलेज के बाद मैंने बीएससी की और बीएससी के बाद फिर मैं एक ऐसा कोर्स ढूंढ रही थी। मैंने एमएससी में एडमिशन लिया, एमएससी इन जियोलॉजी, जिसको हम जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान कहते हैं। तो उसमें मेरा इंटरेस्ट नहीं था, उसमें एक्चुअली पत्थरों का अध्ययन होता था जियोलॉजी में, हिंदी में उसे बोलते हैं मुझे भूगर्भ विज्ञान, हाँ राइट, तो भूगर्भ विज्ञान, तो उसमें पत्थरों का अध्ययन होता था। और वो एमएससी में मैंने एडमिशन तो ले लिया, लेकिन मैं अंदर से खुश नहीं थी, तो मैंने अपने पापा को भी बोला। और मैं जर्नलिज्म का कोर्स ढूंढ रही थी, मेरे ब्रदर के एक फ्रेंड ने मुझे गाइड किया कि आप, मैंने कहा भैया मुझे कुछ हटके करना है, अपनी आइडेंटिटी एक नई बनानी है, ऐसा कुछ करना है, रूटीन है या नहीं कि बीएससी कर ली फिर एमएससी कर लिया, मुझे कुछ ऐसा करना है जिससे मैं समाज की भी सेवा कर सकूं। तो उन्होंने कहा अगर आप ऐसा सोचती हैं तो मेरे हिसाब से आपको जर्नलिज्म का कोर्स करना चाहिए। तो मैं अपनी यूनिवर्सिटी में ढूंढ रही थी जर्नलिज्म का कि मास्टर ऑफ जर्नलिज्म मुझे मिल जाए तो मैं उसमें एमए इन जर्नलिज्म कर सकूं, बट उस वक्त मुझे दिखा नहीं। और मैंने एमएससी में एडमिशन लिया और मैं 15 दिन गई, रेगुलर क्लास भी की और पढ़ने में तो अच्छे थे, तो सारे प्रोफेसर लाइक करते थे डिपार्टमेंट में, डिपार्टमेंट ऑफ जियोलॉजी में। लेकिन अचानक उस समय मेरी जो बेस्ट फ्रेंड थी उसने जर्नलिज्म में एडमिशन ले लिया, उसको कहीं एडमिशन नहीं मिला। मैंने तो 4-5 जगहों पर केमिस्ट्री में भी अप्लाई किया था, एमएससी इन केमिस्ट्री में भी, लेकिन मेरा तो 3-4 जगह हो गया, उसका कहीं नहीं। तो उसको फिर बाद में पता चला कि अभी इस तरीके का एक कोर्स रन कर रही है हमारी यूनिवर्सिटी, विक्रम यूनिवर्सिटी उज्जैन की। तो मैंने सोचा कि अरे ये कोर्स तो मैं ढूंढ रही थी, तुमने इसमें एडमिशन ले लिया, और मुझे तो एमएससी बिल्कुल करने का मन नहीं था, लेकिन मुझे ये कोर्स मिला नहीं यहाँ लोकल में, इसलिए मैंने एमएससी में एडमिशन लिया। फिर मैंने अपने पापा से कंसल्ट किया, मैंने कहा पापा मुझे तो एमएससी बिल्कुल नहीं करनी है, मुझे तो जर्नलिज्म ही करना है, और मैं चाहती हूँ मैं यूनिवर्सिटी से डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट अपनी फीस ट्रांसफर कर लूँ। तो हालांकि जियोलॉजी डिपार्टमेंट के प्रोफेसर और वहाँ के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट सब ने अपोज किया, कहने लगे कि नहीं नहीं इसमें आपको बहुत स्कोप है, को बहुत सारी गवर्नमेंट जॉब इसमें मिलेंगी और आपको विमेन कैटेगरी से आपको उसका भी फायदा मिलेगा। पर मैंने फिर उनको भी नो नो करते हुए फाइनली फिर मैंने जर्नलिज्म डिपार्टमेंट में एडमिशन लिया। तो वहां से हमने फिर, वो बहुत अच्छा रहा, जर्नलिज्म डिपार्टमेंट में हम जाते थे जगह जगह, हमारे जो प्रोफेसर होते थे वो हमको कई बारी भेजते थे कहीं पे रिपोर्टिंग करने के लिए, लोकल में कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस है तो कहते थे जाओ वहां पे जाके प्रेस रिलीज लिखो, तो प्रैक्टिकल भी करते थे। उसी दौरान फिर मैंने जी न्यूज में इंटर्नशिप भी करी डिपार्टमेंट ऑफ जर्नलिज्म में, जब मैं एमए इन जर्नलिज्म कर रही थी तो दिल्ली में जाके मैंने की। तो एक छोटे स्मॉल टाउन था, मतलब उज्जैन, 2001 की बात मैं बता रही हूँ, वहां उस टाइम पर मीडिया में, अखबारों में या लोकल टीवी चैनल में कोई भी लड़की नहीं काम करती थी, रेयर ऑफ द रेयर केस में एक या एकाधी कोई फीमेल होगी। पूरी तरीके से जर्नलिज्म फील्ड छोटी जगहों में ऐसे ही होता है,
0: जी जी, हाँ, पुरुष लोग ही ज्यादा सम्मिलित होते हैं।
1: तो ऐसे टाइम पे फिर मैंने वहां पे कहा कि भाई हमने काम भी शुरू किया नव भारत पेपर में, साथ में मैं इंटर्नशिप भी कर रही थी, एक नव भारत पेपर अच्छा नेशनल पेपर था। तो मैंने अपने डिपार्टमेंट हेड से कहा कि मुझे आप ये दीजिए इंटर्नशिप की परमिशन, मैं दिल्ली जाके जी टीवी में इंटर्नशिप करना चाहती हूँ। भाई हमारे डिपार्टमेंट हेड ने कहा कि भाई हमारे डिपार्टमेंट से तो इंटर्नशिप के लिए भेजा नहीं जाता है आपको, तो हम कैसे भेज सकते हैं। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, आप ये लिख के दे दो कि ये लड़की करना चाहती है।

0: प्राइवेट चैनल्स में एक सिर्फ जी न्यूज ही था, बाकी तो न्यूज के फील्ड में डीडी न्यूज और दूसरे थे सरकारी, लेकिन प्राइवेट कोई इतने न्यूज चैनल्स नहीं हुआ करते थे तब। बस शुरू में एक आज तक शुरू हुआ था, जी के बाद फिर एक आज तक शुरू हुआ था। तो मुझे ये था कि टीवी में मुझे टीवी जर्नलिज्म ही करना है, मैंने ये स्पेसिफिक जर्नलिज्म करना है, लेकिन मेरा गोल भी फिक्स था कि नहीं मुझे टीवी जर्नलिज्म करना है, टीवी जर्नलिस्ट बनना है। तो इतना आसान नहीं था क्योंकि जिस फैमिली बैकग्राउंड से मैं थी, मेरी कोई कजन वगैरह सब लोग शादीशुदा थे और कोई भी जॉब नहीं करता था। मतलब हमारी जो कम्युनिटी है पाल कम्युनिटी, तो उसमें फीमेल्स को इतना और जॉब के लिए इतना नहीं अलाउ किया जाता था। एक तो घर में इकलौती बेटी और उसके बाद उसको भी बाहर पढ़ना है, और
1: हाँ दिल्ली जैसे,
0: हाँ और वो भी जर्नलिज्म फील्ड, जो कि मेरे पूरे परिवार में कोई जर्नलिस्ट नहीं था, तो मेरा बैकग्राउंड भी नहीं था कि किसी का सपोर्ट मिले।
1: जी जी, तो फिर आपके पापा मान गए आप कोर्स करने के?
0: हाँ, तो मैंने कोर्स भी किया, फिर डिपार्टमेंट हेड को भी मनाया, उनसे इंटर्नशिप लेटर भी लिया, फिर मैं दिल्ली गई। अब फिर दिल्ली जाना है तो भाई खर्चा भी है काफी, दिल्ली आना जाना, वहां रहना, पेंगेस रहना, वहां गई मैं, हमारा कोई इतना नहीं, मैं कजन था तो उसने थोड़ा सपोर्ट किया, वो वहां गुड़गांव में जॉब करता था, तो शुरुआत में मैं 2-3 दिन उसके यहाँ रही। फिर मैंने एक पेंगेस्ट वहां पे होता था, तो उसमें आपको 2 टाइम का ब्रेकफास्ट और रात का डिनर देते हैं, लंच आप अपने ऑफिस में ही करते हैं। ऐसे एक पेंगेस्ट में रही वहां पे उनके यहाँ 1 महीने, और 1 महीने मैंने इंटर्नशिप की नोएडा में जी न्यूज में फिल्म सिटी में, बड़ा अच्छा रहा। और आप बिलीव नहीं करेंगी, जब मैं इंटर्नशिप करके दिल्ली से आई तो जैसे हमारा छोटा सा उज्जैन शहर, वहां के सारे न्यूज़पेपर में मेरे ही सीनियर्स हुआ करते थे, हमारे ही जर्नलिज्म फील्ड के, तो सब लोग बड़े शॉक्ड हो गए, अरे एक अपने डिपार्टमेंट की लड़की है वो है ना दिल्ली में इंटर्नशिप करके आ गई, वो भी जी न्यूज में इंटर्नशिप करके आ गई।
1: अच्छा।
0: तो बड़ा पूरा जैसे एक एक खबर बन गई सारे मीडिया में।
1: और वहां आपको चांस मिल गया?
0: हाँ, वहां इंटर्नशिप कहा मुझे चांस मिला, लकीली मुझे चांस मिल गया, मुझे कुछ लोगों ने सपोर्ट किया, तो उसके थ्रू ये मेरा हो गया। क्योंकि कहते ना जहाँ दिल की भावना,
1: हाँ,
0: बिल्कुल हो, जहाँ आप लक्ष्य रखेंगे वहां लक्षण खुद ही खुद ब आ जाते हैं
1: जी।
0: तो बड़ा ही अच्छा रहा। तो जो मेरे सीनियर्स थे वहां पे, तो लड़कों को ये लगा, खास करके उस टाइम पे, क्योंकि मैंने बताया आपको लोकल मीडिया में कोई भी फीमेल नहीं थी
1: जी।
0: मैं और
1: जी,
0: मेरी एक फ्रेंड, हम मास्कॉम में भी थे, तो हम ही कुछ ऐसी इंटर्नशिप टाइप के वहां पे कर रहे थे, तो बड़ा सब शॉक्ड हो गए, अरे लड़की करके आ गई दिल्ली से, तुम तो लड़के हो। तो लड़कों में भी बड़ा स्पार्क आ गया कि अरे हमारे उज्जैन की लड़की कौन है, कौन है मतलब। तो मेरे एक सीनियर ने बताया कि तुम जब से इंटर्नशिप करके आई हो तब से बड़ा, मतलब दैनिक भास्कर, नई दुनिया, बड़े बड़े पेपर में बड़े बड़ा हल्ला है, लड़के तो बड़े शर्म से डूब मर रहे हैं।
1: क्या बात है ज्योति जी, चलिए आपके तो बड़े सुंदर अनुभव है जिसका हम फिर से सुनेंगे, परंतु पहले एक ब्रेक का समय हो चला है तो एक ब्रेक ले लेते हैं। बने रहिएगा कार्यक्रम वंदे मातरम में, ज्योति जी के बहुत ही गहरे अनुभव है जो हम कंटिन्यू करेंगे, लेकिन सुनते हैं गीत, तो सुनते रहो मुस्कुराते रहो रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: फिर भी साइबर फाइनेंशियल फ्रॉड में फंस जाना तो कॉल 1930 पर लगाना। ऑनलाइन होने वाले धोखाधड़ी और साइबर फ्रॉड से पीड़ित होने पर गृह मंत्रालय भारत सरकार की अधिकृत वेबसाइट www.cybercrime.gov.in पर अपनी शिकायत दर्ज कराएं।
1: बेटी वो खुशबू है जो आंगन महकाए, बेटी वो खुशबू है जो आंगन महकाए, हर रिश्ते में अपनापन जगाए, नन्हे कदमों से सपने बुनती, नन्हे कदमों से सपने बुनती, घर को स्वर्ग सा बना जाए। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम वंदे मातरम, और वंदे मातरम में पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ज्योति जी हमारे साथ बने हुए हैं और ज्योति जी के वास्तव में अनुभव आपने सुने हैं जो काफी गहरे थे। आइए इसी कड़ी में और भी आगे बढ़ेंगे। तो ज्योति जी, आपने तो जैसे अपने कॉलेज का नाम कर दिया, अपने शहर का नाम कर दिया, तो लोग भी आपसे प्रेरित हुए।
2: बिल्कुल बिल्कुल, उस टाइम बड़ा अच्छा रहा। तो उसके बाद कुछ लोगों ने फिर जाके दिल्ली में आज तक में भी जाके कोर्स किया, आज तक का कोर्स होता है आज तक टीवी का, तो वहां भी गए। तो मतलब एक तरीके से एक बड़ा मेरे लिए अपने आप में ये अच्छा अनुभव रहा।
1: उज्जैन शहर में आप पहली बेटी ऐसी है जिन्होंने दिल्ली में जाकर के जर्नलिज्म किया।
2: हाँ, जर्नलिज्म में इंटर्नशिप की और जॉब भी पहली ही मैं हूँ। अच्छा। जिसने दिल्ली जाकर जॉब की।
1: अरे वाह, क्या वाह।
2: तो फिर ये हुआ कि मैं इंटर्नशिप करके 2001 में आ गई। फिर दो साल मुझे टीवी मीडिया में इंटर करना है, और ऐसे में जब जिसका आप कोई भी बैकग्राउंड नहीं है और दिल्ली में कोई लिंक नहीं है, बस वही लिंक बनी थी मेरी जो जी टीवी में मैंने एक महीने इंटर्नशिप की थी, तो कुछ लोगों से मेरा कांटेक्ट बना था। ऐसे में आपको फिर से जाना है दिल्ली और जॉब सर्च करना है, बहुत ही डिफिकल्ट था, और वहां रहना खाना बहुत महंगा होता है, और घर वाले अलाउ भी नहीं करेंगे बिना जॉब के, तो वहां क्या आप अकेले रहें। तो ये बहुत चैलेंजिंग थे ये दो साल मेरे लिए, 2001 से लेके 2003। पर मैंने हिम्मत नहीं हारी, और कहते हैं ना संकल्प से सिद्धि होती है।
1: बिल्कुल।
2: तो मैं टीवी के आगे बैठती थी, दिन भर टीवी चैनल देखती थी।
1: अच्छा।
2: और मेरा भाई मजाक करता था, क्योंकि एडवर्टाइज में कुछ कुत्ते बिल्लियों को भी ऐड आते हैं, ऐसे कुछ होता था, तो कहता था देख अब तो कुत्ते बिल्ली भी आ गए, तू कब आएगी।
1: क्या बात है।
2: तो भाई लोग तो भाई तो ऐसे ही होते हैं, है ना, शरारत थी। तो मुझे बहुत परेशान करते थे घर वालों के टोन। फिर हम मेरे कॉलेज के जो भाई मैं मास्कॉम किया था, तो हमारा जो ग्रुप थी, हमारी बैच थे, तो मुझे टोन मारते थे, ये देखो जी टीवी रिटर्न ऐसे करके। मुझे जब हम पब्लिकली सोशली हम मिलते थे किसी के फंक्शन में पार्टी में, तो वो कहते थे, तो इंट्रोड्यूस मुझे कहते थे ये हमारी फ्रेंड है जी टीवी रिटर्न। तो बड़ा मुझे लगता था कि मैं जा नहीं पा रही हूँ दिल्ली, और मुझे तो टीवी जर्नलिस्ट बनना है, क्योंकि मैं बहुत बिंदास टाइप की थी, और मैं कुछ भी जो मुझे करना है मैं दिल से खुलकर बोल देती थी। मैं कहती थी मैं तो टीवी जर्नलिस्ट बनूंगी भाई, मुझे किसी चाय वाले अखबार में काम नहीं करना है। कि जो चाय के स्टॉल्स पे छोटे छोटे अखबार नहीं जाते हैं, शाम के पेपर है वो, तो मैंने कहा तुम लोग करो भाई, मुझे तो टीवी जर्नलिस्ट ही बनना है। और मैं बिल्कुल चैलेंज के साथ सबको बोलती थी। अब चूंकि 2003 में सहारा टीवी शुरू हुआ, तो उस टाइम सहारा ने अपना नेशनल चैनल स्टार्ट किया और कई सारे रीजनल चैनल्स भी स्टार्ट किए, उसमें एक मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के लिए भी। मैं कई लोगों को कांटेक्ट करती रहती थी दिल्ली में, फोन करती थी, बस फोन के थ्रू मैं करती थी उन्हें बातें। तो मुझे किसी ने बताया कि तुम ट्राई कर रही हो, तो सहारा वालों ने अपना, और पेपर में भी एडवर्टाइज भी काफी आया था, तो उसमें ट्राई करो, तुम्हारा हो जाएगा। और बहुत सारी रिक्रूटमेंट्स वहां पे निकली हुई है, मैंने अपना रिज्यूमे वगैरह बनाया, और ऐसे ही एक दिन मैंने वहां का पता चला कि कौन हेड कर रहा है उसको, तो मुझे पता चला विनोद दुआ जी बहुत जाने माने जर्नलिस्ट माने हुए थे। तो मैंने सोचा कि 5-6 लोगों को जिनको मैं बड़े बड़े नाम जानती थी टीवी के, सबके नाम से, जिन्होंने मुझे पता चला जिन्होंने सहारा ज्वाइन किया है, तो मैं सबके नाम से अपना रिज्यूमे उनको ड्राफ्ट करके अच्छे से और उनको पोस्ट कर दिया नोएडा में। और लकीली जिसे कहते हैं ना संकल्प से सिद्धि क्या चीज होती है, तब मुझे पता चला कि अगर आपके सच्चे में कोई ड्रीम है, और विनोद दुआ जी के हाथ में मेरा वो रिज्यूमे लग गया, और उन्होंने मुझे कॉल कर लिया लकीली। तो ये बात मैं आपको बता रही हूँ सितंबर 2003 की।
1: अच्छा।
2: हाँ जी
1: जी।
2: उस वक्त मुझे कॉल आया और बोला कि आपको इंटरव्यू में बुलाया गया है। फिर मैं इंटरव्यू देने गई, और वहां लकीली मेरा इंटरव्यू, उन्होंने मेरा थोड़ा बैकग्राउंड देखा कि मैंने नव भारत में भी करा है, मास्टर ऑफ जर्नलिज्म मैंने किया है, मेरे फर्स्ट क्लास के नंबर थे, तो उन्होंने मुझे सिलेक्ट कर लिया। और मैंने 1 अक्टूबर 2003 को सहारा टीवी में मेरी ज्वाइनिंग हो गई।
3: क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो ये जैसे घर में तो किसी को नॉलेज नहीं था,
2: हाँ जी,
3: आपको
2: हाँ जी।
3: अपने अंतःकरण से ही निकलता था कि मुझे इस फील्ड हाँ, में जाना है।
2: जी बिल्कुल बिल्कुल।
3: तो फिर घर वाले भी खुश हो गए होंगे जो आपके भाई चिढ़ोते थे।
2: हाँ बहुत चिढ़ाते थे, मेरा भाई तो लिटरली इतना बुरी तरह से कहते थे, देख कुत्ते बिल्ली के भी एड आ रहे, तू कब टीवी में दिखेगी। तो मुझे ये बड़े बात बड़ी चुभती थी। और फिर मेरे जो फ्रेंड्स, मेरे प्रोफेसर लोग जो मुझे ये भी बोलते थे कि भाई तुम तो जी टीवी रिटर्न हो, उन्हें जब पता चला अरे सच में उसकी तो टीवी में जॉब लग गई, तो दे आर लाइक शॉक्ड। फिर वो कहने लगे अरे हमें तो पता था आपका उज्जवल भविष्य। तो मुझे लगा देखिए दुनिया कितनी जल्दी अपने थॉट चेंज करती है।
3: दुनिया तो चढ़ती के साथ सलाम करती है,
2: बिल्कुल
3: जब उगता है तो उसको सभी सलाम करते हैं।
2: और वो सारे मेरे फ्रेंड मास्टर जर्नलिज्म के सब मुझे अप्रिशिएट करने लगे, कॉल करने लगे, मुझे बधाइयां देने लगे। तो मुझे लगा कि नहीं बिल्कुल, मतलब बहुत अच्छा रहा। मुझे ये लगा कि मैंने जो ड्रीम सोचा था जब मैं दिल्ली में पहली बार मैंने कदम रखा था इंटर्नशिप के दौरान, तब मैंने कहा था दिस इज माई सिटी, यही मेरी सिटी है और मैं यही रहूंगी। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि जब मैं फिर वहां रहने भी लगी और मुझे जॉब भी मिल गई, तो बहुत अच्छी जर्नी रही। और सहारा ग्रुप बहुत अच्छा था, वो भी एक परिवार की तरह था, सहारा इंडिया परिवार। और मतलब बहुत उस टाइम पे तो एयरलाइंस भी होती थी काफी सारी, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। नई नई चीजें वहां सीखी, बोलना सीखा, कंप्यूटर तो मैं जानती थी पहले ही, मैंने डिप्लोमा एप्लीकेशन कर रखा था कंप्यूटर में 1 ईयर का, लेकिन बहुत सारी चीजें वहां हमको सीखने को मिली। और जब आप काम करते हैं, जॉब करते हैं, तो आपकी पर्सनालिटी धीरे धीरे ग्रूम होती है। और स्पेशली जब जर्नलिज्म फील्ड में होते हैं तो हम इतनी वैरायटी न्यूज सुनते हैं, तो अवेयरनेस का भी लेवल बहुत हाई हो गया। तो ये बहुत अच्छा अचीवमेंट रहा था।
3: जी जी जी। तो जैसे आप दिल्ली रहने लगे, दिल्ली बहुत बड़ा शहर है, आप अकेले रहते थे, तो वाले चिंता तो नहीं करते थे कि अब अकेली बेटी शहर में रह रही है इतने बड़े?
2: नहीं, परमात्मा की कुछ ब्लेसिंग कह दीजिए कि हम लोगों के एक कास्ट के थे अंकल, उन्होंने ही अपने घर पे मुझे, उनकी बिल्डिंग थी दिल्ली में बहुत बड़ी और हमारे कास्ट के प्रेसिडेंट भी थे, तो उन्होंने एक रूम मुझे रेंट पे दे दिया था। तो ये था कि उन लोगों की पूरी फैमिली थी, उनके 2-3 बेटे थे, बहुएं थी, और वो तो एक फैमिली एनवायरनमेंट मुझे मिल गया था, तो उनका सहयोग मुझे बहुत मिला। तो जैसे कहते हैं कि बहुत जहां आपकी चाह होती है वहां राह मिली जाती है, तो मुझे एक फैमिली एनवायरनमेंट मिला और वहां पे बहुत अच्छे अच्छे लोग भी मिले। फिर धीरे धीरे तो फिर ऑफिस में भी जान पहचान हो गई, तो हम 2-3 लड़कियां मिलके हमने एक फ्लैट ले लिया, फिर हम उसमें रहने लगे, ऑफिस के पास ही फ्लैट लिया, तो ऐसा हो गया कि ट्रैवल भी नहीं करना पड़ेगा ज्यादा, तो उसमें फिर हमें बहुत इजी हो गया।
3: और जर्नलिज्म के नाते तो आपको फील्ड वर्क भी करना पड़ा होगा?
2: फील्ड वर्क था, मैं कभी कभी जाती थी रिपोर्टिंग करने, पर मैंने देखा फिर वहां पे भी मैंने कंपेयर किया कि जो रिपोर्टर होते हैं उनकी लाइफ में बहुत स्ट्रगल होता है, उन्हें कुछ भी पता नहीं होता है कब वो खाना खाएंगे, कब सोनिया गांधी जी से मिलेंगे, कब किस मंत्री से मिलेंगे, तो उनका कुछ फिक्स नहीं होता है। तो मैंने बोला वो और टू मच स्ट्रगल वाला हो जाएगा, तो मैंने ऑफिस ही प्रेफर किया। तो मैं, वो लोग रिपोर्टिंग करते थे और मैं वो जो लिख कर लाते थे अपनी स्टोरी, मैं उसको फाइनल एडिटिंग कर दी, तो मैं एज ए एडिटर उसके लिए काम करने लगी ऑफिस में ही। तो मैंने बोला अच्छा एसी में बैठ के ये लोग करके लाते हैं मेहनत, और मैं ही उसको वॉइस ओवर करती थी, उसमें आवाज देती थी, स्क्रिप्टिंग लिखती थी, फिर हम बुलेटिन बनाते थे, प्रोग्राम्स बनाते थे, बहुत सारी चीजें हमने वहां पे सीखी, लेकिन मैं ऑफिस ही वर्क करती थी, एज ए प्रोड्यूसर मैंने वहां पे काम किया।
3: जी जी जी, बात है, ऐसा लग रहा है कि मैं सुनती रहूं, आप सुनाते रहे। जी, फिर आपने ऐसे भी बताया था कि 6 साल इधर काम किया।
2: हाँ हाँ, सहारा टीवी में 6 साल काम किया, और उसके बाद फिर मैंने अपना थोड़ा थोड़ा मैंने सोचा कुछ चेंज भी करना चाहिए, तो फिर मैंने कंपनी भी चेंज करी और फिर वहां पे भी अच्छा काम मिला, वहां पे भी कुछ वैरायटी वैरायटी चीजें मुझे करने की मिली।
3: तो कंपनी चेंज की, फिर आपने कहाँ काम किया?
2: हाँ, फिर मैंने एक CVB, मैंने आपको बताया ना, वो UNICEF के साथ उस टाइम टाई अप था, तो सीवीवी में मैंने काम किया, जो सी वोटर करके जो एग्जिट पोल होते हैं हमारे चुनाव के, उसके लिए वो काम करती है. तो उसमें थोड़े टाइम के लिए काम किया. फिर मुझे 6 महीने बाद ही एक और अच्छा न्यूज एक्सप्रेस करके चैनल नया लॉन्च हुआ था, तो हमारे पुराने सहारा के बॉस वहां पे थे, तो उन्होंने मुझे ऑफर किया कि आप आ सकती हैं यहाँ पे. तो फिर मैंने न्यूज एक्सप्रेस चैनल ज्वाइन कर लिया.
3: जो आप छोड़ करके दूसरी तरफ जाते तो उसमें आपका प्रमोशन होता या फिर?
2: हाँ बिल्कुल, आपका फाइनेंशियली भी और आपका डेजिग्नेशन वाइज भी प्रमोशन होता है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ती है और आपकी पदोन्नति तो होती है.
3: जी जी. तो ये 3-4 चैनल में आपने काम किया, आपको विशेष क्या सीखने को मिला, क्या अनुभव हुआ? कहीं देखिए ये तो बाहर की दुनिया है, मतलब कहते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री हो चाहे ये जर्नलिज्म लाइफ हो.
2: हाँ, ग्लैमर वर्ल्ड कहलाता है. जी बिल्कुल.
3: तो इसमें आपको कभी बुरी नजरों का भी सामना करना पड़ा होगा, क्योंकि उस समय तो लड़कियां बहुत कम इस फील्ड में जाती थी. तो कभी आपके साथ भी इस तरह का कुछ हुआ, या फिर आप कभी नर्वस हुए, या कभी ऐसा लगा कि छोड़ो मुझे नहीं करना है?
2: देखिए, अब हम हर सोसाइटी में जिसमें रहते हैं उसमें हर तरह के लोग मिलते हैं, लेकिन आपकी पर्सनैलिटी जिस तरह की होती है आपकी तरफ वही लोग अट्रैक्ट होते हैं. तो होते थे, लेकिन कभी हम में कॉन्फिडेंस की कमी नहीं थी और इतना किसी से बहुत ज्यादा घुलते मिलते भी नहीं थे कि बहुत ज्यादा. और कोई मान लीजिए आपको लगता है, और सबसे बड़ी बात है इस फील्ड की, सबसे मुझे अच्छी बात ये लगी जर्नलिज्म में, इसमें सब लोग बहुत ओपन है. मान लो किसी को कुछ कहना है, किसी को कुछ ऑफर करना है, मान लो किसी को किसी लड़की को प्रपोज ही करना है, तो वो डायरेक्ट कर देगा. अच्छा, वो ऐसा नहीं कि गोलमाल करके बोलेगा या उसको कुछ करेगा, मतलब ऐसे किसी तरीके से इंडिकेट करेगा या उसको परेशान करेगा, ऐसा नहीं. जर्नलिज्म फील्ड में बहुत चीजें ओपन है, तो अगर किसी को ये था कि भाई किसी को प्रपोज, तो आपको अगर नहीं स्वीकार करना है तो ना स्वीकार करिए. तो इस फील्ड में ये था कि सब लोग ब्रॉड माइंडेड बहुत होते हैं पढ़ने लिखने वाले, तो ऐसा ही थे. कुछ लोग मिलते थे ऐसे कि कुछ प्रपोजल भी दे देते थे,
3: जी,
2: कुछ कर देते थे, तो हम उसको अस्वीकार कर सकते हैं, लेकिन सबको फ्रीडम है. लेकिन कुछ लोग होते होंगे, पर इस तरीके का मुझे तो कभी माहौल मिला नहीं, क्योंकि हमारी फील्ड ही ऐसी थी, तो बहुत ओपन थे वो लोग. तो जो हमको समझ में आता, कोई ऐसा नहीं था कि किसी को समझना है कि ये क्या कहना चाह रहा है या कुछ ऐसे इंडिकेशन दे रहा है या ऐसा कभी भी नहीं लगा. और हम लोग नाइट में भी जॉब करते थे, बहुत अच्छे लोग मिले मुझे, और जिन लोगों के साथ मैंने काम किया मेरे बॉसेस भी बहुत अच्छे थे. और जहां मैंने देखा कि जो लोग अच्छे नहीं थे तो मैंने खुद ही किनारा कर लिया.
3: जी जी, वो समझ आ जाती है.
2: वो हमें समझ आ जाती है. जब मुझे लगा जॉब में कि मेरे बॉस चेंज हो गए हैं और वहां का एनवायरनमेंट खराब हो गया, तो मैंने जॉब स्विच कर ली.
3: बहुत अच्छा.
2: कुछ चीजें जहाँ हमारे कंट्रोल में होती है वो हम उनको कंट्रोल कर सकते, कुछ चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं हो सकती है, तो हम उसको चेंज कर सकते हैं.
3: जी जी, बहुत बढ़िया ज्योति जी. आपके और भी अनुभव सुनेंगे, लेकिन समय का ध्यान रखना बहुत जरूरी है.
2: बिल्कुल.
3: सुनने के बाद पुनः लौटते हैं. कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिएगा कार्यक्रम वंदे मातरम में. सुनते रहो, मुस्कुराते रहो.
2: रेडियो मधुबन 107.8 FM.

0: बेटी बोझ नहीं वरदान है, बेटी बोझ नहीं वरदान है, ये सोच बदलनी आज की पहचान है। जिस घर में बेटी हंसती है, जिस घर में बेटी हंसती है, वही सच्चा सुख समाधान है, वही सच्चा सुख समाधान है। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम वंदे मातरम, और वंदे मातरम में ज्योति जी के बहुत ही अच्छे अच्छे अनुभव हम सभी सुन रहे हैं। आपके अंदर कितना टैलेंट है, कितनी एबिलिटी है, और कितना आप भले कहीं पर भी आप नर्वस नहीं हुए, और हर क्षेत्र में आप जैसे झरन लीजिए में आपने काम किया है। इस चैनल में आपको ऐसा लगा तो चेंज करके आप दूसरा आपने पकड़ लिया, लेकिन कहते हैं कि एक अकेली बेटी जिसका किधर से भी सपोर्ट नहीं, खुद के बलबूते पर आगे बढ़ना और खुद ही सपोर्ट का रास्ता ढूंढना, ये बहुत बड़ी विशेषता होती है। तो ज्योति जी, आप जैसे निडर होकर के काम करते रहे दिल्ली जैसे बड़े शहर में, जबकि वहाँ कुछ के कुछ सुनने को मिलते रहते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: तो कभी माता पिता ने भी टेंशन नहीं लिया, उनको पता है कि बेटी बिंदास है?
1: कहीं ना कहीं मेरे पेरेंट्स को लगता था ये समझदार भी है, इसको पता है कहाँ किससे कैसी बात करनी है। खासकर मेरा भाई जो मुंबई में रहता था, तो वो जब दिल्ली आया पहली बार मुझे छोड़ के गया, फिर दोबारा मुझे लेने भी आया। पापा ने भेजा, पहली बार में तो भेजते हैं, तो लेने आया तो उसने देखा। मैंने भाई को बोल रही तू ये वाली बस लेना भाई, और ना ये वाले नंबर पे लेना, इस वाले जगह पे आना, फिर वहां से ये करना। तो मेरे भाई ने ये कहा कि तुझे जब सब कुछ पता ही है तो पापा ने मुझे क्यों भेजा है लेने के लिए। मैं अपना जॉब छोड़ के दो दिन की छुट्टी लेके तुझे लेने आया हूँ बस यहाँ पे। कहता अगली बार से मैं नहीं आऊंगा। तो अगली बार से मैं फिर अकेले ही दिल्ली गई। सबसे बड़ी बात बताती हूँ, जब मुझे जॉब पहली बार ज्वाइन करना था सहारा में, तो मैं अपने रिलेटिव के ही रुकी हुई थी, तो मुझे दो पैन कार्ड भी उनको सबमिट करने थे एज ए प्रूफ। तो एक तो मैंने किसी का दे दिया था ऑफिस में ही, और एक उन अंकल का ले लिया जिनके यहाँ मैं रहती थी, हमारे रिलेटिव ही थे वो, तो वो मेरे बहुत पीछे पड़े। हाँ, मैं अपने बेटे की ज्वाइनिंग कराने वो मुंबई गया था, तो मैं खुद गया, तुम्हारे पेरेंट्स क्यों नहीं आए, तुम्हारे पेरेंट्स क्यों नहीं आए। तो मैंने कुछ बहाना बनाया कि मेरे घर, उस वक्त में हमारा घर का कंस्ट्रक्शन भी चल रहा था, तो मैंने कहा हमारे घर का कंस्ट्रक्शन चल रहा, वो नहीं। अपनी बेटी को कोई ऐसे अकेले ज्वाइनिंग के लिए भेजता है क्या? पर ऐसे ही है, हमने करा लिया, कोई वो नहीं था। ज्वाइनिंग में क्या होता है, एक फॉर्म ही, तो परमात्मा ने कराया, परमात्मा के भरोसे हम पहुंच गए, और हमें अच्छे अपने जैसे लोग मिले, और मेरे काम भी सहज होते गए, ऑफिस के लोग भी सपोर्टिव थे, किसी ने अपना पैन कार्ड दे दिया सपोर्ट के लिए, ज्वाइनिंग में जो चीजें चाहिए होती है छोटी मोटी, मतलब रेफरेंस के लिए, या तो वो सारी चीजें हो गई।
0: जी जी जी, इस तरह आपकी यात्रा शुरू हुई।
1: जी बिल्कुल।
0: कितने समय आपने काम किया, और फिर छोड़ने का डिसीजन आपने क्यों लिया?
1: हाँ, तो जैसा कि आपने पहले एक लाइन बोली थी कि मैं बहुत ही शुरू से खुशनुमा बिंदास टाइप की, ओपन रहने वाली, बहुत सोशल टाइप की थी, लेकिन लाइफ में हमेशा एक जैसी कंडीशन नहीं होती है। तो बीच में रिसेशन आया था, 2009 की बात मैं बता रही हूँ, उस कंपनी से कुछ लोगों को हटाया भी गया, तो उस लिस्ट में मेरा भी शायद नाम था, तो मुझे तब तो नहीं हटाया गया, लेकिन फिर किसी कारण से मैंने ही फिर वो जॉब को छोड़ा, फिर नई कंपनी ज्वाइन करी। तो एक टाइम ऐसा भी आया जब हमने रिसेशन में जॉबलेस भी रहे, उस वक्त फिर स्ट्रगल किया, फिर से नए नए, टीवी इंडस्ट्री इतनी छोटा एरिया होता है, वही 4-5 चैनल होते हैं घूम फिर के, तो ऐसे टाइम में फिर से जॉब को रीगेन करना, अपने पॉजिटिव रह के फिर से, तो वो चीज तो खैर हो गई, दोबारा जॉब लगा, CV भी ज्वाइन किया, फिर न्यूज एक्सप्रेस ज्वाइन किया। लेकिन उसके बाद फिर लाइफ में कुछ ऐसी चीजें, हमारी लाइफ जैसे आगे बढ़ी, तो लाइफ में फिर आया शादी वाला फेस। तो शादी मेरे पेरेंट्स ने की, लेकिन जिससे मेरी शादी हुई वो फैमिली बिल्कुल अपोजिट थी, वो लोग बिल्कुल रिजर्व टाइप के, ना सोशल, और जितना हमारे घर में फ्रीडम था वो सारा फ्रीडम था नहीं,
0: उधर बंदिशें,
1: वो बहुत सारी बंदिशें थी, हर चीज पूछ के करना है, किसी चीज का फ्रीडम नहीं, आप मतलब अपने पसंद से खाना भी नहीं खा सकते, इतना तक रिजर्व था। तो वो मेरे लिए, आप सोचिए कि जो एकदम ही ओपन और जर्नलिज्म फील्ड में जॉब भी करते हुए सब चीजें, और जहां आपको स्वीकार ही ना करे कोई, तो वो मेरे लिए एक थोड़ा सा निराशा का पीरियड था, और उस वक्त मेरी लाइफ में डिप्रेशन टाइप की चीज हो गई, तो उस चीज से मुझे कॉप अप करना बहुत मुश्किल हो रहा था। मैं जॉब भी कर रही थी लेकिन फिर छोड़ा भी मैंने, मैं नहीं कॉप अप कर पाई। मुझे लगा कि मैं दोनों लाइफ को कैसे बैलेंस करूं, मुझसे नहीं हो पा रहा था क्योंकि फैमिली बिल्कुल अपोजिट थी, उन लोगों की विचारधारा बिल्कुल अपोजिट थी। हालांकि वो लोग भी पढ़े लिखे थे, जॉब करते थे, लेकिन उनकी थिंकिंग इस तरीके से थी। फिर मैंने सोचा, एक बार मैंने ब्रह्मा कुमारी में मेरा जाना हुआ
0: जी।
1: तो मुझे लगा कि अब मुझे कुछ मेडिटेशन या इस तरह की चीज है, तब मैं इंदौर में शिफ्ट हो गई और एक मैं ऐसी नॉर्मल सी कंपनी में जॉब करने लगी।
0: हम इंदौर पूरा परिवार या आप अकेले आए?
1: नहीं, मैं और जो हस्बैंड थे वो हम लोग इंदौर गए, एक डेढ़ साल हम वहां रहे। तो उसी दौरान जहां मेरा फ्लैट था, हमने रेंट पे लिया था, उसके नजदीक ही ब्रह्मा कुमारी का सेंटर था। और चूंकि उस वक्त मैं जॉब भी कर रही थी और फैमिली में मेरा ट्रांजिशन पीरियड था और उस वक्त विचार मैच नहीं कर रहे थे, एक अलग फैमिली थी, अलग सोच थी, और दबा के रखना, फाइनेंशियली भी आपसे ही सपोर्ट लेना, तो सारी चीजें वो बहुत सारी, मतलब मुझ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा हो गई थी। फाइनेंशियली भी मुझे घर में खर्च करना पड़ रहा था, इमोशनली भी टाइम देना पड़ रहा था, घर का पूरा वो गृहस्थी वाला चीज भी जो मैंने कभी की नहीं थी, मतलब खाना वाना बनाना, इतना रिस्पॉन्सिबिलिटी कभी निभाई नहीं थी, वो सब मुझे करना पड़ रहा था। तो उस वक्त कॉप अप करना थोड़ा मुश्किल हुआ, लेकिन ऐसे में फिर मैं ब्रह्मा कुमारी सेंटर में गई, मैंने धीरे धीरे मेडिटेशन सीखना शुरू किया, स्पिरिचुअल स्टडी करी, तो फिर साथ में डॉक्टर को भी दिखाया कि क्यों मुझे ऐसी निराशा सी हो रही है, क्योंकि मेरे जीवन में ये चीजें थी नहीं कभी,
0: तो मेरे लिए वो आ जाती है तो स्वाभाविक है, पूरी लाइफ ही चेंज हो जाती है।
1: हाँ, तो मुझे ये लग रहा था कि मैं इतनी सोशल रहने वाली लड़की और मैं किसी का फोन पिक नहीं कर रही हूँ, मेरे फ्रेंड्स मुझे रात दिन फोन करते, मुझे मन ही नहीं करता था बात करना, मुझे किसी से मिलना जुलना पसंद नहीं था। इवन मैं शुरुआत में मेडिटेशन सेंटर में जाती थी, मैं सबसे पीछे बैठती थी क्लास में भी, और जब कोई नहीं रहता था तब मैं अकेले जाके सिस्टर से मिलती थी, उनसे बात करती। फिर मैंने एक साइकेट्रिस्ट को भी दिखाया इंदौर में, अपोलो में बहुत रिनाउंड साइकेट्रिस्ट थे, उनको भी दिखाया कि मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है। तो फिर उन्होंने थोड़ा बहुत काउंसलिंग की कि हो जाता है कभी कभी लाइफ में जब आप इस तरीके नए रिलेशन में जाते हैं तो, लेकिन ये हुआ मेरे पास परमात्मा की कुछ ऐसी होगी दिव्य शक्ति कि मैं उससे धीरे से, फिर एक मैंने और एक नई जॉब ज्वाइन की वहां पर रहते हुए, इंदौर तो छोटा शहर है, तो मैंने जर्नलिज्म में तो नहीं लेकिन एक मैंने मल्टीनेशनल कंपनी में मैंने एज ए ज्वाइन कर लिया एज ए सेल्स पर्सन ही, ताकि मैं बिजी रहूं, क्योंकि उन्हें लगा आप खाली मत रहिएगा। तो मैं खाली नहीं रहती थी, मैं सिस्टर शिवानी को भी मैं सुनती थी, तो मैंने वो भी किया, मेडिटेशन भी किया, और फिर दोबारा मैं वापस दिल्ली आ गई और मुझे एक फिर और बहुत अच्छी जॉब लग गई।
0: क्या बात है।
1: तो तब मैंने न्यूज नेशन चैनल में ज्वाइन किया, तो मुझे फिर लगा नहीं अब मुझे कम बैक करना चाहिए, मुझे अपने प्रोफेशन पे फिर से ध्यान देना चाहिए। चलो वो चीजें नहीं हैंडल हो रही, कोई बात नहीं अभी छोड़ो, मैंने ये सोचा। थोड़ा फैमिली का भी प्रेशर था कि भाई इस रिश्ता लड़कियों को ही चलाना पड़ता है, कहीं ना कहीं फैमिली में भी मेरी ऐसी सोच थी, मेरी मदर की खास करके बहुत थोड़ी सी रिजर्व थी वो, तो वो कहती थी नहीं सिचुएशंस ऐसी आती है कई बारी पर उसमें लड़कियों को ही हैंडल करना पड़ता है। तो ये मेरे लिए बड़ा वो लग रहा था क्योंकि मुझे, मैंने कभी अपने माइंड में सोचा ही नहीं था कि लड़कियों को इतना भी सब हैंडल करना पड़ता है। तो पूरी लाइफ मेरी 360 डिग्री घूम चुकी थी और मतलब एक तरह से मैंने थोड़ा हंसना भी बंद कर दिया था
0: जी।
1: और लोगों से मिलना जुलना बहुत निराशा
0: जी।
1: सी आ गई थी, सेपरेट रहने लगी थी।
0: तो आपके हस्बैंड आपके फीलिंग्स को नहीं समझते थे?
1: हाँ, वो नहीं समझ रहे थे, या कह सकते हैं कि वो भी कहीं ना कहीं अपनी फैमिली के प्रेशर में थे, ऐसा भी कह सकते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि लड़कियों को नहीं, लड़कों को भी अपने फैमिली के प्रेशर से गुजरना पड़ता है। उनकी अपब्रिंगिंग मुझसे बिल्कुल अपोजिट हुई थी, उनकी मदर ने अपब्रिंगिंग की थी, उनके फादर फौज में थे, तो वो कभी ना कभी, मतलब उन्होंने कभी वो वैसा फ्रीडम देखा नहीं था मदर फादर को एक साथ, तो मदर थोड़ी सी डोमिनेटिंग थी, उनको फोर्स करती थी तुम्हें अपने हिसाब से चलना है, मेरे हिसाब से चलना है, तो थोड़ा उनको प्रेशर था फैमिली का, मेरे अपोजिट था। जैसे मैं अपने डिसीजन जिंदगी में खुद लेती आई और उनका ये था कि उनके डिसीजन सारे उनकी मदर ने लिए।
0: अच्छा।
1: तो वो मतलब एक हमारी केमिस्ट्री जम नहीं पा रही थी, क्योंकि मैं तो, मुझे जो सही लगता था मैं वो करती थी, जो जॉब किया, जो फैसले लेने थे अपनी जिंदगी के, और उनके जिंदगी के सारे फैसले किसी पर डिपेंड थे, तो वो चीजें बहुत क्लैश कर रही थी। तो इस वजह से फिर वो रिश्ता चल भी नहीं पाया। वो उसका भी कोई बात नहीं है, ये तो अभी आजकल कॉमन बात है। तो मुझे ये लगता है मेरी लाइफ से जो मैसेज देना चाहूंगी खासकर फीमेल्स को, कि कई बारी हमारे रिश्तों में ऐसा होता है या लाइफ में ऐसा होता है कि हमें ऐसी सिचुएशन से गुजरना पड़ता है जहां हम खुद तो कॉन्फिडेंस होते हैं और हमें किसी के सपोर्ट की जरूरत भी नहीं होती है। मुझे जब मेरी मैरिज हुई मुझे ना कोई फाइनेंशियल सपोर्ट की जरूरत थी कुछ। हाँ, अच्छी बात ये रही, आप बिलीव नहीं करेंगे, जॉब के दौरान मैंने एक छोटा सा दिल्ली में फ्लैट भी खरीद लिया
0: था। क्या बात है,
1: बिफोर मैरिज। तो ये भी मेरा एक बहुत अचीवमेंट था। सबको जब मैंने लिया तो जॉब में, जब मैं न्यूज एक्सप्रेस में थी तो मैंने सबको ऑफिस में भी मिठाई बांटी कि मैंने एक फ्लैट लिया है, तो तब भी वो लोग बहुत शॉक्ड हो गए कि तुम इतनी कम एज में, क्योंकि मेरे फादर का भी सपोर्ट था, उनकी भी विश थी कि तुम लो, क्योंकि मैं बहुत जितना कमाती थी मैं उससे चार गुना खर्चा करती थी। तो मेरे घर में तो कपड़ों की अलमीरा और जूतों की अलमीरा ही हुआ करती थी। तो मेरे पापा आए 15 दिन मेरे साथ रहे, तो उन्होंने देखा कि इसने कभी 15 दिन में एक भी दिन ड्रेस कभी रिपीट ही नहीं की है, तो कहते तुम करती क्या हो, तुम मुझे कुछ अपना इन्वेस्टमेंट करो, कुछ पैसों को बचाओ। तो फिर उन्होंने कहा तुम एक फ्लैट लो और मैं तुम्हें थोड़ा हेल्प करूंगा और तुम्हारा घर भी हो जाएगा, तुम्हें रेंट वेंट भी नहीं पे करना पड़ेगा और तुम्हारे लिए भविष्य में अच्छा होगा। हम तो इतना सोचते नहीं थे, हम तो बस लाइफ में पता ही नहीं था दुख चीज क्या होती
0: जी,
1: है
0: जी, जी, जी,
1: हाँ। लेकिन जब ये वाली चीज हुई लाइफ में, जब मेरा सेकेंड फेज आया आफ्टर मैरिज, तो वो मुझे तोड़ गया एक तरह से, क्योंकि मैं इतना कॉप अप ही नहीं कर पा रही थी, फैमिली अपोजिट। बस फिर ये था परमात्मा की ब्लेसिंग थी कुछ, और मुझे इतना अच्छा इंस्टीट्यूट ब्रह्मा कुमारी मिला जहां मैंने स्पिरिचुअल लर्निंग की, स्पिरिचुअल स्टडी की, और फिर से अपने माइंड की जो कंडीशनिंग की कर दी थी दुनिया वालों ने, मतलब मैं निराश इसलिए नहीं थी, मुझे लगता है कि मेरे में कैपेसिटी नहीं है या मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूं, मैं ये देखती थी मेरे आसपास जो लोग थे मुझ पर प्रेशर बनाते थे। मैं ऑफिस में जाती थी, अरे मैरिज हो गई अब बच्चे कर लो, मतलब एक रूटीन लाइफ ही जीना था उनको, या फैमिली वाले भी ये बोलते थे कि क्या कर रहे हो, कैसे क्या चल रहा है, और ये तो होता ही है, मतलब वो एक घिसी पिटी बात है जिसको मेरा माइंड स्वीकार नहीं कर पा रहा था, मेरी अंतरात्मा स्वीकार नहीं कर रही थी कि ऐसी जिंदगी क्या मैंने प्लान की थी अपने लिए। तो फिर मैंने उसको बोला नहीं, अब मुझे इस चीज से निकलना है, और इसके लिए मुझे बहुत स्पिरिचुअल स्टडी ने बहुत हेल्प की, मेडिटेशन ने बहुत हेल्प किया, मेडिटेशन से मैंने अपने मन को हील किया, मेरी सारी निराशाएं चली गई। उसके बाद फिर से मैंने फिर अपना धीरे धीरे आध्यात्मिक स्टडी के थ्रू, इसी को मैंने सोचा कि अब जैसे एक योगा वाले नहीं होते, फिजिकल योगा करता है तो किसी को उसको लगता है कि ये फिजिकल योगा इसको मैं प्रोफेशन बना सकता हूं, तो मुझे सेम ये वाली फीलिंग आ गई कि ये जो मेडिटेशन है जो मैंने ये सीखा है, कई लोग मेरे जैसे निराशा में होंगे, डिप्रेशन में होंगे, लाइफ में टूटे होंगे, क्यों ना मैं इस मेडिटेशन को और लोगों तक सिखाऊं, और स्पिरिचुअल स्टडी कितनी जरूरी है, क्योंकि मुझे तब तक ये नहीं पता था कि स्पिरिचुअल चीज भी हमारी लाइफ में इतनी वैल्यू रखती है।
0: जी जी, तो इस तरह आपका डिवोर्स हो गया और फिर आप अभी स्पिरिचुअल लाइफ जी रहे हैं।
1: हाँ, फिर मैंने इसको ऐसे एज ए स्पिरिचुअल टीचर मैंने सोचा अब मुझे स्पिरिचुअल, और मैं साथ में मीडिया का भी काम करती हूँ, तो मैं अभी यही ब्रह्मा कुमारीज के भी यूट्यूब चैनल हैंडल करती हूँ, इनकी न्यूज भी लिखती हूँ और भी दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे भी लिखती हूँ, मीडिया विंग से भी जुड़ी हूँ, कई तरह की मैं मीडिया में सेवाएं करती रहती हूँ, ड्यूटीज मैं निभाती हूँ, प्रोफेशनल भी करती हूँ कुछ चीजें। तो इस तरीके से ये जर्नी रही। तो मैं लेकिन यही मैसेज देना चाहूंगी हर फीमेल को कि अप एंड डाउन लाइफ में आते हैं, तो हमें कभी भी निराश नहीं होना चाहिए, और कहीं ना कहीं एक रास्ता, एक किरण हमें जरूर मिलती है जो हमें आगे जीवन में ले जाती है।
0: बिल्कुल, जैसे आप भी निराश हो गए थे लेकिन फिर से आपने अपने आप को खड़ा किया।
1: हाँ बिल्कुल, रीगेन किया जी, बिल्कुल।
0: तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका ज्योति जी, जो आप अपने ही रेडियो मधुबन में, क्योंकि आपने तो रेडियो मधुबन में भी कार्य किया है, तो कभी हम ये बात भी बताएंगे अपने श्रोता बंधुओं को।
1: बिल्कुल जरूर
0: जी, तो बहुत बहुत आभार आपका कि पुनः आप पधारे और आपने हमारे श्रोता बंधुओं के लिए और रेडियो मधुबन के लिए कीमती समय निकाला और अपने जीवन के अनुभव शेयर किए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद उषा जी, थैंक यू सो मच।
0: आप सुन रहे थे कार्यक्रम वंदे मातरम, और वंदे मातरम में ज्योति जी हमारे साथ बने हुए थे। ज्योति जी के अनुभव आप सभी ने सुने हैं कि कितने निडर होने के बावजूद भी इनके जीवन में भी परीक्षाएं आई, और एक समय ऐसा आया कि आप पूरे निराश हो गए, फिर से स्वयं को संभाला और स्वयं को उठ खड़ा किया। ऐसे ही हमारे बहनों को कहना चाहेंगे कि कोई भी जीवन में निराश न होवे, हर एक के जीवन में उतार चढ़ाव आता है, लेकिन स्वयं को संभालना है जैसे कि ज्योति जी ने संभाला है। तो ऐसी नारी शक्ति को, ऐसी भारत देश की बेटी को रेडियो मधुबन सलाम करता है, वंदन करता है, नमन करता है। प्यारी बहनों, अगर आप भी अपने जीवन के अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो नंबर रेडियो मधुबन के है 9414151415 पर आप फोन कॉल्स कर सकते हैं और आप भी अपने जीवन के अनुभव शेयर कर सकते हैं। अब मैं उषा माहेश्वरी आप सभी से इजाजत चाहूंगी, अगले रविवार को फिर मिलेंगे। तब तक के लिए सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए रेडियो मधुबन 107.8 FM।

किसी की जिंदगी में कोई दुर्घटना घटित न हो, ये हम सभी चाहते हैं। पर अचानक अगर कोई विपत्ति आ जाए तो घबराइए नहीं, तुरंत कॉल कीजिए अपने शहर की पुलिस को। डायल कीजिए 100 अपने फोन से। सजग रहिए, सुरक्षित रहिए। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।

शांति, मैं हूँ ग्रेसी सिंह और आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

so, so hum. As I was, I will become.

ओम शांति। आज है 29 जुलाई 2026 और आज है गुरु पूर्णिमा। सभी भाई बहनों को गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत हार्दिक बधाइयां, शुभकामनाएं। कहा जाता, गुरु बिना ज्ञान नहीं और ज्ञान बिना गति नहीं। सचमुच जब इस संसार के अंदर चारों ओर अज्ञानता का अंधकार फैल जाता है, ऐसे समय पर ही परम पिता, परम शिक्षक, परम सतगुरु परमात्मा आकर के मनुष्य जीवन से अज्ञानता का अंधकार नष्ट कर उनके जीवन को ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित कर देते हैं। साथ ही साथ ये कहा जाता, गुरु अर्थात जो गुरूर को मिटाने वाला है। मनुष्य जीवन में अज्ञानता के कारण ही अहंकार आ जाता है। परम सतगुरु परमात्मा आकर के उस अहंकार को मिटा करके, देह अभिमान को मिटाकर देही अभिमानी हमें बनाते हैं, जिससे जीवन में विनम्रता आती है। साथ ही साथ कहा जाता है कि गुरु अर्थात जो हमारे जीवन की कमजोरियों को सदाकाल के लिए मिटा देते हैं। मनुष्य जीवन में चलते चलते अनेक कमी कमजोरियां आ गई है, अनेक विकृतियां आ गई है। परमात्मा जब इस संसार में सतगुरु बनकर के अवतरित होते हैं तो हम सभी कि इन कमजोरियों को मिटाने के लिए हमें ज्ञान की शक्ति, पवित्रता की शक्ति और योग बल से सशक्त करते हैं। साथ ही साथ गुरु माना ही श्रेष्ठ गति देने वाले, अर्थात परमात्मा सतगुरु कैसे हमारी श्रेष्ठ गति करते हैं, तो श्रीमत देकर। तभी तो कहा जाता है परमात्मा की गत मत सबसे न्यारी है, अर्थात श्रेष्ठ गति देने की श्रीमत सबसे न्यारी और प्यारी है। और उसी श्रीमत या ज्ञान के प्रकाश से हम सबके जीवन को संपूर्णता की ओर ले जाते हैं।

पूर्णिमा अर्थात जो मनुष्य जीवन में पूर्णता को ले आए, संपूर्णता को ले आए। तो ज्ञान, पवित्रता, प्रेम, शांति आदि अनेक गुणों से हमारे जीवन को संपूर्ण कर देते हैं, भरपूर कर देते हैं, जिससे हम अपने जीवन के अंदर श्रेष्ठ मंजिल को प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसे गुरु पूर्णिमा की सबको बहुत बहुत हार्दिक बधाइयां, पुनः पुनः शुभकामनाएं। सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य, जिसमें बाबा हम बच्चों को एक दूसरे का रिगार्ड कैसे रखना है ये भी सिखाते हैं। तो हम आत्माओं को परमात्मा का रिगार्ड कैसे रखना है यह भी समझाते हैं। सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, अपने स्वधर्म में स्थित होकर आपस में प्यार से एक दो को ओम शांति कहो। यह भी एक दो को रिगार्ड देना है। आज की मुरली से प्रश्न है, भक्ति में भी भगवान को भोग लगाते हैं, यहां तुम बच्चे भी लगाते हो, ये रसम क्यों? उत्तर, क्योंकि यह भी उनका रिगार्ड रखना है, परमात्मा का रिगार्ड रखना है। बल तुम जानते हो शिव बाबा निराकार है, अभोक्ता है, खाते नहीं है, लेकिन वासना तो पहुंचती है। सर्व का सदगति दाता पति पावन बाप है, तो जरूर भोग भी उनको लगाना चाहिए। आज की मुरली से पहले गीत बजा है, हमारे तीरथ न्यारे हैं। ओम शांति। बच्चों के दिल में भी उठा ओम शांति। जैसे किसको नमस्ते कहा जाता है तो वह भी रिटर्न में कहते हैं नमस्ते। यहां बाप ने कहा ओम शांति तो सब बच्चे इनके आत्मा सहित, यानी ब्रह्मा बाबा की आत्मा सहित सबके दिल से आएगा ओम शांति। अर्थात हम आत्मा शांत स्वरूप है, रिस्पॉन्ड तो करना चाहिए ना। ये रिस्पॉन्ड हुआ ना, दूसरे कोई अर्थ सहित ऐसे कह न सके। हम शांति स्वधर्म में स्थित होकर कहते तो बाबा कहे ऐसे अर्थ सहित कोई कह न सके। बाप ज्ञान सूर्य भी कहते हैं ओम शांति, ज्ञान चंद्रमा भी कहते हैं ओम शांति, ज्ञान सितारे भी कहते ओम शांति। सितारों में सब आ गए। अब तुम बच्चों को अपने स्वधर्म का पता लगा है कि हम शांत स्वरूप और शांति धाम में रहने वाले हैं, यह तुमको निश्चय हुआ है। अच्छी रीति से तुम आत्मा को जानते हो। बरोबर कहा जाता है महान आत्मा पाप आत्मा। आत्मा ही एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, परंतु आत्मा का यथार्थ परिचय कोई को नहीं है। हम आत्मा इतनी छोटी है, 84 जन्मों का पाठ बजाते हैं, यह न तुमको पता था न और कोई जानते थे। बाबा कहते हैं इस बात को न कोई और को पता था न हम आत्माओं को पता था कि आत्मा इतनी छोटी और उसमें 84 जन्म का पाठ भरा हुआ है। अभी तुम बच्चे सम्मुख बैठे हो, बाप को अपना बनाते हो। बच्चे बाप को अपना बनाते हैं किस लिए? वर्षा लेने के लिए। तुम बच्चे जानते हो हम आत्माओं का बेहद का बाप इस ब्रह्मा तन में आया हुआ है। ब्रह्मा तन में आकर आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। हम जानते हैं कि इस समय बेहद का बाप इस ब्रह्मा तन में आए हैं और क्यों आए हैं,
आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। कल्प पहले भी आदि सनातन देवी देवता धर्म अर्थात सूर्यवंशी राजधानी स्थापन हुई थी। ये स्थापना का कार्य कल्प कल्प बाप ही करते हैं, जिसको क्या कहा जाता है, जिसको भगवान कहा जाता है। भगवान बाप से सब मांगते हैं, क्या मांगते हैं कि दुख हरो सुख दो। जब सुख मिल जाता है तो मांगने की दरकार ही नहीं रहती। सतयुग में कोई मांगने की दरकार ही नहीं रहती। यहां मांगते हैं क्योंकि दुख है, वहां कुछ भी मांगने की दरकार नहीं रहती, क्योंकि बाप सब कुछ देकर जाते हैं। इसीलिए सतयुग में कोई भी बाप को याद नहीं करते हैं। बाप समझाते हैं, बच्चों को हम सुखदाम का मालिक बनाते हैं। तुम बच्चे जानते हो, इस बाबा से हम फिर से सुखदाम का वर्षा ले रहे हैं। बेहद के बाप से बेहद का सुख लेते हैं। तुमको समझाया जाता है, क्या समझाया जाता है, भक्ति मार्ग कैसे चलता है। मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ की उत्पत्ति पालना और संहार कैसे होता है, वह ड्रामा का आदि मध्य अंत क्या है। यह है साकारी दुनिया, वह है निराकारी दुनिया। तो तीनों कालों का, तीनों लोकों का परिचय बाबा ही आकर के हम बच्चों को देते हैं। बच्चे समझ गए हैं, हमने पूरा आधा कल्प भक्ति की। अब कलयुग का अंत है, वर्षा मिलता ही है संगम पर। यह बच्चों को अच्छी रीति समझना चाहिए। अभी हम संगम पर हैं। वास्तव में अभी हम कहां हैं? संगम पर हैं। यह बच्चों को अच्छी रीति समझना चाहिए। कौन सी बात? अभी हम संगम पर हैं। ये तुम बच्चे ही समझते हो, दूसरे कोई समझेंगे नहीं जब तक परिचय नहीं देंगे। जब तक हम परिचय नहीं देवे, कोई कुछ भी नहीं समझेंगे। जरूर संगम युग आता है, जबकि पुरानी दुनिया बदल नहीं होती है। ये सारी पुरानी दुनिया है, इनको आयरन एज कहा जाता है। यह भी तुम जानते हो, पहले पहले सारी दुनिया पर एक ही धर्म होता है। नई दुनिया में भारत खंड ही सिर्फ होता है, थोड़े मनुष्य होते हैं। नई दुनिया को ही स्वर्ग कहा जाता है। इससे सिद्ध है नई दुनिया में नया भारत था, अब पुरानी दुनिया में पुराना भारत है। गांधी भी कहते थे नई दुनिया नया भारत हो, नई दिल्ली हो। अब नव भारत व नई दिल्ली है नहीं, वास्तव में नव भारत नई दिल्ली है नहीं। नव भारत में तो इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था, अभी उसी भारत पर रावण का राज्य है। यह भी लिखना चाहिए नई दुनिया नई दिल्ली फलाने समय से फलाने समय तक इनका राज्य। यह समझा भी वही सकता है, कौन? बाबा कहते ये बातें समझा भी वही सकता है जो नई दुनिया बनाने वाला है, अर्थात शिव बाबा ही हमें समझा सकता है। ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया स्वर्ग स्थापन करते हैं। जिस स्वर्ग का वर्षा लेने के लिए तुम आते हो, बाप तुमको युक्ति बतलाते हैं अथवा पुरुषार्थ कराते हैं। सम्मुख भी मिलने आते हो अथवा वहां भी बैठ पड़ते हो। दिल होती है सम्मुख मिले, वह सम्मुख मिलते हैं मनुष्य मनुष्य से। यहां तुम कहेंगे हम जाते हैं कहां? शिव बाबा से मिलने। कहेंगे वो तो निराकार है ना, तो कहो हम आत्मा भी निराकार है। अगर परमात्मा निराकार है तो हम आत्मा भी निराकार है। हम भी यहाँ पाठ बजाने आते हैं ना, जिनका नाम है वह जरूर पाठधारी भी है। भगवान का भी नाम है ना,
निराकार शिव को ही भगवान कहा जाता है, और किसको भगवान नहीं कहेंगे। भगवान निराकार ही गाया जाता है, उनकी पूजा होती है, आत्माओं की भी पूजा होती है। रुद्र यज्ञ रचते हैं ना, वहां मिट्टी के शालिग्राम बनाते हैं, पत्थर की बनाओ और मिट्टी की। बाबा कहते हैं शालिग्राम चाहे पत्थर का बनाओ व मिट्टी का, मिट्टी के तोड़ने पर फिर बनाने सहज है। दुनिया तो इन बातों को नहीं जानती है। रुद्र यज्ञ में कितनी आत्माओं की पूजा कर सकते हैं, बच्चे तो ढेर हैं। भगत सब भगवान के बच्चे हैं, बाप को याद करते हैं, भगत भी तो बाबा के बच्चे हैं, बाबा को याद तो करते हैं, बाबा ने समझाया है। शिव बाबा आते ही भारत में है, तुम थोड़े बच्चे जो उनके मददगार खुदाए खिदमतगार बनते हो, उनकी ही पूजा भक्त लोग शालिग्राम बनाकर करते हैं। यज्ञ जो रचते हैं उनमें छोटा यज्ञ भी होता है, बड़ा भी होता है। बड़े शाहूकार लोग बड़ा यज्ञ रचते हैं, लाख लाख बनाते हैं, लाख लाख शालिग्राम बनाते हैं। छोटा यज्ञ होगा तो 5-10 हजार बनाएंगे, जैसा जैसा सेठ वैसा यज्ञ, और फिर उनमें शालिग्राम बनाते हैं, जैसा जैसा सेठ वैसा यज्ञ, और फिर उतने शालिग्राम बनाते हैं। एक शिव बाकी शालिग्राम बनाते हैं, फिर उतने ब्राह्मण भी चाहिए। बहुत उन्हें यज्ञ देखा होगा, तुम जानते हो बाबा हम बच्चों की सेवा करते हैं, हम फिर औरों की सेवा करते हैं, इसलिए पूजा होती है। तुम अभी पूज्य बनते हो, बाबा कहते हैं अभी तुम पुजारी से पूज्य हो। आत्मा कहती है बाबा आप तो सदैव पूज्य हो, हमको भी पूज्य बना रहे हो। तुम पूज्य आत्मा शरीर लेंगी तो कहेंगे पूज्य देवी देवताएं। आत्मा ही पूज्य अथवा पुजारी बनती है। बाप आते भी है एक ही बार, फिर कभी बाप आत्माओं को पढ़ाए ये हो नहीं सकता। बीच में बाबा कहे मैं कभी आकर के आपको पढ़ाऊं ये हो नहीं सकता है, ये होता ही नहीं। आत्मा ही सुनती है, जैसे आत्मा शरीर द्वारा सुनती है वैसे परम पिता परमात्मा सुप्रीम आत्मा भी शरीर का आधार ले इन द्वारा सुनते हैं। इन द्वारा तुमको राजयोग सिखलाते हैं। उनको अपना शरीर तो है नहीं, ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी अपना सूक्ष्म शरीर है, यहां तो सबका अपना अपना शरीर है। यह ही साकारी दुनिया, शिव बाबा है निराकार। वह ज्ञान का सागर, सुख का सागर, प्यार का भी सागर है। वह आकर सबको पतित से पावन बनाते हैं, इसमें प्रेरणा की कोई बात नहीं है। मुझे अगर प्रेरणा से पावन बनाना हो तो फिर यहाँ आकर रथ लेने की क्या दरकार है। बाबा कहते अगर प्रेरणा से ही पावन बनाना होता तो फिर यहाँ आकर रथ लेने की क्या दरकार है। शिव के मंदिर में आगे बैल रखते हैं। मनुष्य की बुद्धि बिल्कुल ही पत्थर बुद्धि होने के कारण कुछ भी समझते नहीं। बैल शिव के आगे क्यों रखा है? गौशाला नाम है तो बैल रख दिया। बाबा कहे ये गौशाला कहा जाता है यज्ञ को, तो नाम सुना तो बैल रख दिया है। अब बैल पर किसने सवारी की? श्री कृष्ण की आत्मा तो सतयुग में होती है, उनको क्या पड़ी है जो जानवर में आकर बैठे। बाबा के उनको क्या पड़ी है जो जानवर में आकर बैठेंगे, कुछ भी समझते नहीं है। द्रौपदी भी एक थोड़ी थी, ढेर है जो पुकारती है। उन्होंने तो एक नाटक बना दिया है कि श्री कृष्ण साड़ियां देते जाते हैं, अर्थ कुछ भी समझते नहीं है। अभी तुम बच्चे समझते हो,
तुमको 21 जन्मों के लिए नंगन नहीं होना है। कहां की बात कहां ले गए हैं, भक्ति मार्ग की अथाह कहानियां है। कहते हैं ये कथाएं आदि सब बना दी है, पुनर्जन्म लेते सुनते आए हैं। अनादि भी कब से शुरू हुई, पुनर्जन्म लेते सुनते आए हैं, अनादि भी कब से शुरू हुई कुछ भी पता नहीं। यह भी पता नहीं है कि रावण राज्य कब से शुरू होता है, उनका कोई वर्णन नहीं है। तुम कितनी सेवा करते हो, वह सूर्य चांद सितारे आदि तो है ही है, सतयुग में भी है तो अभी भी है, उनका बदल सदल नहीं होता। सूर्य चांद सितारों का बदल सदल बाबा कहते नहीं होता। तुम लोग निमित्त बने हो भारत को फिर से अंधियारे से निकाल रोशनी में लाने। भक्ति मार्ग को अंधियारा कहा जाता है, अज्ञानता का अंधियारा है। तुम्हारी महिमा है, तुम धरती के सितारे हो, सितारे हैं तो चांद सूर्य भी होने चाहिए। यह है तुम्हारा रूहानी तीर्थ, मधुबन बेहद घर है हमारा रूहानी तीर्थ। तुम ऐसी यात्रा पर जाते हो जहां से फिर इस मृत्यु लोक में नहीं आएंगे। अभी ये मृत्यु लोक है, फिर यहां ही अमर लोक होगा। द्वापर से मृत्यु लोक शुरू होता है। अब तुम सच्ची सच्ची अमर कथा सुन रहे हो अमर लोक में जाने के लिए। तुम समझते हो हम आत्माओं की यात्रा न्यारी है। तुम यहां बैठे यात्रा पर जाने का पुरुषार्थ करते हो। हमारी यात्रा न्यारी है क्योंकि हम बैठे बैठे बुद्धि योग बल से यात्रा करते हैं। याद से ही तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, वह यात्रा पर जाते हैं। विकर्म विनाश कहाँ होते हैं, शराब की तो मनुष्य को इतनी आदत है जो छिपाकर जरूर ले जाते हैं, तीर्थों पर भी ले जाते हैं। आजकल तो बहुत गंदे भी होते हैं यात्रा में, है तो सब पतित ना, जैसे ब्राह्मण पतित वैसे यात्री भी पतित। पंडित लोग यात्रा कराते हैं, पावन थोड़ी है, तुम तो पवित्र रहते हो। सच्चे ब्राह्मण तुम हो, तुम्हारी आत्मा पवित्र रहती है। याद की यात्रा से ही तुम पवित्र बनते हो, सतो प्रधान बनना है। बाबा बार बार लिखते हैं, क्या लिखते हैं बाबा, मीठे बच्चों यशो बाबा ने आत्माओं को लिखा। मीठे बच्चों ये किसने लिखा, यशो बाबा ने आत्माओं को लिखा, मुझे याद करो। तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन, सतो प्रधान दुनिया के मालिक बन जाएंगे। बस एक ही डायरेक्शन है मुख्य, कितना सहज है। याद से ही विकर्म विनाश होंगे, याद नहीं करेंगे तो विकर्म नहीं विनाश होंगे। बाबा कहे याद नहीं करेंगे तो विकर्म विनाश भी नहीं होंगे, फिर क्या होगा, फिर सजा खाएंगे। बाबा तो कहते हैं तुम कहां भी जाओ कमाई कर सकते हो, उठो बैठो खाओ, सिर्फ बाप को याद करो, तुम्हारी कमाई है। बच्चों के लिए तो और ही सहज है, बाबा कहते हैं बच्चों के लिए तो और ही सहज है, इसमें कोई अटेंशन आदि की बात नहीं। श्रीनाथ के मंदिर में श्रीनाथ की याद में बैठते हैं, भोग लगता है तो पत्थर की मूर्ति ना, भोग भी किसको लगाना चाहिए। बाबा पूछते भोग भी किसको लगाना चाहिए, अधिकारी तो एक ही शिव बाबा है, भोग भी एक ही शिव बाबा को लगना चाहिए। अधिकारी तो एक ही शिव बाबा है, सर्व का सदगति दाता पतित पावन वह है। बाप कहते हैं मैं स्वीकार ही नहीं करता हूं, तुम मेरे ऊपर दूध भी पानी वाला चढ़ाते हो। शिव बाबा कहते हैं तुम मेरे ऊपर दूध भी पानी वाला चढ़ाते हो, ये भोग लगाते हो क्यों, मैं तो निराकार अभोक्ता हूं, मेरी क्या पूजा करते हो। मेरे आगे भोग रखेंगे लेकिन भक्तों ने भोग लगाया, उन्होंने ही बांट कर खाया,
तुम जानते हो शिव बाबा को भोग तो जरूर लगाना है, वो भी जानते हैं शिव बाबा को भोग जरूर लगाना है, फिर बांट कर तुम खाते हो, ये जैसे किसका रिगार्ड रखना है, ये जैसे किसका रिगार्ड रखना है। तुम शिव बाबा को भोग लगाते हो, शिव बाबा का भंडारा है ना, जिसका भंडारा है उसको भोग जरूर लगाना पड़े, बल तुम भोग लगाते हो, खाते भी तुम बच्चे ही हो, ये ब्रह्मा खाता है, मैं नहीं खाता। शिव बाबा कहते मैं नहीं खाता हूं, ब्रह्मा बाबा खाते हैं, बाकी वासना तो आएगी ना, ब्रह्मा बाबा खाएंगे तो वासना तो आएगी ना, बहुत अच्छा भोग बनाया है, कहने के लिए ऑर्गन्स तो है ना, ये ब्रह्मा खा सकते हैं, ये शरीर तो इनका है ना, मैं सिर्फ इनमें आकर प्रवेश करता हूं। बाबा कर्मेंद्रिय का आधार लेते हैं, परंतु बाबा कहते हैं मैं वासना ले लेता हूं, बाकी भोग मैं नहीं खाता हूं, मुख ही काम में लाता हूं। तुम बच्चों को पतित से पावन बना रहे, ब्रह्मा बाबा के तन में प्रवेश करता हूं, परंतु बाबा कहते मैं सिर्फ उसका एक मुख का आधार लेता हूं, बच्चों को ज्ञान सुनाए, पतित से पावन बनाने, बाकी मैं कोई भी और कर्मेंद्रिय का आधार नहीं लेता हूं। गौ मुख भी कहते हैं ना, इसीलिए गौ मुख भी कहते, बरोबर गौ भी है, तुम जानते हो इनसे ही तुम बच्चों को एडॉप्ट करते हैं, ये मात पिता दोनों है, परंतु माताओं को संभाले कौन, इसलिए सरस्वती को निमित्त रखा ड्रामा प्लान अनुसार। माता गुरु की महिमा भी चाहिए ना, गुरु तो पहले नंबर में मशहूर यह है, गुरु ब्रह्मा ठीक है, बाबा कहते हैं कहा जाता है गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो बाबा कहते हैं वास्तव में गुरु तो पहले नंबर में कौन है, आज गुरु पूर्णिमा के दिन बाबा कहते हैं माता गुरु की महिमा भी चाहिए, गुरु तो पहले नंबर में मशहूरिया है, कौन, गुरु ब्रह्मा ठीक है, शिव बाबा गुरु मशहूर है, जैसे बाप वैसे बच्चे, तुम ब्राह्मण भी सच्चे गुरु बनते हो, सबको सच्चा रास्ता बताते हो स्वर्ग का, आत्मा ही मुख से रास्ता बताती है, क्या बताती है, मन मना भव मध्याजी भव, बाप माँ बच्चे सब वही रास्ता बताते हैं, शिव बाबा ब्रह्मा माँ बच्चे सब वही रास्ता बताते हैं, या तुम सन्मुख बैठे हो याद रहती है, फिर घर जाते हो तो बहुत बच्चे भूल जाते हैं, यहाँ आनंद आता है, बाबा पास आए हैं, बाबा कहते मधुबन में आते हैं तो आनंद आता है कि बाबा के पास आए हैं, बाबा कहते हैं स्वदर्शन चक्रधारी बन, ये युक्ति बताओ कि मुक्ति धाम बाप को और मर्सी को याद करो, बाबा कहते हैं ये युक्ति जरूर बताओ कि मुक्ति धाम बाप को और वर्षे को याद करो। अच्छा मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, आपस में एक दो को व बाप को यथार्थ रिगार्ड देना है, बाप भल अभोक्ता है लेकिन जिसके भंडारे से पालना होती है उसको पहले स्वीकार जरूर कराना है, दूसरी बात पूजनीय बनने के लिए खुदाई खिदमतगार बनना है, पूजनीय बनने के लिए खुदाई खिदमतगार बनना है, बाप के साथ सेवा में मददगार बनना है, जब आत्मा शरीर दोनों पावन होंगे तब पूजा होगी। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, अपने प्रति
व सर्व आत्माओं के प्रति लॉफुल बनने वाले